मीडियम वेव 305.81 मीटर अर्थात 981 किलोहर्ट्ज और फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.8 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। आप हमारा प्रसारण मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी सुन सकते हैं। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की दूसरी तिथि, तदनुसार 23 मई 2026। 5:57 होने को हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है।

0: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। सुबह के 6 बजने को हैं समाचार। अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। रोजगार मेला प्रधानमंत्री मोदी की रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारत और साइप्रस के बीच आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडुलाइडस के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। उन्होंने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है।
2: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
1: दोनों नेताओं ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र के ढांचे के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक समझौता को शीघ्र अंतिम रूप देने और अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने आतंकवाद के प्रति अपनी शून्य सहिष्णुता के दृष्टिकोण को भी दोहराया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर आज कोलकाता पहुंचेंगे। ये उनकी पहली भारत यात्रा है। श्री रूबियो नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट करेंगे। श्री रूबियो विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर से बातचीत भी करेंगे। उनका अमरीकी दूतावास में होने वाले अमरीकी स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम है। श्री रूबियो मंगलवार को नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय

0: वास में होने वाले अमरीकी स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम है। श्री रूबियो मंगलवार को नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि क्वाड बैठक में स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत के दृष्टिकोण के अनुरूप जारी पहलू की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में इन्वेस्टमेंट कंपनी इंस्टीट्यूट ऑफ द अमेरिका के एशिया और ग्लोबल एनालिटिक्स के प्रबंध निदेशक मैथ्यू मोहलिंग कैंप से मुलाकात की और भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में निवेश के अवसरों पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि चर्चा का मुख्य केंद्र प्रौद्योगिकी, अवसंरचना, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल व्यवस्था सहित उच्च विकास वाले क्षेत्रों में अमरीकी संस्थागत निवेश को मजबूत करना, साथ ही विनिर्माण, नवाचार और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना था। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है और आपूर्ति स्थिर बनी हुई है। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने नागरिकों को घबराहट में खरीदारी न करने और केवल आवश्यकता के अनुसार ईंधन खरीदने की सलाह दी है। मंत्रालय ने कहा कि कुछ खुदरा दुकानों पर अस्थायी दबाव को तेल विपणन कंपनियों द्वारा निरंतर आपूर्ति निगरानी और समन्वित वितरण प्रयासों के माध्यम से दूर किया जा रहा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में पुणे से एक और महिला को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान मनीषा हवलदार के रूप में हुई है, जिन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। अब इस मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण सभी प्रचालनगत और तकनीकी मानकों पर सटीक उतरा। ये सफल परीक्षण भारत की रणनीतिक रक्षा तैयारियों में एक अन्य मील का पत्थर है, जो देश की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र प्रांतिरक्षा मिशन में कार्यरत भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को 2025 के संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार के लिए चुना गया है। मेजर बराक वर्तमान में लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में महिला सहभागिता दल की कमांडर के रूप में भारतीय बटालियन में कार्यरत हैं। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू को 55 रन से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 255 रन बनाए। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला शाम 7:30 बजे पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:05 हुए हैं। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। शुभारंभ हीरा सागर रचित देशगान से समूह स्वर में।

0: इस भक्ति पद के साथ ही हमारी आज की वंदना अब यहीं संपन्न होती है। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए चिंतन। आलेख श्री ललित सुरजन का है।
1: पानी प्रकृति का ऐसा अनमोल वरदान है जिसकी आवश्यकता मनुष्य को ही नहीं, चींटी से लेकर हाथी तक इस चराचर जगत के हर प्राणी को और तृणमूल से लेकर आकाश की ऊंचाई से होड़ लेते विशाल वृक्ष तक हर वनस्पति को होती है। कहना न होगा कि यदि जल न हो तो ये जीवन भी न रहे। जब हमारे अंतरिक्ष विज्ञानी दूसरे ग्रहों पर अपने अनुसंधान उपकरण भेजते हैं तो सबसे पहले यही पता लगाने का यत्न करते हैं कि चंद्रमा हो या मंगल, शुक्र हो या गुरु, उस ग्रह पर पानी है या नहीं। यदि चंद्रमा पर पानी मिलने की कोई क्षीण संकेत भी मिलते हैं तो उत्साह की लहर दौड़ जाती है और उस पर कॉलोनी बनाने का सपना आंखों में झिलमिलाने लगता है। कहते हैं कि हमारी पृथ्वी का 2/3 हिस्सा जल में डूबा है, किंतु इसमें से पीने योग्य पानी मात्र 1% ही है। शेष में अधिकतर समुद्र का खारा पानी है। इसी को देखकर प्रसिद्ध अंग्रेजी कवि सैमुअल कॉलरिज ने अपनी चर्चित कविता राइम ऑफ द एंशियंट मरीनर में लिखा था, वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट एनी ड्रॉप टू ड्रिंक, अर्थात जल तो चारों ओर है लेकिन पीने के लिए एक बूंद भी नहीं है। इस कविता में एक प्राचीन नाविक ने अपनी व्यथा इन शब्दों में उड़ेली थी, किंतु आज समुद्र के बीच नहीं ठोस धरती पर नदियों, सरोवरों और पोखरों के तट पर रहने वाले असंख्य जन त्राही त्राही कर रहे हैं, पानी कहाँ चला गया है और उसे कैसे हासिल करें। आज समय दोष देने का नहीं है कि पानी हमसे क्यों रूठ गया है, बल्कि इस

0: सोचने का है कि ऐसे क्या उपाय करें जिनसे हम जल का सुखद नरम रेशमी एहसास वापिस पा सकें। इसके लिए हमें अपनी सोच में बदलाव लाने की आवश्यकता होगी। हमें समझना होगा कि पानी कोई खरीद बिक्री की वस्तु नहीं, बल्कि हमारे प्राणों का आधार है। पानी को निजी मिल्कियत समझने का दर्प भाव दूर कर उसे समाज की सामूहिक धरोहर मानकर आगे बढ़ेंगे तो बात बनेगी। हाँ, स्मरण रखिए कि जल एक वरदान होने के साथ साथ एक धरोहर भी है, जिसे हमें अपनी अगली पीढ़ी के लिए संचित, संरक्षित और सुरक्षित रखना है। इसका अर्थ ये हुआ कि आज हमें अपने उपयोग में उतना ही जल लेना चाहिए जितना आवश्यक हो। किसी भी कारण से पानी का अपव्यय करना अपनी भावी पीढ़ियों के लिए अपराध मानना चाहिए। कहावत है कि जब जागे तभी सवेरा। इसे ध्यान में रखकर समाज को अभी से रूठी जल संपदा को वापस आने के लिए निमंत्रण भेजना चाहिए। इस निमंत्रण की शक्ल क्या होगी? ये कोई कार्ड या चिट्ठी तो होगी नहीं। इसका पहला उपाय होगा कि अपने आसपास के पुराने झरनों और बरसाती नालों को खोजिए, उनके किनारे वृक्षारोपण कीजिए, अपने आसपास की नदियों से रेत और फर्शी पत्थर का दोहन उतना ही कीजिए जितने की अनुमति जल विशेषज्ञ देते हों, अपने तालाबों को पाटना बंद कीजिए, जो तालाब सूख गए हों सामूहिक श्रम से उनकी झीरें तलाश कर खोलिए ताकि पानी पुनः प्रवाहित हो सके। तालाबों का जो कथित सौंदर्यीकरण हो रहा है उसे रोकने की आवश्यकता है। सरोवरों के किनारे वृक्ष चाहिए, न कि सीमेंट का पक्का निर्माण जिससे जल प्रवाह रुक जाता है। इसके अलावा हमें जल के उपयोग की प्राथमिकता पर भी नए सिरे से विचार करना होगा। इतना तय है कि समाज को सबसे पहले पेयजल, फिर निस्तार के लिए पानी की आवश्यकता है। इसके उपरांत खेती और उद्योग के लिए जल प्रदाय की व्यवस्था की जानी चाहिए। अन्न उगाने के लिए खेती और आज की अनेकानेक आवश्यकताओं यथा बिजली उत्पादन आदि के लिए उद्योग हाल के बरसों में देखने में आया है कि इनके बाद कई तरह के गैर जरूरी उपक्रमों को भी पानी का इस्तेमाल होता है। जहां और जब पानी का अभाव हो वहां ऐसे उपक्रमों को पानी की आपूर्ति नहीं करनी चाहिए। याद कीजिए, राजस्थान के जैसलमेर जैसे स्थानों पर जहां बमुश्किल 100 मिलीलीटर वर्षा होती है और जहां कोई नदी नहीं है वहां ये सरोवर और तालाब ही जनता के काम आते रहे हैं। छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेश में जहां कभी 900 मिलीलीटर से कम वर्षा नहीं होती वहां यदि बुद्धिमानी से काम लिया जाए तो कभी पानी की कमी महसूस न हो। यहां हमें वर्षा जल संचित करने की पुरानी विधियों को दोबारा इस्तेमाल में लाना होगा। ये सब करने के लिए नागरिकों को आगे आकर सरकार से कहना होगा कि हम आपके पास शिकायत लेकर नहीं बल्कि सहयोग का हाथ बढ़ाने आए हैं। इस उदार भावना को देखकर ही जल देवता हम पर प्रसन्न होंगे।
1: श्री ललित सुरजन का लिखा चिंतन अभी आपने सुना। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। 6:35 हुए हैं। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। लीजिए अब सुनिए श्री रामचरित मानस गान,
2: एपिसोड 178। 178।

चित्रकूट के पशु पक्षियों, पेड़ पौधों तथा चर अचर प्राणियों के भाग्य से देवताओं को ईर्ष्या तो होती है, किंतु वे उनका जय जयकार करते हैं, उन्हें धन्य मानते हैं। क्षीर सागर को त्याग कर और अयोध्या को छोड़कर जहाँ श्री राम और सीता जी लक्ष्मण के साथ आकर रहे, उस स्थल की शोभा का बखान तो हजार मुंह वाले भी नहीं कर सकते। फिर भला कवि की वाणी की क्या बिसात। चित्रकूट प्रवास में श्री राम का स्नेह पाकर लक्ष्मण को अन्य आत्मियों के स्वप्न में भी याद नहीं आती। सीता जी भी घर द्वार भूलकर बहुत सुखी।

0: श्री रामचरितमानस गान अभी आपने सुना। आज की कड़ी में मुख्य स्वर थे वाणी जयराम और श्रीकांत पारगांवकर के। इस प्रस्तुति के संगीत निदेशक हैं सतीश भाटिया। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। कृषि चर्चा में आज जानकारी का विषय है मत्स्य पालन में संगरोध और स्वास्थ्य प्रमाणन का महत्व। जानकारी देती हुई देवती जायसवाल।
1: नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, मत्स्य पालन में संगरोध और स्वास्थ्य प्रमाणन का महत्व। भारत में मत्स्य पालन एक तेजी से बढ़ता हुआ व्यवसाय है। यह न केवल पोषण का अच्छा स्रोत है बल्कि लाखों लोगों की जीविका का साधन भी है। लेकिन इस व्यवसाय में सफलता तभी संभव है जब हम मछलियों के स्वास्थ्य को विशेष ध्यान में रखेंगे। संगरोध के बारे में हम लोग बात करते हैं। संगरोध का अर्थ क्या होता है? नई लाई गई मछलियों या बीज को मुख्य तालाब में डालने से पहले कुछ समय तक अलग टैंक या फिर

0: अलग तालाब में रखना चाहिए। इसका मेन उद्देश्य ये होता है किसान भाइयों कि मछलियों में किसी बीमारी की पहचान करना या फिर बाहरी संक्रमण को मुख्य तालाब से फैलने में रोकना। फिर हम लोग देखेंगे संगरोध का महत्व क्या होता है। रोग नियंत्रण, रोगों को क्या करना, रोकना। नई मछलियाँ कई बार संक्रमण लेकर आती है, संगरोध से इस बीमारियों का पता पहले ही चल जाता है, इसलिए हमको संगरोध करना बहुत ही जरूरी है। अन्य मछलियों की सुरक्षा, अगर बिना जांच किए मछलियां तालाब में डाल दी जाएंगे तो पूरा स्टॉक संक्रमित हो सकता है, इसलिए हमको पहले मछलियों की जांच करना है, रोग नियंत्रण करके ही हमको मछली को पॉन्ड में डालना है। आर्थिक नुकसान से बचाव, बीमारियां से मछलियों की मृत्यु दर बढ़ती है जिससे किसान को भारी नुकसान हो सकता है, इसलिए हमको पहले बीमारी पहचानना है, उसके बाद हमको तालाब में डालना है। पर्यावरण संतुलन बनाए रखना है, संगरोध से तालाब के जैविक संतुलन को बनाए रखा जा सकता है। किसान भाइयों, संगरोध के बारे में तो हम लोग जान लिए, फिर हम लोग जानेंगे स्वास्थ्य प्रमाणन के बारे में। तो स्वास्थ्य प्रमाणन क्या होती है? स्वास्थ्य प्रमाणन एक आधिकारिक दस्तावेज होता है जो एक प्रमाणित करता है कि मछलियां या मत्स्य बीज रोग मुक्त है और पालन के लिए सुरक्षित है। तो आप दिमाग में आ रहा होगा किसान भाइयों की स्वास्थ्य प्रमाणन कहाँ मिलेगा, तो यह स्वास्थ्य प्रमाणन आमतौर पर सरकारी या मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब हम लोग देखेंगे स्वास्थ्य प्रमाणन का महत्व। गुणवत्ता की गारंटी, प्रमाणित मछलियां स्वस्थ होती है जिससे उत्पादन अच्छा मिलता है। देन सेकंड, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में सहायता होती है। निर्यात के लिए स्वास्थ्य प्रमाणन अनिवार्य होता है। रोग फैलाव पर नियंत्रण होती है। प्रमाणित बीज से बीमारी फैलने की संभावना कम हो जाती है। किसानों का विश्वास बढ़ जाती है। प्रमाणन से किसान भरोसा होता है कि वह नई सही तरीका से कर रहा है। फिर देखेंगे संगरोध और स्वास्थ्य प्रमाणन के बीच में संबंध, कि दोनों के बीच में क्या संबंध है। दोनों प्रक्रियाएं एक दूसरा के पूरक हैं। स्वास्थ्य प्रमाणन से मछलियों की प्रारंभिक गुणवत्ता सुनिश्चित होती है। संगरोध से अंतिम जांच और सुरक्षा सुनिश्चित होती है। किसान भाइयों, उसका व्यवहारिक सुझाव मैं बताना चाहती हूँ। नई मछलियाँ जब आप बाहर से लाते हो तो उन मछलियों को कम से कम 2 से 3 सप्ताह तक अलग टैंक में या फिर अलग तालाब में रखें। उससे क्या होता है, हमारे अलग तालाबों के मछलियों में बीमारी फैलने से रुकता है। पानी की गुणवत्ता नियमित रूप से जांच करें। पानी की गुणवत्ता हमको हफ्ता में एक बार जांच करना चाहिए। उसकी बहुत सारी जो पैरामीटर रहती है, तापमान हो गई, घुलित ऑक्सीजन हो गया, ट्रांसपेरेंसी हो गया, पीएच हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, हार्डनेस हो गया, ये सब चीज को हमको ध्यान में रखना चाहिए। मृत या बीमारी मछलियों को तुरंत अलग कर देना चाहिए, क्योंकि जो मृत मछलियां हैं वो सड़कर नीचे बैठेगा तालाब के, तो वो सड़ेगा, फिर वहां से अमोनिया गैस निकलेगी, फिर अमोनिया गैस होती है जो कि मछली के लिए बहुत हानिकारक होती है। इसलिए हमको ये चीजों में भी ध्यान रखना चाहिए। मछलियों की बीमारियां, जैसे कोई मछलियां प्रॉपर खाना नहीं खा रही है, या फिर वो तैर नहीं पा रही है, या फिर उसका आई ओपेक दिख रहा है, आई उभरा हुआ दिखाई दे रहा है, या फिर जो उसका रंग है वो डल दिखाई दे रहा है, तो ऐसे फिश को हमको तुरंत जांच के लिए हमको लैब में भेजना चाहिए और उसका उपचार करना चाहिए। प्रमाणित हैचरी से ही बीज हमको लाना चाहिए, ताकि प्रमाणित हैचरी से हम लोग बीज लाएंगे तो हमको पहले से प्रमाणित रहेगा कि हमारा मछली है वो स्वस्थ है। तो आप लोग जानते होंगे, आप सुने होंगे कोरोना के टाइम किसान भाइयों की क्वारंटाइन करना बहुत जरूरी है, उसी प्रकार सेम क्वारंटाइन करना हमारे मछलियों को भी जरूरी है। हम बाहर से किसी अदर देश से या फिर किसी अदर स्टेट से या फिर किसी अदर हैचरी से हम लोग मछली लाते हैं तो उसको भी क्वारंटाइन करना बहुत ही जरूरी है। धन्यवाद।
1: मत्स्य पालन में संगरोध और स्वास्थ्य प्रमाणन का महत्व, कृषि चर्चा में इस विषय पर जानकारी दे रही थी देवती जायसवाल। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। कार्यक्रम विवरण में आइए अब आपको जानकारी दें आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। स्पोर्ट्स केंद्र रात 8:30 पर राष्ट्रीय पत्रिका कार्यक्रम, विज्ञान भारती रात 9:30 पर और संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज रात 10:00 आप सुनेंगे चंगना श्री सीपी माधवन नम्पू थिरी से कर्नाटक गायन। इन सभी कार्यक्रमों को हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। आकाशवाणी के गौरवमयी

0: 90 वर्ष के उपलक्ष में रायपुर में आयोजित स्वरोत्सव समारोह की रेडियो रिपोर्ट सुनिएगा आज रात 8 बजे। सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर होगा अब से कुछ ही देर बाद यानी सुबह 7:05 पर। समन्वित कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह में आज सुबह 8:30 पर आप सुनेंगे कान से संबंधित समस्याएं और समाधान विषय पर डॉक्टर रूपा मेहता से ली गई भेंटवार्ता। भेंट करता होंगे दीपक हटवार। बातों बातों में इस कार्यक्रम में आज सुबह 9 बजे सुनिएगा उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री श्री विजय शर्मा से ली गई भेंटवार्ता। इस कार्यक्रम की प्रस्तुति होगी विकल्प रंजन शुक्ला की। लोक संगीत के कार्यक्रम में सुबह 9:40 पर कलाकार होंगे योगेंद्र कुमार बेलचंदन और साथी और शाम 6:30 पर इसी कार्यक्रम में आप सुनेंगे खुशीदास मानिकपुरी और साथियों को। आज सुबह 11:40 पर उपशास्त्रीय संगीत में सुनिएगा पंडित छन्नूलाल मिश्र से ठुमरी और राग मिश्र देश में ख्याल गायन। दोपहर 12 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी संग्रहालय से प्राप्त धारावाहिक हमन आन छत्तीसगढ़िया का भाग 17 पंडामी जनजाति। इस कार्यक्रम के लेखक हैं श्री एम ए रहीम और प्रस्तुति होगी मोहन सी रामानी की। दोपहर 1:30 पर घर आंगन में आज के गोट का विषय होगा पर्यावरण संरक्षण हमर पहली जिम्मेदारी। साथ ही बहनें सुनेंगी विशेष कार्यक्रम चौथे पन के सांझ। आलेख और वाचन आशा शर्मा का होगा परिकल्पना और संपादन होगा बीरभान साहू का। युवा श्रोताओं के कार्यक्रम युवावाणी में शाम 5:10 पर अपन गोट होगी सकारात्मक सोच ले सही निर्णय इस विषय पर और होंगे क्रमापन की चिट्ठी और माटी के गीत। चौपाल में शाम 7:21 पर आज की बात होगी धान की अच्छी उत्पादकता खातिर श्री विधि और किसानवाणी में आज की सलाह में गर्मियों में मुर्गियों की देखभाल विषय पर सलाह देंगे डॉक्टर तरुण साहू। आपके मीत ये गीत फिल्मी गीतों का ये फरमाइशी कार्यक्रम होगा दोपहर 12:30 पर। चित्रपट संगीत सुनिएगा सुबह 9:15 10:30 दोपहर 1:05 2:30 शाम 7 बजे रात 8 बजे और रात 9:15 पर। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। समाचार अब हम दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा साइप्रस देशस्य राष्ट्रपतिः निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स इत्येषश्च आतंकवादं निवारणाय बहुपक्षीय प्रयासानां सुदृढ़ीकरणाय तथा संयुक्त राष्ट्र संघस्य संरचनांतर्गतं अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादस्य विषये समग्र सम्मेलनं शीघ्रमेव अंतमीकृत्य स्वीकर्तुं आहूतवन्तौ। ह्यः नवदिल्ल्याम् उभयोः नेत्रोः मध्ये वार्तायाः अनन्तरं प्रदत्ते संयुक्त वक्तव्ये उभौ पक्षौ संयुक्त राष्ट्रसंघे तथा यूरोपीय संघे च निर्दिष्टानाम् आतंकवादिनाम् आतंकिसंघटनानां च विरुद्धम् अपि च संयुक्त राष्ट्रसंघस्य सुरक्षा परिषद् प्रतिबंध समित्याः अन्तर्गतं सूचीबद्धानां 67,200+ यावत् आतंकिसंघटनानां विरुद्धं प्रबलं समन्वितं च कार्याचरणाय आग्रहं कृतवन्तौ।
2: आज हमने साइबर सिक्योरिटी मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
1: उभौ पक्षौ साइबर सुरक्षायाम् अपि च उदयोन्मुख प्रौद्योगिक्यां विशेषावधानेन सह रक्षा उद्योगयोः मध्ये सहयोगेन सह रक्षा सुरक्षा सहकारं सुदृढ़ीकरणेऽपि सहमतौ अभवताम्। अस्मिन् सन्दर्भे साइप्रस डिफेंस एंड स्पेस

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इनमें विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नवनियुक्त युवा शामिल हैं। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। रोजगार मेला प्रधानमंत्री मोदी की रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र ढांचे में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को शीघ्र अंतिम रूप देने तथा अपनाने का आह्वान किया है। दोनों नेताओं ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दोहराते हुए दोहरे मापदंड, राज्य प्रायोजित आतंकवाद और किसी भी परिस्थिति में आतंकवादी कृत्यों के औचित्य को अस्वीकार कर दिया। नई दिल्ली में कल दोनों नेताओं के बीच हुई वार्ता के बाद दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ द्वारा नामित सभी आतंकियों और आतंकी संगठनों के खिलाफ मजबूत और समन्वित कार्रवाई का आग्रह किया। दोनों नेताओं ने उग्रवाद, कट्टरता, आतंकवाद का वित्त पोषण और धन शोधन का मुकाबला करने के लिए अधिक सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने आतंकी गतिविधियों के लिए नई और उभरती प्रौद्योगिकियों का दुरुपयोग रोकने तथा आतंकियों की भर्ती से निपटने का भी आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि साइप्रस के साथ भारत के रक्षा सहयोग में वृद्धि हुई है।
1: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय

0: दिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर आज कोलकाता पहुंचेंगे। ये उनकी पहली भारत यात्रा है। श्री रूबियो नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट करेंगे। श्री रूबियो विदेश मंत्री एस जयशंकर से बातचीत भी करेंगे। श्री रूबियो मंगलवार को नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोतेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि क्वाड बैठक में स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत के दृष्टिकोण के अनुरूप जारी पहलों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गैबार्ड ने इस्तीफा दे दिया है। सुश्री गैबार्ड ने कहा कि वे 30 जून से अपने पद से हट जाएंगी। राष्ट्रपति ट्रंप ने सुश्री गैबार्ड की प्रशंसा करते हुए कहा कि प्रशासन को उनकी कमी महसूस होगी। सुश्री गैबार्ड के बाद

0: श्री रूबियो नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट करेंगे। श्री रूबियो विदेश मंत्री एस जयशंकर से बातचीत भी करेंगे। श्री रूबियो मंगलवार को नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोतेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि क्वाड बैठक में स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत के दृष्टिकोण के अनुरूप जारी पहलों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गैबार्ड ने इस्तीफा दे दिया है। सुश्री गैबार्ड ने कहा कि वे 30 जून से अपने पद से हट जाएंगी। राष्ट्रपति ट्रंप ने सुश्री गैबार्ड की प्रशंसा करते हुए कहा कि प्रशासन को उनकी कमी महसूस होगी। सुश्री गैबार्ड के बाद राष्ट्रीय खुफिया प्रधान उपनिदेशक आरुण लुकास कार्यवाहक निदेशक के रूप में कार्यभार संभालेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है। मंत्रालय ने नागरिकों को घबराहट में खरीदारी न करने और केवल आवश्यकता के अनुसार ईंधन खरीदने की सलाह दी। मंत्रालय ने कहा कि जिम्मेदारी के साथ उपयोग और जनता का सहयोग ईंधन की सुचारू उपलब्धता सुनिश्चित करने में सहायक होगा। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मिशन में कार्यरत भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को वर्ष 2025 के संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार के लिए चुना गया है। मेजर बराक भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट भी हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को रिकॉर्ड 2,86,000 करोड़ रुपए का अधिशेष हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। ये रिजर्व बैंक के अब तक के सबसे अधिक लाभांश में से एक है। यह निर्णय कल मुंबई में राज्यपाल संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की बैठक में लिया गया। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 255 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु 20 ओवर में 4 विकेट पर 200 रन ही बना सकी। ईशान किशन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 7:05 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर।

श्रोताओं, हमारी भारतीय संस्कृति में अभिवादन का विशेष महत्व है। नमस्ते, प्रणाम, राम राम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, शुभ संध्या या गुड नाइट, ये केवल शब्द नहीं बल्कि सम्मान और संस्कार का प्रतीक हैं। जहां दोनों हाथ जोड़कर किया गया अभिवादन दिलों को जोड़ने का काम करता है, वहीं दोस्ती में हाय, हेलो, क्या हाल है जैसे शब्द अपनापन बढ़ा देते हैं। हर सुबह जब हम मुस्कुराकर किसी को गुड मॉर्निंग या सुप्रभात कहते हैं तो दिन की शुरुआत सकारात्मक ऊर्जा से भर जाती है। तो अभिवादन के हर तरीके को सलीके और अदब के साथ अपनाते हुए बढ़ाते रहें अपनापन और हर दिन जीतें सबका दिल।

हा दैया दाय उठाय लियो गिर नक पर बंस बजावत देनु चनैया जगके मोहन मन में भाए नित्य करत राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा।

0: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय,
1: आंखों की सभी तरह की जांच और मोतियाबिंद का ऑपरेशन फेको पद्धति से बहुत कम दरों में।
2: पहले से नाम लिखवाने की कोई जरूरत नहीं, जब आए पूर्ण जांच करवाएं।
1: आज ही ऑपरेशन, आज ही छुट्टी।
2: 47 सालों से निरंतर सेवा में
1: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय, श्याम नगर, गुरुद्वारा रोड, तेलीबांधा, रायपुर।
3: 10वीं या बीएससी पास युवाओं के लिए प्लास्टिक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सुनहरा भविष्य, भारत सरकार की संस्था सीपेट रायपुर और कोरबा में प्रवेश पाइए। डिप्लोमा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स के साथ 100% प्लेसमेंट सहायता, छात्रवृत्ति और शासकीय योजनाओं का लाभ उठाएं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 28 मई 2026। विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट है www.cipet.gov.in।
4: श्रोताओं, आज है 23 मई और आज के दिन के इतिहास की यदि बात करें तो बहुत सारी महत्वपूर्ण उपलब्धियों और कुछ यादों को अपने में समेटे हुए है 23 मई का दिन। सबसे पहले उपलब्धि की बात करें तो पर्वतारोही बचेंद्री पाल ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी आज ही के दिन। सन 2008 में भारत ने सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल पृथ्वी 2 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था 23 मई के ही दिन। 23 मई 2016 को भारतीय अंतरिक्ष

अंतरिक्ष शोध संस्थान इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा स्पेस सेंटर से पूरी तरह से भारत में बने स्पेस शटल RLV-TD को लॉन्च किया था। 23 मई 1931 को भारतीय शास्त्रीय संगीतकार वसुंधरा कोमकली का जन्म हुआ था और सन 1918 के समय 23 मई के ही दिन भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ PC वैद्य की जयंती मनाई जाती है। 23 मई के महत्वपूर्ण अवसर में आज मनाया जाता है विश्व कछुआ दिवस, जो कि कछुआ प्रजाति के संरक्षण के उद्देश्य से प्रेरित है। तो 23 मई के इस इतिहास को जानने के बाद चलते हैं वक्त के हर पहलू को सहजता से बताते हुए इस गीत की ओर।

श्रोताओं, कोई एक नाम ऐसा होता है जो स्वयं में इतिहास रच देता है। ऐसा ही एक नाम है भारत की पर्वतारोही बचेंद्री पाल का। 23 मई सन 1984 को बचेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली दुनिया की पांचवी और भारत की पहली महिला पर्वतारोही बनी। इनके प्रारंभिक जीवन की यदि चर्चा करें तो बचेंद्री पाल जी का जन्म उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के नाकुरी गांव के एक परिवार में हुआ था। इन्हें बचपन से ही पहाड़ों और ट्रैकिंग का शौक था। सन 1982 में इन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में दाखिला लिया। यहाँ इन्हें पर्वतारोहण के उत्कृष्ट गुर सीखने को मिले और वे इस क्षेत्र में नए मुकाम हासिल करती गईं। वर्ष 1984 में भारत का चौथा माउंट एवरेस्ट अभियान शुरू हुआ, जिसमें बचेंद्री पाल को एकमात्र महिला पर्वतारोही के रूप में शामिल किया गया। कड़े प्रशिक्षण और चुनौतियों का सामना करते हुए 23 मई सन 1984 को बचेंद्री पाल ने 8,848 मीटर ऊंची एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर भारतीय तिरंगे को बड़े गर्व से फहराया। इस शानदार सफलता के साथ ही बचेंद्री पाल एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पांचवी और भारत की पहली महिला बनी। उनकी इस असाधारण उपलब्धि के लिए भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण से भी नवाजा गया। वहीं खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया। साथ ही इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी शामिल किया गया है। बचेंद्री पाल जी की ये उपलब्धि सिद्ध करती है कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है।

आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर।

श्रोताओं नमस्कार। रायपुर में अब हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे शांत, सरल और खास जीव की जो हमें धैर्य, संतुलन और प्रकृति से प्रेम करना सिखाता है। वो है कछुआ, जिसे हम टॉर्टॉइस भी कहते हैं। आज इसकी चर्चा इसलिए क्योंकि प्रतिवर्ष 23 मई को मनाया जाता है विश्व कछुआ दिवस। इस दिन को मनाने का उद्देश्य कछुओं और उनके प्राकृतिक आवास की रक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करना है। इस दिन को मनाने की शुरुआत वर्ष 2000 में कैलिफोर्निया स्थित संस्था अमेरिकन टॉर्टॉइस रेस्क्यू द्वारा की गई थी। माना गया है कि कछुओं की प्रजाति विश्व की सबसे पुरानी जीवित प्रजातियों में से एक है। ये लगभग 200 मिलियन पुरानी है। सरीसृप जीवों की श्रेणी में आने वाले इस जीव की उम्र 150 वर्ष से भी अधिक मानी जाती है। कछुओं की प्रजातियों को सुरक्षित रखने और इन्हें हर खतरे से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। आज के दिन को मनाने के उद्देश्य को लेकर विभिन्न देश के कई लोग कछुओं की रक्षा के प्रति जागरूक भी हुए हैं। श्रोताओं, प्रकृति में मौजूद हर जीव अपनी अलग ही विशेषता के साथ मौजूद रहता है। बस जरूरत होती है तो इन्हें सुरक्षित रखने और प्रेम से जीने देने की।

बकवास है सब बकवास, सब बकवास है सब बकवास। बालू मेहता को जिसकी चलती है हुकूमत उसकी है दुनिया का दस्तूर यही सब गलत, यहाँ ताकत ही सही सब बकवास। किसने की प्रेम की बात उसे हमारे सामने लाया जाए, हम उसे सख्त सख्त सजा देंगे।

प्रेम से हमको जीने दो जीने दो जीने दो, प्रेम से हमको जीने दो, जख्मे दिल सीने दो।

0: श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, साइबर अपराध से जुड़ी घटनाओं की खबरें प्रतिदिन हमें पढ़ने और सुनने मिल रही हैं। साइबर अपराध से हम कैसे बच सकते हैं, हमें मोबाइल के उपयोग के समय किन किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए, इस संबंध में बता रहे हैं रायपुर पुलिस कमिश्नर की ओर से एडिशनल DCP क्राइम रायपुर।
1: QR कोड स्कैम, जब भी कोई अज्ञात कॉलर किसी भी कारण से पेमेंट की बात करता है और आपको कन्विंस करने की कोशिश करता है कि उसको आपको पेमेंट देना है, और पेमेंट देने के लिए एक QR कोड भेजकर कहता है कि आप इसको स्कैन कीजिए और आपके खाते में पैसे आ जाएंगे, बिल्कुल भी ऐसा ना करें। आपके साथ ठगी हो सकता है, क्योंकि QR कोड पैसे भेजने के लिए होता है, पैसे पाने के लिए नहीं। सस्ती डील और लालच में ना आएँ, जागरूक बने, सतर्क रहें। किसी प्रकार के आपके साथ धोखाधड़ी होती है तो आप नज़दीकी पुलिस स्टेशन या साइबर सेल की मदद ले सकते हैं, या www.cybercrime.gov इन में भी जाकर अपनी रिपोर्ट दर्ज कर सकते हैं।
2: और अब एक जानकारी रोजगार से जुड़ी हुई। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राजनांदगांव, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी और खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिले में बड़े पैमाने पर संविदा भर्ती की जानी है। आरओपी 2025 और 26 के अंतर्गत स्वीकृत मानव संसाधन के कुल 22 कैडर में 332 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मिशन कार्यालय से जारी जानकारी के अनुसार इच्छुक और पात्र अभ्यर्थी 29 मई 2026 तक शाम 5 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों को govt.cg.gov.in पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा। इस भर्ती में विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े पद शामिल हैं। आवेदन से पहले पात्रता, शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा और अन्य दिशा निर्देशों का पालन उम्मीदवार सतर्कता से करें और इस अवसर का लाभ उठाएं।

और अब एक जानकारी सेना भर्ती सामान्य प्रवेश परीक्षा से संबंधित। भारतीय सेना ने भर्ती वर्ष 2027 के लिए आयोजित होने वाली ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा की तिथियों की घोषणा कर दी है। परीक्षा 1 से 5 जून और 8 से 12 जून तक आयोजित की जाएगी। इसके लिए एडमिट कार्ड जारी करने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। अभ्यर्थी भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। प्रदेश में परीक्षा के लिए रायपुर, भिलाई, दुर्ग, बिलासपुर और जगदलपुर सहित 5 शहरों में कुल 10 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा प्रतिदिन 3 से 4 शिफ्टों में आयोजित होगी। सेना भर्ती कार्यालय ने अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड में दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करने और निर्धारित समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचने के निर्देश दिए हैं। भारतीय सेना ने भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बताते हुए कहा है कि चयन केवल मेरिट के आधार पर ही होगा। भर्ती संबंधी जानकारी के लिए नया रायपुर स्थित सेना भर्ती कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। और इस जानकारी के बाद सुनते हैं ये मधुर गीत।

0: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय।
1: आँखी के जम्मू प्रकार के जांच और मोतियाबिंद के ऑपरेशन फेको विधि ले बहुत कम दरमा।
2: पहली ले नाम लिखवाए के जरूरत नहीं है, तुरते आओ पूरा जांच कराओ।
1: आज ही ऑपरेशन, आज ही छुट्टी।
2: 47 बच्चर ले सौलग सेवा माँ।
1: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय, श्याम नगर गुरुद्वारा रोड, तेलीबांधा, रायपुर।
3: 10वीं या बीएससी पास युवाओं के लिए प्लास्टिक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सुनहरा भविष्य। भारत सरकार की संस्था सीपेट रायपुर और कोरबा में प्रवेश पाइए। डिप्लोमा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स के साथ 100% प्लेसमेंट सहायता, छात्रवृत्ति और शासकीय योजनाओं का लाभ उठाएं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 28 मई 2026। विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट है www.cipet.gov.in।

0: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 8 बजे हैं, समाचार प्रभात। अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो। और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को 2,86,000 करोड़ रुपए के अधिशेष हस्तांतरण को मंजूरी दी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत की 4 दिन की यात्रा पर कोलकाता पहुंचे, आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया। भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। और आईपीएल क्रिकेट में मेजबान सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इनमें विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नवचयनित युवा शामिल हैं। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रोजगार मेला प्रधानमंत्री मोदी की रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता दर्शाता है।
5: यह रोजगार मेला रोजगार सृजन के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सार्थक अवसर प्रदान कर

0: रहा है। देश भर में अब तक आयोजित 18 रोजगार मेलों के माध्यम से 12 लाख नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। यह 19वां रोजगार मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इसमें देश के सभी हिस्सों से चयनित नव नियुक्त उम्मीदवार केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में नियुक्त होंगे, जिसमें रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और उच्च शिक्षा विभाग सहित अन्य विभाग शामिल हैं। यह रोजगार मेला देश के विकास में युवाओं की भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में एक और बड़ा कदम है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र ढांचे में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को शीघ्र अंतिम रूप देने का आह्वान किया है। दोनों नेताओं ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दोहराते हुए दोहरे मापदंड, राज्य प्रायोजित आतंकवाद और किसी भी परिस्थिति में आतंकवादी कृत्यों के औचित्य को अस्वीकार कर दिया। नई दिल्ली में कल दोनों नेताओं के बीच हुई वार्ता के बाद दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ द्वारा

0: व्यापक सम्मेलन को शीघ्र अंतिम रूप देने का आह्वान किया है। दोनों नेताओं ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दोहराते हुए दोहरे मापदंड, राज्य प्रायोजित आतंकवाद और किसी भी परिस्थिति में आतंकवादी कृत्यों के औचित्य को अस्वीकार कर दिया। नई दिल्ली में कल दोनों नेताओं के बीच हुई वार्ता के बाद दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ द्वारा नामित सभी आतंकियों और आतंकी संगठनों के खिलाफ मजबूत और समन्वित कार्रवाई का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि साइप्रस के साथ भारत के रक्षा सहयोग में वृद्धि हुई है।
1: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत और साइप्रस के बीच सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और साइप्रस की मित्रता साझा मूल्यों और एकजुटता पर आधारित है।
2: 1962 में हमारे राजनयिक संबंधों की स्थापित के बाद से ही भारत और साइप्रस एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं। हमारी जानसीपुर की मित्रता अब से सम्मान, साझा मूल्य, विश्वास और एकजुटता पर आधारित है। आने वाले वर्षों में भारत साइप्रस के साथ अपने व्यापक सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन और नेतृत्व के साथ हमारी मित्रता निरंतर सुदृढ़ होती जाएगी।
0: राष्ट्रपति मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के सम्मान में राजकीय भोज का आयोजन किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को रिकॉर्ड 2,86,000 करोड़ रुपए का अधिशेष हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। ये रिजर्व बैंक के अब तक के सबसे अधिक लाभांश में से एक है। यह निर्णय कल मुंबई में रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की 623वीं बैठक में लिया गया। बैंक ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान उसकी सकल आय पिछले वर्ष की तुलना में 26.42% बढ़ी। बैंक का व्यय 27.6% बढ़ा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है और आपूर्ति स्थिर बनी हुई है। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने नागरिकों को घबराहट में खरीदारी न करने और केवल आवश्यकता के अनुसार ईंधन खरीदने की सलाह दी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज 91 पैसे प्रति लीटर तक की वृद्धि हुई। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में ये तीसरी वृद्धि है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रुपए प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल के मूल्य 91 पैसे बढ़कर 92.49 रुपए प्रति लीटर हो गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YARNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर कोलकाता पहुंच गए हैं। श्री रूबियो की पहली भारत यात्रा है। ये यात्रा अमेरिका और भारत के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार, रक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और हिंद प्रशांत रणनीति में सहयोग का विस्तार करना है। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने हवाई अड्डे पर श्री रूबियो का स्वागत किया। श्री रूबियो आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट करेंगे। श्री रूबियो विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी बातचीत करेंगे। उनका अमरीकी दूतावास में होने वाले अमरीकी स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने का भी कार्यक्रम है। श्री रूबियो मंगलवार को नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सो मोतेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है

0: ये क्वाड बैठक में स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के दृष्टिकोण के अनुरूप जारी पहलों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। बैठक में आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को वर्ष 2025 के संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मेजर अभिलाषा बराक लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मिशन में कार्यरत हैं।
1: मेजर अभिलाषा बराक वर्तमान में लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में महिला सहभागिता दल की कमांडर के रूप में भारतीय बटालियन में कार्यरत हैं। मेजर बराक भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट भी हैं। मेजर बराक ये पुरस्कार प्राप्त करने वाली तीसरी भारतीय शांति रक्षक बन गई हैं। इससे पहले मेजर सुमन गवानी को 2019 में और मेजर राधिका सेन को 2023 में ये पुरस्कार मिला था। वर्ष 2016 में स्थापित ये पुरस्कार प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में तैनात बलों के कमांडरों और मिशन प्रमुखों के नामांकनों में से चुना जाता है। भारत संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सैनिकों और पुलिस कर्मियों का सबसे बड़ा योगदान देने वाले देशों में शामिल है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महिला दल ने एवरेस्ट शिखर पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। यह उनका पहला अभियान था। 14 सदस्यीय दल में 11 महिला पर्वतारोही और 3 तकनीकी तथा सहायक कर्मचारी शामिल थे। एक रिपोर्ट।
2: इस दल ने 21 मई को नेपाल की ओर से दक्षिण कोल मार्ग से विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। अभियान को 19 अप्रैल को बल के मुख्यालय से रवाना किया गया था। स्वच्छ हिमालय ग्लेशियर बचाओ अभियान के अंतर्गत दल ने पर्यावरण जागरूकता गतिविधियां भी चलाई और एवरेस्ट क्षेत्र से गैर बायोडिग्रेडेबल कचरा एकत्र किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस सफलता पर दल को बधाई दी है। श्री शाह ने कहा कि दुर्गम भूभाग और कठोर परिस्थितियों में यह उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करके टीम ने बल के आदर्श वाक्य राष्ट्र सर्वोपरि को कायम रखा है। इस उपलब्धि के साथ बल ने अब तक 232 पर्वतारोहण अभियान पूरे कर लिए हैं। इनमें एवरेस्ट पर 5 सफल चढ़ाई शामिल हैं। बल ने एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, लोहत्से, धौलागिरी और मनालसू सहित दुनिया की 8000 मीटर से अधिक ऊंची 6 चोटियों पर भी चढ़ाई की है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: मध्य प्रदेश सरकार ने समान नागरिक संहिता UCC की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कल सचिवालय में वेबसाइट ucc.mp.gov.in का शुभारंभ किया। इस पोर्टल के माध्यम से नागरिक, राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन प्रस्तावित यूसीसी पर अपने विचार और सुझाव साझा कर सकते हैं। प्रतिक्रिया देने की अंतिम तिथि इस वर्ष 15 जून है। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हरा दिया। हैदराबाद में कल टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 255 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु की टीम निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर केवल 200 रन ही बना सकी। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 5 दिन में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में भी लू की चेतावनी जारी की है। आकाशवाणी समाचार के विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म की अगली कड़ी में हम प्रसिद्ध वायलिन वादिका एन राजम से बातचीत करेंगे। उन्हें प्रतिष्ठित पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद कनकलता। आरक्षण को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का बयान अनेक अखबारों की पहली सुर्खी है। अमर उजाला ने न्यायालय के हवाले से लिखा है, माता पिता में से कोई भी IAS अफसर तो बच्चों को आरक्षण क्यों। राजस्थान पत्रिका की ऐसी ही सुर्खी है। जनसत्ता लिखता है, मलाईदार तबके के आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उठाया सवाल। नीट पेपर लीक केस में एक और शिक्षिका की गिरफ्तारी हिंदुस्तान के पहले पृष्ठ पर है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, तीसरी मनीषा फिजिक्स की एक्सपर्ट हुई गिरफ्तार। दैनिक भास्कर लिखता है, अब तक 11 गिरफ्तार, इनमें से 7 आरोपी महाराष्ट्र के। दैनिक जागरण ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान दिया है, नीट UG की दोबारा होने वाली परीक्षा को कराएंगे 100% त्रुटि रहित। नवभारत टाइम्स ने त्विषा शर्मा मामले में लिखा है, पोस्टमार्टम फिर होगा, त्विषा का 10 दिन से फरार पति हिरासत में।

0: दैनिक ट्रिब्यून ने कुश्ती महासंघ द्वारा पहलवान विनेश फोगाट को घरेलू प्रतियोगिताओं में भाग लेने के अयोग्य घोषित करने पर हाईकोर्ट की कड़ी फटकार की खबर देते हुए लिखा है, प्रतिशोध की भावना से काम ना करें WFI। लोकसत्ता की हेडलाइन है, आसमानी आग में झुलसा देश, पारा 47 डिग्री के पार। जनसत्ता संपादकीय में लिखता है, इस बात पर भी गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए कि आखिर मैदानों के साथ अब पहाड़ भी क्यों तपने लगे हैं। मौसम विज्ञानियों का मानना है कि पहाड़ी क्षेत्रों में वनों की अंधाधुंध कटाई, अवैज्ञानिक तरीके से खनन और पर्यटक वाहनों के बढ़ते दबाव से स्थानीय मौसम चक्र में बदलाव हो रहा है। ऐसे में अगर अब भी हम नहीं संभले तो निकट भविष्य में इसका परिणाम भयावह हो सकता है। NCERT की 8वीं की किताब में न्यायपालिका पर विवादित चैप्टर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 3 शिक्षाविदों को ब्लैकलिस्ट से हटाया, दैनिक भास्कर में है।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को 2,86,000 करोड़ रुपए की अधिशेष हस्तांतरण को मंजूरी दी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत की 4 दिन की यात्रा पर कोलकाता पहुंचे, आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया और IPL क्रिकेट में मेजबान सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi to distribute over 51,000 appointment letters to new recruits in various government departments today. RBI approves record surplus transfer of 2.86 lakh crore rupees to central government for financial year 2025-26. US Secretary of State Marco Rubio arrives in Kolkata on his maiden 4-day visit to India to call on Prime Minister Modi in New Delhi this afternoon. IMD issues red alert for severe heat wave over East Madhya Pradesh, East Uttar Pradesh and Vidarbh today. Indian Army officer Major Abhilasha Barak honored with prestigious UN Military Gender Advocate of the Year Award 2025. And in IPL cricket, hosts Sunrisers Hyderabad beat Royal Challengers Bengaluru by 55 runs. Prime Minister Narendra Modi will distribute more than 51,000 appointment letters to newly recruited youth in various government departments and organizations at the 19th Rozgar Mela through video conferencing today. Mr. Modi will also address the gathering on the occasion. Our correspondent reports that the Rozgar Mela is a key initiative reflecting the Prime Minister's commitment to giving top priority to employment generation and turning this vision into reality.
3: Rozgar Mela is a step towards fulfillment of the Prime Minister's commitment to accord highest priority to employment generation. The Rozgar Mela is playing a significant role in providing meaningful opportunities to the youth for their empowerment and participation in nation building. Since its inception, around 12 lakh recruitment letters have been issued through 18 Rozgar Melas organized across the country. The 19th Rozgar Mela will be held at 47 locations across the country. The newly recruited candidates selected from across the country will be joining various ministries and departments, including Ministries of Railways, Home Affairs, Health and Family Welfare, and Department of Higher Education, among others. With Dipendra Kumar, Rishu Jaiswal, Akashwani News, Delhi.
2: The Reserve Bank of India, RBI, has approved a transfer of record 2.86 lakh crore rupees as surplus to the central government for the financial year 2025-26, marking one of the highest dividend payouts by the central bank. The decision was taken during the 623rd meeting of the Central Board of Directors of the RBI, chaired by Governor Sanjay Malhotra in Mumbai yesterday. The RBI in its release said its gross income increased by 26.42% during financial year 2025-26 compared to the previous year, while expenditure before risk provisions rose 27.60%. US Secretary of State Marco Rubio arrived in Kolkata to

0: डॉक्टर की सलाह के सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, कई बार हमें कानों से संबंधित अलग अलग तरह की समस्या का सामना भी करना पड़ता है, जिनमें प्रमुख समस्या है सुनाई नहीं देना। तो ये समस्या क्यों होती है, इसके क्या कारण हैं, क्या लक्षण हैं और इसका उपचार हम किस तरह से करवा सकते हैं, इस पर विस्तार से बातचीत के लिए हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर रूपा मेहता को। आप अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान रायपुर में प्रोफेसर हैं। डॉक्टर मेहता, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: डॉक्टर मेहता, अगर हम सुनाई नहीं देने की समस्या की बात करें, इसके प्रमुख कारण क्या होते हैं?
1: देखिए, सुनाई नहीं देना बहुत कॉमन एक प्रॉब्लम है और इसकी विशेषता ये है कि ये हर एज ग्रुप में होता है। बच्चे, मीडियम मतलब मिडिल एजेड और बूढ़े, सभी एज ग्रुप को ग्रसित करता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इसके रिलेटेड ये है कि ये बहुत टाइम तक इग्नोर किया जाता है, स्पेशली इंडियन सेटअप में बहुत टाइम तक, जब तक ये ज़्यादा तकलीफ नहीं देता इसको इग्नोर किया जाता है। तो इसलिए इसके कारण जो है, एज वाइज यदि हम बात करें तो जैसे जन्मजात शिशु है उसमें भी कई मतलब कंजनाइटल रीजंस के चलते, जेनेटिक रीजंस के चलते सुनाई कम देना होता है, मतलब सुनाई कम होता है। फिर जैसे जैसे बचपन की बात करें, मतलब न्यूनेट हो गया जन्मजात शिशु में कॉन्जेनेटल कॉज, फिर उसके बाद जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है इन्फेक्शन हो जाते हैं बच्चों को, तो इन्फेक्शन के चलते सुनाई कम हो जाता है, जिसमें कान से पीक भी बहती है और सुनाई भी कम होता है। फिर जैसे यंग एज या मिडिल एजेड में बात करें तो तेज़ आवाज़ या काम के चलते, वो तेज़ फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस में है, तो तेज़ आवाज़ से जो ध्वनि, तेज़ ध्वनि के कारण उनका नॉइस इंड्यूस हियरिंग लॉस कॉमनली है इस एज ग्रुप में। फिर एल्डरली में बात करें, यानी एजेड लोग हैं, उनमें बात करें तो नस की कमज़ोरी है। तो ये मोस्ट मतलब कॉमन एज वाइज है अलग अलग, बट इनमें ओवरलैप भी होता है, जैसे ईयर इन्फेक्शन मिडिल एजेड में भी मिल जाएगा, एल्डरली में भी मिल जाएगा। तो ऐसे मल्टीपल कारण हैं। और जो सुनाई कम देना है वो दो मेन कंडीशन के चलते होता है, एक होता है नस की कमज़ोरी और एक होता है इन्फेक्शन के चलते आपका जो कंडक्टिव मैकेनिज्म है, जो आपकी नस तक आवाज़ पहुँचने के बीच में जो माध्यम है उसमें तकलीफ आने से। तो ये दो मेन कारण हैं और एज वाइज अलग अलग कारण होते हैं।
0: डॉक्टर मेहता, अगर किसी शिशु को ये समस्या है कि उसे सुनाई नहीं दे रहा है, तो इसका

0: पता माता पिता को कब और कैसे चलता है?
1: ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा। जितना जल्दी हम पता लगाएं कि बच्चे को कम सुनाई दे रहा है, उतना जल्दी उसका हम रिहैबिलिटेशन कर सकते हैं, और जितना जल्दी हम डिटेक्ट करेंगे उतना जल्दी उसका और उतना अच्छा उसका प्रोग्नोसिस और रहेगा, हियरिंग रिहैब रहेगा। तो देखिए, बच्चा जैसे से 3 महीने का 4 महीने का हो, तेज़ आवाज़ से वो बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं करता है, आवाज़ तेज़ हुई तो भी वो टर्न करता है अपनी गर्दन, वो नहीं कर रहा है, मदर फादर की आवाज़ को नहीं समझ रहा है, फिर जैसे जैसे और बड़ा होता है तो क्यूज मतलब आवाज़ देंगे तो नहीं सुनेगा। तो ये सब अगर ऐसा हो रहा है तो उसको लाइटली नहीं लेना है, नहीं तो सब लोग मतलब जनरल पॉपुलेशन या परिवार वाले बोलते ठीक है बड़ा होगा तो सुन लेगा, थोड़ा अभी छोटा है ऐसे करके, या फिर बड़ा भी हो गया 1.5-2 साल का 1.5 साल का बोल नहीं पा रहा है तो बोल नहीं पा रहा है तो बोलते, कुछ बच्चे लेट बोलते हैं, कुछ बच्चा, मेरा बच्चा 3 साल में बोला था, उसका बच्चा 5 साल में बोला था, तो वेट करते हैं। तो यदि बच्चा बोल नहीं पा रहा है पहली चीज़, और या फिर छोटा बच्चा भी आवाज़ से कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है तो हमें सस्पेक्ट करना चाहिए कि उसकी सुनाई में तकलीफ है, तो उसको जितना जल्दी हो सके अस्पताल में लाके एक बार हियरिंग टेस्ट कराना चाहिए। तो उससे जल्दी पकड़ में आता है बच्चों के हियरिंग लॉस, और जल्दी फिर हम हियरिंग एड लगा के या उसकी जाँच करके समझते हैं कि क्या रीज़न है, और फिर आगे उसका इलाज होता है।
0: डॉक्टर मेहता, आपने इन दोनों को ही आपस में एक संबंध बताया है कि अगर बच्चा बोल नहीं पा रहा है तो उसका एक प्रमुख कारण ये होता है कि वो सुन ही नहीं पा रहा है तो शब्द बोलेगा कैसे।
1: बिल्कुल।
0: क्या ऐसा भी होता है कि कोई बच्चा बोल नहीं पा रहा है लेकिन उसे सुनाई दे रहा है?
1: हाँ, ऐसा भी होता है पर वो रेयर है। नॉर्मली अच्छा बच्चा जब सुनाई की है प्रॉब्लम है तो बोल नहीं पाता है, बट बोलना केवल सुनाई अच्छा होना और बोल नहीं पाना ये भी होता है, ये टंग की कोई प्रॉब्लम या अंदर मतलब वॉइस बॉक्स में कुछ प्रॉब्लम रहा तो ऐसा भी होता है, बट वो थोड़ा रेयर है। और ये जागरूकता लाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि यदि बोल नहीं पा रहा है तो सुनाई का टेस्ट करा लो, अगर वो नॉर्मल है तो फिर हम दूसरे डायरेक्शन में उसका इलाज करेंगे, बट सुनाई जितना जल्दी हम पकड़ेंगे, क्योंकि ब्रेन जो है ह्यूमन ब्रेन बहुत प्लास्टिक होता है, अगर उसको हियरिंग का उसको नहीं मिला स्टिमुलेशन तो जो हिस्सा हियरिंग के लिए होता है वो फिर धीरे धीरे डिम होता जाता है क्योंकि उसको स्टिमुलस नहीं मिल रहा है, और उस दूसरी वो दूसरी मतलब क्रियाओं में काम आने लग जाता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम जल्दी से जल्दी सुनाई जब कम हो रही है तो पकड़ें उसका मतलब उसका निदान, उसका मतलब उसको हम डायग्नोस करें और फिर उसको निदान की तरफ ले जाएं।
0: जब हम शरीर के महत्वपूर्ण तंत्रों की बात करते हैं तो उनमें हमारी जीवा और हमारे कान, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे तंत्र होते हैं कि कान से हम दुनिया की कोई भी आवाज़ सुनते हैं और ज़ुबान से हम कोई भी बात बोल सकते हैं। क्या आज की तारीख में मेडिकल साइंस की तरक्की में अब ये भी संभव हुआ है कि जब गर्भस्थ शिशु की जांच की जाती है तो उन जांचों में उसके शरीर के सारे ही अंग सामान्य हैं इस बात की भी जांच की जाती है, तो ऐसे में क्या उसके सुनाई देने या बोलने की स्थिति कैसी होगी, इसकी भी कोई जांच संभव है?
1: देखिए, बच्चा जैसे ही जन्म लेता है वही स्क्रीनिंग, एक यूनिवर्सल नियोनेटल स्क्रीनिंग बोलते हैं, हियरिंग स्क्रीनिंग, वो कराना चाहिए। अभी जैसे एम्स में होता है और फिर मतलब सारे हॉस्पिटल्स में होना चाहिए, जैसे ही बच्चा पैदा होता है विद इन 2 डेज 3 डेज वो सिंपल एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको OAE बोलते हैं, कान के अंदर डाल के वो देखते हैं, तो उससे स्क्रीनिंग टेस्ट हो जाता है। यदि उसमें पास है तो मतलब हियरिंग ठीक है, यदि हियरिंग ठीक नहीं होता तो उसमें फेल रिजल्ट आता है, तो फिर उसका हम वापस रिपीट करते हैं 1-1.5 महीने बाद, और नहीं तो फिर बैरा के लिए उसको मतलब रिकमेंड करते हैं, बैरा टेस्ट एक होता है तो उसके, और उसके बेसिस पे फिर उसकी जांच होती है। और जैसे कि मतलब गर्भस्थ में आइडेंटिफाई करना, तो एक्चुअली कोई सिंड्रोमिक यदि है तो वो सिंड्रोम में हियरिंग लॉस एक कॉम्पोनेंट होता है, बट जाँच जो है वो जाँच पैदा होने के 2-3 दिन के भीतर ही हो जाती है, और हर किसी को कराना चाहिए। यदि वो 2-3 दिन के भीतर नहीं हो पाई, जैसे अस्पताल घर में डिलीवरी हुई, तो जब आप टीके के लिए जा रहे हैं, टीकाकरण के लिए जा रहे हैं तो कराइए, बट हर शिशु की जाँच सुनाई की जो OAE स्क्रीनिंग, उसमें कोई दर्द नहीं होता, बिल्कुल सिंपल टेस्ट है, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन मतलब बिल्कुल कुछ मिनट ही लगते हैं और बहुत ईजी टेस्ट है, तो वो ज़रूर कराना चाहिए हर शिशु को।
0: डॉक्टर मेहता, आपने बताया कि हर शिशु को इस तरह की सुनाई देने वाली जाँच करवा लेनी चाहिए। अगर मान लीजिए माता पिता जन्म होने के बाद कुछ माह तक भी इस तरह की जांच नहीं करवाते हैं और बाद में उनको पता चलता है कि बच्चे को सुनाई देने में कोई समस्या है, तो क्या ये लेट होने की वजह से या विलंब होने की वजह से कोई बात बिगड़ जाती है?
1: देखिए, जैसे मैंने पहले बताया, ब्रेन हमारा प्लास्टिक होता है, तो इसलिए जितना जल्दी हम डायग्नोस करेंगे ना उतना हम हियरिंग एड लगाते हैं, हियरिंग एड से स्टिमुलेशन मिलता रहता है उस पार्ट को, जितना भी जा रहा है बट स्टिमुलस मिलता है, पार्ट एक्टिव रहता है, तो ये चीज़ है। और अभी हमारा यही एम है कि हम जितना जल्दी मतलब 3 मंथ्स के अंदर अंदर हम डायग्नोस कर लें, 6 मंथ्स के अंदर अंदर उसको रिहैबिलिटेशन हियरिंग एड या लगा लें, और यदि हियरिंग एड से भी नहीं इंप्रूवमेंट हो रहा है तो कॉकलियर इम्प्लांट होता है, तो वो फिर जितना जल्दी हो सके 1-1.5 साल 2 साल में हम लगाएं, तो उससे बच्चे का इंप्रूवमेंट, जो स्कूल गोइंग एज में बच्चा

0: मतलब अगर सुनने लग जाएगा तो बोलेगा अच्छे से, उसका बौद्धिक विकास उतना अच्छा होगा। तो एम ये रहना चाहिए कि भाई स्कूल वो 3 साल में जाता है तब तक उसका रिहैबिलिटेशन मतलब हियरिंग इन प्लेस हो, ताकि वो सब बच्चों के साथ मतलब सब बच्चों के बराबर उसका बौद्धिक विकास भी हो सके। सोशल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, सारी चीज़ें सुनाई देने पर निर्भर होता है। वो सुनेगा तभी समझेगा और बोलेगा, और मतलब हर चीज़ आप पढ़ाई से लेकर हर चीज़ उस पर डिपेंडेंट रहती है। तो इसलिए जितना जल्दी हमारा एम ये रहता है, जितना जल्दी हम पकड़ेंगे सुनाई मतलब कम बात सुनाई के बाधित बच्चों को, उतना जल्दी उनका और उतना हर तरह से सर्वांगीण विकास होगा।
1: डॉक्टर मेहता, अगर हम नवजात शिशु के साथ की जाने वाली क्रियाओं की बात करें, जैसे कि बच्चे की मालिश की जाती है, और उसके अलावा पहले तो ऐसा भी होता था कि बच्चे के कान में तेल डाला जाता था, तो इस तरह की चीज़ें भी की जाती थी, तो आप बताएंगे कि नवजात शिशु के साथ वो कौन कौन सी क्रियाएं हैं जो नहीं करना चाहिए, जिसका दुष्प्रभाव उसके कानों पर पड़ सकता है?
0: देखिए, एक तो ये है कि कान में तेल डालना मतलब एडवाइजेबल नहीं है, नहीं करना चाहिए। बट उससे मतलब अगर आपका कान का पर्दा ठीक है तो उससे ज़्यादा इफेक्ट सुनाई पर ऐसा कुछ नहीं होता है। कान की क्लीनिंग खुद नहीं करना चाहिए, पीरियोडिक चेकअप्स कराएं। अगर कान में खुजली हो रही है, कान में पीक आ रही है, तो उसको लाइटली ले लेते हैं, कोई भी ड्रॉप्स ले लेते हैं, हम दुकान से डाल लिया ठीक हो गया, तो ऐसा ये नहीं करना है। आपका अगर कान में पीक आ रही है दिखाना है, कान में छेद हुआ है पर्दे में तभी आ रही है, उसमें भी दो तरह के होते हैं, हड्डी गलने वाली बीमारी एक होती है, एक नॉर्मल छेद होता है। तो यदि ऐसा है तो वो सब चीज़ें आप ENT के पास जाके ही चीज़ करा सकते हो। जितना जल्दी चीज़ें पकड़ में आएंगी उतना जल्दी उसका इलाज होगा। तो इसलिए मतलब इग्नोर नहीं करना है मेनली ये, ना हियरिंग लॉस को और ना कान से पीक या कान के कोई रिलेटेड प्रॉब्लम है। अच्छा, एक जुकाम बहुत होता है बच्चे को, छींके बहुत आती है, या फिर नाक बंद बहुत रहता है, नाक के पीछे एक ग्रंथि होती है, इसको एडिनॉइड बोलते हैं, तो वो भी यदि बाधित रहा तो फिर उसमें भी सुनाई लॉस होने का रहता है। तो यदि बच्चा सुन नहीं पा रहा है तो ऐसे कान से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो एक बार ENT चेकअप कराना और दिखाने में कोई नुकसान नहीं है, जल्दी चीज़ें पकड़ में जाएंगी और जल्दी उसका ट्रीटमेंट होगा।
1: डॉक्टर मेहता, अगर हम शरीर के छिद्र वाले अंगों की सफाई की बात करें तो नवजात शिशु के कान की सफाई किस तरह से करनी चाहिए?
0: देखिए, अपने आप सेल्फ क्लीनिंग मैकेनिज्म होता है, बच्चों में या बड़ों में किसी में भी वैक्स जो बनता है उसका एक फंक्शन होता है बॉडी में, और वो सेल्फ क्लीनिंग मैकेनिज्म होता है, अपने आप मीडियल से लैटरल करके बाहर आता है वो और अपने आप निकलता है। अनटिल अनलेस हम ईयरबड्स डाल के उसको अंदर डालते, क्योंकि नैरो होता है, किसी में नैरो किसी में वाइड, जिसमें छिद्र छोटा है नैरो है उसमें मुश्किल होती है कई बार, बट अदरवाइज सेल्फ क्लीनिंग मैकेनिज्म है। हम लोग खुद ही ईयरबड डाल के या उसको बाधित कर रहे हैं, क्लीन करते हैं तो ट्रॉमा हो जाता है, उससे फंगस बन जाता है, तो ईयरबड्स का उपयोग ना करें। ईयर ड्रॉप्स आते हैं वैक्स डिजॉल्विंग, और आप ऐसे मतलब थोड़ा सा छिद्र को वाइड करके देख सकते हैं वैक्स है, तो वो वैक्स डिजॉल्विंग ड्रॉप्स डाल दें बीच में कभी कभी, इंटरमिटेंट यूसेज, तो उससे सॉफ्ट होकर वो ईजिली अपने आप निकल जाता है। और यदि ये लग रहा है कि नहीं निकल रहा है और दिख रहा है कि वैक्स मैल है, तो बेटर है कि डॉक्टर के पास जाके निकाला जाए, तो उससे ट्रॉमा होने के, जो कैनाल में ट्रॉमा होता है या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को ट्रॉमा होता है या वो वापस अंदर फंसने की जो रहता है, वो सब चीज़ें नहीं होती हैं।
1: डॉक्टर मेहता, ये तो हो गए वो कारण जिसकी वजह से कान में अलग अलग तरह की समस्याएं होती हैं। अब अगर हम इसके उपचार की बात करें, अभिभावकों को ये पता चलता है कि उनका बच्चा बोल नहीं पा रहा है और उसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि इसको सुनाई नहीं देता, तो इसका जो उपचार है वो किस किस तरह से संभव है?
0: देखिए, छोटे बच्चे की जैसे हम बात करें कि वो बोल नहीं पा रहा है, तो पहले जैसे मैंने बताया OAE करते हैं, फिर बैरा करते हैं, यदि उसमें सुनाई समझ आता है कि नस की कमज़ोरी है और सीवियर कैटेगरी में आ रहा है बच्चा, तो मॉडरेट टू सीवियर, तो हम हियरिंग एड पहले लगाते हैं। बच्चे को हियरिंग एड रेगुलरली लगाना है, जब वो मतलब नहा लेता है सुबह, नहाने के बाद लगा दीजिए, सोने के टाइम निकालिए, और उससे देखते हैं 3 महीने 6 महीने वो यूज़ करता है कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है। कुछ बच्चों में, कुछ प्रतिशत बच्चों में हियरिंग एड से अच्छा इंप्रूवमेंट हो जाता है, तो हम एडेड ऑडियोग्राम करके बोलते हैं, सुनाई की जांच हियरिंग एड के साथ, तो उसमें यदि अच्छा वो सुन पा रहा है चीज़ें तो हम हियरिंग एड उसका ये एडवाइजेबल होता है। यदि उससे इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, 6 महीने यूज़ किया देखा नहीं इम्प्रूवमेंट हो रहा है, तो उसको हम कॉकलिया इम्प्लांट, एक डिवाइस होती है जो इनर ईयर में, कॉकलिया में जो हमारे सेंसरी हियरिंग ऑर्गन है जो हड्डी के अंदर होता है, तो उसमें डालते हैं और वो डायरेक्ट फिर नर्व्स को इम्पल्सेस देता है और सुनाई के लिए इम्प्रूवमेंट होता है। तो वो हम तभी करते हैं जब 6 महीने उसने हियरिंग एड यूज़ किया है, उसको इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है और इसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं, हम CT MRI और करा के फिर देख के उसको कॉकलिया इम्प्लांट के लिए लेते हैं। तो ये मेनली प्रक्रिया है इसके निदान की। ये तो हो गया जब जन्मजात मतलब बच्चा बोल नहीं पा रहा है, सुनाई कम है, नस की कमज़ोरी है। एक होता है जैसे कान में इन्फेक्शन हुआ, पस आ रहा है बार बार, कान में भारीपन रहता है, तो उसका उसका भी हम मेनली मतलब पहले जांच करके पस निकालते हैं, उसको सूखा होता है कान दवाई देके, और उसके बाद फिर उसके लिए अप्रोप्रिएट

0: सा ऑपरेशन है, वो ऑपरेशन करके उसकी सुनाई बेहतर की जा सकती है।
1: डॉक्टर की सलाह के आज के इस कार्यक्रम में डॉक्टर रूपा मेहता जी हमारे साथ हैं और आप कान से संबंधित समस्या और उसके समाधान के बारे में बहुत विस्तार से जानकारी दे रही हैं। डॉक्टर मेहता, इस विषय पर हम आगे और आपसे जानकारी प्राप्त करेंगे। अब मन कर रहा है कि इस बातचीत को थोड़ा सा मनोरंजन की ओर ले चलें और आपकी पसंद का एक फिल्मी गीत हमारे श्रोताओं को सुनवाएं।
0: मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया,
1: तो सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: डॉक्टर की सलाह के आज के इस अंक में हमारे साथ हैं डॉक्टर रूपा मेहता। आप कान से संबंधित समस्या और समाधान के बारे में हमें बता रही हैं। डॉक्टर मेहता, इस गीत से पहले आपने बताया कि कॉकलियर इम्प्लांट करने से बच्चे को सुनाई देने लगता है, तो ये जो प्रक्रिया है ये क्या पूरे जीवन में सिर्फ एक बार करनी होती है?
1: हाँ जी, उसको मतलब जैसे बच्चों में करते हैं तो उसका लाइफ 20-25 साल होता है, फिर उसके अपग्रेडेड आते हैं तो वो हम ऊपर मतलब एक सर्जरी करके चेंज करना पड़ता है, बट वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद भी जो AVT करके थेरेपी होती है, केवल इम्प्लांट लगाने से बच्चा मतलब एकदम नॉर्मल बोलने लग जाएगा ऐसा अगले ही दिन, ऐसा नहीं होता है। इम्प्लांट की सेटिंग्स करनी होती है जो ऑडियोलॉजिस्ट और स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट करते हैं, उसकी ऑडिटरी वर्बल थेरेपी होती है वो होती है, तो वो लगभग ऑपरेशन के 1.5-2 साल बाद तक रेगुलर कराते हैं, घर में स्टिमुलेशन देते हैं, तब जाके बच्चा एक नॉर्मल जिंदगी और नॉर्मल सुन और बोल पाता है।
0: डॉक्टर मेहता, अगर हम

0: किसी ना बोलने वाले बच्चे के उपचार के लिए अभी तक आपने जो प्रयास बताए हैं उन प्रयासों से बच्चा बोलने लगता है, ये आपने बताया। क्या ऐसे भी कुछ मामले होते हैं कि जिसमें किसी भी तरह का ट्रीटमेंट करने के बावजूद भी ये संभव नहीं होता कि उसे सुनाई दे?
1: देखिए, नॉर्मली जैसे मैंने बोला, जन्मजात जब बच्चों का होता है तो कई बार ना मालफॉर्म्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, कॉकलिया मालफॉर्म्ड है या उसमें कुछ प्रॉब्लम है कि हम कॉकलिया इम्प्लांट डाल ही ना पाएँ। तो अभी तो कॉकलिया इम्प्लांट जहाँ नहीं डलता है तो वहाँ पे, और जब नस ठीक नहीं है तो ऑडिटरी ब्रेन स्टेम इम्प्लांट ब्रेन स्टेम में करते हैं, वो भी अभी इंडिया में भी हुआ है काफ़ी जगह। तो ऑडिटरी ब्रेन स्टेम इम्प्लांट भी है जो हर जगह नहीं किए जा रहे बट अभी हो रहा है वो भी। तो ऐसे मतलब एक लेस प्रपोर्शन, एक सिग्निफिकेंट प्रपोर्शन को हम हेल्प कर सकते हैं, बहुत एक कम प्रतिशत ही है जिनको हम बिल्कुल हेल्प ना कर पाए ऐसा।
0: क्या अब ये मानकर चलें कि पहले और आज के दौर में काफ़ी अंतर है, किसी ज़माने में इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, लेकिन आज चिकित्सा विज्ञान की तरक्की ने बहुत सारे असंभव कार्यों को भी संभव कर दिखाया है?
1: बिल्कुल बिल्कुल, चिकित्सा विज्ञान की तरक्की डेफिनेटली, टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट, तीसरी चीज़ गवर्नमेंटल सपोर्ट बहुत बड़ा है, NPPCD जो प्रोग्राम चल रहा है और बाकी भी मतलब बहुत बड़ी स्कीम्स से ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी प्रोवाइड किया जा रहा है टू लेस देन 5 ईयर्स चिल्ड्रन और उनके कुछ कुछ क्राइटेरिया हैं, तो बहुत उससे बहुत एक सब्सटैंशियल चेंज हुआ है हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चों के और बड़ों के मतलब ट्रीटमेंट में।
0: डॉक्टर मेहता, अगर हम उम्र की बात करें, कई बार ये होता है कि जब जागे तब सवेरा, बहुत से लोगों के यहाँ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सुन नहीं पा रहे थे और लंबे समय तक बोल भी नहीं पा रहे थे, लेकिन उन्हें बाद में पता चलता है कि इसका भी अब उपचार किया जाना संभव है, और एक उम्र के बाद अगर वो हॉस्पिटल जाते हैं और उम्र ज़्यादा है तब भी क्या ये संभव है कि उनका उपचार किया जा सकता है जो उपचार आपने बताया है और वो अच्छे से सुन सकते हैं, बोल भी सकते हैं?
1: देखिए, उसमें ना ये जो है, जैसे मैंने बोला कि कारण क्या है, कारण देखना बहुत ज़रूरी। कुछ होता है कि कुछ टाइम तक ठीक थे, फिर कोई एक्सीडेंट हुआ और सुनाई चली गई, तो डेफिनेटली उनका हम मतलब उनका ये कर सकते हैं, डायग्नोस करके ट्रीटमेंट कर सकते हैं और उनको हियरिंग बहुत बेटर हो सकता है। अगर इन्फेक्शन की वजह से है तो ऑपरेशन करके उसका ठीक हो सकता है। अगर नस की कमज़ोरी है और जो बचपन से ही थी और हम नहीं मतलब उसका कुछ निदान नहीं हो पाया, कुछ नहीं दिखा पाए, और तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हम लोग हर मरीज़ को और हम लोग अवेयरनेस ये क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके एक बार दिखाएं, जितना जल्दी पकड़ में आएगा, क्योंकि वो एक परसेंटेज जो शुरू से नहीं सुन पाया और बोल नहीं पाया और नस की कमज़ोरी थी जिसकी, वो एक फिर लेटर स्टेज में मुश्किल हो जाता है। बट बाकी इन्फेक्शन है या पहले बोल पाते थे, कोई एक्सीडेंट की वजह से सुनाई कम हो गई, तो फिर वो रिहैबिलिटेट हो जाता है।
0: डॉक्टर मेहता, अपने श्रोताओं की जानकारी के लिए हम ये जानना चाहेंगे कि आज की तारीख में अगर किसी घर में कोई बच्चा बोल नहीं पा रहा है और उसको सुनने की समस्या है, तो वे कौन से हॉस्पिटल में अपने बच्चे को लेकर जाएं, और जो शासन की जो सुविधाएं चल रही हैं, खासकर आयुष्मान योजना है या अन्य इस तरह की जो चिकित्सा लाभ प्रदान करने वाली योजनाएं हैं, क्या इनमें जैसा कि आपने बताया कि कॉकलियर इम्प्लांट भी लगाया जा सकता है, तो ये सारी चीज़ें क्या उस योजना के अंतर्गत फ्री में लोगों को मिल सकती हैं?
1: हाँ, मतलब पैकेजेस हैं BPL और APL, और वो ऐसे अप्लाई करना रहता है, उसके एक सारे क्राइटेरिया होते हैं। और बाकी हियरिंग टेस्ट तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, हर हॉस्पिटल में होता है, कॉकलियर इम्प्लांट मेडिकल कॉलेज में हो रहा है, हमारे यहाँ एम्स में हो रहा है, फिर और भी एक दो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी शुरू हुआ है। तो ऐसा मतलब आजकल इतना डिफिकल्ट नहीं है, अगर बस अवेयरनेस होना ज़रूरी है कि सही टाइम पे दिखा दें, बाकी सहायता प्राप्त करना और करवाना सर्जरी इतना डिफिकल्ट नहीं है अभी।
0: डॉक्टर मेहता, एक मनुष्य को अपने शरीर के प्रत्येक अंग को लेकर सतर्क रहना, सावधान रहना और सुरक्षा अपनाना बहुत ज़रूरी होता है, ख़ासकर आज के इस भागदौड़ के जीवन में। अगर हम कानों की सुरक्षा की बात करें तो आज हमारे आसपास के वातावरण में वे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे कान पर दुष्प्रभाव डाल सकती हैं?
1: सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट है तेज़ आवाज़, पटाखों की आवाज़, जो म्यूज़िक बजता है, लाउड स्पीकर्स, हर मतलब जो छोटे मोटे फेस्टिवल्स आते हैं तो स्पीकर पे इतना फुल वॉल्यूम,
0: डीजे,
1: पब्स रेस्टोरेंट्स में जो तेज़ म्यूज़िक बजता है वो बहुत हानिकारक है। और इससे हमने बहुत रेगुलरली हम OPDs में देखते हैं, मरीज़ आते हैं कि कान के पास पटाखा छूटा है, सुनाई कम हो गई, बिल्कुल सुनाई बंद हो गया, सुन हो गया कान। एक अभी हमारे पास रिसेंटली एक टीचर आए थे जो रामलीला कुछ थी गांव में, उसमें वो चीफ गेस्ट थे, स्पीकर उनके पास था और उनका तेज़ आवाज़ से वो 1-1.5 घंटा उन्होंने सुना और उनका ये चला गया। तो ये तेज़ जो ईयरफोन्स यूज़

0: करते हैं उसमें लाउड नॉइज़ सुनते हैं यंगस्टर स्पेशली, या फिर ट्रैफिक पुलिस या जो वर्कर्स फैक्ट्री वर्कर्स जो तेज़ आवाज़ से कंटिन्यूस रहते हैं, तो उसमें नस की कमज़ोरी होना बहुत कॉमन है और वो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिवेंटेबल हियरिंग लॉस का कॉज है. तो इसलिए उसके लिए हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट मतलब स्टेप्स, पूरी सोसाइटी को जागरूक रह के स्टेप्स लेना रहेगा, क्योंकि वो इरिवर्सिबल हो जाता है एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम और नस की कमज़ोरी होती है, तो नस की कमज़ोरी का कोई ऑपरेशन नहीं होता है, फिर हियरिंग एड रहता है. और तो इसलिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये नॉइस का हम बचें, लाउड नॉइस से रेगुलर कंटिन्यूस एक होता है कंटिन्यूस, ठीक है थोड़ी देर के लिए हो गया बट फिर भी उसमें भी प्रिकॉशंस लें हम, है ना. तो एक लाउड नॉइस का सबसे इंपॉर्टेंट है जो मल्टीपल फैक्टर्स की वजह से होता है, एनवायरमेंटल हो गया आपको, ऑक्यूपेशनल हो गया, या फिर एंटरटेनमेंट रिलेटेड हो गया, तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान रखना है. दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ जैसे मैंने पहले भी बताया कि इन्फेक्शन जब होता है ना कान से पीक निकलना, वो अभी भी हमारे रूरल सेटअप्स में कॉमन समझा जाता है, बच्चों को पीक निकलती है और बूंदे डाल देते ख़त्म, दिखाते नहीं हैं, तो वो बहुत ज़रूरी है. अभी भी जो अनसेफ ओटाइटिस मीडिया CSOM हम बोलते हैं, उससे वो ब्रेन तक वो इन्फेक्शन चला जाता है, नस मुंह का जो नस होती है उसको मतलब उसको अफेक्ट करके मुंह टेढ़ा हो जाता है, आँख बंद होना मतलब आँख नहीं बंद होती है, ये सब प्रॉब्लम्स अभी भी इंडिया में देखा जा रहा है, जबकि वेस्टर्न कंट्रीज़ में वो लोग अवेयर रहते हैं, जल्दी दिखा देते हैं, तो ये सब कॉम्प्लिकेशंस कम है. अभी भी हमारे पास कान की वजह से ब्रेन में एब्सेस, ब्रेन में पस भर जाना, ये सब कॉमन है. तो कान के इन्फेक्शन को ईजिली मतलब इतना लाइटली ना लें, केवल ईयर ड्रॉप से दिखा, बिना दिखाए ईयर ड्रॉप डाल दिया और फिर उसके आगे भूल गए, उसको नहीं पूरा चेकअप कराया, पूरा ट्रीटमेंट कराया. तो ये दो चीज़ें मुझे लगता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और प्रिवेंटेबल हैं. तीसरी कुछ वैक्सीन्स हैं वो दे देनी चाहिए, मीजल्स मम्स रुबेला, उससे बचता है. और चौथा डायबिटीज़ हाइपरटेंशन, इसको हम अच्छे से कंट्रोल करें, जैसे ये आइज़ को भी अफेक्ट करते हैं वैसे ईयर्स को भी अफेक्ट करते हैं. तो शुगर है यदि या BP है तो उसके बराबर दवाई लें, उसको कंट्रोल्ड कंडीशन में रखें. तो ये सब करने से हम हियरिंग हाइजीन अच्छा रख सकते हैं, हियरिंग ईयर्स अच्छे रख सकते हैं. और सेल्फ़ क्लीनिंग ना करें, उससे भी ट्रॉमा और इन्फेक्शन होते हैं, तो सेल्फ क्लीनिंग ना करें, ड्रॉप्स डाल के हॉस्पिटल जाके क्लीन कराएं यदि ईयर्स में प्रॉब्लम आ रही है तो.
1: एक बात और देखी गई है कि लोगों को जब भी कान में खुजली होती है तब वो मार्केट में जो बर्ड्स मिलते हैं वो बर्ड्स खरीद कर लाते हैं और ख़ुद ही कान में खुजाने के आदि हो जाते हैं. कुछ लोग तो माचिस की तीली भी डालते हैं, इस तरह की लोगों को आदत पड़ जाती है, ये कानों के लिए कितना नुकसानदायक है.
0: देखिए बर्ड्स तो आगे का एंड उसका बहुत मोटा होता है, तो वो और उसको ना मतलब वैक्स को अंदर की तरफ ही ढकेलता निकालने के बजाय, तो वैक्स बर्ड्स तो हम एडवाइस नहीं करते हैं. और कान की तीली और ये वो तो हमने बहुत बार देखा है, वो अंदर टूट जाती है फिर वो लेके आते हैं
1: जी.
0: बहुत सारे मरीज वो मेटल से की से क्लीन करते हैं, तो उससे वो ट्रॉमा हो जाता है. एक्सट्रॉडिटरी कैनाल की स्किन बहुत डेलिकेट होती है, तो उसमें वो ब्लड आ जाता है या फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, तो ये तो बिल्कुल एडवाइजेबल नहीं है. ड्रॉप्स आती हैं जैसे मैंने बोला वैक्स के लिए, या इचिंग हो रही है तो आप ड्रॉप्स डाल दें, उसको थोड़ा लिब्रिकेट हो जाता है, तो उससे आराम मिलता है.
1: डॉक्टर मेहता, आज की तारीख में सबसे बड़ी जो समाज में समस्या देखी जा रही है वो है समारोह में तेज़ आवाज़ में लाउड स्पीकर चलाना, खासकर DJ का प्रयोग किया जाता है, या फिर एक दौर था जब बड़े ही मधुर संगीत के साथ बैंड वादक बारात में दिखाई देते थे, लेकिन अब बारात से बैंड वादक लुप्त हो गए हैं और अब वो धुमाल और DJ ही दिखाई देता है, जिसे लेकर प्रशासन की ओर से भी समय समय पर दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं, लेकिन लोग उसका पालन करते हुए नज़र नहीं आते हैं. इसका सबसे बड़ा कारण है जागरूकता का अभाव. बहुत तेज़ आवाज़ में वो DJ होता है, इतनी तेज़ उसकी आवाज़ होती है कि कई लोगों को तो दिल की भी समस्या उसकी वजह से होती है. तो इस तरह के समारोह में जब मेहमान बहुत दूर दूर से आते हैं और वो आपस में बात भी नहीं कर पाते हैं, आवाज़ इतनी तेज़ होती है, लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप?
0: देखिए मतलब बहुत हानिकारक है, जिनको जब तक तकलीफ नहीं होती तब तक समझते नहीं है, वो वाली बात है
1: जी.
0: जिनको तकलीफ फिर अचानक से, कितने मैंने बताया यंगस्टर्स आते हैं हमारे पास जिनका यही पूरा एक कान चला जाता था, उसको फिर हम बताते हैं भाई दूसरे कान का ध्यान रखना, क्योंकि वही आपका सुनने का मतलब. एक हेलेन केलर करके एक डेफ और ब्लाइंड लेडी थी जिन जो बहुत फेमस, उन्होंने बुक्स भी लिखी, तो उन्होंने यही लिखा कि डेफनेस जो है वो इंसान को इंसान से अलग करती है, वो अपनी कम्युनिकेट नहीं कर पाता है, और ब्लाइंडनेस इंसान को एनवायरनमेंट से अलग करती है. तो जब तक हम ईयर का इंपॉर्टेंस तभी हमें समझ आता है जब हमारी हियरिंग लॉस होता है, वो वाली बात है. इसलिए इतनी जागरूकता नहीं है, बट यही हमारा प्रयास भी रहता है एज अ डॉक्टर. हम लोग बताते हैं कि तेज़ आवाज़ बहुत बहुत नुकसानदायक है, और बहुत सारे रीज़न, DJ हो गया, पटाखे हो गए, आप और फैक्ट्रीज़ में होता है, तो ये नॉइस जो लाउड नॉइस एक्सपोजर किसी भी हाल में हमें प्रिवेंट करना है, क्योंकि SN लॉस रिवर्सिबल SN लॉस करता है आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, और बहुत प्रॉब्लम करता है आगे, उसके आगे फिर कुछ मतलब हियरिंग एड के अलावा कुछ रहता नहीं है इलाज. तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रिवेंट किया जाए लाउड नॉइस.

0: एक सवाल और हमारे मन में आ रहा है। अगर हम महिलाओं के सौंदर्य से संबंधित बात करें तो ईयर रिंग्स पहनने का जो रिवाज है वो हमारे सौंदर्य से जुड़ा हुआ है, तो खासकर महिलाओं के लिए इसको लेकर भी कोई हिदायत आप देना चाहेंगी?
1: नहीं, जो ईयर पियर्सिंग लोब्यूल में जो करते हैं वो तो जो मतलब प्राचीन समय से चला रहा है उसमें कोई नुकसान नहीं है, वो करवाना चाहिए। उसमें कुछ कुछ मतलब उसमें है, पीछे साइंस भी है। बट ये जो कई बार इधर अलग अलग जगह जो लगाते हैं कार्टिलेज में, तो वो मतलब यंगस्टर्स लगाते हैं, ठीक है, मतलब उसमें कोई ये नहीं है। बट सही टेक्निक से, एसेप्टिक टेक्निक से, इससे इन्फेक्शन ना हो, अच्छी जगह से जाके लगवाएं करें कि इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि कार्टिलेज में एक बार इन्फेक्शन हो जाता है तो बहुत टाइम से लेता है ठीक होने में, और पेनफुल भी बहुत रहता है। तो बस साफ़ सुथरी जगह से, अच्छे से क्लीन जगह से करवाएं, और जितना हो सके लोब्यूल में करवाएं। बट फिर भी यदि कराना है तो वो पर्सनल चॉइस है, इन्फेक्शन हो जाए तो मुश्किल है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है।
0: तो श्रोताओं, डॉक्टर रूपा मेहता जी ने बताया कि हमें जब भी अपने कान में छिद्र करवाना हो या फिर गहने को पहनने के लिए जो ईयर रिंग्स पहनी जाती है, जिसे बाली कहा जाता है, उसे पहनने के लिए जब भी कानों में छिद्र करवाएं तो किसी जानकार व्यक्ति से ही करवाएं। हमें दुनिया की हर आवाज़ साफ और स्पष्ट सुनाई दे, इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने कानों को भी सुरक्षित रखें। और आज की तारीख में कानों को सुरक्षित रखने के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी बात डॉक्टर साहिबा ने बताई वो यही है कि हमें तेज़ आवाज़ से बचना है। तो डॉक्टर रूपा मेहता जी, आज आपने कान से संबंधित समस्या और उसके समाधान के बारे में बहुत विस्तार से जानकारी दी। इस बातचीत के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ डॉक्टर की सलाह का ये अंक यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।

0: समन्वित कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह में अभी आप सुन रहे थे कान से संबंधित समस्याएं और समाधान इस विषय पर डॉक्टर रूपा मेहता से ली गई भेंटवार्ता। भेंट करता थे दीपक हटवार। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम कुछ ही देर में। हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 9 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम बातों बातों में। आज उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री श्री विजय शर्मा से ली गई विशेष भेंटवार्ता। इस कार्यक्रम की प्रस्तुति है विकल्प रंजन शुक्ला की।
1: श्रोताओं नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आधारित हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में के आज के अंक के साथ मैं विकल्प शुक्ला। श्रोताओं, बस्तर संभाग में नक्सलवाद की समाप्ति के बाद वहां के स्थानीय लोगों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने, उन तक सभी शासकीय योजनाओं का लाभ पहुंचाने और उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए अनेक अभिनव पहल की जा रही हैं। इन सब विषयों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री श्री विजय शर्मा।
2: सर नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के इस कार्यक्रम में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं।
3: जी बहुत आभार आपका।
2: सर, छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग को नक्सली समस्या से मुक्त बनाने के बाद अब वहां के लोगों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने पर फोकस किया जा रहा है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने शहीद वीर गुंडाधूर के नाम से नेतानार में सेवा डेरा का शुभारंभ किया है। यह पहला ऐसा सेवा डेरा है। सर, आने वाले समय में ऐसे और भी सेवा डेरा शुरू किए जाएंगे, इसके बारे में हमारे श्रोताओं को विस्तार से बताएं।
3: नक्सल उन्मूलन के अभियान में दक्षिण बस्तर और वोकोर इलाके जहां पर नक्सली बड़े ही दिनों से लाल आतंक के साए में लोगों को रखे हुए थे
2: जी,
3: जिन्होंने अपनी सत्ता स्थापित करने की कोशिश की थी, उन स्थानों पर सुरक्षा बलों ने अनेक सुरक्षा कैंप लगाए हैं। वो जो सुरक्षा कैंप अनेक अर्थात सैकड़ों की संख्या में 200 लगभग दक्षिण बस्तर और कोर इलाकों में लगे हुए हैं। जिन कैंपों को एस्टैब्लिश करने के लिए बहुत बड़े संसाधन की आवश्यकता हुई और वो संसाधन उसमें उपलब्ध कराया गया है। इन कैंपों के साथ में अनेक बिल्डिंगें उसमें बनी हैं, अनेक स्थान बने हैं, गार्डन बना है, ओपन एरिया बना है, ये सब कुछ वहां बना हुआ है
2: जी।
3: तो अब जब हम इस योजना में हैं कि हमारे सेंट्रल फोर्सेस और स्टेट फोर्सेस भी इन कैंप को खाली करेंगे तो ये कैंप हमारे स्थानीय लोगों के काम आने वाले हैं
2: जी।
3: और जो शहीद वीर गुंडाधुर

0: सेवा डेरा का प्रारंभ माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने, माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने किया है, ऐसा ही इन सारे ही कैंपों में किया जाएगा। ये सारे कैंप आज जो सुरक्षा के कैंप हैं,
1: जी
0: कालांतर में ये विकास के कैंप होंगे, सेवा के कैंप होंगे।
1: जी सर, यहाँ पे जो कैंप है तो बहुत अच्छी पहल है। वहां पे जो रहने वाले जो स्थानीय नागरिक हैं, उन्हें किस तरह की सुविधाएं इन सेवा डेरा के माध्यम से मिलेंगी?
0: ये जो कैंप हैं, ये स्कूल भी होंगे, ये हॉस्पिटल होंगे, ये पंचायत के स्थान होंगे, ये आंगनबाड़ी केंद्र होंगे, इसके साथ ही साथ यहाँ ये ट्रेनिंग कैंप होंगे।

0: मिलेंगी।
1: ये जो कैंप है, ये स्कूल भी होंगे, ये हॉस्पिटल होंगे, ये पंचायत के स्थान होंगे, ये आंगनबाड़ी केंद्र होंगे। इसके साथ ही साथ यहाँ ये ट्रेनिंग कैंप होंगे। बस्तर के जीवन में लघु वनोपज का बड़ा महत्व है,
0: जी
1: और लघु वनोपज आधारित इनके जीवन में ये लघु वनोपज के संग्रहण, प्रसंस्करण और विपणन के केंद्र बनेंगे।
0: जी
1: ये पूरे ही बस्तर की आर्थिक गतिविधियों को और सामाजिक गतिविधियों को संचालित और उन्नत करने के केंद्र होंगे।
0: जी सर, एक बात और है कि बस्तर में सहकारिता के माध्यम से श्वेत क्रांति यानी डेयरी उद्योग को भी बढ़ावा देने का प्रस्ताव है। छत्तीसगढ़ सरकार ने इस संबंध में एनडीडीबी के साथ अनुबंध भी किया है, आपने इस संबंध में गुजरात का दौरा भी किया था, और केंद्रीय गृह मंत्री जी ने कहा है कि जो जनजातीय लोग हैं वहाँ के, उनको सरकार की ओर से गाय और भैंस भी इसके लिए दी जाएगी। इस बारे में भी थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को बताएं।
1: प्रसन्नता है, आपके इस प्रश्न के लिए आभार व्यक्त करता हूँ, और वो इसलिए क्योंकि मैं पूरी दुनिया को यह बताना चाहता हूँ कि कहीं सहकारिता कागज में होती होगी, कहीं सहकारिता फाइलों में होती होगी, बस्तर के जनजीवन में, जनमानस में सहकारिता है। बस्तर का गांव सहकारी माध्यमों के तरीके से ही जीता है, इस तरह से बस्तर में होता है।
0: जी
1: तो सहकारिता बस्तर में बहुत आगे बढ़ सकता है। आने वाले समय में वहां पर दुग्ध का भी उत्पादन हो, क्योंकि बड़ा क्षेत्र है,
0: जी
1: बड़े चारागाह है, बड़ी हरियाली है वहां पर, तो
0: जी
1: दूध का भी अच्छा उत्पादन हो और सहकारिता के माध्यम से ये सब कुछ एक साथ एकत्रित हो। जो गुजरात की बात, गुजरात में अनेक डेयरियां हैं, उसमें से एक बनासकांठा डेयरी है। उस बनासकांठा डेयरी को मैं देखने गया था,
0: जी
1: उस डेयरी का ये सहकारी समिति है, उस सहकारी समिति का उनका प्रोजेक्शन है कि आने वाले वर्ष में उनका टर्नओवर 21,000 करोड़ का होगा।
0: जी
1: वहां मैं एक गांव गया था, वहां एक महिला की कथा थी
0: जी
1: कि 2,52,00,000 का दूध उन्होंने बेचा था एक साल में, और 40-45% का मार्जिन इसमें होता, मतलब 1 करोड़ रुपया उन्होंने कमाया था।
0: जी
1: तो ये बड़ा ही विषय है जो वहां पर हुआ है। मैं सोचता हूँ कि जिस तरीके से गुजरात आगे इस दिशा में बढ़ा है,
0: जी
1: सहकारिता के दिशा में, बस्तर भी समूचे भारत का सिरमौर होगा।
0: जी बिल्कुल सर, अपने इस बस्तर प्रवास के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री जी ने यह भी कहा है कि आने वाले 5 सालों में यानी वर्ष 2031 तक बस्तर देश का सबसे विकसित आदिवासी संभाग बनेगा। इसके साथ ही यहाँ रहने वाले लोगों की जो औसत आमदनी है वो करीब 6 गुना बढ़ जाएगी। इसके लिए किस तरह का एक वैज्ञानिक रोड मैप केंद्र सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार ने मिलकर तैयार किया है, इसके बारे में भी हमें बताएं।
1: माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने और माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने अपनी बातों में इस बात को स्पष्ट किया है। ये बड़ा विषय है कि बस्तर की उन्नति बस्तर के लघु वनोपजों के आधार पर होगी, बस्तर की उन्नति बस्तर के लोगों के कृषि के उन्नयन के आधार पर होगी, और आने वाले समय में बस्तर देश के समस्त आदिवासी संभागों में सर्वाधिक विकसित आदिवासी संभाग बनेगा। इसके लिए प्राणपण से कोशिश की जाएगी। इसके लिए एक प्रोग्राम डेवलपमेंट का तैयार हुआ है, और विशेष रूप से आपसे बताना चाहता हूँ, ये डेवलपमेंट का प्रोग्राम स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट नहीं है, ये जो स्थूल निर्माण की बात नहीं है, इसमें ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इसमें माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के फर्स्ट स्टेप प्रोसेसिंग की बात है, इसमें माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लॉजिस्टिक्स के लिए बात है, इसमें माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के ट्रेड की बात है, और इसके लिए महिला स्वसहायता समूह और सहकारी संस्थाओं को जोड़कर काम करने की बात है। ये मसौदा बना है, ये इस आधार पर बना है, और इसलिए हम लोग इस बात की अपेक्षा करते हैं, जिसमें हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि वहां पर लोगों की आमदनी बढ़े। इनफैक्ट हर महीने 40-50 हज़ार रुपया तो प्रत्येक व्यक्ति की आमदनी होनी चाहिए, और इसलिए ही ये रोड मैप इस ढंग से तैयार किया हुआ है।
0: जी सर, एक बात और है कि बीते महीनों के दौरान आपके यानी छत्तीसगढ़ सरकार है और केंद्र सरकार के प्रयासों से आपने एक बहुत अच्छी पुनर्वास नीति भी बनाई थी, तो उससे प्रभावित होकर और फिर जो सुरक्षा बल है उनके दबाव की वजह से भी करीब 3,000 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया। ये जो आत्मसमर्पित माओवादी हैं, ये फिर से गलत राह पे ना चले जाएं और फिर से वो माओवाद की विचारधारा से प्रभावित ना हो, इसके लिए उनके जो पुनर्वास है या कौशल प्रशिक्षण या उनको आजीविका के अच्छे साधन उपलब्ध कराने के लिए सरकार की ओर से क्या उपाय किए जा रहे हैं?
1: मध्य क्षेत्र की बैठक हुई थी, उसमें सभी प्रदेशों से लोग आए थे,
0: जी
1: और उससे पहले 8 प्रदेशों से पुलिस के जवान, पुलिस के अधिकारी, डीजीपी, सब कुछ यहाँ पर आए थे।
0: जी
1: उस सारी बैठकों में माननीय केंद्रीय मंत्री जी ने इस बात को स्पष्ट किया कि छत्तीसगढ़ में पुनर्वास नीति को बड़े ही वैज्ञानिक ढंग से लागू किया गया है,
0: जी
1: क्योंकि हमने पुनर्वास उनके किसी व्यक्ति का पुनर्वास ही ऐसा नहीं कहा, हमने कहा इनका सामाजिक पुनर्वास होगा,
0: जी
1: इनका आर्थिक पुनर्वास होगा, इनका मानसिक पुनर्वास होगा। हम इन सारे विषयों पर हम लोगों ने काम किया है,
0: जी
1: और यहाँ पर हमारे जितने पुनर्वास केंद्र है वहां पर एसओपी डिजाइंड है, सुबह से लेकर शाम तक की गतिविधियां डिजाइन

0: हैं,
1: जी
0: उसमें भगवान की प्रार्थना भी है और उसमें स्किल डेवलपमेंट भी है,
1: जी
0: ये दोनों ही चीजें उसमें है, अध्ययन है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है, इन सभी चीजों के साथ हमारे पुनर्वास केंद्र आगे बढ़ रहे हैं। मैंने देखा है कि प्रारंभ में जब ये नक्सली वापस आए थे उस समय इनके मन में जो भी भाव रहा हो ये धीरे धीरे बदल रहा है। अभी इनके मन में ये बात है कि हम भारत के संविधान के दायरे के अंदर ही अपनी बात रखेंगे
1: जी
0: और सरकार को इस बात से कहीं कोई गुरेज नहीं है।
1: जी
0: हमारा आग्रह था आप हथियार छोड़ दें, उसमें से 3,000 से अधिक लोगों ने हथियार छोड़ दिए, उसमें लगभग 2,000 लोग गिरफ्तार हुए और 536 न्यूट्रलाइज हुए।
1: जी
0: इसके बाद इन सारे ही बातों का पहला श्रेय किसी को जाता है तो वो सशस्त्र बल के जवानों को जाता है।
1: जी
0: कालांतर में इन पुनर्वासित लोगों के फिर से वापस नहीं जाने का जो प्रश्न है,
1: जी
0: मैं सोचता हूं कि ऐसा नहीं होगा। ये बस्तर की प्रकृति के अनुरूप भी नहीं था और
1: जी
0: बस्तर के लोगों को तो बस उपयोग किया गया था।
1: जी सर, एक बात और है कि अभी केंद्रीय गृह मंत्री जी ने कहा कि पिछले करीब 5-6 दशकों तक बस्तर को माओवाद की समस्या की वजह से जो नुकसान पहुंचा है उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार, फिर वो चाहे केंद्र सरकार हो या छत्तीसगढ़ सरकार, वो अगले 5 सालों के दौरान उस पूरे नुकसान की भरपाई करेगी। इस समय सर इस कार्यक्रम को पूरे छत्तीसगढ़ के साथ ही, विशेषकर जो बस्तर संभाग है उसमें भी बड़ी संख्या में श्रोता इस कार्यक्रम को और हमारी जो बातचीत है उसे सुन रहे हैं। किस तरह का नुकसान इस माओवाद ने बस्तर को पहुंचाया है ये थोड़ा सा बताएं। लोग तो वहां जानते हैं क्योंकि उन्होंने उसको भोगा है, लेकिन फिर भी आप बताएं और कैसे इसकी भरपाई की जाएगी। सेवा डेरा तो एक पहली कदम है, इसका थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को बताएं सर।
0: लियोर ओयाना एक योजना हम लोगों ने चलाई थी पंचायती राज के अंतर्गत,
1: जी
0: जिसमें बस्तर के युवाओं को लेकर के हम रायपुर और अन्य स्थानों पर घुमाने ले जाते थे।
1: जी जी
0: मैं अनेक ऐसे युवाओं से मिला हूं जिनकी उम्र लगभग 25 वर्ष थी लेकिन उन्होंने अपने जीवन में टीवी नहीं देखा था।
1: अच्छा
0: अब इस तरह की बात करने वाले कि बस्तर में अब ये हो जाएगा वो हो जाएगा कहने वालों से मैं पूछना चाहता हूं कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें और वो बच्चा बस्तर का टीवी भी ना देख पाया रहे, आप
1: जी
0: अजायब घर बनाकर रखना चाहते हैं बस्तर को?
1: जी
0: इससे मैं पूछना चाहता हूं, बस्तर हमारा हरा भरा रहे, उन्नत रहे, प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण रहे, प्राकृतिक जंगलों से परिपूर्ण रहे, लेकिन वहां के बच्चे में जितनी प्रतिभा है उसके उन्नयन का रास्ता कैसे प्रशस्त नहीं करेंगे आप?
1: जी
0: वहां के नौजवान दुनिया के क्षितिज पर छाने वाले हैं, इसलिए
1: जी
0: उन नौजवानों के लिए तो हमको मेहनत करनी ही चाहिए। साथ ही साथ ये कहना चाहता हूं कि बस्तर के गांव में स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी, बिजली, पानी, सड़क, मोबाइल के टावर, उन्नत किस्म के बीज, सिंचाई की व्यवस्थाएं कुछ नहीं पहुंच पाई आज तक।
1: जी
0: क्या दिया इस माओवाद ने? यही दिया कि 25 साल का बच्चा टीवी नहीं देख पाता है।
1: बिल्कुल
0: इन लोगों ने हमारे शिक्षा दूतों के गला काट कर मार दिया उनको,
1: जी
0: हमारे 250 से अधिक स्कूल बम से उड़ा दिए,
1: जी
0: नदी के किनारे, तालाब के किनारे, सड़कों के किनारे उन्होंने आईडी बिछा दिए।
1: जी
0: ये सिर्फ आईडी पहचानता है क्या कि कौन आर्म्ड फोर्सेस का व्यक्ति है और कौन सामान्य जनता है?
1: बिल्कुल
0: ऐसे कितने ही हजारों की संख्या में बस्तर के आदिवासी हैं जिन आदिवासियों ने अपने शरीर के अंग खोए हैं इन आईडी के चक्कर में।
1: जी
0: कौन जिम्मेदार है इसके लिए? ये सारे लोग तो दिल्ली भी गए थे, राष्ट्रपति महोदया से इन्होंने मुलाकात की और अपनी बात रखी थी।
1: जी
0: मैं कहना चाहता हूं कि ये आईडी लगाने का अधिकार आपको कैसे हो सकता है एक सामान्य स्थान पर?
1: जी
0: इन सारे ही लोगों ने बस्तर के लोगों को बंधक बना लिया था। एक गांव
1: जी
0: का व्यक्ति कहीं जा नहीं सकता था, आने पर उसको सौ सौ बातें विश्वास दिलाना पड़ता था इन लोगों को, अन्यथा सैकड़ों लोगों को इन लोगों ने पुलिस के मुखबिर कहकर के मौत के घाट उतार दिया।
1: जी
0: सैकड़ों लोगों को
1: जी
0: इन लोगों ने मणिकोंटा, झीरम, दरभागुड़ा, घोड़ा गांव, ऐसे अनेक स्थान है जहां पर बस्तर के आदिवासियों की सामूहिक नृशंस हत्याएं की।
1: जी
0: कौन जिम्मेदार होगा इसके लिए? ताड़मेटला हमको ध्यान है, हमको ध्यान है मानपुर मोहल्ला का, हमको ध्यान है तर्रेम का, जहां दर्जनों की संख्या में इन लोगों ने हमारे आर्म फोर्सेस के जवानों को शहीद कर दिया।
1: जी
0: क्या करना चाहते हैं? फाइनली एक ही लाइन है, बंदूक की नली से सरकार बनाना चाहते हैं। और इसको भी माओवाद पढ़े लोग जानते होंगे, हमारे बस्तर के लोगों से इससे कोई लेन देन नहीं था। हमारे बस्तर के लोगों को तो बचपने में ही ऐसे ही उठाकर ले गए और फंसा दिया इन सारे मामलों में।
1: जी
0: माओवाद अभी जो 3,000 मैंने आपको पुनर्वास बताए हैं उसमें से आधे से अधिक तो निरक्षर है भाई।
1: बिल्कुल
0: मैं आग्रह पूर्वक ये कहना चाहता हूं कि इन 50 सालों में, लगभग 40 सालों में, पूरे ही बस्तर को मीलों पीछे धकेलने का काम इन लोगों ने किया है।
1: जी
0: और इसीलिए केंद्रीय गृह मंत्री जी ने जो कहा कि आने वाले 5 सालों में हमको 50 सालों की दौड़ लगानी है और
1: जी
0: बस्तर को उस स्थिति में लाकर खड़ा करना है जो आज समूचा देश हमारा है।
1: जी सर,

0: विषय से अलग हटकर एक सवाल, ये अंतिम सवाल है कि छत्तीसगढ़ में डायल 112 आपातकालीन सेवा अभी तक 16 जिलों में थी और अब इस सेवा का विस्तार राज्य के सभी 33 जिलों में कर दिया गया है। इसके तहत अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त वाहन हर जिले में उपलब्ध कराए गए हैं। आपने भी यहाँ पर रायपुर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, केंद्रीय गृह मंत्री जी ने भी किया और अलग अलग जिलों में मंत्रीगणों ने इन वाहनों को रवाना किया है। इन वाहनों की क्या विशेषता है सर, ये जो नेक्स्ट जेन वाहन उपलब्ध कराए गए हैं, और नागरिकों को इस सुविधा से क्या लाभ मिलेगा, इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं।
1: ये वेल इक्विप्ड नए हमारे वाहन हैं, 400 की संख्या में हैं। पूरे प्रदेश में इनको वितरित किया गया है। 112 डायल करने पर वेल विद इन द टाइम, प्रिस्क्राइब टाइम जो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है, उसमें ये वाहन पहुंच जाएंगे, इस बात की उम्मीद है। इन वाहनों में अब ऊपर जो कैमरा लगा है वो 360 डिग्री घूम सकता है, सभी तरफ के दृश्यों को देख सकता है। इसमें अंदर इस गाड़ी की लोकेशन को ट्रेस करने के लिए तीन संसाधन हैं। एक गाड़ी के साथ अटैच्ड मोबाइल फोन है, स्मार्टफोन है, उसमें मोबाइल ट्रेसिंग होती है। गाड़ी के अंदर जीपीएस इनबिल्ट है, उसमें भी इस गाड़ी की ट्रेसिंग होती है। और तीसरा एक विषय है कि गाड़ी के डैशबोर्ड पर एक कंट्रोल पैनल लगा है, उसमें कंट्रोल सेंटर से कमांड आते हैं, तो उसमें भी लोकेशन की ट्रेसिंग होती है। अब ये गाड़ी जो हमारी है, इसकी ट्रेसिंग होना, और 112 जो कोई कॉल करेगा उसको अपने लोकेशन भेजने की जरूरत नहीं होगी, उसका लोकेशन ऑटोमेटिक आएगा, उसके नियरेस्ट 112 की जो हमारी गाड़ी खड़ी होगी वो जाकर असिस्टेंस देगा। वहां पर अगर कुछ घटना घटी है तो उस घटना स्थल को प्रिजर्व कर सके, थोड़ी देर के लिए, कुछ समय के लिए उसको सुरक्षित रख सके, इसके लिए भी इसके अंदर इक्विपमेंट है। इसमें एक पुलिस के जवान भी एक तैनात होगा ताकि किसी स्थिति के लिए हम समझ सके। 112 की इस व्यवस्था से जनता तक पूरे ही जिले में, पहले 16 जिलों में था, ये 33 जिलों में अब आने वाला है। मैं इसमें एक बात और आपसे कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये ड्रोन सिस्टम से भी जुड़े। आज गाड़ी सड़कों पर चलकर पहुंचती है, उससे पहले हमारा ड्रोन पहुंच जाए 112 कॉल करने पर, इस दिशा में भी हम लोग काम कर रहे हैं।
0: सर बहुत बहुत धन्यवाद, हम जानते हैं बहुत व्यस्त समय है आपका, लेकिन उसमें से भी आपने हमारे लिए वक्त निकाला, हम हृदय से आपका आभार व्यक्त करते हैं।
1: बहुत आभार आपका, बहुत आभार भी।
2: तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री श्री विजय शर्मा के साथ हमारी यह भेंटवार्ता। अब हम आपसे विदा लेते हैं, अगले हफ्ते एक नए विषय के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।
3: समसामयिक विषयों पर आधारित साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में अभी आप सुन रहे थे। इसमें आज आपने सुना छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री श्री विजय शर्मा जी से ली गई विशेष भेंटवार्ता। इस कार्यक्रम की प्रस्तुति थी विकल्प रंजन शुक्ला की। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। लीजिए अब सुनिए चित्रपट संगीत।

कार्यक्रम का पहला गीत सुनिए, लता मंगेशकर की आवाज़ में। शब्द रचना इंदिवर की, संगीत कल्याण जी आनंद जी का है और फिल्म का नाम है पिघलता आसमान।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: हीरा पन्ना फिल्म का गीत अभी आपने सुना, लता मंगेशकर और किशोर कुमार के युगल स्वरों में। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत के लिए संगीत आरडी बर्मन का था।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
0: कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए, नौशाद के संगीत से सजा हुआ। शब्द रचना मजरू सुल्तानपुरी की, आवाज है लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम है साथी।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

चित्रपट संगीत के कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में आनंद बख्शी का लिखा गीत। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है और फिल्म है आस पास।

कार्यक्रम के अंत में सुनिए मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में आनंद बख्शी की रचना। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है और फिल्म का नाम है आया सावन झूम के।

अभी आप सुन रहे थे चित्रपट संगीत। इसी कार्यक्रम में कुछ और गीत सुनिएगा 10:30 से। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 9:40 हुए हैं। लोक संगीत के कार्यक्रम में आज कलाकार हैं योगेंद्र कुमार बेलचंदन और साथी। इनके स्वर में पहले सुनिए गिरिवरदास मानिकपुर की यह रचना।

0: स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह। ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: योगेंद्र कुमार बेलचंदन और साथियों के स्वर में सुनिए ये पारंपरिक रचना।

0: लोक संगीत के कार्यक्रम में आज कलाकार थे योगेंद्र कुमार बेलचंदन और साथी। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 9:55 होने को हैं, अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश के 47 स्थानों पर रोजगार मेले के तहत 51,000 से अधिक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। पेट्रोल और डीजल के दाम में एक बार फिर हुई बढ़ोतरी और राज्य शासन ने सभी पेट्रोल डीजल पंपों पर ड्रम बोतल और जेरिकेन में ईंधन की बिक्री पर तत्काल रोक लगा दी है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश के 47 स्थानों पर रोजगार मेले के तहत 51,000 से अधिक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। इसी कड़ी में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा आज रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में केंद्रीय जनजाति कार्य राज्य मंत्री दुर्गादास उइके मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। रोजगार मेले में 257 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। इनमें दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अलावा डाक विभाग, वित्तीय सेवा विभाग, स्वास्थ्य सेवा विभाग और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में चयनित अभ्यर्थी शामिल हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम एक बार फिर से बढ़ गए हैं। पेट्रोल 89 पैसे और डीजल 96 पैसे महंगा हुआ है। रायपुर में आज सुबह से पेट्रोल 105 रुपये 36 पैसे प्रति लीटर तथा डीजल 98 रुपये 47 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। पिछले 10 दिनों में पेट्रोल और डीजल के दामों में ये बढ़ोतरी तीसरी बार हुई है। राज्य शासन ने कल जारी आदेश में सभी पेट्रोल डीजल पंपों पर ड्रम बोतल और जेरिकेन में ईंधन की बिक्री पर तत्काल रोक लगा दी है। हालांकि रबी खरीफ सीजन के लिए किसानों, कलेक्टर द्वारा चिन्हांकित शासकीय निर्माण कार्यों और अस्पताल मोबाइल टावर जैसी अत्यावश्यक सेवाओं को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है। इनके लिए अब अनुविभागीय अधिकारी के परीक्षण के बाद सुरक्षा मानकों के अनुरूप बिक्री की अनुमति होगी। पश्चिम एशिया में उत्पन्न परिस्थितियों के बीच छत्तीसगढ़ सरकार ने स्पष्ट किया है कि राज्य में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक दिन और बढ़ाकर कल 24 मई तक कर दी है। CBSE ने यह निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया है, जिससे वेबसाइट बाधित हो रही थी। माई भारत और जिला प्रशासन दंतेवाड़ा के संयुक्त तत्वावधान में आज दंतेवाड़ा जिले के शिक्षित और कुशल युवाओं के लिए विशेष प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर के माध्यम से चयनित स्थानीय युवाओं को NMDC दंतेवाड़ा में इंटर्नशिप करने का अवसर प्राप्त होगा। इस योजना के अंतर्गत चयनित होने वाले प्रशिक्षुओं को प्रतिमाह 9,000 रुपये का स्टाइपेंड प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त युवाओं को वित्तीय प्रोत्साहन के रूप में 6,000 रुपये का एकमुश्त ज्वाइनिंग बोनस भी देय होगा। ये पंजीकरण शिविर आज सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक NMDC DAV पॉलिटेक्निक कॉलेज जवांगा दंतेवाड़ा में आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल राजधानी रायपुर में कचना रेलवे ओवरब्रिज का लोकार्पण कर इसे आम जनता को समर्पित किया। साथ ही करीब 22 करोड़ रुपए की लागत से बने शंकरनगर खमाड़ी कचना मार्ग के चौड़ीकरण कार्य का लोकार्पण भी किया गया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री और लोक निर्माण मंत्री अरुण साव भी उपस्थित थे। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने

0: उपलक्ष्य में आकाशवाणी केन्द्र रायपुर द्वारा राजधानी में स्वरोत्सव संगीत समारोह का आयोजन किया गया। दो सत्रों में हुए इस कार्यक्रम के दौरान पद्मश्री मदन चौहान ने सुगम संगीत पेश किया। उन्होंने कबीर के सूफी कलाम गाए, वहीं श्वेता शिवाले द्वारा उप शास्त्रीय संगीत की प्रस्तुति दी गई। दोनों ही गायकों ने अपनी मनमोहक प्रस्तुतियों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में संगीत प्रेमी उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान स्वागत उद्बोधन आकाशवाणी केंद्र रायपुर के उप महानिदेशक और क्लस्टर प्रमुख वी राजेश्वर ने दिया, वहीं आभार प्रदर्शन कार्यक्रम प्रमुख पंकज मेश्राम ने किया। नीति आयोग के मार्गदर्शन में संचालित चैंपियंस ऑफ चेंज कार्यक्रम के अंतर्गत बीजापुर जिले के उसूर विकासखंड ने 2025 में अक्टूबर दिसंबर तिमाही में सेंट्रल इंडिया जोन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश के 47 स्थानों पर रोजगार मेले के तहत 51,000 से अधिक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। पेट्रोल और डीजल के दाम में एक बार फिर हुई बढ़ोतरी और राज्य शासन ने सभी पेट्रोल पंपों पर ड्रम, बोतल और जेरिकेन में ईंधन की बिक्री पर तत्काल रोक लगा दी है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक हिंदी समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। 10 बजे हैं, अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम नई फिल्मों से। इस कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं आतिफ असलम और तुलसी कुमार की आवाजों में। गीत कुमार का, संगीत रोचक कोहली का है और फिल्म है सत्यमेव जयते।

जॉली एलएलबी। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना जुबिन नौटियाल और नीति मोहन की आवाज़ों में। गीत जुनैद वासी का था और संगीत था चिरंतन भट्ट का। नई फिल्मों से ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से। अगले गीत से पहले एक सूचना सुनिए श्रोताओं। आगामी मंगलवार 26 मई 2026 को प्रसारित होने वाले हेलो किसानवाणी कार्यक्रम का विषय रहेगा खरीफ पूर्व कृषि यंत्रों का रखरखाव एवं संबंधित योजनाएं। इस विषय पर आपकी समस्याओं और जिज्ञासाओं के समाधान हेतु हमारे स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर विनय कुमार नायक, सहायक प्राध्यापक कृषि अभियांत्रिकी कृषि विज्ञान केंद्र पाहंदा दुर्ग। आप अपनी जिज्ञासा और शंका का समाधान पाने के लिए हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 400-3482, 400-3483 और 400-3484। रायपुर का एसटीडी कोड है 0771। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग 26 मई 2026 को 11:30 से 12 बजे तक की जाएगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण मंगलवार को ही शाम 7:30 पर किया जाएगा। हमें आपके फ़ोन कॉल्स का इंतज़ार रहेगा। सूचना समाप्त हुई और इस सूचना के बाद अब आपको सुनवाते हैं अरिजीत सिंह के स्वर में शब्बीर

0: लव यात्री फिल्म का ये गीत था आतिफ असलम की आवाज़ में। शब्द रचना मनोज मुंतशिर की थी और संगीत था तनिष्क बागची का। नई फिल्मों से इस कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं, इरशाद कामिल का लिखा हुआ। आवाज़ें हैं श्रेया घोषाल और हरिचरण की, संगीत एआर रहमान का है और फिल्म का नाम है अतरंगी।
1: धड़क भड़क दिल धड़क धड़क गया, अटक अटक ना माना, लट गई रे उलझ गए कैसे कोई हट गया, मन से लिपट अनजाना, वो नील अंग सा रूप रंग लगी।

अरिजीत सिंह के स्वर में अभी आपने सुना फिल्म धुरंधर का ये गीत। शब्द रचना इरशाद कामिल की थी और संगीत था शाश्वत सचदेव का। कार्यक्रम के अंत में सुनिए नीति मोहन के स्वर में फिल्म पद्मावत का ये गीत।

नई फिल्मों से ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। इस समय हमारी स्टूडियोज की घड़ी में सुबह के 10:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए चित्रपट संगीत।

0: बाप्पी लाहिरी के स्वर और संगीत से सजा और अनजान का लिखा गीत अभी आपने सुना फिल्म डिस्को डांसर से।
1: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

छैला बाबू फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार, आशा भोसले और साथियों की आवाजों में। गीत आनंद बख्शी का, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

0: आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए आशा भोसले की आवाज में आनंद बख्शी की रचना, संगीत राहुल देव बर्मन का है और फिल्म है शान।

आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब

0: करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर। कुछ बातें बड़ी दूर से सुनाई देती हैं।
1: फोन इन फरमाइश। नमस्कार सर, रोहतक हरियाणा से महेंद्र शाह रेडियो लिस्टन बोल रहा हूँ सर।
2: बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तोहफा लाए हैं।
0: कुछ आवाजें गीतों के संग खुल मिल जाती हैं।
3: गीत मेरे होठों को गया कोई।
0: कभी कोई किस्सा याद आता है। कभी अपने बारे में बहुत कुछ कहने को मन करता है।
4: मुझे कुछ कहना है,
5: मुझे भी कुछ कहना है।
0: श्रोताओं की बातों और उनकी पसंद के फिल्मी गीतों का अनूठा संगम है फोन इन फरमाइश। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल से हर रविवार सुबह 11:05 पर।
6: सुनिए।

चित्रपट संगीत के कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए आनंद बख्शी का लिखा गीत, संगीत राहुल देव बर्मन का, आवाजें हैं उषा उथप और साथियों की, और फिल्म का नाम है शालीमार।

हथकड़ी फिल्म का गीत अभी आपने सुना आशा भोसले और साथियों की आवाज़ों में। गीत मजरूह सुल्तानपुरी का था और संगीत था बप्पी लाहरी।

0: का और इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 11 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इनमें विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नव चयनित युवा शामिल हैं। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रोजगार मेला प्रधानमंत्री मोदी की रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता दर्शाता है।
2: यह रोजगार मेला रोजगार सृजन के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सार्थक अवसर प्रदान कर रहा है। देश भर में अब तक आयोजित 18 रोजगार मेलों के माध्यम से 12 लाख नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। यह 19वां रोजगार मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इसमें देश के सभी हिस्सों से चयनित नव नियुक्त उम्मीदवार केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और भागों में नियुक्त होंगे, जिसमें रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और उच्च शिक्षा विभाग सहित अन्य विभाग शामिल हैं। यह रोजगार मेला देश के विकास में युवाओं की भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में एक और बड़ा कदम है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर आज सवेरे कोलकाता पहुंचे। ये उनकी भारत की पहली यात्रा है। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध अधिक प्रगाढ़ होंगे। साथ ही व्यापार, रक्षा, ऊर्जा, सुरक्षा, प्रौद्योगिकी तथा हिंद प्रशांत रणनीति में सहयोग बढ़ेगा। अमरीकी राजदूत ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि विदेश मंत्री आज ही नई दिल्ली के लिए रवाना होंगे और प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। भारत रवाना होने से पहले श्री रूबियो ने मायामी में मीडिया से बात करते हुए भारत को एक महान सहयोगी और साझेदार देश बताया। भारतीय सेना की अधिकारी मेजर अभिलाषा बाराक को 2025 के संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार दिया गया है। मेजर अभिलाषा बाराक लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मिशन में कार्यरत हैं। मेजर बाराक वर्तमान में लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में महिला सहभागिता दल के कमांडर के रूप में भारतीय बटालियन में कार्यरत हैं। मेजर बाराक भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट भी हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को रिकॉर्ड 2,86,000 करोड़ रुपए का अधिशेष हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। यह रिजर्व बैंक के अब तक के सबसे अधिक लाभांश में से एक है। ये निर्णय कल मुंबई में रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की 623वीं बैठक में लिया गया। बैठक में बैंक ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान उसकी सकल आय पिछले वर्ष की तुलना में 26.42% बढ़ी, बैंक का व्यय 27.6% बढ़ा। मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता UCC के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कल सचिवालय में वेबसाइट ucc.mp.gov.in का शुभारंभ किया। इस पोर्टल के माध्यम से नागरिक, राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन प्रस्तावित यूसीसी पर अपने विचार और सुझाव साझा कर सकते हैं। प्रतिक्रिया देने की अंतिम तिथि इस वर्ष 15 जून है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महिला दल ने एवरेस्ट शिखर पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। ये उनका पहला अभियान था। 14 सदस्यीय दल में 11 महिला पर्वतारोही और 3 तकनीकी तथा सहायक कर्मचारी शामिल थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री नवीन के नए विचार, जोशीले नेतृत्व और संगठन के काम तथा प्रशासन दोनों की गहरी समझ ने उन्हें हर जगह बहुत सम्मान दिलाया है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज वृद्धि हुई है। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में तीसरी बार वृद्धि हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रुपये प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल का मूल्य 51 पैसे बढ़कर 92.49 रुपये प्रति लीटर हो गया है। आईपीएल क्रिकेट में आज

0: लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल रात सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से पराजित किया। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 11:05 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में पहला नगमा आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले और शमशाद बेगम की आवाज़ों में। शब्द रचना SH बिहारी की, संगीत OP नैयर का है और फिल्म का नाम है किस्मत।

आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 11:05 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में पहला नगमा आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले और शमशाद बेगम की आवाज़ों में। शब्द रचना SH बिहारी की, संगीत OP नैयर का है और फिल्म का नाम है किस्मत।

नया दौर फिल्म का गीत अभी आपने सुना आशा भोसले और शमशाद बेगम की आवाज़ों में। शब्द रचना साहिर की थी और संगीत था ओपी नैयर का।

हिमालय की गोद में। आइए सुने इस फिल्म का नगमा मोहम्मद रफ़ी और उषा मंगेशकर की आवाज़ों में। आनंद बख्शी के लिखे गीत के लिए संगीत कल्याण जी आनंद जी का है।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: कार्यक्रम का अगला नगमा सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज में, जिसे लिखा SH बिहारी ने, संगीत OP नैयर का है और फिल्म का नाम है कश्मीर की कली।

ये खनकती आवाज अब आप सुन सकते हैं और भी बेहतरीन क्वालिटी में, कभी ब्लूटूथ स्पीकर से कनेक्ट करके तो कभी हेडफोन पर लगाकर। आकाशवाणी रायपुर का प्रसारण अब उपलब्ध है मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTH पर। चाहे पास रहें या दूर, आपके करीब हर पल आकाशवाणी रायपुर।

0: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।
1: आए दिन बहार के, लीजिए सुनिए इस फिल्म का नगमा लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाजों में। शब्द रचना आनंद बख्शी की है और धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: अभी आप सुन रहे थे सदाबहार नगमे, आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। श्रोताओं, अब हम आपको सुनवा रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 19वें रोजगार मेले में नियुक्त पत्र वितरण समारोह का सीधा प्रसारण। इस कार्यक्रम को हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: नॉर्वे के साथ ग्रीन टेक्नोलॉजी और मैरीटाइम कोऑपरेशन की बात आगे बढ़ी है। यूएई के साथ स्ट्रेटेजिक एनर्जी और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप पर महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं। इटली के साथ डिफेंस, क्रिटिकल मिनरल्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऐसे अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पार्टनरशिप्स पर एग्रीमेंट हुए। साथियों, इन सारे एग्रीमेंट्स का सीधा लाभ भारत के युवाओं को मिलने वाला है और आपने देखा होगा कि सारे विषय एक उज्जवल समर्थ भारत के भविष्य की गारंटी लेकर के आते हैं, क्योंकि हर नया निवेश, हर टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप, हर इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन भारत के युवाओं के लिए नई अपॉर्चुनिटीज तो लेकर के आता ही है, लेकिन अनगिनत नए अवसर तैयार करता है। मेरे नौजवान साथियों, हमें याद रखना है ये वो सेक्टर्स हैं जिनमें आने वाला इन्वेस्टमेंट और पार्टनरशिप आने वाले 3-4 दशक की ग्लोबल ग्रोथ को ये शेप करने वाली इंडस्ट्री तैयार करेगी और निश्चित तौर पर भारत के युवाओं की इसमें बहुत बड़ी भूमिका होगी। साथियों, भारत किस तरह दुनिया का

एक भरोसेमंद सप्लाई चेन पार्टनर बन रहा है, इसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जैसे नेदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर कंपनी, आप में से बहुत लोग इस नाम से परिचित होंगे, एएसएमएल, एएसएमएल के साथ भारत की टाटा कंपनी का एग्रीमेंट है। भारत दुनिया के कुछ ही देशों में से एक है जिसके साथ इस कंपनी ने समझौता किया है। एएसएमएल टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच ये अकेला समझौता ही भारत में रोजगार के अनगिनत नए मौके बनाएगा और भारत को एक नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी में प्रवेश द्वार खोल देगा। ऐसे ही स्वीडन के साथ टेक्नोलॉजी और एआई पार्टनरशिप्स, यूएई का साथ सुपर कंप्यूटिंग कोऑपरेशन भारत की टेक्नोलॉजी क्षमता को बहुत मजबूत करने वाले हैं। इन एग्रीमेंट से युवाओं के लिए नए अवसर तो होंगे ही होंगे। साथियों, आज क्लीन एनर्जी, क्रिटिकल मिनरल्स, ग्रीन हाइड्रोजन और सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े सेक्टर्स भी बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। इनसे जुड़ी पार्टनरशिप एक नई इकोनॉमी के न्यू अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खोल रही है। स्वीडन, नॉर्वे और इटली जैसे देशों के साथ ग्रीन ट्रांजिशन और सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी में भी सहयोग बढ़ रहा है। ये भारत को क्लीन मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी फ्यूचर इंडस्ट्रीज में मजबूत करेगा। इसके अलावा भारत ने पोर्ट्स, शिपिंग और मैरिटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े एग्रीमेंट पर तेजी से काम किया है। यूएई और नॉर्वे के साथ पार्टनरशिप से भारत का शिप बिल्डिंग इकोसिस्टम मजबूत होगा। और आप तो जानते हैं, शिप बिल्डिंग यानी स्किल मैन पावर की बहुत जरूर पड़ती है। यानी भारत के इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस और स्किल वर्कर्स के लिए इतनी मांग बढ़ने वाली है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। कितने अवसर तैयार होंगे। साथियों, हर नई पार्टनरशिप के साथ हम भारतीय स्टार्टअप्स, रिसर्चर्स और यंग प्रोफेशनल्स के लिए दुनिया से जुड़ने के नए रास्ते बना रहे हैं। इससे भारतीय युवाओं को एडवांस एक्सपर्टीज, ग्लोबल मार्केट्स और ग्रोथ के नए मौके भी मिलेंगे। आज दुनिया उन देशों का सम्मान करती है जो इनोवेट करते हैं, जो बिल्ड करते हैं और जो बड़े स्तर पर डिलीवरी कर सकते हैं। भारत आज इन तीनों दिशाओं में तेजी से आगे बढ़ रहा है और इस परिवर्तन की सबसे बड़ी ताकत आप सब मेरे नौजवान साथी हैं, भारत का युवा है। और मैं दुनिया में जहां भी जाता हूं, मैं काफी समय चर्चा में भारत की युवा शक्ति की चर्चा करता हूं। साथियों, आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है।

ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है। आने वाले समय में भारत की 10 बड़ी सेमीकंडक्टर यूनिट्स दुनिया में अपना परचम लहराएगी। इनमें बड़ी संख्या में भारत के नौजवानों का सामर्थ्य होगा, भारत के नौजवानों की बुद्धि प्रतिभा होगी, भारत के नौजवानों का कमिटमेंट होगा और स्वाभाविक है, रोजगार तो है ही है। भारत आज शिप बिल्डिंग से लेकर शिप रिपेयरिंग और ओवरहॉलिंग का भी इकोसिस्टम विकसित कर रहा है। इसके लिए करीब 75,000 करोड़ रुपए 75,000 करोड़ रुपीज का निवेश किया जा रहा है। इसी तरह भारत में ही हम पूरा एमआरओ इकोसिस्टम यानी मेंटेनेंस, ओवरहॉल और रिपेयर फैसिलिटीज तैयार कर रहे हैं। इससे देश के एविएशन सेक्टर को बहुत मदद मिलने वाली है और भारत के युवाओं के लिए रोजगार का नया सेक्टर तो खुलना ही खुलना है। साथियों, भारत आज एक बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर है और हम इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ी कंप्लीट वैल्यू चेन भारत में ही बना रहे हैं। इसके लिए जो पीएलआई स्कीम चल रही है उससे देश में रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन हो रहा है और युवाओं को लाखों की संख्या में जॉब्स भी मिल रही है। साथियों, ऐसे अनेकों अभियानों पर भारत का पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर मिलकर बहुत बड़ा निवेश कर रहा है। ये निवेश देश के युवाओं को देश में ही जॉब्स दे रहा है, उनके सपने पूरे कर रहा है। एक सरकारी कर्मचारी होने के नाते, जो कि आज नियुक्ति पत्र के भरने के बाद आपकी पहचान बनने वाली कि आप एक सरकारी कर्मचारी हैं, तो उस नाते आपको भी हमेशा ये ध्यान रखना है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देश की कितनी बड़ी प्राथमिकता है। साथियों, भारत की ग्रोथ स्टोरी और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इसमें ये मानी हुई बात है, आप भी जानते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। जब गांव, छोटे शहर और दूर दराज के इलाके विकास से जुड़ते हैं तभी देश की प्रगति का लाभ ज्यादा लोगों तक पहुंचता है। पिछले 12 वर्षों में रेलवे, हाईवे, एयरपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, पोर्ट्स, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर कल्पना भर का तेज गति से विस्तार हुआ है।

विकास हुआ है, हर स्तर पर काम हुआ है। आज आप अपने क्षेत्र में किसी की भी दिशा में 100 किलोमीटर अगर जाएंगे तो भारत सरकार द्वारा कोई न कोई काम चलता हुआ नजर आएगा आपको। आज गांवों में भी बदलाव तेजी से दिखाई दे रहा है। कनेक्टिविटी बढ़ने से किसानों, छोटे व्यापारियों, विद्यार्थियों के लिए नए रास्ते खुले हैं। आज करोड़ों परिवारों को पक्का घर मिला है। यानी दुनिया के कई देश हैं जिनके पास टोटल घर होते हैं उससे अनेक गुना घर हम नए बनाते हैं। इतना ही नहीं, जो मेरा स्वच्छता का अभियान है उसको तो मैं कभी भी भूलने नहीं देता हूं लोगों को, और नहीं मैं भी भूलता हूं। उसमें शौचालय की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, हम उस पर भी बल दे रहे हैं। करोड़ों घरों तक आज बिजली पहुंची है, रूफटॉप सोलर एनर्जी, कितने नए नए वेंडर्स मैदान में आए हैं। अब देखिए, जल जीवन मिशन से नल से जल पहुंचाना, मैं अभी देख रहा था कि मैं चाहता था कि शहरों में पीएनजी के कनेक्शन बढ़े, तो मुझे प्लम्बर नहीं मिल रहे थे, कमी पड़ रही थी, क्योंकि जल जीवन के मिशन में कई सारी बड़ी संख्या में प्लम्बर वहां लगे हुए थे। अब इधर मुझे एनर्जी के लिए बड़े शहरों में पीएनजी के कनेक्शन तेजी से बढ़ाने थे। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कभी कभी तो लोगों की जरूरत पड़े तो लोग कम पड़ जाते हैं। साथियों, इन बदलावों का असर सिर्फ सामान्य नागरिकों की सुविधाओं तक सीमित नहीं रहता। गांव तक सड़क पहुंची तो मार्केट तक आना जाना आसान हुआ, बिजली की सुविधा बेहतर हुई तो छोटे उद्योग धंधे आगे बढ़ने लगे, गांव में भी एग्रीकल्चर में वैल्यू एडिशन होने लगा। पहले अगर वो लाल मिर्ची बेचते थे, अब बिजली आई तो लाल मिर्ची का पाउडर बनाते हैं, पाउडर बना करके पैकेज बनाते हैं, पैकेज बना करके बेचते हैं। तो गांव में भी छोटे छोटे छोटे छोटे उद्योग इसके कारण बढ़ते जाते हैं। डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ी तो गांव के लोग भी पूरे विश्व के साथ जुड़ रहे हैं, आधुनिकता से जुड़ रहे हैं। शहर और गांव का फर्क मिटता चला जा रहा है और इससे अर्थव्यवस्था की गति तेज हुई है। और इन सब का पॉजिटिव प्रभाव देश के नौजवानों के उज्जवल भविष्य की गारंटी बन जाता है। रोजगार तो निर्माण होते ही होते हैं, लेकिन राष्ट्र भी एक नए स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ जाता है, लाखों लोगों को नए मौके भी मिल जाते हैं। साथियों, आज भारत के युवा के पास जिस तरह से आगे बढ़ने के, अपने सपने पूरा करने के मौके हैं, ऐसा अवसर पहले नहीं मिला है। मैं किसी का दोष नहीं कर रहा हूं, लेकिन हकीकत है कि आज बहुत तेज गति से सब हो रहा है, विशाल फलक पे हो रहा है, विविधताओं से भरा हो रहा है। आज मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप, डिजिटल सर्विसेज, रेलवे, डिफेंस, इतना ही नहीं स्पेस, ऐसे अनेक क्षेत्रों में अनगिनत अवसर हमारा इंतजार कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा युवा नए अवसरों का लाभ उठा सके और देश के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का पूरा मौका मिले। इसलिए स्किल डेवलपमेंट, इंडस्ट्री लिंक्ड एजुकेशन और फ्यूचर टेक्नोलॉजी पर लगातार जोर दिया जा रहा है। आईआईटीज को मॉडर्न बनाया जा रहा है,
नेस

नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को मजबूत किया जा रहा है। पीएम सेतु जैसे अभियान इसी दिशा में काम कर रहे हैं। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में देश में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप की एक नई संस्कृति विकसित हुई है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। देश में 2,30,000 से ज्यादा, ये आंकड़ा याद रखिए, 2,30,000 से ज्यादा रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स हैं और उसमें भी दो चार नौजवान भी जुड़े हुए होते हैं। अहम बात यह है कि ये बदलाव सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं है और मुझे इसका सबसे ज्यादा आनंद है। आजकल तो टीयर टू और टीयर थ्री शहरों के युवा भी बहुत बड़ी संख्या में स्टार्टअप और इनोवेशन की दुनिया में अपना ताकत दिखा रहे हैं, उनके सामर्थ्य की नोट लेनी पड़ रही है। ये परिवर्तन अब देश की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस बदलाव में हमारी नारी शक्ति की भूमिका भी लगातार बढ़ रही है। आज बड़ी संख्या में विमेन लेड स्टार्टअप्स, ये जब सुनते हैं ना मन गर्व से भर जाता है। मैं जब दुनिया के लोगों को बताता हूं कि हमारे यहां स्टार्टअप में महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका बढ़ रही है, बहुत बड़ी मात्रा में महिलाएं आगे आ रही है। मुद्रा योजना के तहत करोड़ों महिलाओं को फाइनेंशियल सपोर्ट मिला है। पीएम स्वनिधि जैसी योजनाओं ने भी लाखों महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का अवसर दिया है। आज गांवों में, छोटे शहरों में पहले से ज्यादा महिलाएं अपने दम पर नए काम शुरू कर रही हैं। साथियों, नीतियां और निर्णयों के इस अभियान के बीच आपको एक और बात याद रखनी है। किसी भी व्यवस्था की असली ताकत उसके लोग होते हैं, जनता जनार्दन की शक्ति होती है, जनशक्ति होती है और जनशक्ति ही तो राष्ट्र शक्ति बनती है। आप सभी जिस व्यवस्था का हिस्सा बनने जा रहे हैं उसका सीधा संबंध करोड़ों देशवासियों के जीवन से है, करोड़ों देशवासियों की आशा आकांक्षाओं से है। सरकारी नौकरी लोगों के जीवन को आसान बनाने का माध्यम ही होती है। आप जिस भी विभाग में काम करेंगे वहां आपके व्यवहार, संवेदनशीलता और काम करने के तरीके का बहुत महत्व होगा। देश ने आप पर भरोसा किया है, अब ये जिम्मेदारी आपकी है कि आप अपने काम से, अपने आचरण से, अपनी वाणी से, अपने व्यवहार से उस भरोसे को और मजबूती देंगे। देशवासियों के हृदय में एक नया विश्वास भर जाएगा, आपको मिलते ही वो नई आशा के साथ आगे बढ़ेगा। इसलिए हर युवा कर्मयोगी अपने काम को जिम्मेदारी की तरह देखें और मेरे लिए तो आप बहुत कुछ हैं। पहले जमाने में हम सुनते थे ना, सहस्त्र बाहु वाले फलाने, सहस्त्र बाहु वाले ढींकने,

0: आज सरकार के बाहु आप ही हैं, सरकार का सामर्थ्य आप ही हैं। जो पहले से सरकार में है वो भी है, जो नए आ रहे हैं वो भी है। आज भारत के लोगों की आकांक्षाएं बहुत बढ़ रही हैं और मैं इसे विकास की पॉजिटिव साइन मानता हूं। हमें अपने देश के लोगों के एस्पिरेशंस को समझना भी है और उसके हिसाब से उतनी ही तेज गति से काम भी करना है। ऐसे में पब्लिक सर्विस में आने वाले युवाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। आपको लगातार सीखते रहना होगा, खुद को नई टेक्नोलॉजी, नई सिस्टम और नई जरूरतों के हिसाब से तैयार करना होगा। इसमें आपको आईगॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म से बहुत मदद मिलेगी। कर्मयोगी प्रारंभ जैसे मॉड्यूल से आपको अपनी जिम्मेदारियां समझने में बहुत सहूलियत होगी। मेरा आपसे आग्रह है कि इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। साथियों, आज भारत का युवा दुनिया के हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहा है। यही स्पिरिट, यही ऊर्जा पब्लिक सर्विस में भी दिखाई देनी चाहिए। विकसित भारत ऐसे ही युवाओं के प्रयास से बनेगा जो अपने काम को देश सेवा का माध्यम मानते हैं, जन सेवा का माध्यम मानते हैं। और हमारे तो यहां तो कहा, जन सेवा ही प्रभु सेवा। मुझे पूरा विश्वास है आज नियुक्ति पत्र पाने वाले हमारे युवा साथी भारत के विकास यात्रा को नई गति देंगे। आपके काम, आपके फैसलों से विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि होगी। और आपको वो मंत्र कभी भूलना नहीं है, हमारा मंत्र है नागरिक देवो भव। नागरिक देवो भव, नागरिक का कल्याण ही हमारा कर्तव्य है। मैं एक बार फिर आज नियुक्ति पत्र पाने वाले सभी युवाओं को आगे के जीवन के लिए, देश सेवा के इस अवसर को निभाने के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: देखतुल, अभी आप माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश भर के 47 स्थानों पर आयोजित 19 रोजगार मेले के अंतर्गत 51,000 से अधिक युवाओं को रोजगार पत्र वितरित करने के अवसर पर आयोजित समारोह और माननीय प्रधानमंत्री का संबोधन सुन रहे थे।

0: अभी आप सुन रहे थे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 19वें रोजगार मेले में अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरण का सीधा प्रसारण। इसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे थे। मीडियम वेव 305.81 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्ज़ और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त दोपहर के 12 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम आकाशवाणी संग्रहालय से। इसके अंतर्गत सुनिए हमन आन छत्तीसगढ़िया, इस क्रम में पंडामी जनजाति पर केंद्रित कार्यक्रम।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है विशेष रूपक श्रृंखला हमान छत्तीसगढ़िया।

0: छत्तीसगढ़ का एक संभाग बस्तर और बस्तर का एक भूभाग माड़ियान। माड़ियान जहां हरे भरे जंगलों का दिलकश लिबास पहने सदियों से अपनी जगह अटल खड़े हैं ऊंचे बहुत ऊंचे दुर्गम पहाड़। गाती गुनगुनाती हवाएं, गूंजता जंगल, नाचते वन्य पशु और चहकते परिंदे, प्रकृति का ये संगीत हमेशा रस घोलता है उस मानव के जीवन में जो कहलाता है कोई तोर। स्वच्छंद उन्मुक्त निश्चल जीवन का धनी कोई तोर।
1: कोई तोर को आमतौर पर गोंड संज्ञा से जाना और पहचाना जाता है। अपनी आदिम सभ्यता और अनूठी जीवन शैली के कारण कोया भी कहलाते हैं ये लोग।
0: नारायणपुर, बस्तर, दंतेवाड़ा और बीजापुर जिलों के पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में दूर दूर तक फैली दुर्गम जटिल और अनबूझी माड़ियान पहाड़ियों के निवासी कोई तोर कब तराइयों और समतलों में उतर आए कह पाना कठिन है।
1: दंतेवाड़ा, बीजापुर, कोंटा, सुकमा आदि क्षेत्रों में जो लोग उतर गए वे कहलाए दंडामी माड़िया।
2: दंडामी माड़िया भी मूलतः गोंड है। अगर उत्पत्ति के हिसाब से हम देखें तो हर जनसमूह अपनी उत्पत्ति के कुछ मूलभूत कारक बयान करता है, जिनमें से संभव है कि सबसे पहले हमारा संपर्क प्रकृति से हुआ था। तो प्रकृति से संपर्क के कारण अगर देखा जाए तो हमने प्राकृतिक शक्तियों को अपनी उत्पत्ति का मूल कारण माना। कभी हमने सूर्य को, कभी हमने चंद्रमा को, कभी हमने धरती के इर्द गिर्द जो कुछ भी हमारे प्राकृतिक आवरण में था, अग्नि थी, वायु था, उससे अपनी उत्पत्ति को जोड़ने की चेष्टा की। तो अगर गौर करें तो लोक अंचल में जनजातीय समूह और जन सामान्य में भी इस

तरह की प्रवृत्ति देखने को मिलती है कि उनके देवी देवता खासतौर प्राकृतिक शक्तियों से अभिप्रेत होते हैं, प्राकृतिक शक्तियों के तौर पे पहचाने जाएं, सूर्य के तौर पर, चंद्रमा के तौर पर, वायु के तौर पर, जल के तौर पर, इवन पाषाण के तौर पर भी ऐसे देवी देवताओं को देखा जा सकता है। लेकिन दंडामी माड़िया के विषय में मैं खास तौर पे कहना चाहूंगा कि इस जनजाति के मूल देवता के रूप में हम भगवान शंकर को या लिंग के देवता के रूप में भगवान शंकर को चीन सकते हैं, क्योंकि वे खास तौर पे आदि देवता के रूप में इनकी पहचान करते हैं। जहां तक देवी देवताओं को प्रकृति से जोड़कर पहचानने की बात है, उसके इतर गोत्र जो है वो किसी भी परिवार के मूल को खोजने जैसा है। तो दंडामी माड़िया में ही नहीं, लगभग सभी जनजातियों में अपने परिवार के मूल को किसी पूर्वज विशेष, किसी वृक्ष विशेष, किसी शक्ति विशेष

0: को प्रकृति से जोड़कर पहचानने की बात है। उसके इतर गोत्र जो है वो किसी भी परिवार के मूल को खोजने जैसा है। तो दंडानी माड़िया में ही नहीं, लगभग सभी जनजातियों में अपने परिवार के मूल को किसी पूर्वज विशेष, किसी वृक्ष विशेष, किसी शक्ति विशेष से जोड़कर पहचाना जाता है। उदाहरण के लिए आप नाग, बाघ या किसी पक्षी विशेष से अपने कुल का नाम, अपने गोत्र का नाम वर्णित करते हैं, या किसी पहाड़ विशेष के नाम पर अपने गोत्र का नाम, या किसी पक्षी विशेष के नाम पर अपने गोत्र का नाम रखते हैं। तो मेरा विचार यह है कि गोत्र किसी परिवार विशेष के मूल स्रोत को इंगित करता है। देवी देवता उस परिवारों के संकलन यानी जनजाति समूह के किसी पराशक्तिमान स्वरूप देवी देवताओं को प्राकृतिक शक्तियों के तौर पर पहचानने की कवायद के सिवा कुछ भी नहीं है।
1: लाल तांबे सा रंग, द्रविड़ नयन नक्श, चेहरे पर भोलेपन और निश्चलता के भाव, भरी भीड़ में भी पहचाना जा सकता है दंडामी माड़िया।
2: कमर से जांघों तक शरीर का अधो भाग धोती नुमा सफेद कपड़े से ढका हुआ, चौड़े कंधे पर गमछा, सिर पर सफेद पगड़ी। सबसे विशेष बात ये कि तीनों कपड़े बिना सिलाई के।
1: दंडामी माड़िया पुरुष अपने कानों की ऊपरी गोलाई में बालियां पिरोकर पहनते हैं, हाथ की कलाई में बाड़ा, सामान्य व्यक्ति की कलाई में गिलट का, और कलाई संपन्न की हुई तो बाड़ा चांदी का।
2: स्त्रियां साड़ी लपेट कर कंधे से लेकर जांघों और घुटनों तक अपना शरीर ढकती है। पीतल गिलट और रुपए से बनी टिकलियों की माला को नेड़े कहते हैं। पीतल की गोल या चौकोन टिकलियां या एक रुपए के सिक्कों को काले धागों में पिरोकर नेड़े को गले में पहनती है, जो इनका श्रृंगार भी है और तन ढकने का साधन भी।
1: बालों में कंघियां खोसना और फुंदड़ियां पहनना शौक माना जाता है। कान में कर्णफूल, क्यों पड़गी, नाक में फूली मोसोकुटा, तो हाथों में बाड़ा और चूड़ियां। चूड़ियों को गाजू नाम से जाना जाता है, तो अंगूठी कहलाती हैं कई तप्पर। पैरों में पहनी जाती हैं पैड़ी, और पैर की उंगलियां काल तप्पर यानी बिछिया से संवारी जाती हैं।
2: आम तौर पर ये सभी श्रृंगार विशेष अवसरों पर ही किया जाता है, पर्व त्योहार या मेले मंडई। लेकिन यदि मौका शादी ब्याह का है तो फिर सजना सवरना जरूरी हो जाता है।
1: दंडामी माड़िया एक पत्नी विवाह को महत्व देते हैं, लेकिन यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक पत्नियां रखता है तो उस पर पाबंदी भी नहीं। विवाह को गोंडी में पेंडुल कहा जाता है।
2: एक ही गोत्र में शादी करना वर्जित है। कई गोत्र होते हैं इनके, जैसे मारवी, कुहरामी, सोड़ी, बरकामी, कवासी आदि। ये सब गोत्र भी अलग अलग कई गोत्रों में बटे हुए हैं।
1: सगोत्र में विवाह वर्जना के कारण दादा भाई वंश में शादी नहीं होती। हाँ, माँ पक्ष में मामा के घर अको मामा में पेंडुल किए जा सकते हैं। एक तरह से मामा की बेटी पर अधिकार पूर्वक पेंडुल पहली पसंद माना जाता है।
2: माँ बाप और बड़े बुजुर्गों की सहमति से होता है ताल बना पेंडुल यानी मंगनी विवाह। अगर लड़का लड़की एक दूसरे से प्रेम करते हो तो भी समाज युवा मन के रागात्मक संबंधों को मान्यता देता है और पोइस मीरतोर यानी प्रेम विवाह की इजाजत भी देता है।
1: विवाह चाहे तालपना पेंडुल हो, पोइस मीरतोर या अन्य, किसी की बेटी को अपनी बहू बनाने पर विवाह खर्च वर पक्ष द्वारा कन्या पक्ष को देना ही पड़ता है।
2: विवाह की रस्म की शुरुआत तो कन्या के घर मांडो सजने, देव पूजन, अतिथि सत्कार से होती है। लेकिन दंडामी माड़िया समाज दुनिया के अन्य समाजों की तरह लड़की वालों को अनावश्यक खर्चों में भी नहीं डालता।
1: एक प्रकार के विवाह में कन्या वर के द्वारा विवाह पूर्व ही सर्वसम्मति से लड़के के घर ले आई जाती है, और संपूर्ण विवाह संस्कार वर के घर ही संपन्न किए जाते हैं।
2: विपन्नता की स्थिति में भी दंडामी माड़िया समाज किसी पुरुष को गृहस्थ आश्रम से वंचित नहीं करता। ऐसी स्थिति में लड़के को लड़की के घर में रहकर विवाह खर्च के एवज में काम करना और खटना पड़ता है, और लड़की के माता पिता की संतुष्टि पर ही पेंडुल की अनुमति मिलती है, जो साधारण से समारोह में संपन्न होता है।
1: विवाह की रस्म तालपना यानी मंगनी से शुरू होती है। योग्य कन्या मिलने पर लड़के का पिता अपने परिवार और समाज के मान्य लोगों के साथ कन्या

0: के घर दाल बना के लिए जाता है।
1: वर पक्ष द्वारा प्रस्तुत चावल, मुर्गा, महुआ आदि की भेंट वधु पक्ष के द्वारा सहज स्वीकारी गई, तो समझो बात पक्की। फिर आदर सत्कार का दौर, विवाह का दिन, खर्च, तिथि आदि की बातें तय होती है।
0: शादी के दिन लड़के वाले, सगे संबंधी और गांव के लोग तयशुदा विवाह खर्च लेकर वधु के घर जाते हैं, जहां उनका मान सम्मान होता है। ऐसे मांगलिक अवसर पर मांसाहार और मदिरा पान करना कराना आवश्यक होता है। बगैर इन सब के आनंद, उल्लास और नृत्य संगीत का माहौल कैसे बन पाएगा।

0: शादी विवाह के समय ही नहीं, हर अवसर पर दंडामी माड़िया अपने इष्ट देवी देवताओं की पूजा करना अपना धर्म समझते हैं। पर्व त्योहारों में देव पूजन, जात्रा मंडई में देव पूजन और परिवार में बच्चे के जन्म पर भी वे अपने देव को कृतज्ञता से याद करते हैं।
1: मृत्यु के सत्य को स्वीकारते दंडामी माड़िया पुनर्जन्म पर भी विश्वास करते हैं। अधिकांशतः शव दफनाए जाते हैं, लेकिन कुछ क्षेत्रों में शव का दाह कर्म भी देखने को मिलता है, जो शायद बाह्य जगत के संपर्क का प्रभाव हो सकता है।
0: दंडामी माड़िया मृत व्यक्ति का स्मृति स्तंभ निर्मित करते हैं। ये स्तंभ ज्यादातर लकड़ी के ही होते हैं। इन खम्भों पर काष्ठ शिल्प किया जाता है।
1: इन काष्ठ स्तंभों पर वंश और गोत्र संबंधी प्रतीक चिन्ह बनाए जाते हैं और बड़ी कलाकारी से उकेरी जाती है वो चीजें जो मृत व्यक्ति की प्रिय या जीवनोपयोगी रही हो।
0: प्रत्येक गोत्र के अपने देवी देवता होते हैं, हर वंश के अपने उपास्य भी, गांव के भी अपने देवी देवता होते हैं। हर जगह देव विद्यमान हैं और आराध्य की कृपा के अभाव में न कुनबा सुखी न ही गांव खुशहाल।
1: शक्ति स्वरूपा देवी माँ दंतेश्वरी सदियों से संपूर्ण बस्तर की आराध्य रही हैं। शक्ति के उपासक राजाओं की दंतेश्वरी माई जनजातीय लोगों के साथ साथ बस्तर में निवासरत इतर समाजों के द्वारा भी पूजी जाती हैं।
0: माई जी का मुख्य धाम है दंतेवाड़ा, जो एक शक्ति पीठ है। पूर्ण सलीला शंखिनी डंकिनी के संगम पर स्थित है माई जी का भव्य और ऐतिहासिक मंदिर। इस मंदिर के कारण दंतेवाड़ा की ख्याति देश देशांतर तक प्रसारित है।
1: प्रकृति के उपासक दंडामी माड़िया अन्य देवी देवताओं की उपासना भी करते हैं। लिंगोदेव अनालपेन शिव शंभू का रूप है तो गुज्जी डोकड़ी पार्वती का प्रतीक। कुछ दंडामी माड़िया विष्णु रूप हुंगाल वेलाल की पूजा करते हैं। माउली माई भी इनकी पूज्य मानी जाती है और आंगा देव भी।
0: इन देवी देवताओं के मंदिरों का निर्माण नहीं किया जाता, गांव के किसी छोर पर या पहाड़ी ढलान पर देवगुड़ी बना ली जाती है। वहां देव का प्रतीक प्रतिष्ठित कर लिया जाता है। गांव के गायता सिरहा पुजारी के माध्यम से पूजा विधान संपन्न किए जाते हैं।
1: दंडामी माड़िया बूढ़ा देव के प्रति भी अटूट श्रद्धा रखते हैं। उनके कुल या कुनबे के आराध्य हैं बूढ़ा देव। उनके कुल गोत्र का पहला व्यक्ति है जिसने अपने भौतिक शरीर का त्याग कर दिया और उसकी जीवात्मा है बूढ़ा देव, जो पूज्य है उपास्य है। बूढ़ा देव पूरे कुनबे के संरक्षक व तारणहार हैं।
0: बूढ़ा देव को प्रतीक स्वरूप साजा वृक्ष के मूल में विधिवत स्थापित किया जाता है। अलग अलग कुल गोत्र या वंश के अपने देव बूढ़ा देव होते हैं, जिनकी स्थापना भले ही अलग हो परंतु पूजा विधान सभी का एक समान होता है।
1: दंडामी माड़िया भूत प्रेत और जादू टोना आदि पर भी विश्वास करते हैं। रोग ग्रस्तों या कष्ट में देवधामी के द्वारा वे उससे छुटकारा पाने की आशा रखते हैं। वो मानते हैं कि बीमारी

0: दर्द या आपदा देवी प्रकोप के कारण ही होती है।
1: पूजा अर्चना के अवसर होते हैं जात्रा, मेले मंडई, विवाह आदि मांगलिक प्रसंग। रोग शोक से मुक्ति और जीवन में सुख की प्राप्ति हो जाए तो अपने आराध्य के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का तरीका है पूजा।
0: दैवीय प्रकोप मानकर प्राकृतिक आपदाओं से रक्षा के लिए भी देव की अभ्यर्थना की जाती है। इस विश्वास के साथ कि देवी देवता प्रसन्न रहेंगे तो सुखी संपन्न रहेगा कुनबा, समाज और सारा गांव।
1: गांव की सुरक्षा के लिए भी गांव की सरहद पर देवताओं के प्रतीक स्थापित किए जाते हैं। समय समय पर इन स्थलों पर भी पूजा पाठ करके दंडामी माड़िया खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं।
0: घने जंगलों और पर्वतों के तिलस्म के बीच छोटी सी बाड़ी के घेरे में या किसी पेड़ के नीचे कपड़े का ध्वज लहराते बांस या बल्लियां दिखलाई पड़े तो समझो वहां देव का वास है और आसपास ही है कहीं गांव।
1: दंडामी माड़ियों के गांव भी बहुत बड़े नहीं होते, 5-10 या बहुत हुआ तो 15 झोपड़ियों का नन्हा सा गांव। एक गांव से दूसरे गांव के बीच मीलों का फासला, पहाड़ी ढलान या दामन का वो हिस्सा जहाँ से होकर नदी नाला या झरना कल कल बहता हो, गांव की बसाहट का सही स्थल होता है।
0: कुछ गिने चुने इलाकों को छोड़ दें तो ज्यादातर घने जंगलों के बीच ऊबड़ खाबड़ कच्ची सड़क या सर्पीली पगडंडियां दिखलाई पड़ती हैं, जिन पर कर्मठ माड़िया स्त्रियां पैदल चलती मिलेंगी सिर पर टोक न लिए।
1: वह दृश्य अद्भुत होता जब किसी माड़ीन की पीठ पर कपड़े की झोली में बंधा नन्हा बच्चा भी मार्ग पर ममता मई माँ का भोला सहयात्री बन जाता है। वर्षा, धूप या छाव, माँ और बच्चे में कोई फर्क नहीं रखते।
0: कांधे पर कांवड़ लादे या टंगिया लटकाए पुरुष भी इनके साथ लंबी लंबी यात्राएं पैदल ही करते हैं। ये सफर होते हैं गांव से गांव तक या उस स्थान तक जहां भरता है साप्ताहिक बाजार।
1: छोटे छोटे हाट बाजारों के लिए बड़ी लंबी यात्राएं, वो भी पैदल, जहां कई कई दिनों के श्रम से संग्रहित वनोपज बेचकर दंडामी माड़िया अपनी जरूरत की ऐसी छोटी मोटी चीजें खरीद लेते हैं जो उनके गांव में नहीं मिलती।
0: वनोपज इकट्ठा करने का काम स्त्रियों का होता है। 4-6 के झुंड में स्त्रियां इमली, महुआ, टोरा, चिरौंजी आदि जमा करती हैं और पुरुषों के सहयोग से या स्वयं स्त्रियों के द्वारा इन्हें बाजार तक लाया जाता है।
1: वनोपज या बहुत हुआ तो मंडियां या धान बेचकर खरीदा क्या जाता है? नमक, तंबाकू, लूगा, कपड़ा, शौक हुआ तो साबुन, तेल वगैरह। पहले एक पायली चिरौंजी के एवज में एक पायली नमक मिल गया तो बाछे खिल जाया करती। आज परिवर्तन आया जरूर है पर आर्थिक शोषण बरकरार है।
0: वनों पर आश्रित जीवन जीते दंडामी माड़िया खेती भी करते हैं, खासकर धान की। अधिकांश भूमिहीन हैं जो घर की बाड़ी में थोड़ी बहुत सब्जी उगा लेते हैं, वरना मजदूरी के अलावा उनके पास अन्य विकल्प नहीं है।
1: बैलाडीला लौह अयस्क परियोजना ने इन्हें साधारण मजदूर से कुशल श्रमिक बनाने का मौका देकर कुछ लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठाया है।
0: पुरुषों को मछली पकड़ने का खासा शौक होता है, मेहनत मजूरी मन हुआ तो की, वरना गरी डांग उठाए और जा बैठे किसी ताल, तड़ाग या नदी किनारे।
1: इनके आंगन में सल्फी का पेड़ हो तो समझो वरदान मिल गया। ताड़ी के वृक्ष की तरह सल्फी का पेड़ ऊंचा होता है, जिसके शाखों के पास हल्का सा तराश कर निथरे हुए रस को मिट्टी के छोटे पात्र या तूंबे में जमा किया जाता है।
0: सल्फी अपने अपने परिवार के लिए या कोई सगा संबंधी घर आ गया तो उसके सत्कार के लिए, कुछ ज्यादा निथर गई तो 4 पैसे की आमदनी और चंद घंटों का सुरूर।
1: अच्छे तीरंदाज दंडामी माड़िया तीर धनुष के जरिए हिंसक पशुओं से अपनी रक्षा भी करते हैं और अन्य जानवरों को अपना शिकार भी बनाते हैं। शिकार पर सख्त पाबंदी के बावजूद नियम कानून टूट ही जाते हैं।
0: पहले पारद यानी सामूहिक शिकार किया जाता था। पारद में

0: आसपास गांव परगना के बीसियों पारदिया तीरधनुष और टंगिया आदि शस्त्रों से लैस घने जंगलों में कई कई दिन जानवरों को घेर कर मारते।
1: खरगोश, हिरण, चीतल, कोडरी और सुअर से लेकर विशालकाय गंवर तक जो भी जानवर इनके घेरे में फंस गया वह बच ही नहीं सकता। गंवर का शिकार कर लिया मानो रण विजय कर ली।
0: गंवर के सिंह तब से आज तक बड़े कीमती होते हैं। राजे महाराजे, जमींदार और ओहदेदारों के घर मढ़े हुए गंवर सिंह शोभा ही नहीं शान का प्रतीक थे और आज भी हैं। पारद पाबंदी के चलते समाप्त प्रायः परंपरा है, लेकिन चोरी छिपे पारद आज भी हो जाता है तो कोई आश्चर्य नहीं।
1: उन्मुक्त और निश्चल जीवन व्यतीत करते दंडामी माड़िया आज में जीते हैं और कल की चिंता नहीं करते। सहज सरल जीवन शैली के कारण इनकी जरूरतें भी बहुत कम है। ज्यादातर मिलनसार प्रकृति के दंडामी माड़िया क्षणिक आवेश में अगर कोई अपराध कर बैठे तो छिपाते नहीं और उसे कबूल करते हैं। फिर पंचायत या कानून जो सजा दे उन्हें स्वीकार्य होती है।
0: गांव में इनकी अपनी जाति पंचायत होती है जिसका मुखिया पेद्दा होता है। फिर अन्य होते हैं पारा, मुखिया, कोटवार आदि। ग्राम स्तर के अलावा परगना स्तर पर भी पंचायतें होती हैं जिनके अपने मांझी मुखिया होते हैं। आधुनिक पंचायत से इस पंचायत की अपनी अलग मान्यता होती है।
1: तीज त्योहारों पर कुनबे कुटुम्ब से उठकर समाज की प्रधानता और समाज प्रमुखों का हस्तक्षेप या सलाह का सम्मान हर कोई करता है।
0: पर्व या त्योहार को गोंडी में पंडुम कहते हैं। इनके अधिकांश पर्व प्रकृति और मौसम से जुड़े हैं। माटी माँ, धरती माँ अपने अंक में बीज स्वीकारने के बाद अच्छी फसल देती है। बोने का पहला बीज धरती माँ को अर्पित करने बीजा पंडुम मनाया जाता है। यूं ही नहीं, पूजा पाठ विधि विधान के साथ।
1: विधाता प्रसन्न रहे, फसल अच्छी हुई तो घर परिवार गांव खुशहाल। तो इस अवसर पर नया खानी, फसल कटने पर नवान्न खाने का त्योहार, लेकिन बिना धरती माँ के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित किए ये भी संपन्न नहीं हो सकता।
0: टिकरा या मरहान की धान जल्दी पकती है तो उसका त्योहार इकमा पंडुम और गभार या देर से पकी फसल के लिए कोड़ता पंडुम। धान कट गई, भारे बंधे और कोठारों में कूपे सज गए तो समझिए लक्ष्मी घर आ गई।
1: और लक्ष्मी का स्वागत किया जाता है दियारी पंडुम में। वैसे दियारी बस्तर की हर जनजाति और ग्रामीणों का साझा त्योहार माना जाता है जो प्रायः हर क्षेत्र में मनाया जाता है।
0: बस्तर का सबसे बड़ा और प्रमुख पर्व है दशहरा, जो राजशाही के जमाने से पारंपरिक पूजा विधान और धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस अवसर पर सारा बस्तर जगदलपुर में सिमट आता है।
1: 75 दिनों तक आयोजित पर्व के विविध रीति रिवाजों और अनुष्ठानों के लिए प्रत्येक जाति, समाज, गांव और परगना के लोगों के कार्य विशेष और उत्तरदायित्व सदियों से निर्धारित है।
0: दशहरे का प्रमुख आकर्षण होता है लकड़ी का विशाल रथ। परिक्रमा के समय रथ पर देवी माँ दंतेश्वरी का छत्र शोभित किया जाता है। रथ को खींचना पुण्य का काम समझा जाता है, इसलिए सभी इसमें शामिल होते हैं।
1: विजयदशमी को भीतर रैनी रस्म में रथ नगर सीमा पर स्थित कुम्हड़ा कोट ले जाया जाता है और एकादशी को बाहर रैनी कार्यक्रम के तहत रथ वापस राजमहल स्थित दंतेश्वरी मंदिर लाया जाता है।
0: इन दोनों प्रमुख दिनों में रथ खींचने का अधिकार किलेपाल परगना के दंडामी माड़ियों का होता है। इस अवसर पर सम्मान से मदोन्मत्त माई जी की श्रद्धा में लीन माड़ियों का उत्साह चरम पर होता है।
1: बाजे गाजे, ढोल नगाड़े, आतिशबाजी के साथ शोभा यात्रा में हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ में सबसे आगे होते हैं झूमते गाते नाचते दंडामी माड़िया नर्तक। इस गवर सिंह माड़िया नृत्य का अधिकार माई जी ने केवल इन्हीं को दिया है।

ये नृत्य इनका प्रमुख नृत्य है जो उनके जंगल से लेकर देश भर में आयोजित लोकोत्सवों और दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड तक में दंडामी माड़िया संस्कृति

0: नृत्य को प्रसिद्धि दिलाता आया है, अन्य नृत्य सामान्य से हैं।
1: पिछले कुछ दशकों से इनकी एक प्रस्तुति लोकप्रिय हुई है, गंवर मार नृत्य। इस प्रस्तुति में गंवर के शिकार प्रथा का नाटकीय ढंग से नृत्य मनोरंजक होता है। ये मुख्यतः दंतेवाड़ा की फागुन मडई में देखने मिलता है।
0: दंडामी माड़िया गोंडी बोलते हैं, जो द्रविड़ भाषा परिवार की बोली है। पूरे बस्तर में सभी गोंड आदिवासी थोड़े बहुत शब्द परिवर्तन के गोंडी ही बोलते हैं।
1: गोंडी में अलग अलग विषय और अवसरों के विभिन्न गीत हैं। इनमें मृतक संस्कार गीत भी प्रचलित है। गोंडी परिवेश में लोक कथाओं की भी कमी नहीं है।
0: एक जमाने में गांव के गुरुजी को देखते ही भाग कर जंगल में गायब हो जाने वाले बच्चे अब बुजुर्ग हो गए हैं। बच्चों को पढ़ते देख वे खुश होते हैं।
1: शहरी संपर्क ने युवाओं के पहनावे और सोच में परिवर्तन लाया है। अब वो अपने दिलों में विकास के सपनों की दस्तक महसूस करने लगे हैं।
0: वक्त ने इन जनजातीय समाज में परिवर्तन लाना शुरू किया है, कुछ अच्छा तो कुछ उनकी सांस्कृतिक परंपराओं के लिए अप्रिय। उनका भोला मन इस अप्रिय का विरोध करना नहीं जानता।
1: इन सब के बावजूद दंडामी माड़िया नैसर्गिक परिवेश, निश्चल जीवन शैली और अनूठी परंपराओं के बाहुपाश में बंधा प्रकृति के मधुर संगीत पर सदियों की तरह आज भी वैसे ही हंसता, खेलता, झूमता, गाता है और लुभाता है सारी दुनिया को।

हमान छत्तीसगढ़िया श्रृंखला के अंतर्गत ये था दंडामी माड़िया पर केंद्रित रूपक। लेखक थे श्री एम ए रहीम, वाचक स्वर थे धर्मेंद्र ठाकुर और रीना दत्ता के। शीर्षक गीत के गीतकार श्री जीवन यदुराही, गायक स्वर मनोज वर्मा और संतोष दिवाकर के थे। वाद्य पक्ष के कलाकार थे रजी मोहम्मद, महेंद्र चौहान और राजेश नायक। रूपक के प्रस्तुतिकरण सहायक थे के परेश और बलबीर कच्छ और प्रस्तुतकर्ता थे मोहन सी रामान।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आकाशवाणी संग्रहालय से। इसमें अभी हमने सुना हमन आन छत्तीसगढ़िया, इस क्रम में दंडामी जनजाति पर केंद्रित कार्यक्रम। लेखक थे श्री एम ए रहीम और प्रस्तुतकर्ता थे मोहन सी रामानी। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 12:30 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपके मीत ये गीत। आपके मीत ये गीत सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपकी रेडियो दोस्त योगिता का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आइए सुनते हैं ये पहला गीत और इस गीत की फरमाइश करने वाले श्रोता साथी आप सभी हैं। पावर हाउस भिलाई जामुल से विकास वर्मा, खुशी वर्मा और ग्रंथ वर्मा। जनवानी दुर्ग से सुरत रमेश साहू, तारा विद्या साहू, जितेंद्र किशन साहू, कुमारी सुनीता, ऋषवंत साहू, हीरेंद्र नीलकंठ साहू।

चंद्रहास, संजीव त्रिलोक साहू, रणजीत सिंह साहू, ग्राम भिलौरी बामनलाल बेमेतरा से रोहिणी नागेश्वरी साहू, खुलासा देवी साहू, देवव्रत राघवेंद्र राज साहू, हिमनत कुमार साहू, बेबी विधि दीपिका साहू, कविता सृष्टि साहू, शिक्षक नगर दुर्ग से राकेश वर्मा, सचिन वर्मा, वाणी वर्मा, रामनगर रायपुर से राजेश अंबादे, शशिकला अंबादे, पूजा अंबादे, कोटा रायपुर से अरुण वर्मा, अनिल वर्मा, ईश्वर वर्मा, दिनेश सेन, यहीं से योगिता वर्मा, रुचि वर्मा, खुशी वर्मा और ओजल वर्मा, बेमेतरा से सुरेश सारथी, पूर्णिमा सारथी, बाजारपारा बेमेतरा से भरतलाल सिन्हा, लव कुमार लक्की सिन्हा, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, अहिवारा दुर्ग से डबल कुमार, डब्बू धीवर, जतिन हेमनराज, बाबू धीवर, संजय कुमार, इंद्रजीत, राजू धीवर, लक्ष्य धीवर, आंचल माही, नानू पार्थ, भावना, अनमोल और राजा धीवर, अछोटा धमतरी से बिसत राम देवांगन, मानकीबाई, गणेश राम, रोहित राम, राजेश कुमार, गितेश और सेजल, धवल, लवन, काव्या और तेजस्वी देवांगन, खट्टी महासमुंद से सुभाष शर्मा, छाया शर्मा, कुमुदिनी शर्मा और ओमकार शर्मा, पोटिया कला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक साहू और सीमा साहू। आइए सुनते हैं आप सबकी फरमाइश पर फिल्म धनवान में सुरेश वाडकर और लता मंगेशकर को, साहिर लुधियानवी के लिखे गीत और संगीत हृदयनाथ मंगेशकर का।

लीजिए अब सुनिए अगला गीत, और इस गीत की फरमाइश करने वाले श्रोता साथी हैं शिव चौक साकरा भूमिया से मनोज निषाद, प्रतिभा निषाद, पूर्वी निषाद और खुशांत निषाद, रसेड़ा अकलतरा से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी साहू, योगेश कुमार साहू, कीर्ति कुमार साहू, संध्या साहू और डिकेश कुमार, कतियापारा जूना बिलासपुर से सुशील देवांगन, अखिलेश देवांगन, लोकेश देवांगन और आशीष देवांगन, दतरेंगी से विश्राम यदु, पार्वती यदु, प्रतिमा रीना यदु और लक्ष्मीना यदु, भाटापारा से राम कुमार राउत, अमरीका राउत, गणेश राउत, कार्तिक राउत और युवराज राउत, मयंक रेडियो श्रोता संघ नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा और दामिनी वर्मा, हरदेवलाल पारा वाटसमगा से रमेश कुमार यादव, माया यादव, रिंकू सन्नी, कोमल यादव, अमरपुर पेंड्रा से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंशीलाल और लवि श्रीवास्तव, बाजार पारा बेमेतरा से सनत कुमार यादव, राजू दिलीप यादव, बरातू यादव, आदित्य यादव, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा, भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश सिंगरौल, नेहा और वानिया सिंगरौल, औरंगाबाद से राजेश शाबले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश और राशि राजेश, सिमगा से भारती सेन, सुनंदा सेन, सुष्मिता सेन, विनीता सेन और पिंकी सेन, जय माँ कर्मा रेडियो श्रोता संघ सिरी गातापार से लावण्या साहू, उपासना साहू, देवराज साहू, ओम कुमार साहू, पुष्पराज साहू और प्रभुराम साहू, सुभाष वार्ड भाटापारा से एमएल यादव, अजय कुमार यादव, अमित कुमार यादव और अमीन कुमार यादव, यहीं से अमृता यादव, पार्वती यादव, ईश्वरी यादव और लक्ष्मी यादव, चूड़ी लाइन भाटापारा से अब्दुल मजीद कुरैशी, रेहाना बेगम, मोहम्मद साजिद। आइए सुनते हैं आप सबकी फरमाइश पर फिल्म लव में एसपी बाला सुब्रमण्यम और चित्रा सिंह को मजरू सुल्तानपुरी का लिखा गीत और संगीत आनंद मिलिंद का।

आइए सुनते हैं अगला गीत, और इस गीत की फरमाइश करने वाले श्रोता साथी आप सभी हैं भाटापारा से नारायण यदु, पुनिया यदु, चोवाराम वर्मा और दुलारी वर्मा, बठेना पाटन से बलकरण अंजनी वर्मा, कुमारी और ज्योति वर्मा, चटौदा सारागांव से सुजान वर्मा, सुहद्रा वर्मा, आयुषीकृत वर्मा, भाटापारा से श्याम रतन मुंद्रा, रचनाकार मुंद्रा, पटपर डोंगरगढ़ से राम गोपाल ध्रुव, नरेंद्र कुमार ध्रुव, कविता और जयंती ध्रुव, रुआ बांधा भिलाई से सुशील जैन, कल्पना जैन, सौरभ जैन, श्रेया जैन, शुभम जैन और शौर्य जैन, देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा और गणेश मिस्त्री, नर्मदा धाम सुरसुली से कैलाश यादव, सुरेश यादव, डिकेंद्र यादव और योगेश यादव, बेलरगांव सिहावा से मिथिलेश देवांगन, मधु देवांगन, हिमांशु और अंकित देवांगन, सिमगा से मोनिका जैन, बीना जैन और आदेश जैन, बनियापारा धमतरी से रामचंद्र माखीजा, सविता माखीजा, स्वाति माखीजा, माही, पूजा, छुटकी और शरद कुमार माखीजा, बेमेतरा से भरतलाल सिन्हा, लव कुमार साहू, लक्की सिन्हा, सुरेश कुमार सारथी और कमलकांत सारथी। आइए सुनते हैं आप सबके फरमाइश पर सदमा फिल्म में सुरेश वाडकर को गीत के बोल गुलजार के और संगीत इलैया राजा का।

आपके मीत ये गीत अभी आप सुन रहे हैं। लीजिए सुनिए अगला गीत, और इस गीत की फरमाइश करने वाले श्रोता साथी हैं महामाया पारा ग्राम दरचूरा से फिरंता साहू, दुलौरिन साहू, कामेश्वरी कुमारी और प्रीतम कुमार साहू, दरचूरा से ही ददुआ साहू, भूरी साहू।

रेखा और मोतीलाल साहू, दिल्ली शहर मुरीगेट से कन्हैयालाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार, पहरा इवारा से पोषण बंछोर, चंद्रकिरण प्रीति, छाया बंछोर, भाटापारा से दान सिंह रावत, दानू पद्मिनी रावत, नीरज रावत और शुभम रावत, पेंशनबाड़ा रायपुर से सोमनाथ यादव, वंदना यादव, सूर्यप्रकाश यादव, शीला यादव, कनक गुनगुन यादव, बेबी अदिति और तन्मय यादव, भाटापारा से बचकमल मोतीलाल यादव, डॉक्टर बसंत भृगु, विनय ठाकुर, सोना डी से सुब्रत चौधरी, करीबदर से पुरुषोत्तम निर्मलकर, श्रद्धा गिन्नी, लल्ली भाविका और झाविंद्र विश्वकर्मा, खैरागढ़ से रविन्द्र अग्रवाल, पुष्पलता झरना, प्रेरणा दीक्षा और शिक्षा, अमलीपदर देवभोग से निकुंज तिवारी, लाची तिवारी और ममता तिवारी। आइए सुनते हैं आप सबके फरमाइश पर फिल्म रोजा में ए हरिहरन और चित्रा सिंह को पीके मिश्रा का लिखा गीत और संगीत ए आर रहमान का।

आइए सुनते हैं ये गीत और इस गीत की फरमाइश करने वाले श्रोता साथी आप सभी हैं गंडई टिकरीपारा से जागेश्वर देवांगन, श्रीमती कची देवांगन, दीपक कुमार देवांगन, जयश्री देवांगन, ऋषभ और ऋचा देवांगन, ग्राम मुलमुला बेमेतरा से शेखन राम साहू, अमृका बाई, लेखनी और रोशनी चहक साहू, यहीं से नेत्राम साहू, मनीराम लक्ष्मी साहू, बिंदु डिम्पल रामेश्वर साहू, बलौदा अकलतरा से दिलहरण गौतम, अंजलि गौतम, आनंद पटेल और समृद्धि पटेल, वर्धमान रेडियो श्रोता परिवार सिमगा से सभी श्रोता साथी, पलारी रोहासी से डगेसर राम साहू, घनश्याम साहू, अलका जानवी और नूतन साहू। आइए सुनते हैं आप सबकी फरमाइश पर फिल्म मोहब्बते में लता मंगेशकर और उदित नारायण को गीत के बोल आनंद बख्शी के और संगीत जतिन ललित का।

आपके मीत ये गीत में बस आज इतना ही। दीजिए अपनी रेडियो दोस्त योग्यता को आपके मीत ये गीत से अनुमति। नमस्कार। बज ना, क्यों नहीं बज रहा?

0: ये आकाशवाणी है, 1:01।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम
0: के दिल्ली केंद्र से अभी प्रसारित करते हैं।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 19वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार मेले को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत दुनिया के विभिन्न देशों के साथ भी साझेदारी कर रहा है, जिसका उद्देश्य युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव देना है। प्रधानमंत्री ने कहा

0: कि भारत दुनिया का भरोसेमंद आपूर्ति श्रृंखला साझेदार बन रहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया भारत के विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। श्री मोदी ने कहा कि हर भारतीय 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ काम कर रहा है।
1: आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है।
0: केरलम में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने आज तिरुवनंतपुरम में रोजगार मेले का उद्घाटन किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया रोजगार मेला केवल एक भर्ती अभियान से कहीं अधिक है और इसका उद्देश्य युवा शक्ति को राष्ट्र शक्ति में बदलना है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि राज्य में अगले 5 वर्ष में 1,00,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। शिक्षा विभाग के उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हर साल कम से कम 20,000 शिक्षकों की भर्ती सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए अब शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अधिसूचना हर साल जुलाई महीने में जारी की जाएगी। बिहार सरकार ने 21 जून को नीट यूजी पुनः परीक्षा में शामिल होने वाले राज्य के सभी छात्रों के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी। आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले में आज राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी में भारतीय राजस्व सेवा के 76वें बेंच के अधिकारियों की पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने युवाओं को लगभग 4 करोड़ रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचे। वे मंगलवार को नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। श्री रूबियो आज सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री कल विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। इंडियन ऑयल ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति स्थिर है और ईंधन की कोई कमी नहीं है। इंडियन ऑयल ने एक बयान में कहा कि कुछ खुदरा दुकानों में मांग आपूर्ति असंतुलन और चुनिंदा क्षेत्रों में मांग बढ़ने के कारण अस्थिरता की खबर है। ऐसे मामले देश भर में 42,000 से अधिक खुदरा दुकानों के इंडियन ऑयल के नेटवर्क में से कुछ खुदरा दुकानों तक ही सीमित हैं। इंडियन ऑयल ने बताया कि 1 मई से 22 मई की अवधि के दौरान कंपनी ने ईंधन की बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। इस दौरान पेट्रोल की बिक्री में 14% जबकि डीजल की बिक्री में करीब 18% की वृद्धि हुई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज वृद्धि हुई। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में तीसरी बार वृद्धि हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रुपये प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल का मूल्य 51 पैसे बढ़कर 92.49 रुपये प्रति लीटर हो गया है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज सीएनजी की कीमत में 1 रुपये की वृद्धि की है। इस वृद्धि के बाद राजधानी में 1 किलोग्राम सीएनजी की नई दर 81.09 रुपये हो गई है। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल रात सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से पराजित किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 1:05 हुए हैं। प्रस्तुत है चित्रपट संगीत।

AIR at 90. चित्रपट संगीत में लीजिए सुनिए फिल्म चलते चलते में शैलेंद्र सिंह और लता मंगेशकर को, गीत के बोल अमित खन्ना के और संगीत बप्पी लहरी का।

90. चित्रपट संगीत में लीजिए सुनिए फिल्म चलते चलते में शैलेंद्र सिंह और लता मंगेशकर को, गीत के बोल अमित खन्ना के और संगीत बप्पी लहरी का।

लीजिए अब सुनिए फिल्म सागर में आशा भोसले और एसपी बालासुब्रमण्यम को जावेद अख्तर के बोल और संगीत आरडी बर्मन का।

चित्रपट संगीत अभी आप सुन रहे हैं, लीजिए सुनिए मनहर उदास और अनुराधा पौडवाल को फिल्म रामलखन में, गीत के बोल आनंद बख्शी के और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

चित्रपट संगीत के आखिर में लीजिए सुनिए फिल्म गिरफ्तार में किशोर कुमार और आशा भोसले को, गीत के बोल इंदिवर के और संगीत भप्पी लहरी का।

मीडियम वेव 305.81 मीटर यानी 981 किलो हर्ट्स और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.8 मेगा हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। दोपहर के 1:25 हुए हैं। समय है कार्यक्रम विवरण का। आइए आपको बता दें आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में। रात्रि 8:30 पर सुनेगा स्पोर्ट्स कैन। रात्रि 9:30 पर राष्ट्रीय पत्रिका कार्यक्रम विज्ञान भारती। रात्रि 10:00 संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में सुनेगा कर्नाटक गायन। कलाकार होंगे चंगनाश्री, सीपी माधवम, नम्पूथिरी। ये सभी कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। आज रात्रि 8:00 आप सुनेंगे आकाशवाणी के गौरवमयी 90 वर्ष के उपलक्ष्य में रायपुर में आयोजित स्वरोत्सव समारोह की रेडियो रिपोर्ट। अब से कुछ ही देर बाद यानी 1:30 पर सुनिएगा महिलाओं का कार्यक्रम घर आंगन, जिसमें आज के गोट में पर्यावरण संरक्षण हमर पहली जिम्मेदारी और विशेष कार्यक्रम चौथेपन के सांझ आलेख और वाचन आशा शर्मा का, परिकल्पना और संपादन वीरभान साहू का, क्रम कामकाज की बातें में बड़े बुजुर्ग मनला मानदेवन और गीत संगीत। दोपहर 2:30, शाम 7:00 और रात्रि 8:00। रात्रि 9:15 पर आप सुनेंगे चित्रपट संगीत। शाम 5:00 प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट। शाम 5:10 पर युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी छत्तीसगढ़ी में

जिसमें अपन गोट में सुनिएगा सकारात्मक सोच ले सही निर्णय, आप इनके चिट्ठी और माटी के गीत। शाम 6:30 पर लोक संगीत के कार्यक्रम में सुनिएगा खुशीदास मानिकपुरी और साथियों को। इसी कार्यक्रम में रात्रि 8:15 पर सुनिएगा योगेंद्र बेलचंदन और साथियों को। शाम 7:21 पर किसान साथियों के कार्यक्रम चौपाल में आज की बात का विषय होगा धान की अच्छी उत्पादकता खातिर SRI विधि। किसानवाड़ी में आज की सलाह में गर्मियों में मुर्गी की देखभाल विषय पर जानकारी देंगे डॉक्टर तरुण साहू, पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ पशु चिकित्सालय कुरुद जिला धमतरी। श्रोताओं आइए आपको एक बार पुनः याद दिला दें रात्रि 8:30 पर सुनेगा स्पोर्ट्स कैन, रात्रि 9:30 पर राष्ट्रीय पत्रिका कार्यक्रम विज्ञान भारती, रात्रि 10:00 संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में सुनेगा कर्नाटक गायन, कलाकार होंगे चंगनाश्री CP माधवम नम्पूथिरी। ये सभी कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। आज रात्रि 8:00 आप सुनेंगे आकाशवाणी के गौरवमय 90 वर्ष के उपलक्ष्य में रायपुर के आयोजित स्वरोत्सव समारोह की रेडियो रिपोर्ट। आपसे कुछ ही देर बाद यानी 1:30 पर सुनेगा महिलाओं का कार्यक्रम घर आंगन, जिसमें आज के गोठ में पर्यावरण संरक्षण हमर पहली जिम्मेदारी और विशेष कार्यक्रम चौथेपन के सांझ आलेख और वाचन आशा शर्मा का, परिकल्पना और संपादन बीरभान साहू का, क्रम कामकाज की बातें में बड़े बुजुर्ग मनला मानदेवन और गीत संगीत। दोपहर 2:00, 2:30, शाम 7:00 और रात्रि 8:00, रात्रि 9:15 पर आप सुन सकते हैं चित्रपट संगीत। शाम 5:00 प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट, शाम 5:10 पर युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी छत्तीसगढ़ी में, जिसमें अपन गोट में सुनिएगा सकारात्मक सोच ले सही निर्णय, क्रम आप मन के चिट्ठी और माटी के गीत। शाम 6:30 पर लोक संगीत के कार्यक्रम में सुनिएगा खुशीदास मानिकपुरी और साथियों को। इसी कार्यक्रम में रात्रि 8:15 पर सुनिएगा योगेंद्र बेलचंदन और साथियों को। शाम 7:21 पर किसान साथियों के कार्यक्रम चौपाल में आज की बात का विषय होगा धान की अच्छी उत्पादकता खातिर SRI विधि। किसानवाणी में आज की सलाह में गर्मियों में मुर्गियों की देखभाल विषय पर जानकारी देंगे डॉक्टर तरुण साहू, पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ पशु चिकित्सालय कुरुद जिला धमतरी। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। दोपहर के 1:30 हुए हैं। प्रस्तुत है महिलाओं का कार्यक्रम घर आंगन।

घर आंगन कार्यक्रम सुनैया सबो बहनी मन ला आशा के राम राम। बहनियों जेठ के माने होते बड़े, ये बात ला आप सबो जानत हो।

चाहे वह नता रिश्ता के बात होवे चाहे महीना के, भई मान तो राखी बर पड़ते। और ये महीना माने लकलकावत घाम और गर्मी के सेती जीव हलाकान। जेठ तब थे तभी तो असाढ़ और सावन मा रजरजा के पानी गिरते। फिर अभी देखब मा आते कि बिना मौसम के अंधौर गरेर उठाई पानी गिरे चलत है, जिन हमर बर बने बात नो है। और एला हमन जलवायु परिवर्तन मा असंतुलन तको मान सकत हन। और आजकल ये बदलाव हमला हमर प्रकृति मा बहुत देखब मा आते। पर्यावरण में जोन बदलाव हुआ थे उकर कारण तको हम हरन, और इन्हें सुधारे की जिम्मेवारी तको हमरे हवे। काबर की भाई हम मनखे और प्रकृति एक दूसर के पूरा कान। और पर्यावरण के बिना हम जिंदगी के बारे में सोच तको नहीं सकन। तो एक जिम्मेवार नागरिक के रूप में हम अपन जिंदगी में नान नान बात के ध्यान रख के पर्यावरण ला प्रदूषित होले बचा सकत हन। अब एक शुरुआत हमला अपन घर ले ही करे बर पड़ी। सबले पहले तो बहनी हो हम प्लास्टिक ला बोरे बर बंद करन। बाजार दुकान जात बिरा कपड़ा के झोला रखन। और इला हम घर मा लैका मन के जुन्ना पुराना कपड़ा ले बना सकत हन। दूसर बात, घर मा अपन संगे संग लोग लैका मन ला जरूर ये बात ला सिखावन कि भाई जरूरत नहीं रहे मा पंखा है बिजली है इला हम बंद रखन। और एक ठनो बात, पानी के बर्बादी रोकन। नल के टोटी ला बने कस के लगावन, जत के जरूरत है उत के पानी ला बोरन, चाहे वह पिए बर होवे या फिर नहाए खोरे बर या फिर घर के साफ सफाई बर। और पेड़ पौधा लगाए के बाद तो ऐसा नहीं बहनी हूँ जैसे सांस लेना जरूरी है। हम ये बात कहबो ना तो गलत नहीं हो है। और सिर्फ पेड़ लगाना ही नहीं है, लगाए के बाद उनका जतन तको करना है और बाढ़े के बाद रुख राइला काटे ले बचाना है। ऐसने घर के कचरा है तो ओकर व्यवस्था हम अलग अलग करन। का होते बहनी हो, जब भी पर्यावरण संरक्षण के बात होते ना तो हमला का लगते कि ये समस्या देश के राष्ट्र के हरे, हमारे एक जन के कुछ करे ले का होई। ये बात तो पूरा गलत है भाई। एकर बर हमला खुदे कोशिश करे बर पड़ी। ये सोचन कि हम हमर अवैया लोग लेका मल्ला हमला शुद्ध हवा शुद्ध पानी दे सकथन, तो एकर बर तो हमीला चेतलक होए बर पड़ी ना। और भाई पर्यावरण संरक्षण करना हमर तो पहली जिम्मेदारी हवे। और जब बात जिम्मेवारी करत हन ना, तो बहनी हो हम तो यहू कहबो कि भी जिंदगी और जिम्मेवारी तको एक दूसर के पूरा काए। और जेमा एक ठन सबले बड़े जिम्मेवारी हरे और जो ना हृदय ले निभाए बर पड़ते, काकरो कहे बोले ले नहीं, वो है अपन घर के सियान महतारी बाप के ध्यान रखेगे। काबर की भाई आज ये जग मा हमला लाए वही मन है। और ये जोन सुघर जिंदगी आज हम जियत हन उकर भर हम अपन जन्म देवैया माता पिता के हमेशा ऋणी रहबो। तो आवो हृदय ल छुवत ये सुघर विषय मा हम आप मन ल सुनवात हन एक विशेष कार्यक्रम चौथे पन के सांझ, जेकर आलेख और वाचन है आशा शर्मा के माने हमर, परिकल्पना और संपादन है वीर भान साहू के, और प्रस्तुत करता है महेंद्र साहू।

सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेवमया पिता मातरं पितरं तस्मात् सर्वयत्नेन पूजये। हमर संस्कृति और सभ्यता दुनिया के सबले जुन्ना और बढ़हर संस्कृति माने जाते और ये हमर संस्कृति और संस्कार जिमा महतारी बाप अपन लोग लेका खातिर सबले बड़े त्याग और बलिदान के उदाहरण माने जाते। अपन सुख अपन चैन और यहाँ तक कि अपन हाड़ मांस लतको औलाद के भलाई में गला देते और उनकर निश्चल प्रेम के अंगना मा पले बड़े लेका ही ये मया ला टमर सकत है कि महतारी के मया और पिता के खान कतका खुशी देवैया होते। तभे तो कहे जाते देव मिले है धरती माँ माता पिता के रूप माँ। माँ के वो लोरी दूध के कटोरी, हाथ की वो थपकी नींद के वो झपकी, महतारी के अचरा तो पिता के खांद, यही ताय जोन हमला राखते बांध।

कोनो अंगना मा लेका के किलकारी माने महतारी बाप के जिंदगी के सबले बड़े सुख और जिंदगी मा जोन दिन ले लेका घर मा आईस महतारी बाप सब कुछ भुला के हमला पाल पोस के शिक्षित करके समाज मा मान गौन देवाते। ननपन मा महतारी खुद ओद्दा दसना मसूत के हमला सुखा दसना मसूता थे। थोड़को कान तिपे मा कौन डॉक्टर बैद मेर नहीं ले गए, कौन मंदिर देवाला मा माथा टेक के हमर बर असीस नहीं मांगे और कौन बरत उपास ला नहीं रहे होही। उन्हें बाप लकलकावत घाम मा अपन शरीर तपा है तो पूस के कपकपावत जाड़ मा अपन ओढ़ना ला ओढ़ा के हमला सहला आए। हम इसने तो नहीं बाड़ गेन, हमला बड़े करे मा उनकर शरीर सुखा है। अपन मन एक जोड़ी कपड़ा मा रह के हमला कतकन जोड़ी कपड़ा पहिरा है। अपन तबियत खातिर डॉक्टर में नहीं गिस, फिर हमर इलाज बर बढ़िया ले बढ़िया डॉक्टर ल खोजिस। अंगरी धर हमला रेंगे बर सिखाइस, यही आसमा कि एक दिन यही अंगरी ला धर के महू रेंगू, जोन दुनिया ला ननपन मा मैं दिखाए तोन ला महू देखू।

0: फिर ये का ऐसन परिस्थिति आगे जेमा आज ये अंगरी छूट गे। काबर बोझा बन जथे वो उर्मे खान जेमा चढ़ के कभू हम सबो दुनिया ला देखत रहे। समाज देश आगु बढ़त हे, तरक्की के रद्दा गढ़त हे। फिर जौन भारत भुइया मा मातृ देव पितृ देव कहे जाते, तिहां कोनो घर मा आपसी झगड़ा मन मुटाव बेटा बहू के ऊंच नीच के व्यवहार के सेती एकाकी जिंदगी जिए बर मजबूर हो जाते। आर्थिक पक्ष ला कहूँ देखबो तो पहली गांव और कस्बा मा लोगन रहाय, अब यह पीढ़ी तो को उहे रहाय। अब लोग बाग जिंदगी ला उन्नत बनाए खातिर बड़े शहर मा चल देवत हैं, जिहां किराया के घर बाढ़त महंगाई के सेती तको माँ बाप संग मा नहीं रह पावे। सियानी उम्र सबो बर एक जैसन नहीं हुए और सबके जरूरत तको अलग अलग होते, और सबो जरूरत ले बढ़ के एक जोन जरूरत होते जोन सियान मनखे के हृदय के तार ल छूते वो है एक साथी और वो करमाया दुलार। और जब यही संगवारी जिंदगी के मझधार मा अकेला छोड़ के रेंग देते तब उम्र बाढ़े के संगे संग सुन्ना खोंदरा मा रहे के दुख ल झेलते और मन ले कमजोर और अकेला महसूस करते। तब एक ऐसन जगह दिखते जिहां खवई पिए के संगे संग हमर संगवारी सुख दुख ल सुनैया वृद्धाश्रम। कोनो कोनो मानते कि वृद्धा आश्रम विदेशी संस्कृति आए, फिर ये हमर मन ऊपर कैसे सही बैठ सकत है। जिहां जन्म ले लेके बाढ़त तक हमर महतारी बाप हमर खुशहाल जिंदगी और तरक्की के मनौती मानते, फिर हम कैसे नानमून बात के सेती अपन महतारी बाप संग गलत व्यवहार करन उनला वृद्धा आश्रम भेजन।
1: हमारी परिस्थिति वहां घर में कोई जगह नहीं थी, इतना बड़ा कमरा है, इतने कमरे में जब बेटा बहू का पलंग, अब हम लोगों को तो निकली जगह नहीं है, कहाँ रहे तो हम लोग जगह नहीं है। तुम लोग को घर के हमारे यहाँ बड़े बेटे के यहाँ गए तो वो भी कहते हमारे यहाँ जगह नहीं है। तब जगह वालों के पास जगह नहीं है तो जिसके पास नहीं है तो नहीं है, तो फिर वहाँ मैडम है हमारे यहाँ, इनकी मैडम की बहन, तो वो ये सब सवाल कुछ सुनी ना तो वो हमको यहाँ लेके आए कि चलो मम्मा आप यहाँ चलो, हमारी भी माँ यहाँ पर है, फिर वो तो अच्छी होके चली गई, अभी हम लोग ठीक ही नहीं मिल करके हम लोग पड़े, हमारी परिस्थिति ठीक नहीं है, खराब। बाल बच्चे लोग कहते हम अपना को देखें कि तुम लोगों को देखें, उनका सवाल यही है, हम अपना परिवार देखें कि तुम लोगों को देखें, यही हमारा घर है। अब तो यहाँ से निकलेंगे तो फिर आखिरी समय एकदम आखिरी देखने भी तो नहीं आते हैं सर, कभी तो मरे हैं कि जिंदा है माँ बाप वो भी देखने नहीं आते हैं, तो वो क्या हम लोगों की परिस्थिति बनेंगे।

mula lapo mata gigit na. Macam krimis takat tu, katian pada tu. Tung mau bayi, mau leka, yang lain ke thol di. Tapi ni mula. Yang ha, macam macam je, banyak mula serva kade he, dawai kade he. Abi cakap fit tak ram. Bayi katian pada, ah macam daw macam katian sa. Hil bi ni serva sa. Hari ke samaan ni, cian macam je. इज्जत देखभाल बहू बेटा ये मन करना चाहिए नहीं करते ना बहू बेटा अपन अपन घर देखे बाप जाए दाई जाए मैं तो सोचता हूँ सबसे अच्छा बेटी है जब तक प्यार बेटी मन करते उतना लड़का मन नहीं कर दे अपन दादा से लड़का मन तो पैसा है तो अब तक है दाई दादा पैसा खत्म दाई दादा कहाँ

महतारी बाप अपन कतकुन लइका ला गरीबी मा पाल पोस लेथे, फिर उही लइका अपन गरीबी के रोना रो के महतारी बाप ला नहीं संभाल पावे। हम तो वो भारत भुइया के संतान हरन जिहा सरवन असन बेटा अवतरिन, जोन अपन सियान महतारी बाप ला कांवर में बैठा के तीर्थ यात्रा करवाथे। भक्त ध्रुव जोन अपन महतारी के बात ला मान के भगवान ला पा जाते, और श्री राम, श्री राम असन बेटा जोन अपन महतारी के वरदान और पिता के वचन ला पूरा करे खातिर 14 बछर के वनवास ला खुशी खुशी बिताते। और यही सभ्यता के तो हमू अंश आन, जेमा हमर माता पिता के खून हमर रग रग में बोहाते, और इंकरे ले पहचान हवे ये धरती मा हमर। तभी तो कहे गए है ना, भूमे गरियसी माता स्वर्गात उच्च तरह पिता।

0: घायल के गति घायल जाना है, दुखला टमरे पर समझे बर वो स्थिति और परिस्थिति ले गुजरे बर पड़ते। अपन अकेलापन ले कैसे बाहर निकलें तेला बताते हैं श्रीमती ममता शर्मा।
1: कि ये प्रसामक देख रहे में जीवन की जिन आखिरी स्थिति में रही थे ना हमारे श्यान मन वो मन ला रखे जाते जैसे कुनो ला लकवा मार दे कुनो ला इसे टाइप के जिन आखिरी समय में बिस्तर पकड़ ले सब वो कुछ कर नहीं सके अपन हाथ से खा पी नहीं सके देखकर मन बर एक ये जगह हरे तो मोर नजर में यहाँ वृद्धाश्रम से बड़े चीज दिए से और ये में जेंट्स बुजुर्ग मन है ये मन अपन घर के दादी दादा अपन परिवार के लिए थी देखर मन कस मोले मन प्यार और सम्मान देते और ऐसे हो जाते कि मन इखर मन पर एक भगवान आते उससे जो मन चेरम खुशी होती है बहुत प्रिय व्यक्ति आते होते तो ऐसे मन मोल सम्मान और प्यार देते मोरे जीवन की मोर सबले बड़े उपलब्धि अरे यहाँ जग का झना है ना ते में एक झन भैया ला छोड़ दे वो जो शादी नहीं करी है विवाह नहीं करी है बाकी सबके परिवार है बेटा बहू नाती पोता सबके भरे पूरे हवे ककरो बेटी है तो बेटी मन ला दमान मन हमारे घर सासा नहीं रखन की छोड़े कोनो बेटा मन हाँ रख लेकिन मैं अक्का झन में देखी हूँ तो मैं अभी तक अक्का देखी कि हमारे प्रजाति ज्यादा खराब है मतलब कोनो भी छोड़े तो महिला मन किसे ती छोड़े जैसे अब बहू किसे बेटा ला जतका कमाता तेल अपन दाई के खर्चा कर दे तो मैं कर दे सारा दिन हम निकल जाते हम नहीं ये कर पान हम आगे कब पढ़ो ऐसे ऐसे प्रश्न कर करके मतलब जतका में ही घर मन से बातचीत करे हो ते मोर वही लगी से और एक झन तो अति अतलंग करे हो अपन घर वाली है और घर वाला छोटा लौट के नहीं आए तो यहाँ पे बहुत अलग अलग तरह के व्यक्ति रहे थे और हमारे समाज में जो अभी संयुक्त

परिवार की जो विघटन वो थे ना, वो सबसे बड़े कारण है। अब माँ बाप मन घलो परिवार में जब विवाह लगाए जाते थे किसी बोलते हैं कि छोटे परिवार में देखो के भाई बहनी ज्यादा बड़े में नहीं धन, यही सब रास्ता में चलत चलत जब लड़की मन ससुराल पहुँचते ना तो वो खर मन में संयुक्त परिवार के विघटन हुए थे, ये मन में आ जाती कि अब हमारे पति ही हमार सबो हरे, सास ससुर लड़कना देना जिठान संग चलना, ये सब थोड़ी थोड़ा खर मन बड़ अनसन हो गए। अब ये नहीं होना चाहिए।

0: एक सवाल मन मा आथे कि महतारी बाप की सेवा नहीं कर पाए मा का लइका मन ही दोषी है। समस्या बहुत कठिन है, का सही का गलत बता पाना तको मुश्किल है। काबर की विकास चाही हर माता पिता ला, सब चाहते हैं कि हमार संतान खूब पढ़े लिखे तरक्की करें, तो पढ़े बर बाहर भेजते हैं और एकर बाद नौकरी बर बिहाव लोग लेका की जिम्मेवारी अतका बाढ़ जाते कि छुट्टी मिलना मुश्किल हो जाते। महतारी बाप अपन डीह डोंगर जिया उनकर जिंदगी बीते है उनकर नाल गड़े है छोड़ के नहीं जाना चाहें। अपन जन्मभूमि के शांति ले शहर के चकाचौंध उकर बर मुश्किल हो जाते। समाज शास्त्री डॉक्टर प्रभा शर्मा।
1: मोर दृष्टिकोण से वृद्धाश्रम जाए के बहुत सारा कारण थे। एक तो शिक्षा से जाते बुजुर्ग मन हा, दूसरा शारीरिक आर्थिक मानसिक सामाजिक बहुत सारा ऐसे परिवेश निर्मित होते वातावरण जेकर कारण उमन हा जाते। उनका लड़का मन कई बार होते कि कोई बच्चा अपन माँ पिता जैसे रखना नहीं चाहे, कोई बहू सास ससुर नहीं रखना चाहे। जैसे मैं आप लोग उदाहरण देवा था आर्थिक परिवेश में कई बार होते कि बच्चा मन हा रखना चाहते माँ बाप ला, लेकिन उनका आर्थिक स्थिति ऐसी रहती कि चाह के भी वो तो अपन पेट पछिया खा ली, लेकिन वो नहीं चाहे कि मोर माँ बाप ला मैं बचना दो। और मजबूरी में कि जहाँ चाहे कम से कम वृद्धाश्रम में सरकार अच्छा सुविधा दे दे कि वो मन अच्छा से खाए पिए पहने ओढ़े रहे, ये कारण भी भेज देते। फिर आर्थिक पहलू दूसरा पहलू भी है, कई बार प्रॉपर्टी विवाद होते घर में, पैसा बहुत थे भाई भाई मतभेद होते है ना, और हिजका पारी होते कि मैं वो मैं काबर रखू अपन माँ बाप ला, मोरो भाई रखी मोरो भाई रखी। और आजकल बेटी मन तक को जायदाद में हिस्सा मांगा थे, तो अब जब जायदाद में हिस्सा मांगा थे तो बहू रखा है। हिजका पारी में भी ना माँ बाप के बहुत ज्यादा अपमान करते हैं लड़का मन, और मतलब वृद्धाश्रम जाए बर मजबूर कर देते हैं। संयुक्त परिवार में लड़का मन के परवरिश वो हमार वाला हिसाब में रही से, हम सब एक हन। आजकल का है एक दो लड़का है तो मोरे संयुक्त परिवार घटत जाते, संयुक्त परिवार वाला वो गुण नहीं है। संयुक्त परिवार में सुख ज्यादा दुख कम है। संयुक्त परिवार के जो लड़का मन है ना वो मन कभी अपन माँ बाप ला वृद्धाश्रम नहीं भेजा, चाहे वो मन रूखा सूखा जो भी खाए जैसे रहा है अच्छा बुरा, लेकिन अपन माँ बाप की सेवा करते हैं और रहते हैं। कई बार होते शारीरिक रूप से अक्षम हो जाते जब माँ बाप है तो नहीं करवाए, बच्चा मन नहीं चाहे कि हम उनका सेवा करें। जो माँ बाप है रात रात भर जग जग के अपन लेकर के सेवा करें अटका बड़ा लायक बनाते, वो बच्चा एक सेकेंड में अपन माँ की सेवा नहीं कर सकते। अभी के जमाना का है सेल्फिश।
0: माता पिता बर पीपर असन बड़का पेड़ आवे जेकर छैया मा हमर लइका सुख के छाव पाथे, ऐसन महतारी बाप ला झन भुलावन जुन संतान रूपी पौधा ला बड़े करे खातिर अपन शरीर के खून पसीना एक करिन, अपन भूख और इच्छा के खातू डार के बड़े करिन, इनला अपन हृदय ले लगा के राखन। जौन पेड़ हमला ननपन मा छाव दिस उनकर पाना झन सुखावे, वहू ला माया दुलार के खातू देवन और मिठ बोली के पानी ले सींचन। काबर की जब छाव देवैया पेड़ नहीं रहा है तो अंगना मा घाम आए बर लग जाता।

सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मात बचन अनुरागी। आज जब माता पिता वृद्धाश्रम में रहे बर मजबूर हो गए हैं, तब रामचरित मानस की ये चौपाई भले कोनो मंजिल तक नहीं पहुंचाई, फिर प्रेम के रद्दा जरूर देखाही। सियाना उम्र मा दिन काटना मुश्किल हो जाते, अकेला रात बिताना दुखदाई हो जाते। तेन बेरा मा मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, बिना ही विचार करई शुभ जानी। ये चौपाई हमला ये बताते कि उनकर मया दुलार और दर्शन ले जिंदगी हरियर हो सकत है, काबर की अनुभव ले पाके चुंदी बुढ़ापा के सान।

ये तो माने भर पड़ी कि भगवान हमर रक्षा खातिर हमर माँ बाप ला भेजे हवे। जौन लड़का सिर्फ रोए भर और सोए भर जानते तेला बिना स्वार्थ के ओकर भीतर जिंदगी के पाठ ला सिखा के समाज के आगू में लानते, तो हम कही सकत हन कि इंकर चरण में ही सरग होते, उनकर आशीर्वाद ले हमला हर क्षेत्र में सफलता मिलते। एक महतारी बाप ला का चाहे, जैसन हमला पालिन पोसिन, हमर हर इच्छा ला पूरा करिन, वैसने उनकर बर करन, उनकर सुख दुख के ख्याल राखन। माता पिता और संतान के रिश्ता ऐसन तो नहीं हुआ ना कि हम तुहर बर करिन तो बदला मा तुम हमर बर करो। तभी तो हमर सनातन धर्म मा पितृ ऋण और मातृ ऋण के बात करे गे है। और बात तो यहू सचाए ना कि आगू के आगू और पाछू के पाछू हमू बुढ़ावो, धन दौलत रही, धन ले सबो तो नहीं बिसाए जा सके, और अपन जन्मदाता के कर्जा ला तो हम कभू नहीं चुका सकन, हमेशा उनकर ऋणी रहिबो। जब महतारी बाप ला उनकर उम्र के चौथापन के संझा काल मा हम ये कहथन कि उनला हमर संग अभी और रहना है, तो उनकर जिए के उछाह बाढ़ जथे। और सिर्फ माया के दुशब्द कहना कि मैं हवा ना, फिकर जन करो, सियान मल्ला नवा ऊर्जा ले भर देते। माँ बाप के सियानी उम्र के लौटी संतान ही तो होते। जन छोड़न माँ बाप ला जोन हमर खातिर अपन सुख ला गवाह है, महतारी बाप तो वो सूरा जाए जोन खुद आगे मजर के हमर जिंदगी के अंधियार ला धो है। जैसे नानकुन लेका कोनो जिनिस बर रिसाथे और नहीं मिले माँ अपन रिस दिखाते, तो वैसने हमर सियान मन तको होते। इंकर ले हम वैसने प्रेम करन जैसन अपन लैका के करथन। हमार महतारी बाप तो हमरो वैसने करीन हो ही ना। नाने लैका भी जब प्रेम के भाषा जानते, दुलार ला समझते, तो वैसने सियान तको प्रेम के भूखे होते। तन मन और भाव यही सहारा तो चाही। जिंदगी भर यही कहात कहात बुढ़ाते कि मोर लैका मोर बुढ़ापा के लौठी बनी, और जब बुढ़ा गए हैं तो लौठी तो बनिज भर पड़ी।

0: की सियानी उम्र बचपन के पुनरावृत्ति होते। ये संबंध में हमर समाजशास्त्री डॉक्टर हेमलता बोरकर, एसोसिएट प्रोफेसर समाजशास्त्र एवं समाज कार्य अध्ययनशाला पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय रायपुर के विचार ल सुनन।
1: ये वृद्धा आश्रम में भेजने के जो कारण, तो सबसे पहला कारण है एकाकी परिवार का प्रचलन, या फिर संयुक्त परिवार की जगह एकाकी परिवारों की संख्या में वृद्धि। प्राचीन समाज में हमारा जो भारत का जो अधिकांश जो जनसंख्या है वो गांव में रहता था, और गांव में रहने के कारण संयुक्त परिवार की संख्या अधिक होती थी। लेकिन जैसे जैसे औद्योगिकीकरण और नगरीकरण होने लगा, वैसे वैसे संयुक्त परिवार की संख्या एकाकी परिवार में परिवर्तित होने लगी। कारण कि लोग रोजगार की तलाश में गांव से शहरों की ओर आने लगे। दूसरा शैक्षणिक कारण है कि माता पिता द्वारा बच्चों को उनकी भविष्य को सुधारने के लिए अपने घर से दूर रखकर पढ़ने के लिए भेजना, क्योंकि हर माता पिता का एक सपना होता है कि उसका बच्चा बहुत अच्छे पोजीशन में रहे, समाज में उसकी स्थिति बहुत अच्छी रहे। तो इस लालच के कारण जो माता पिता है अपने बच्चे को प्रारंभिक अवस्था से ही वो घर से बाहर बोर्डिंग स्कूल या फिर हॉस्टल में रखने के लिए भेज देते हैं, लेकिन वो यह नहीं जानते कि यही दूरियां जो बच्चों में उनके साथ जो भावनात्मक जो संबंध है उनको दूर करेंगी। परिणाम स्वरूप जब बच्चा प्रारंभिक अवस्था से जब घर से बाहर रहने लगता है तो वह माता पिता के बगैर रहने की जीवन कला सीख जाता है। तो यही कारण है कि जब माता पिता जब वृद्ध होते हैं तो वह उसकी सेवा करने के बजाय उन माता पिताओं को वह वृद्धा आश्रम में या फिर ओल्ड एज होम में छोड़ आता है। क्यों? क्योंकि उसको बचपन से आदत नहीं हुई है कि माता पिता की तकलीफ, और इसके साथ ही साथ हमको अपने बच्चों का अच्छा समाजीकरण करने की जरूरत है। अच्छा समाजीकरण से तात्पर्य यह है कि बच्चों को हमें सामाजिक मूल्य, नैतिक मूल्य और सांस्कृतिक मूल्य से जोड़ना होगा। लेकिन हम बच्चों का ऐसा समाजीकरण करते हैं, बच्चों के जो नैतिक मूल्य और सामाजिक मूल्य ठीक से उन पर पनप नहीं पाते, संस्कृति को ठीक से सीख नहीं पाते हैं, तो जिसके कारण से जो माता पिता हैं बाद में इसी प्रकार की समस्या को सहने के लिए बाध्य हो जाते हैं या फिर वृद्धाश्रम में जाने के लिए बाध्य हो जाते हैं।

व्यवहारिक जिंदगी मा ये देखे बर मिलथे। सियानी उम्र मा धीरे धीरे लइका असन हो जाथे तो खाए पिए ले लेके उनकर स्वास्थ्य के ध्यान हम महतारी बाप बन के करन। आखिर मा जिहां चाह है उहां राह है। मन मा कहूं सेवा के संकल्प करन तो कतकोन रद्दा है, नहीं तो सियान हमला बोझा लागी। हमला हृदय ले ये स्वीकारे बर पढ़ी कि माता पिता के चौथापन के संजाला हम संतान ही बिहनिया के उजास मा बदल सकत हन।

0: चौथे पन के सांझ। अभी आप मन सुनत रहे हो ये विशेष कार्यक्रम। कार्यक्रम के आलेख और वाचन रही से आशा शर्मा के माने हमर, परिकल्पना और संपादन रही से बीरभान साहू के और प्रस्तुतकर्ता रही ने महेंद्र साहू। तो बेनी हो ये कार्यक्रम के संबंध में हम तो यही कहबो कि सबले बड़े काम हम ये करन कि उनकर तीरन बैठन, उनला सुनन, काबर की जिंदगी के अनुभव, सुख दुख के कहनी, घाम छाव के महत्ता उनकरे झोली में टमरे में मिली। तो ये कार्यक्रम आप मन ला कैसे लगीस? एकर बार आप मन के ईमेलों पाती के हमला अगोरा रही और स्टूडियो के घड़ी हमला इशारा करत थे कि हम बेरा के मान रखन और आप मन ले विदा लेवन। अवैया सनिचर के फेर भेंट होही विशेष कार्यक्रम गीत ले भरे कहने के संग में। तो आज देव विदा अपन बहनी आशा ला और लेव हमर राम राम।
1: महिलाओं का कार्यक्रम घर आंगन अभी आप सुन रहे थे। FM बैंड और मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 2 बजे हैं, प्रस्तुत है चित्रपट संगीत। चित्रपट संगीत में लीजिए सुनिए फिल्म लक्ष्य में उदित नारायण

0: ആകാശവാണി എറ്റ് 90.
1: चित्रपट संगीत अभी आप सुन रहे हैं, लीजिए सुनिए फिल्म दिल चाहता है में उदित नारायण और अलका याग्निक को, गीत के बोल जावेद अख्तर के और संगीत शंकर एहसान लॉय का।

0: ಆಕಾಶವಾಣಿ ಎಟ್ 90.
1: चित्रपट संगीत अभी आप सुन रहे हैं, लीजिए सुनिए फिल्म दिल चाहता है में उदित नारायण और अलका याग्निक को, गीत के बोल जावेद अख्तर के और संगीत शंकर एहसान लॉय का।

0: चित्रपट संगीत अभी आप सुन रहे हैं, लीजिए सुनिए आमिर खान और अलका याग्निक को फिल्म सरफरोश में, गीत के बोल समीर के और संगीत जतिन ललित का।
1: लेकिन इतना अच्छा मौसम है और तुम इन बीमारियों के अलावा और कुछ नहीं सोचता? गुलफाम साहब के फैन हो, कोई शायरी वायरी नहीं आती क्या?
2: बिल्कुल आती है, सुनाओ।
1: सुना।
2: अर्ज है, दवा भी काम ना आए कोई दुआ न लगे, दवा भी काम ना आए कोई दुआ न लगे, मेरे खुदा किसी को प्यार की हवा न लगे। आदाब।

अर्ज है, कुछ मजनू बने, कुछ रांझा बने, कुछ रोमियो कुछ फरहाद हुए, इस रंग रूप की चाहत में जाने कितने बर्बाद हुए। वो देखो,

जिसे देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

0: चित्रपट संगीत अभी आप सुन रहे थे मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। दोपहर के 2:15 होने को है। दोपहर समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निकम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न सरकारी विभागों के 51,000 से अधिक नवनियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। कहा, भारत युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव प्रदान करने के लिए विश्व के विभिन्न देशों के साथ साझेदारी कर रहा है। बिहार सरकार अगले 5 वर्ष में राज्य में 1,00,000 शिक्षकों की भर्ती करेगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि 1 दिन और बढ़ाकर कल तक की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला के बुंडीबुग्यो स्ट्रेन से उत्पन्न स्वास्थ्य खतरे को उच्चतम किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बातें कहीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने अपने कर्मचारियों पर भरोसा जताया है और अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि वे अपनी लगन, आचरण और रोजमर्रा के कामों से उस भरोसे का मान रखें और उसे मजबूत करें। श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत के विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है।
2: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर

0: बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि हर भारतीय देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ काम कर रहा है।
0: आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है।
1: श्री मोदी ने नवनियुक्त कर्मचारियों को आईगॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने के लिए भी प्रोत्साहित किया।
0: कर्मयोगी प्रारंभ जैसे मॉड्यूल से आपको अपनी जिम्मेदारियां समझने में बहुत सहूलियत होगी। मेरा आपसे आग्रह है इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। आज भारत का युवा दुनिया के हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहा है। यही स्पिरिट, यही ऊर्जा पब्लिक सर्विस में भी दिखाई देनी चाहिए। विकसित भारत ऐसे ही युवाओं के प्रयास से बनेगा जो अपने काम को देश सेवा का माध्यम मानते हैं।
1: 19वें रोजगार मेले में सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में नवनियुक्त 51,000 से भी ज्यादा युवाओं को आज नियुक्ति पत्र सौंपे गए। संसदीय कार्य सूचना तथा प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि सरकार 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। चेन्नई स्थित ICF में आयोजित रोजगार मेले को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश बुनियादी ढांचे, डिजिटलीकरण, रोजगार के अवसरों और व्यापार में सुगमता के क्षेत्र में तीव्र प्रगति कर रहा है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि रोजगार मेले के परिणाम स्वरूप पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से नियुक्तियों में वृद्धि हुई है। नई दिल्ली में 19वें रोजगार मेले में डॉक्टर सिंह ने कहा कि इस पहल ने समय सीमा का सख्ती से पालन किया है, जिससे युवाओं में आत्मविश्वास बढ़ा है और योग्यता आधारित चयन प्रक्रिया सुनिश्चित हुई है। उन्होंने मिशन कर्मयोगी प्रारंभ के विकल्प के बारे में भी बताया।
2: मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत आई गॉट प्लेटफॉर्म पर अभी तक 1,64,00,000 उम्मीदवार रजिस्टर हो चुके हैं और 4,776 से अधिक कोर्सेज उपलब्ध हैं। आज भी आपके द्वारा नियुक्ति पत्र प्राप्त करते ही प्रत्येक उम्मीदवार को साथ ही साथ मिशन कर्मयोगी प्रारंभ का विकल्प भी प्रदान कर दिया जाएगा।
1: देशव्यापी रोजगार मेला कार्यक्रम के अंतर्गत आज पश्चिम बंगाल में 3 जगहों पर नए भर्ती हुए उम्मीदवारों को 185 नियुक्ति पत्र सौंपे गए। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मुख्य अतिथि के तौर पर इसमें भाग लिया। केरला में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने आज तिरुवनंतपुरम में रोजगार मेले का उद्घाटन किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया रोजगार मेला केवल एक भर्ती अभियान से कहीं अधिक है और इसका उद्देश्य युवा शक्ति को राष्ट्र शक्ति में बदलना है। पंजाब में आज रेल कोच फैक्ट्री RCF कपूरथला और पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स पटियाला सहित 2 स्थानों पर रोजगार मेला आयोजित किया गया। यहां 281 नए लाभार्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि रोजगार मेला एक सशक्त राष्ट्रीय संस्था बन गया है जो पारदर्शिता और योग्यता आधारित समयबद्ध भर्ती सुनिश्चित करता है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि राज्य में अगले 5 वर्ष में 1,00,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हर साल कम से कम 20,000 शिक्षकों की भर्ती सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए अब शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अधिसूचना हर साल जुलाई महीने में जारी की जाएगी। बिहार सरकार ने 21 जून को नीट UG पुनः परीक्षा में शामिल होने वाले राज्य के सभी छात्रों के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल

0: मीडिया पर यह जानकारी दी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक और दिन बढ़ाकर कल तक कर दी है। CBSE ने निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया है, जिससे वेबसाइट बाधित हो रही थी। बोर्ड ने बताया कि विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मिलने के बाद पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के लिए 2 दिन का समय मिलेगा। CBSE ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे इस विस्तारित समय सीमा का सदुपयोग करें और प्रक्रिया को पूरा करें। आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले में आज राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी में भारतीय राजस्व सेवा के 76वें बैच के अधिकारियों की पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने युवाओं को लगभग 4 करोड़ रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं को राष्ट्र के विकास में सक्रिय भागीदार बनना चाहिए। श्री चौधरी ने कहा कि भारत एक विकसित राष्ट्र के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत 2047 तक एक विकसित भारत के निर्माण के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है और एक विकसित आत्मनिर्भर तकनीकी रूप से उन्नत और विश्व स्तर पर सम्मानित राष्ट्र को बनते हुए हम सब देख रहे हैं।
0: राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, अजमेर और बीकानेर में आज रोजगार मेले का आयोजन किया गया। यहां 1100 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय रोजगार मेले में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव शामिल हुए। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार पूरे देश में युवाओं को पारदर्शी और समयबद्ध रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
2: रेलवे में आज करीब करीब 1,60,778 भर्तियों पे काम चल रहा है। पहले 8-8, 10-10 साल में एक बार भर्ती निकलती थी या 4-4, 5-5 साल में एक बार भर्ती निकलती थी। कांग्रेस का वो युग था। मोदी जी ने जब जिम्मेदारी ली तो उस समय को कंप्रेस किया।
0: बॉम्बे उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र प्रशासन को जनगणना कार्य के लिए निजी गैर सहायता प्राप्त और अल्पसंख्यक विद्यालयों के लिए शिक्षकों को तैनात करने से रोक दिया है। न्यायमूर्ति गौतम अखंड और न्यायमूर्ति संदेश पाटिल की खंडपीठ ने पाया कि जनगणना अधिनियम और नियमों के अंतर्गत शिक्षकों पर जनगणना संबंधी कार्य करने का कोई दायित्व नहीं है। न्यायालय ने राज्य भर में 500 से अधिक विद्यालयों का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्यालय संघों को अंतरिम राहत प्रदान की है। इंडियन ऑयल ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति स्थिर है और ईंधन की कोई कमी नहीं है। इंडियन ऑयल ने एक बयान में कहा कि कुछ खुदरा दुकानों पर मांग आपूर्ति असंतुलन और चुनिंदा क्षेत्रों में मांग बढ़ने के कारण अस्थिरता की खबर है। ऐसे मामले देश भर में 42,000 से अधिक खुदरा दुकानों के इंडियन ऑयल के नेटवर्क में से कुछ खुदरा दुकानों तक ही सीमित हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज वृद्धि हुई है। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में ये तीसरी बार वृद्धि हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रुपये प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल का मूल्य 91 पैसे बढ़कर 92.49 रुपये प्रति लीटर हो गया है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज CNG की कीमत में 1 रुपये की वृद्धि की है। इस वृद्धि के बाद राजधानी में 1 किलोग्राम CNG की नई दर 81.09 रुपये हो गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचे। वे मंगलवार को नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। श्री रूबियो आज सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री कल विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। उत्तरी चीन के शानकसी प्रांत में किनयुआन काउंटी में एक कोयला खदान में गैस विस्फोट के कारण मरने वालों की संख्या 82 हो गई है। ये गैस विस्फोट कल सुबह ल्यूशेनियो कोयला खदान में हुआ। बचाव कार्य जारी है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने दुर्घटना के बाद की स्थिति से निपटने के लिए उचित कदम उठाने का आह्वान भी किया है। बांग्लादेश में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बढ़ती हिंसक घटनाओं पर यूनिसेफ ने गहरी चिंता जताई है। सुरक्षा प्रणालियों को

0: मजबूत करने और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए तत्काल कदम उठाने का आह्वान किया गया है। कल जारी एक बयान में बांग्लादेश में यूनिसेफ के प्रतिनिधि राणा फ्लावर्स ने कहा कि संगठन उन स्थानों पर बच्चों के साथ दुष्कर्म और हत्या के हालिया मामलों से बेहद आहत और दुखी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला बुंजीबुग्यो स्ट्रेन से उत्पन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे को राष्ट्रीय स्तर पर उच्चतम कर दिया है। एक रिपोर्ट।
1: विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस ने कहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर यह खतरा बहुत उच्च, क्षेत्रीय स्तर पर उच्च और वैश्विक स्तर पर निम्न है। उन्होंने बताया कि इस संक्रमण के अब तक 82 मामले सामने आए हैं और 7 लोगों की मौत हो चुकी है। संगठन ने पहले इस प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया था। साथ ही ये स्पष्ट किया था कि ये महामारी के स्तर पर नहीं है। इबोला एक वायरल बीमारी है जो चमगादड़ों से फैलती है और संक्रमित व्यक्तियों या जानवरों के शरीर के तरल पदार्थ या दूषित वस्तुओं के सीधे संपर्क से फैलती है। दुर्लभ मामलों में हवा के माध्यम से भी ये बीमारी फैल सकती है। इसका ऊष्मायान काल 2 से 21 दिनों तक होता है, जिसके शुरुआती लक्षणों में बुखार, थकान, मांसपेशियों में दर्द और गले में खराश शामिल है। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री नवीन के नए विचार, जोशीले नेतृत्व और संगठन के काम तथा प्रशासन दोनों की गहरी समझ ने उन्हें हर जगह बहुत सम्मान दिलाया है। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल रात सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हराया था। मौसम विभाग ने कल तक पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू की स्थिति का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली का आज अधिकतम तापमान 41 से 43 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न सरकारी विभागों के 51,000 से अधिक चयनित कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। कहा, भारत युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव प्रदान करने के लिए विश्व के विभिन्न देशों के साथ साझेदारी कर रहा है। बिहार सरकार अगले 5 वर्ष में राज्य में 1,00,000 शिक्षकों की भर्ती करेगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि 1 दिन और बढ़ाकर कल की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबिया आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला के बुंजीबुग्यो स्ट्रेन से उत्पन्न स्वास्थ्य खतरे को उच्चतम किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। दोपहर के 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत है चित्रपट संगीत। चित्रपट संगीत में लीजिए सुनिए फिल्म एयरलिफ्ट में अमाल मलिक और अरिजीत सिंह को कुमार का लिखा गीत और संगीत अमाल मलिक का।

आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।

0: कैसे वर्षा, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर थसकाते हैं?
1: नहीं सुमित, ज्ञान बढ़ाए बर पढ़थो फिर पढ़ के भुला जाथो।
0: अरे तो सुने करना,
1: कैसे बात करत हस, किताब हथोड़ी ना बोली मुर करा।
0: मैं किताब की बात नहीं करत हूँ वर्षा।
1: ता काखर बात करत हस?
0: मैं बात करत हूँ युवाणी के, जेमा हर मंगलवार को होते तोर ज्ञान मा वृद्धि।
1: वो कैसे सुमित?
0: वैसे वर्षा, युवाणी मा तैं सुनबे क्रम सवाल जवाब और संग मा माटी के गीत, हमार गांव, आप मन के चिट्ठी और अपन गोठ मना नवा नवा विषय के बारे में जानकारी मिलते। और एक असन कई ठन कार्यक्रम हवा जिला सुने बर तैं बैठबे ना तो कब तोर बेला ढलंग जही ना पता नहीं चले। और मनोरंजन के तो का कहना भाई।
1: वाह, एक के कार्यक्रम में इतना कुछ, तब बेरा लगा लो बताना सुमित।
0: बेरा हवा संझा कून 5:10 ले जिन शुरू होते ना वर्षा, तेना 6 तक चलते, जेमा तह मंगलवार, गुरुवार और शनिचर के छत्तीसगढ़ी में कार्यक्रम सुनबे और बाकी दिन हिंदी में।
1: तब तो सुने ला पढ़ी
2: एक संग युवाणी।

फिल्म रमैया वास्तव में अभी आप आतिफ असलम और श्रेया घोषाल को सुन रहे थे। गीत के बोल प्रिया पांचाल के और संगीत सचिन जिगर का था। साथियों एक सूचना सुनिए, आगामी मंगलवार 26 मई 2026 को प्रसारित होने वाले हेलो चौपाल हेलो किसान कार्यक्रम का विषय होगा खरीफ पूर्व कृषि यंत्रों का रखरखाव एवं संबंधित योजनाएं। विषय पर आपकी समस्याओं और जिज्ञासाओं के समाधान हेतु हमारे स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर विनय कुमार नायक, सहायक प्राध्यापक कृषि अभियांत्रिकी कृषि विज्ञान केंद्र पहांदा दुर्ग। आप अपनी जिज्ञासा और शंका का समाधान पाने के लिए हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 400-3482, 400-3483 और 400-3484। रायपुर का एसटीडी कोड है 0771। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग 26 मई 2026 को 11:30 से 12 बजे तक की जाएगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण मंगलवार को ही संध्या 7:30 पर किया जाएगा। हमें आपके फोन कॉल का इंतजार रहेगा।

सूचना समाप्त हुई। लीजिए अब सुनिए ऐश किंग, क्लिंटन सेरेजो और शब्बीर अहमद को फिल्म बॉडीगार्ड में, गीत के बोल नीलेश मिश्रा के और संगीत हिमेश रेशमिया का।

लीजिए अब सुनिए हर्षदीप कौर को फिल्म जब तक है जान में, गीत के बोल गुलजार के और संगीत ए आर रहमान का।

चित्रपट संगीत अभी आप सुन रहे हैं, लीजिए सुनिए तुलसी कुमार और के को। फिल्म रेडी में नीलेश मिश्रा का लिखा गीत और संगीत प्रीतम का।

0: कुछ बातें बड़ी दूर से सुनाई देती हैं।
1: फोनिंग फरमाइश। नमस्कार सर, रोहतक हरियाणा से महेंद्र शाह रेडियो स्टेशन बोल रहा हूँ सर।
2: बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तोहफा लाए हैं।
0: कुछ आवाजें गीतों के संग खुल मिल जाती हैं।
3: गीत मेरे होठों को गया कोई।
0: कभी कोई किस्सा याद आता है।
4: यादें।
0: कभी अपने बारे में बहुत कुछ कहने को मन करता है।
5: मुझे कुछ कहना है,
6: मुझे भी कुछ कहना है।
0: श्रोताओं की बातों और उनकी पसंद के फिल्मी गीतों का अनूठा संगम है फोन इन फरमाइश। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल से हर रविवार सुबह 11:05 पर।
7: सुनिए।

चित्रपट के आखिर में लीजिए सुनिए अमिताभ भट्टाचार्य का लिखा गीत, जिसे सजाया है अपनी धुन से प्रीतम ने। आवाज़ है अरिजीत सिंह की और फिल्म है एजेंट विनोद।

चतुर्पट संगीत अभी आप सुन रहे थे। मीडियम वेव 305.81 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्स और फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.8 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाल केंद्र है। 3 बजे हैं, हमारी ये सभा अब यहीं समाप्त होती है। सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ 5 बजे आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।

0: अपने कर्मचारियों पर भरोसा जताया है और अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि वे अपनी लगन, आचरण और रोजमर्रा के कामों से उस भरोसे का मान रखें और उसे और मजबूत करें। श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत के विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है।
1: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूँ मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि हर भारतीय देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ काम कर रहा है।
1: आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं

0: सबके लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है।
1: श्री मोदी ने नवनियुक्त कर्मचारियों को आईगॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने के लिए भी प्रोत्साहित किया। 19वें रोजगार मेले में सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में नवनियुक्त 51,000 से भी अधिक युवाओं को आज नियुक्ति पत्र सौंपे गए। संसदीय कार्य सूचना तथा प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि सरकार 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। चेन्नई स्थित ICF में आयोजित रोजगार मेले को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश बुनियादी ढांचे, डिजिटलीकरण, रोजगार के अवसरों और व्यापार में सुगमता के क्षेत्र में तीव्र प्रगति कर रहा है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि रोजगार मेले के परिणाम स्वरूप पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से नियुक्तियों में वृद्धि हुई है। नई दिल्ली में 19वें रोजगार मेले में डॉक्टर सिंह ने कहा कि इस पहल ने समय सीमा का सख्ती से पालन किया है, जिससे युवाओं में आत्मविश्वास बढ़ा है और योग्यता आधारित चयन प्रक्रिया सुनिश्चित हुई है। केरलम में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने आज तिरुवनंतपुरम में रोजगार मेले का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया रोजगार मेला केवल एक भर्ती अभियान से कहीं अधिक है और इसका उद्देश्य युवा शक्ति को राष्ट्र शक्ति में बदलना है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि राज्य में अगले 5 वर्ष में 1,00,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हर साल कम से कम 20,000 शिक्षकों की भर्ती सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए अब शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अधिसूचना हर साल जुलाई महीने में जारी की जाएगी। बिहार सरकार ने 21 जून को नीट UG पुनः परीक्षा में शामिल होने वाले राज्य के सभी छात्रों के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक दिन और बढ़ाकर कल तक कर दी है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज वृद्धि हुई है। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में तीसरी बार वृद्धि हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रुपये प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल का मूल्य 51 पैसे बढ़कर 92.49 रुपये प्रति लीटर हो गया है। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Naresh Magu. Prime Minister Narendra Modi today distributed more than 51,000 appointment letters to newly appointed youth in various government departments and organizations at the 19th Rozgar Mela through video conferencing. The Rozgar Mela was held at 47 locations across the country. The newly recruited candidates selected from across the country will be joining various ministries and departments, including the Ministry of Railways, Home Affairs, Health and Family Welfare, and Department of Higher Education, among others. Addressing the Rozgar Mela, the Prime Minister emphasized that government jobs serve as a vital means to improve and ease the lives of citizens. Mr. Modi noted that the nation has placed its trust in its karma yogis and it is now their responsibility to honour and strengthen that trust through their dedication, conduct and everyday actions.
0: Karma yogi prarambh jaise module se aapko apni zimmedariyan samajhne mein bahut sahuliyat hogi. Mera aapse aagrah hai iska zyada se zyada labh uthaye. Aaj Bharat ka yuva duniya ke har kshetr mein अपनी पहचान बना रहा है। यही स्पिरिट, यही ऊर्जा पब्लिक सर्विस में भी दिखाई देनी चाहिए। विकसित भारत ऐसे ही युवाओं के प्रयास से बनेगा जो अपने काम को देश सेवा का माध्यम मानते हैं।
2: Mr. Modi highlighted, the world is eager to be a part of India's growth journey. The Prime Minister said that the country is also partnering with various countries of the world aimed at providing

0: opportunities, employment and global exposure to the youth of the nation.
1: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है. आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है. भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है. इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे. साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी। ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड रेडियो स्टेशन 100.1 मेगाहर्ट्ज़ है।

कार्यक्रम की शुरुआत आज आपके साथ शनिवार की दोपहरी सीमा वर्मा और कार्यक्रम आप जानते हैं मन भावन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जो मन को भाता है वही ख्यालों में भी आता है और जुबां पर भी आता है, और ऐसा ही कोई एक गीत जो आपके मन को बड़ा भाता है और आपके ख्यालों में आपका कोई खास है तो हम तक पहुंचाइए। कैसे भला? fmgoldair@gmail.com एक बार फिर से सुन लीजिए वो पता जहां आपको अपनी फरमाइश पहुंचानी है, fmgoldair@gmail.com। इस पते पर अपनी फरमाइश आप किसी अपने को सुना सकते हैं, नहीं जी जा रहा है सिर्फ खुद के लिए कोई गीत सुनने का आपका मन कर रहा है तो भी आप सुना सकते हैं अपने को, खुद को गीत। बस आपको करना यह है कि आपको जी हम तक अपनी मेल पहुंचानी है, और अगर कोई ख़ास दिन है आज तो भी हमें बताइए, साझा कीजिए, हम भी आपकी खुशियों में शामिल होना चाहते हैं। और इसके साथ साथ अब हम शुरू करते हैं सिलसिला जी किसका भला, आपके संदेशों का, क्योंकि हमारे बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो पहले से ही संदेशा भेजना शुरू कर देते हैं क्योंकि उनको पता मालूम है। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिंपा, कपिल छिंपा, ईशान छिंपा और पूजा परिहार हैं, और इन्होंने गीत की फरमाइश की है जी। अब थोड़ा सा आप ठहरिए, उसके बाद मैं आप तक ज़रूर पहुंचाती हूं आपके पसंद का गीत। ऊपरकोट बुलंदशहर से हमारे पास मोहम्मद सईद अब्बासी साहब हैं, निगत परवीन हैं, शाहनवाज हैं, सरफराज हैं, फरदीन हैं, सुहान हैं, अरजान हैं, अबान हैं और पूरा का पूरा बासी परिवार है जो हमें यहाँ पर सुन रहा है। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, कार्यक्रम का समय होते ही आप सब जुड़ जाते हैं हमसे। ऐसे ही एक और संदेशा आया, सनावद मध्य प्रदेश से आया है, मास्टर अशोक वर्मा है इनके साथ, बहुत सारे और इनके परिवारजन हैं, अर्चना है इनके साथ, अनुज हैं, आयुषी हैं, रमेश चंद्र वर्मा है, शेख मूसा भाईजान हैं और भाई राजकुमार जी हैं। और अगला संदेशा जो है वो अब लेते हैं जी, बिल्कुल लेते हैं। ये किसका

है अनिल मोहन जी और उषा मोहन हैं, इन्होंने हमें पहाड़गंज मुल्तानी डांडा से हमें ये संदेशा भेजा। इसी तरह आप भी अपने संदेशे हम तक ज़रूर पहुंचाइए। अच्छा लगता है कि आप अब गर्मी की बात करें कि अच्छा लगता है आप गर्मी में भी हमारा साथ दे रहे हैं। अब गर्मी कितनी ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन हमें बहुत ही चौकन्ना रहना है, बहुत ख्याल रखना है अपना। और गर्मी के बारे में मैं जिक्र करती रहूँगी क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है कि अभी आजकल बात नहीं करेंगे तो कब करेंगे। इसके बाद गांधी चौक बाड़मेर राज से बबलेश पवार हैं, डैनी पवार हैं और मनीष पवार हैं। मुझे लग रहा है मैंने नाम बहुत सारे ले लिए हैं और अब बारी है एक गीत की। और देखिए गीत से पहले भी आपके मैसेजेस जो हैं वो लगातार आ रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आप में से किसी एक की फरमाइश हम सब की फरमाइश।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की, कुछ अपनी सी। संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
2: The Indian Navy invites online applications from unmarried male and female candidates for short service commission information technology entry. Last date for submission is 1st June 2026. For more details visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy, combat ready, cohesive, Atmanirbhar, safeguarding seas for a viksit samriddh Bharat.
3: आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
4: कभी सुनहरी यादें, कभी रेडियो के वो अनमोल किस्से
3: और कभी आवाजों के पीछे छुपे संघर्ष की कहानी। सुनिए आकाशवाणी के वरिष्ठ प्रसारण कर्मियों से खास बातचीत,
4: जहां वे साझा करेंगे अपने अनुभव, यादगार पल और ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया के अनसुने किस्से।
3: आकाशवाणी के संग यादों के रंग हर दिन दोपहर 3:30 से 4 बजे तक सिर्फ FM गोल्ड पर।

नमस्कार, मैं मालिनी अवस्थी। मुझे लगता है मेरी जिंदगी की पूरी कहानी यदि आप लिखेंगे तो उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा आकाशवाणी के हवाले होगा। 90 बरस हुए और आप ये समझ लें कि 50 साल का मेरा जुड़ाव रेडियो से है। मैं 10 बरस की थी, गोरखपुर में आकाशवाणी गोरखपुर का सेंटर खुला था नया, और तब बाल जगत में सबसे पहले तो बच्चों के साथ और भैया दीदी के साथ बैठ करके बात करते थे, और वो पहला अनुभव था। ये बात हो गई 76 की, और बड़े अच्छे कमाल के ज्ञानवर्धक बातें, बच्चों को अपनी कविताएं सुनानी होती थी, कोई गा सकता है तो गाए भी, तो आकाशवाणी एक तरह से इल्म भी था। फिर वहां से रेडियो में युववाणी है, फिर अब जनरल है, फिर अब टॉप ग्रेड तक पहुंचना है, एक तरह का वो हमारे लिए सीढ़ी बन गई। गोरखपुर से लखनऊ आकाशवाणी, फिर दिल्ली रेडियो, तो हमारे लिए पूरी दुनिया में बल्कि भारतवर्ष में कॉन्सर्ट्स में हम जब यात्रा करते अलग अलग शहरों में, तो सबसे खुशी होती थी कि जब नाम के साथ ये जुड़ता था कि अब आपके सामने आ रही आकाशवाणी कलाकार मालिनी अवस्थी। और सबसे बड़ी बात आज यहाँ जरूर कहूंगी, ये आकाशवाणी इस मामले में एक बहुत क्वालिटी कॉन्शियस

0: था, आप किन को गा सकते हैं और किन को नहीं गा सकते। रेडियो का जो एक स्टैंडर्ड था वो इतना कमाल का था, तो हमारे लिए आकाशवाणी स्टूड लाइक गोल्डन स्टैंडर्ड और व्हाट नीड्स टू बी फॉलोड।
1: मारे करे जुवा माती बलम घरे ना मोरे नने दी।
2: वेलकम बैक जी, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड रेडियो स्टेशन 100.1 पर। और कार्यक्रम मन भावन है जिसमें आप अपनी फरमाइशें हमें भेज रहे हैं। आज आपके साथ शनिवार की दोपहरी मैं सीमा वर्मा, और जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि पता तो मैंने आपको खैर बताना है, लेकिन अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो बहुत ख्याल रखिएगा, अपने साथ पानी की बोतल और कुछ सर पे टोपी हो या आपके पास छतरी हो तो बेहतर होगा। और अगर बहुत कोई ज़रूरी काम नहीं है तो फिर चाहे आप ना भी निकलें घर से तो वो बेहतर होगा। बहरहाल अगर आपको अपना संदेशा हम तक पहुंचाना है, आप एफएम गोल्ड सुनते हुए एंजॉय कर रहे हैं तो fmgoldairdelhi@gmail.com fmgoldairdelhi@gmail.com। अब जी एक बार फिर आपके संदेशों पर मेरी नज़र है। मोताला बाज़ार से बबलू ठेकेदार हैं, शेख शागीर हैं, शेख वज़ीर हैं और सोहिल शेख हैं, तो ये इन्होंने अपना संदेशा भेजा है। बहुत सारे लोग तो कह देते हैं किसी में भी आप शामिल कर लें, लेकिन काफ़ी लोग अपनी फरमाइश भी भेजते हैं। संदीप मक्कड़ जी, ज्योति मक्कड़ हैं, मन्नत हैं इनके साथ, भरत हैं और कमल साहनी जी हैं, और इन्होंने कहाँ से ये हमारे पास भेजा है जी, जालंधर पंजाब से आपने हमें ये अपना जो मैसेज है ये भेजा है। और अगला संदेशा अगर मैं लेती हूँ तो नवापारा से मुकेश गुप्ता हैं, श्रद्धा गुप्ता हैं, आदिति दीपक, श्रीमती अंकु राघव गुप्ता और पिपरिया से हैं, कमलकांत जी हैं, दीपा हैं और रिमझिम हैं इनके साथ। किशन वंजानी जी, आप अपना एक जो मैसेज आपने एक बार किया ना उसको बार बार आप फॉरवर्ड करते हैं तो वो बहुत सारे नीचे आपके फॉरवर्डेड मैसेज हमें नज़र आते हैं तो हम नाम ही ढूंढते रह जाते हैं, लेकिन हमने आपका नाम पढ़ लिया है। किशन वंजानी है, आपके साथ नीलम है, स्वाति हैं, किशु हैं, रेलवे कॉलोनी आनंद विहार से आपने हमें ये लिखा है जी अपना पत्र, डिजिटल पत्र, और आपने गीत की फरमाइश की है, मेरी कोशिश है मैं ज़रूर सुनवाऊंगी। जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन और दीपांशु, ये आपने होली चौक उत्तम नगर से हमें संदेशा भेजा। एक छोटी सी आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, अगर आप इसे पूरा कर देंगे तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं। ऊपर से नीचे जब हम नाम पढ़ते हैं ना तो थोड़ी सुविधा हो जाती है, तो नाम आप एक के नीचे एक लिखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। यहाँ पर हमारे पास गाँव लोहगढ़ से हमारे पास ये संदेशा आया है, किसका है, स्वर्ण सिंह गिल जी हैं, दलजीत हैं इनके साथ, राजदीप हैं, गुरनूर हैं और गुरलाल सिंह जी हैं, और एक और नाम है जो मैं अब ले रही हूँ, अविराज सिंह जी हैं। तो अब नाम हो गए हैं या फिर आपको लग रहा है कि अब भी तो मैंने शुरू किया। चलिए, राजकुमार जी, प्रमोद कुमार जी और पुष्पिंदर कुमार जी, आपने हमें कहाँ से ये लिखा है, कहाँ से आपने समझ नहीं आ रहा, पर लिखा है कि कोई भी आप गीत सुनवा दें तो हम कोई भी गीत आपको सुनवा देते हैं। हरजिंदर सिंह भाटिया जी, एंजल भाटिया, पप्पी भाटिया, सोनू भाटिया, आपने हमें जमशेदपुर से ये संदेशा भेजा है, और अब लग रहा है, मुझे ही फील हो रहा है कि ज़्यादा नाम हो गए हैं तो गीतों की खूबसूरत और दिलकश दखलंदाजी होती रहे तो फिर मज़ा आता है।

लता जी के गाए इस गीत के बाद मेरी नजर आपके संदेशों पर है। एक बार फिर जान लें fmgoldaardelhi@gmail.com और 3:45 हो गए हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि भाई समय अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए। और खाम गांव से ये हमारे पास अनंता वाड़े हैं, रामेश्वर हैं इनके साथ, शुभम, साक्षी, खुशी और समस्त वाड़े परिवार है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके संदेशे के लिए। नबी हसन अब्बासी साहब हैं, शहनाज अब्बासी हैं, नवेद हसन अब्बासी हैं, सुहेल हसन अब्बासी हैं, रसीद वारसी हैं, अनम अब्बासी हैं और यशफ अब्बासी हैं। और आपने भी एक गीत की फरमाइश की है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। उत्तम नगर दिल्ली से कमला रानी, बोधराज खोरवाल, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश, आपने भी अपना संदेशा हमें भेजा है। इसके साथ साथ शबनम का एक और संदेशा आया है हमारे पास यहाँ पे। और एक ये संदेशा है जिसमें इन्होंने कहा है कि हमारा SMS अब कहाँ गायब कर देती हैं। तो फैज़ अहमद साहब, अब अगर आपने ये शब्द इस्तेमाल कर ही लिया है कि गायब कहाँ कर देती हैं, तो फिर मैं भी एक अलग अंदाज़ में कह दूँ कि गिली गिली गिली गिली छू आपका दिखे। संदेशा मुझ तक पहुँच गया और मैं देख लिया है। फैज़ अहमद और साबिर जी, आपने हमें हुबली कर्नाटक से हमें ये संदेशा भेजा है। और अब बारी है एक गीत।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
2: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें। PM सूर्य घर .gov.in पर।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड रेडियो स्टेशन 100.1। आपके साथ मैं सीमा। दोपहरी है आज शनिवार की और वक्त अब ज़्यादा आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी कुछ एक नाम जो हैं वो लेने भी ज़रूरी हैं, तो कुछ नाम हम पढ़ देते हैं, उनकी फरमाइशें भी आप तक पहुंचा देते हैं। रघुवीर नगर से दिलावर खां साहब हैं, हसीना बानो हैं, एलिजिया नायाब हैं और लड्डू जी हैं। वहीं मोताला महाराष्ट्र से अगर हम बात करें तो विजय सुरलकर हैं, रत्नमाला हैं और कुमकुम है। असम की बात अगर हम करें तो एच आर पंड्या जी हैं, हिरेन हैं, नरेन हैं, वीरेन हैं और इन्होंने भी एक गीत की फरमाइश की है। मोहम्मद यूनस खत्री जी और मोहम्मद सादिक खत्री, आपने क्या लिखा है, इंतज़ार कीजिए इंतज़ार, अभी तो कार्यक्रम है। अब ऐसे आप नहीं मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा सकते हैं, फ़िलहाल तो कार्यक्रम है और मैंने आपका जो ख़त है ये ले लिया, डिजिटल ख़त आपका, और आपको मैंने नाराज़ होने का मौका नहीं दिया। स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप, गुरनूर, गुरलाल और अविराज सिंह जी, आपने दोबारा मैसेज कर दिया। कई बार हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये मैसेज हमने पढ़ा कि नहीं पढ़ा। वहीं चंडीगढ़ से हमारे पास सतीश अनेजा और बिमला अनेजा हैं, उनका भी हमारे पास ये संदेश आया है और अब आप सबकी फरमाइश में से किसी एक खास की फरमाइश ले लेते हैं। '81 में फिल्म आई धनवान, और जिस किसी की भी ये फरमाइश है, मुझे भी ये गीत सुनने में अच्छा लग रहा है, बहुत दिनों में सुना।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: एफएम गोल्ड पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन भावन, जिसका अब जो समय है वो बिल्कुल संपन्न होता है, समाप्त होता है। चलते चलते एक संदेशा जो कहता है, आपके प्रोग्राम में मेल शामिल होना माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने से भी मुश्किल प्रतीत होता है, ऐसे तो ना कहें भारत भूषण जी, ऐसे तो ना कहें। अंजू श्रीवास्तव जी और दिव्येंदु भूषण हैं, इनके साथ संस्कृति हैं और पौरुष हैं। हमारी तो कोशिश रहती है पूरी, लेकिन हर बार कोई ना कोई तो छूट जाता है। तो आपके हम अपने हैं, एफएम गोल्ड आपका अपना है, तो यूं आप नाराज ना हो। आपसे मन भावन प्रोग्राम रोज़ मुखातिब होता है, रोज़ मिलने आता है, इस बार नहीं तो अगली बार ज़रूर ज़रूर आपका जो खत है वो शामिल किया जाएगा। तो फिर फिलहाल के लिए सीमा वर्मा को इजाजत दीजिए, अब कुछ ही देर में हम मिलकर समाचार सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम हैं। श्री मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 19वें रोजगार मेले में कहा कि देश ने अपने कर्मयोगियों पर भरोसा जताया है और अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि वे अपनी लगन, आचरण और रोजमर्रा के कामों से उस भरोसे का मान रखें और उसे मजबूत करें। श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है।
1: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हर भारतीय देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ काम कर रहा है। श्री मोदी ने कर्मचारियों को iGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने के लिए भी प्रोत्साहित किया। 19वें रोजगार मेले में सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में नवनियुक्त 51,000 से भी अधिक युवाओं को आज नियुक्ति पत्र सौंपे गए। इस अवसर पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार के प्रयासों का मुख्य जोर भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर रहा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नए भर्ती हुए लोग वर्ष 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में देश की यात्रा में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। वहीं कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि रोजगार मेले के परिणाम स्वरूप पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से नियुक्तियों में वृद्धि हुई है। श्री सिंह ने कहा कि इस पहल ने समय

0: सीमा का सख्ती से पालन किया है, जिससे युवाओं में आत्मविश्वास बढ़ा है। संसदीय कार्य और सूचना तथा प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा कि सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। चेन्नई स्थित ICF में आयोजित रोजगार मेले को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश बुनियादी ढांचे, डिजिटलीकरण, रोजगार के अवसरों और व्यापार सुगमता के क्षेत्र में तीव्रता से प्रगति कर रहा है। केरलम में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने आज तिरुवनंतपुरम में रोजगार मेले का उद्घाटन किया। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि राज्य में अगले 5 वर्ष में 1,00,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हर वर्ष कम से कम 20,000 शिक्षकों की भर्ती सुनिश्चित करें। बिहार सरकार ने 21 जून को नीट यूजी पुनः परीक्षा में शामिल होने वाले राज्य के सभी विद्यार्थियों के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी साझा की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक दिन और बढ़ाकर कल तक कर दी है। CBSE ने ये निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया है, जिससे वेबसाइट बाधित हो रही थी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज वृद्धि हुई है। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में तीसरी बार वृद्धि दर्ज की गई है। हालांकि भारत दुनिया की एकमात्र ऐसी बड़ी अर्थव्यवस्था है जिसने होर्मुज जलडमरू मध्य में रुकावट के शुरुआती 76 दिनों के दौरान खुदरा ईंधन कीमतों को लगभग अपरिवर्तित रखा है। सूत्रों के अनुसार रूस यूक्रेन युद्ध और होर्मुज जलडमरू मध्य के बंद होने के बीच भारत वैश्विक तेल संकट का असर स्वयं पर लेता रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज से 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। वे मंगलवार को होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचे। और IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Prime Minister Narendra Modi has emphasized that government jobs serve as a vital means to improve and ease the lives of citizens. He made these remarks while addressing the 19th Rozgar Mela through video conferencing today. He noted that the nation has placed its trust in its Karmyogis and it is now their responsibility to honour and strengthen that trust through their dedication, conduct and everyday actions.
2: कर्मयोगी प्रारंभ जैसे मॉड्यूल से आपको अपनी जिम्मेदारियां समझने में बहुत सहूलियत होगी। मेरा आपसे आग्रह है कि इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। आज भारत का युवा दुनिया के हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहा है। यही स्पिरिट, यही ऊर्जा पब्लिक सर्विस में भी दिखाई देनी चाहिए। विकसित भारत ऐसे ही युवाओं के प्रयास से बनेगा जो अपने काम को देश सेवा का माध्यम मानते हैं।
1: मिस्टर मोदी हाइलाइटेड द वर्ल्ड इज ईगर टू बी अ पार्ट ऑफ इंडियाज ग्रोथ जर्नी। ही सेड अदर कंट्रीज आल्सो पार्टनरिंग विद वेरियस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एम्ड एट प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट एंड ग्लोबल एक्सपोजर टू द यूथ ऑफ द नेशन। In the 19th edition of Rozgar Mela today, more than 51,000 appointment letters to newly appointed youth in various government departments and organizations were distributed. Union Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pensions, Dr. Jitendra Singh today said that the Rozgar Mela has resulted in increased appointments in a transparent and time-bound manner. Speaking at the Rozgar Mela in New Delhi, Dr. Singh noted that the initiative has strictly adhered to timelines and thereby enhancing confidence among the youth and ensuring a more merit-based selection process. Bihar Chief Minister Samrat Chaudhary today announced that 1,00,000 teachers will be recruited in the state over the next 5 years. During a high-level review meeting of the

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड रेडियो स्टेशन 100.1 है। आइए साथियों, आपको बताते हैं आपके मनपसंद एफएम गोल्ड पर आप आने वाले घंटों में कौन कौन से कार्यक्रमों को सुन सकते हैं, उनका आनंद ले सकते हैं। अब से कुछ ही देर बाद यानी 4:20 पर आप और हम मिलकर सुनेंगे एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ और रोजगार समाचार। 4:30 का वक्त न्यूज सर्विसेज डिवीजन के कार्यक्रम परिक्रमा का रहेगा। आप जानते हैं आपके मनपसंद एफएम गोल्ड 100.1 पर हर घंटे आप समाचार सुनते हैं और इसी कड़ी में 5:00 हिंदी में समाचार आप सुनेंगे, 5:05 पर अंग्रेजी में समाचार होंगे और 5:10 पर कार्यक्रम गाते गुनगुनाते में आप मेरे यानी सीमा वर्मा के साथ होंगे और हम होंगे 80 और 90 के खूबसूरत रेट्रो गीतों के साथ। आगे के कार्यक्रमों की जानकारी भी मैं आपको जरूर दूंगी, लेकिन आइए उससे पहले सुन लेते हैं एक बहुत खूबसूरत सा गीत 2 बूंद पानी फिल्म से।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
2: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

स्वागत आप सभी का एक बार फिर एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। साथियों, शाम के कार्यक्रमों की बात करें तो 6:10 पर सदाबहार गीत आपके साथ रहेंगे, होंगी आपके साथ नईम अख्तर। और अगर हम उन कार्यक्रमों की बात करें जहां हम फिल्मी गीतों को सुन सकते हैं तो शाम 7:25 पर सांझ ढले कार्यक्रम ना सुनना भूलिएगा, नईम आपके साथ रहेंगी। और 8:10 से 8:30 तक मधुरिमा कार्यक्रम भी आप ज़रूर सुनिएगा, जिसमें हम गीत आपकी नज़र करते हैं लेकिन उनके शास्त्रीय अंग की भी हम बात इसमें करते हैं। रात के कार्यक्रमों की बात करें तो 10:30 हर श्रृंगार कार्यक्रम आप ज़रूर सुन सकते हैं, साथ आपके रहेंगी माधुरी। और रात 11:10 से आप सुन सकते हैं माधुरी के साथ गीत मेरे मन में।

ये तो एक हमने झलकी आपको बताई कि आपके मनपसंद एफएम गोल्ड पर आप आने वाले घंटों में कौन कौन से कार्यक्रमों का आनंद ले सकते हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: and Industry, Government of India, has extended the last date for applications for the post of Preventive Officer Group B on deputation basis in Level 7 as per the 7th CPC. The vacancy falls under the jurisdiction of Development Commissioner NSEZ, Noida. Eligible candidates may apply through proper channel within 30 days from the publication of this advertisement in the Employment News. For details, kindly do refer to the website, that is at www.jaipursays.gov.in. Indian Institute of Management, Ranchi, has invited online applications for contractual appointments to the post of a Corporate Relations Manager, Assistant Manager, Corporate Relations Officer, Senior Associate, Corporate Relations Officer again, and Clinical Psychologist. Candidates with qualifications in MBA, psychology or related fields along with relevant professional experience may apply. The last date for submission of online applications is 25th May 2026. Detailed eligibility criteria, age limits, salary structure and the application links available on the Institute's website. Do refer to www.iimranchi.ac.in. I repeat, it is www.iimranchi.ac.in. And now we have the employment news in Hindi.
1: Samachar Seva Prabhag prastut karta hai Rozgar Samachar. नमस्कार, रोजगार समाचार के साथ हाजिर हूँ मैं विनीता। आइए कुछ जानकारी लेते हैं रिक्तियों से संबंधित।
2: नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर NHSRC नई दिल्ली योजना प्रभाग ब्यूरो BOP NHA सेल के अंतर्गत पूर्णता संविदा के आधार पर कुछ पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किया जा रहा है। पदों का नाम जूनियर कंसल्टेंट NHA सेल BOP डिविजन MOH एंड FW। रिक्तियों की संख्या 2 है और आयु सीमा 55 वर्ष है। इन्हें मिलेगा 40,000 रुपए से 70,000 रुपए। जहाँ तक योग्यता और अनुभव की बात है, आवश्यक योग्यता और अनुभव के विवरण के साथ टर्म्स ऑफ रेफरेंस TOR www.nhsrcindia.org या फिर www.mohfw.gov.in और www.devnetjobsindia.org पर उपलब्ध है। आवेदन आप ऑनलाइन कर सकते हैं। अंतिम तारीख होगी 1 जून 2026।
1: राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर, इस संस्थान में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के यंग प्रोफेशनल्स को नियुक्त करने के लिए आवेदन आमंत्रित किया जा रहा है। विस्तार में जानकारी आपको मिल जाएगी यहाँ के वेबसाइट से, यानी nsi.gov.in। निर्धारित प्रारूप में आवेदन आप भेज सकते हैं निदेशक राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर 208017। यहाँ भेज सकते हैं 8 जून 2026 तक अवश्य ये आवेदन पहुँच जाने चाहिए।
3: सशस्त्र बल अधिकरण AAFT क्षेत्रीय पीठ कोलकाता हेतु पात्र अभ्यर्थियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर 3 वर्ष की अवधि के लिए विभिन्न पदों पर आवेदन आमंत्रित किया जा रहा है। पात्रता मानदंड, प्रारूप एवं आवेदन से संबंधित अन्य शर्तों आदि का विवरण आप पा सकते हैं वेबसाइट से। वेबसाइट की जानकारी आपको दे दें www.aftkolkata.nic.in। एक बार पुनः सुन ले, www.aftkolkata.nic.in और www.aftdelhi.nic.in। जमा करने की अंतिम तारीख होगी 5 जून 2026।
1: राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधीन भारत सरकार का प्रमुख मिनी रत्न उद्यम, इस डोमेन में विशेषज्ञता वाले 17 युवा पेशेवरों YP से संविदा आधार पर विभिन्न क्षेत्रों में नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किया जा रहा है। पद का नाम है YP सॉफ्टवेयर और वेब विकास। पदों की संख्या 2 होगी। YP डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया प्रबंधन, पदों की संख्या 2 होगी। YP बाजार और आर्थिक विश्लेषण, पदों की संख्या यहां पर भी 2 होगी। YP डिजिटल मार्केटिंग, ई कॉमर्स इत्यादि, 1 पद यहां रिक्त है। YP कंपनी सचिव, 1 स्थान यहां रिक्त है। YP सामग्री प्रबंधन, 1 स्थान रिक्त है। YP मार्केट रिसर्च, डेटा व्याख्या और वित्तीय विश्लेषण, 1 स्थान रिक्त है। YP

0: सिविल इंजीनियर एक स्थान रिक्त, वाईपी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एक स्थान रिक्त है, वाईपी एमएसएमई बिजनेस आउटरीच दो स्थान रिक्त है, वाईपी वेंचर इक्विटी फंड के वरिष्ठ विश्लेषक दो स्थान रिक्त है, वाईपी वेंचर कैपिटल फंड के लिए आईटी विशेषज्ञ एक स्थान रिक्त है। नौकरी के विस्तृत विवरण, नियम एवं शर्तें और आवेदन पत्र के लिए कृपया आप NSIC की वेबसाइट www.nsic.co.in के करियर अनुभाग पर जाएं। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो अंतिम तारीख है वो है 8 जून 2026। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग एक वैधानिक निकाय है। दिल्ली में दो पूर्णकालिक सदस्य तकनीकी के पदों पर चयन एवं नियुक्ति के लिए पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किया जाता है। विस्तार में विज्ञापन आपको मिल जाएगी वेबसाइट के थ्रू। उसके लिए आपको वेबसाइट विजिट करना होगा moef.gov.in। आवेदन करने वाले सभी आवेदकों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।
1: दिस प्रोग्राम वॉज प्रोड्यूस्ड एंड प्रेजेंटेड बाय द न्यूज सर्विसेज डिवीजन ऑफ आकाशवाणी।

0: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा। नमस्कार, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ है खास उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। श्रोताओं, परिक्रमा के संघ के साथ मैं हूं करिश्मा राय और मेरे साथ है मेरी सहयोगी सायरा मुज्तबा। सायरा, आपको भी नमस्कार।
1: नमस्कार करिश्मा, आदाब एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स हु हैव जॉइंड अस इन दिस वेरी फ्रेश एपिसोड ऑफ परिक्रमा। हज़ब दस्तूर लाए हैं आपके लिए ताज़ा तरीन खबरें एंड ऑफ़ कोर्स इज द नेम ऑफ द शो इज परिक्रमा, सो वील गो टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड सी व्हाट इंटरेस्टिंग स्टोरीज आवर कॉरेस्पोंडेंट्स हैव फ्रॉम देयर। All of that in the next roughly half an hour, but first let's start with the headlines, Karishma.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न सरकारी विभागों के नवनियुक्त कर्मचारियों को 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित किए। कहा, भारत युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव प्रदान करने के लिए विश्व के विभिन्न देशों के साथ साझेदारी कर रहा है।
1: बिहार गवर्नमेंट टू रिक्रूट 1,00,000 टीचर्स इन द स्टेट ओवर नेक्स्ट 5 years।
0: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा बोर्ड परीक्षा के उत्तर पुस्तिकाओं के स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि 1 दिन और बढ़ाकर कल तक की।
1: यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो मीट्स प्राइम मिनिस्टर मोदी इन न्यू दिल्ली टुडे।
0: और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला के बुंडी बुग्गियो स्ट्रेन से उत्पन्न स्वास्थ्य खतरे को उच्चतम किया।
1: एंड इन आईपीएल, लखनऊ सुपर जॉयंट्स टू टेक ऑन पंजाब किंग्स इन लखनऊ दिस इवनिंग। And Karishma, as always, we open our show with a very special segment, Dateline India. And of course, since a very important day today because so many people got the appointment letters. So the topic today we have, the first topic rather, is Rozgar Mela. Aur agar waqt hoga to hum log dusra topic bhi bahut interesting hai, usse introduce karenge. But first talking about Rozgar Mela.
0: और लाखों भारतीय घरों में एक सपना बसता है, एक ऐसा सपना जिसकी शुरुआत अक्सर एक छोटी सी स्टडी टेबल पे एक मध्यम सी रोशनी वाले लैम्प के नीचे होती है और बगल वाले कमरे में माता पिता चुपचाप अपने बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं। एक युवा लड़का जो अपने पिता की दुकान में हाथ बटाते हुए रेलवे की परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है, या फिर एक बेटी जो घर के सारे कामकाज निपटाने के बाद देर रात तक पढ़ाई करती है।
1: Well, that's true, and we have

0: seen so many anxious parents waiting outside exam centers, you know, ki chahe dhoop ho, loo ho, aandhi ho, jo bhi ho, wo kis ummeed se apne bachchon ke liye wait karte hain, is ummeed mein that, you know, one day we will get that appointment letter or email that says that congratulations, you have been selected. Well, what changes in that moment? Is it only a job or an entire family's future? Today, across India, thousands of such dreams turned into reality.
1: बिल्कुल, और इसी के साथ श्रोताओं, आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 19वें रोजगार मेला को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को याद दिलाया कि सरकारी नौकरियां केवल रोजगार के अवसर ही नहीं हैं, वे एक जिम्मेदारी हैं, लोगों के जीवन को बेहतर बनाने और व्यवस्था में नागरिकों के भरोसे को और मजबूत करने का एक अवसर है.
0: That's right, Karishma. And in his address, Prime Minister Modi said that the newly recruited youth are actually the karma yogis of our country. And now it is their duty to honor the trust that the country has placed in them through their dedication, honesty and everyday service. And isn't that what truly builds a nation, Karishma?
1: Bilkul sahi. Aur Pradhan Mantri ne ek aisi baat ka bhi zikr kiya jo vaishvik star pe Bharat ki chhavi ko badal rahi hai. Aaj puri duniya Bharat ki vikas yatra mein uske saath kadam se kadam milakar chalne ko utsuk hai. Duniya bhar ke desh Bharat ke saath saajhedari kar rahe hain jisse bhartiya yuvaon ke liye avsaron, rozgar aur vaishvik anubhav के नए दरवाजे खुल रहे हैं.
2: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है. आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है. भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है. इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे. साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले.
0: And Karishma, there was a time when many believed that opportunities existed only outside India. But today the world itself is looking towards India as a trusted supply chain partner, an innovation hub and a rising economic force.
1: बिल्कुल सही कहा आपने. और एक नए भर्ती हुए कर्मचारी को एक कुशल लोक सेवक बनने में क्या चीज मदद करती है, ये समझना भी जरूरी है. इसका जवाब सिर्फ नियुक्ति पत्रों में नहीं है बल्कि सीखने और आगे बढ़ने में छिपा हुआ है. इसलिए प्रधानमंत्री ने नियुक्ति किए गए लोगों को आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म का सक्रिय रूप से इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित किया. एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे सरकारी कर्मचारियों को अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर ढंग से समझने और नागरिकों की ज्यादा असरदार तरीके से सेवा करने में मदद करने के लिए बनाया गया है.
0: That's right, Karishma. Today, the scale of this mission is truly remarkable. Under the 19th Rozgar Mela, more than 51,000 appointment letters were distributed across 47 locations in the country. These newly selected candidates will join various departments and ministries. Behind every appointment letter lies a deeply personal story. Maybe somewhere in Rajasthan, a father proudly framed his son's first government appointment letter.
1: बिल्कुल, और इसी के साथ श्रोताओं, ये भी समझिए कि किस तरीके से हो सकता है कि केरलम में अपनी पोती के चुने जाने की खबर सुनकर किसी दादी ने पड़ोसियों को मिठाई बांटी हो, या फिर हो सकता है कि पंजाब में किसी युवा रंगरूट ने चुपचाप अपने संघर्ष के वर्षों को निहारा हो और अंत में धीरे से कहा हो कि ये सब सार्थक रहा.
0: That's right. और सुन के ही कितनी खुशी हो रही है, isn't it? Well, Union Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pensions, Jitendra Singh, said that the Rozgar Mela has helped ensure transparent and time-bound recruitment. He highlighted that strict timelines and merit-based selection processes have increased confidence among the youth, and confidence matters. Because when young people trust the system, they dream bigger. They prepare harder and they believe that effort can truly change destiny.
1: डॉक्टर सिंह ने कर्मचारी चयन आयोग में किए गए बड़े सुधारों के बारे में भी बात की. परीक्षाओं के चक्र को काफी हद तक कम कर दिया गया है. परीक्षाएं अब क्षेत्रीय भाषाओं में आयोजित की जा रही हैं और शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए तेज प्रणालियां शुरू की गई हैं. ये बदलाव सुनने में भले ही प्रशासनिक सुधार लगे, लेकिन किसी ऐसे छात्र के लिए जो परीक्षा देने के लिए सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करता है, या किसी एक ऐसे उम्मीदवार के लिए जो अपनी मातृभाषा में ज्यादा सहज महसूस करता है, ये बदलाव बहुत बड़ा फर्क ला सकता है.
0: जी हाँ करिश्मा, और क्यों ना अब सुना जाए, सुनी जाए उनकी कहानी उन्हीं की जुबान.

0: Sakshi. Let's hear some of the beneficiaries who are sharing their experiences.
1: My name is Sakshi Verma and I'm from Raipur, Chhattisgarh, and I'm very grateful to ICF and PM Narendra Modi and Government of India that I get this opportunity through cultural quota. As a classical dancer, we get this job is very difficult and I'm very grateful to them. So thank you, ICF.
2: My name is Santakishore. I'm from Trivandrum, Kerala. I wrote this exam some years back, but now I got posted and now I'm very happy. I thank our central government for providing such an opportunity. I will take this not only as my work, but a service to the nation.
3: My name is Tejinder Singh Kanda. I am from Bathinda, Punjab, and I am selected for junior associate in State Bank of India. I am so grateful for the central government giving me the opportunity to serve the nation.
0: Very inspiring indeed, and perhaps that's the beauty of these stories, that so many different states coming, people coming from different languages, different backgrounds, but one shared feeling of pride to serve the nation. Across the country, Rozgar Melas reflected this spirit, and in West Bengal, appointment letters were distributed in Kolkata, Kharagpur and Siliguri.
4: Aur Rajasthan mein Jaipur, Jodhpur, Ajmer aur Bikaner mein 1100 se adhik yuvaon ko niyukti patra mile. Aur Kerala mein Kendriya Mantri Suresh Gopi ne Rozgar Mela ko yuva shakti ko rashtra shakti mein badalne ka ek mission bataya. Aur sach bhi to yahi hai. Kya Bharat ki sabse badi taakat uske log nahi hai?
0: Bilkul hai, and yes, because every appointment letter handed over today was not merely a document, it was a promise of trust, a promise of opportunity, and a promise that India's future is being shaped by the hands of its own youth. And now, Karishma, hum log ne ek dusre topic ka bhi zikr kiya tha, to kyun na jaldi se usko uska bhi zikr kar hi liya jaye. Today is International Turtle Day. And isn't it amazing, Karishma, how our turtles seem to carry a sense of calm wherever they go. Slow, patient and silent. They travel through water and land as though they are untouched by the rush of the modern world around.
4: बिल्कुल. और श्रोताओं, हर साल 23 मई को दुनिया विश्व कछुआ दिवस मनाती है. यह दिन उन असाधारण जीवों का उत्सव मनाने का है और उनकी रक्षा करने के लिए समर्पित है जो लाखों वर्षों से पृथ्वी पर मौजूद हैं.
0: जी हाँ करिश्मा, वो लाखों वर्षों से मौजूद भी हैं और इनफैक्ट उनका खुद का भी जो लाइफ स्पैन होता है वो बहुत बड़ा होता है. एंड समवेयर आई हैड रेड दैट अ मेजर रीजन ऑफ टर्टल्स हैविंग यू नो लिविंग वेरी लॉन्ग लाइव्स इज बिकॉज Their breaths are really slow. तो जो हम लोग आजकल एक्सरसाइज में लोग कहते हैं ना ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करिए, यू नो इनहेल एंड एक्सहेल डीपली. सो दैट इज वन मेजर रीजन के आप अगर पढ़ेंगे, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर हाउ मेनी सेकेंड्स, बट इट्स अ वेरी लॉन्ग ब्रेथ ऑफ अ टर्टल. सो दैट इज अ वेरी मेजर रीजन फॉर देयर यू कैन से इंक्रीज्ड लाइफ स्पैन. एंड वेल, इंटरनेशनल टर्टल डे वॉज फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 2000, नॉट मेयरली एज अ सेलिब्रेशन बट एज अ रिमाइंडर दैट सम ऑफ नेचर्स मोस्ट ब्यूटिफुल क्रिएशंस survive quietly but disappear quietly too if we fail to notice them.
4: बिल्कुल. और सायरा, जो आप जिक्र कर रही थी वही बात हम आगे बढ़ाएंगे कि कछुए हमें एक बहुत ही गहरा और सार्थक सबक भी सिखाते हैं, वह है जुझारूपन. वे हमें सिखाते हैं कि धीमा होने का मतलब कमजोर होना नहीं है और शांत होने का मतलब महत्वहीन होना नहीं है.
0: अनफॉर्चुनेटली देखिए ना, बड़े शहरों में खास तौर से बड़े शहरों में आजकल की दुनिया ही इतनी जल्दबाजी की हो गई है कि लोगों को यही लगता है कि अगर कोई शांत है तो वो स्लो है. और वी हैव ग्लोरिफाइड यू कैन से ओवरवर्किंग विच इज वेरी बैड. इट्स अ बैड प्रेसिडेंट बिकॉज यू नो वी शुड लुक फॉरवर्ड टू अ स्लो लाइफ इज वेल बिकॉज दैट इज वॉट मेक्स अ लाइफ यू कैन से फुल ऑफ क्वालिटी टाइम. एंड वी कैन प्रॉब्ली लर्न फ्रॉम टर्टल्स. वेल, टर्टल्स आर रेप्टाइल्स हु बिलोंग टू द ऑर्डर ऑफ टेस्टुडिन्स. नॉट exactly reptiles, we can say they are amphibians, and they can be found in freshwater rivers, ponds, wetlands and even deep oceans. Some spend most of their lives swimming through vast seas while others prefer life on land. That brings us to a question that many people often ask. Are turtles and tortoises the same?
4: खैर, बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि सभी कछुए टर्टल होते हैं लेकिन सभी टर्टल कछुए नहीं होते. कुछ कछुए पूरी तरह से जमीन पर रहते हैं जबकि कई टर्टल कुछ हद तक या ज़्यादातर पानी में रहते हैं. एक और दिलचस्प बात यह है कि टर्टल ठंडे खून वाले जीव होते हैं जिनमें एक्टोथर्म भी कहा जाता है. इंसानों की तरह अपने शरीर की गर्मी खुद पैदा करने के बजाय वे अपने शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए गर्म और ठंडी जगहों के बीच आते जाते रहते हैं और धीमे धीमे अपने मेटाबॉलिज्म की वजह से कुछ टर्टल बिना खाए या पानी पिए भी हैरानी की

0: बात है कि काफी लंबे समय तक वो जिंदा भी रहते हैं.
1: That's right. And well, sea turtles especially are among the greatest travelers of the natural world. Species like the olive ridley, the green turtle, hawksbill, leatherback, and loggerhead, they cross enormous oceans during their lifetime. Well, that's really astonishing, isn't it?
0: बिल्कुल. और भारत के पास इस मामले में गर्व करने की हर वजह है. हमारा देश कछुओं की अद्भुत विविधता का घर है. असल में भारत में ताजे पानी के कछुओं के लगभग 30 प्रजातियां पाई जाती हैं और उत्तर प्रदेश, असम तथा पश्चिम बंगाल जैसे राज्य इनके लिए महत्वपूर्ण आवास बन गए हैं.
1: That's right. And in fact, even the beaches of Odisha, we have you know, read that the olive ridley turtle वो वहाँ पे nesting करते हैं. And it is home to 5 species of sea turtles, including the olive ridley, green turtle, the loggerhead. But sadly, these beautiful creatures are also facing growing dangers, especially we see, in fact, जितनी भी marine life है, हम सब लोग परेशान हैं. जो human waste, जो खासतौर से plastic waste हम लोग pour कर रहे हैं in our water bodies, I think that is really posing a danger to turtles itself. And they are floating in rivers and oceans. They are shrinking habitats. Climate change is happening. Illegal wildlife trade threaten their survival every single day as well.
0: बिल्कुल. और इसलिए श्रोताओं, हम सभी को समझना जरूरी है कि समुद्र में तैरता हुआ एक प्लास्टिक का थैला हमें शायद बेजान और नुकसान रहित लगे, लेकिन एक कछुए के लिए यह खाने जैसा दिख सकता है और इंसानों की एक छोटी सी लापरवाही किसी जीव की जान ले सकती है. गैर कानूनी तस्करी भी एक और गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है, खासकर उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में, जहां अक्सर कछुओं का शिकार उनके मांस, पालतू जानवर बनाने या फिर पारंपरिक दवाओं के लिए किया जाता है.
1: And that raises an important question for all of us. Can a species that survived dinosaurs truly disappear because of human carelessness? Well, maybe yes, maybe no. But we have to be very, very protective about them. And thankfully, conservation efforts across India are giving hope. Uttar Pradesh has emerged as a leader in turtle conservation with dedicated centers in Kukrail, in Lucknow, Sarnath, in Varanasi, चंबल इन अटावा एंड इवन अ 30 किलोमीटर टर्टल सैंक्चुरी इन प्रयागराज. मेरे ख्याल से बहुत कम लोग को पता होगा इस चीज के बारे में.
0: बिल्कुल. और इसके साथ ही श्रोताओं, वन विभाग कछुओं के अवैध व्यापार को रोकने के लिए भी सक्रिय रूप से काम कर रहा है, विशेष रूप से पीलीभीत जैसे क्षेत्रों में. अब पीलीभीत टाइगर रिजर्व में माला नदी के किनारे पर एक नया कछुआ संरक्षण और अनुसंधान केंद्र विकसित कर रहा है. ये प्रयास हमें याद दिलाते हैं कि संरक्षण का अर्थ केवल वन्य जीवों की रक्षा करना ही नहीं, बल्कि प्रकृति के नाजुक संतुलन को बनाए रखना और हमारे सामूहिक भविष्य को सुरक्षित रखना भी है.
1: So perhaps this World Turtle Day, the next time we stand by a river bank or gaze at the ocean or spot a turtle, maybe just on a television screen, we should remember that beneath that gentle and unhurried movement lives a story millions and millions of years old.
0: बिल्कुल. और शायद असली सवाल ये नहीं है कि क्या कछुओं को अपने अस्तित्व के लिए हमारी जरूरत है या नहीं है. असली सवाल ये है कि क्या इंसानियत सचमुच प्रकृति के उन अजीबों की रक्षा करे बिना ही फल फूल सकती है जो इस ग्रह को सबसे पहले इतना सुंदर बनाते हैं. और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है.
1: वेल करिश्मा, तो वो वक्त आ गया है जब हम लोग देश की परिक्रमा पे निकलते हैं. तो अपना सफर सबसे पहले शुरू करते हैं फ्रॉम सिक्किम. Well, Sikkim is set to get its second international trade gateway after the Nathula Pass in West Sikkim. Let's hear more from our correspondent.
2: Plans underway to develop a multimodal corridor and integrated checkpost at Chewa Wangjiang in West Sikkim along the India-Nepal border. The project gained momentum after Chief Minister of Sikkim, Mr. Prem Singh Tamangole, visited Chewa Wangjiang in 2024 and announced plans to develop a trade and connectivity corridor with Nepal. Recently, the Standing Committee of the State Board for Wildlife under the Department of Forest held a meeting chaired by Minister of Forest, Government of Sikkim, Pinso Namgyal Lepcha, regarding this project. According to Chief Conservator of Forest, Mr. Uday Gurung, the committee has given in-principle approval for the proposed multimodal corridor and integrated checkpost. The project aims to boost cross-border trade, tourism and regional economic integration between India

0: and Nepal. The proposed facility will include cargo handling services, warehousing, banking, healthcare, parking areas, and other essential services under one roof. Popular religious destination Pathibhara Devi Temple in Nepal currently takes around 12 hours to reach via Darjeeling in West Bengal. However, travel time could reduce to nearly 5 hours once the new corridor becomes operational. Government of Sikkim has already constructed an 18-kilometer road connecting Uttare to Cheohangjiang, paving the way for future trade and movement between the two neighboring countries. With Manoj Pratim Sharma, this is Mohinak Chatterjee from Akashvani News Gangtok for Parikrama.
1: और सिक्किम के बाद अब चलते हैं उत्तराखंड, क्योंकि हिमालयी वादियों में इन दिनों आस्था, श्रद्धा और आध्यात्मिक उल्लास का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। एक और चमोली जिले में स्थित सिखों के प्रसिद्ध तीर्थस्थल हेमकुंड साहिब के कपाट आज श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए, तो वहीं दूसरी ओर चारधाम यात्रा में भी देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। एक रिपोर्ट।
2: चमोली जिले की ऊंची हिमालय की चोटी के बीच स्थित हेमकुंड साहिब के कपाट आज पूर्वाह 11:30 बजे श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। कपाट खुलते ही पूरा क्षेत्र जो बोले सो निहाल, सस्त अकाल के जयकारों से गूंज उठा। बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने इस ऐतिहासिक और आध्यात्मिक पल का साक्षी बनकर मत्था टेका और गुरु घर में अरदास की। समुद्र तल से लगभग 15,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित हेमकुंड साहिब सिख धर्म के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में गिना जाता है। मान्यता है कि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने यहां तपस्या की थी। हेमकुंड साहिब यात्रा का मुख्य पड़ाव गोविंद घाट से शुरू होता है। यहां से श्रद्धालु घांगरिया से होते हुए कठिन पैदल यात्रा कर गुरुद्वारे तक पहुंचते हैं। यात्रा शुरू होने से पहले मार्ग से बर्फ हटाने, सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और श्रद्धालु की सुविधा से जुड़ी तैयारियां पूरी कर ली गई थी। प्रशासन और गुरुद्वारा प्रबंधन समिति ने यात्रियों के लिए स्वास्थ्य, आवास और अन्य जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की हैं। उधर चारधाम यात्रा भी पूरे उत्साह के साथ जारी है। इस वर्ष अब तक लगभग 19 लाख श्रद्धालु चारों धामों के दर्शन कर चुके हैं। इसमें केदारनाथ धाम में सबसे अधिक लगभग 7,91,000 श्रद्धालु पहुंचे, जबकि बद्रीनाथ में करीब 5 लाख श्रद्धालु ने भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए हैं। वहीं गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में भी लगभग 6.5 लाख तीर्थयात्री पहुंच चुके हैं। देवभूमि उत्तराखंड की हिमालयी वादियों में इन दिनों आस्था अपने चरम पर दिखाई दे रही है। कहीं गुरुवाणी की मधुर स्वर गूंज रही है तो कहीं मंदिरों की घंटियां और हर हर महादेव के जयकारे वातावरण को भक्तिमय बना रहे हैं। बर्फ से ढकी चोटियां, ठंडी हवाएं और श्रद्धालु की अटूट आस्था के बीच उत्तराखंड एक बार फिर आध्यात्मिक ऊर्जा और सांस्कृतिक विरासत की जीवंत तस्वीर बनकर उभर रहा है। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी देहरादून से साक्षी सिंह।
3: एंड फ्रॉम अप नॉर्थ इन देहरादून वी नाउ गो डाउन साउथ टू तिरुवनंतपुरम। HLL Life Care Limited, it's a Government of India enterprise under the Ministry of Health and Family Welfare, recently launched a new range of compostable sanitary napkins in Tiruvananthapuram. The product was launched by the Union Health Secretary, marking a major step towards promoting menstrual hygiene and environmental sustainability. Let's hear more from our correspondent.
4: The newly introduced sanitary napkins are made using compostable materials aimed at reducing plastic waste and encouraging eco-friendly disposable practices. The initiative comes at a time when concerns are growing over the environmental impact of conventional sanitary products in India. HLL officials said the new range combines comfort, hygiene, affordability and sustainability, making it accessible to women in both urban and rural communities. The company added that innovation-driven healthcare solutions remain central to its mission, particularly in the areas of women's health and public well-being. The rollout is part of this public sector organization's broader efforts to strengthen menstrual health awareness and expand access to quality hygiene products through healthcare institutions, public distribution systems, and outreach programs. Public health experts say sustainable menstrual products can help reduce environmental burden while promoting safer hygiene practices among women and adolescents. HLL Life Care Limited is known for manufacturing healthcare products, including contraceptives, pharmaceuticals, and medical devices. The organization also contributing significantly to affordable and accessible healthcare in India. Smithy M. Palliruthi, Akash.
1: और श्रोताओं, अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। यह मैच लखनऊ के भारत रत्न

0: प्रिय अटल बिहारी वाजपेयी एकाना स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल रात सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हराया था। और श्रोताओं, अब हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन।
1: It's now time for आजादी का सफर।
2: आज की कड़ी में हम स्वाधीनता सेनानी पनम पिल्ली गोविंद मेनन को याद कर रहे हैं। उनका निधन 23 मई 1970 को हुआ था।
3: मेनन का जन्म 1 अक्टूबर 1908 को केरल के त्रिशूर में हुआ था। विद्यार्थी जीवन में ही मेनन राजनीति में भाग लेने लगे थे। उन्होंने केरल में वाइकॉम सत्याग्रह के जाति विरोधी आंदोलन में सक्रिय भाग लिया था।
2: प्रजामंडलम में शामिल होकर वो राजनीति में और अधिक सक्रिय रहे। बाद में वो इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गए। मेनन केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के भी सदस्य रहे।
3: पेशे से वकील मेनन 1935 और 1938 में दो बार कोच्चि विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए। कोच्चि सरकार की दमनकारी नीति के विरोध में 1942 में मेनन ने त्यागपत्र दे दिया।
2: उन्हें 1945 में फिर से कोच्चि विधानसभा के लिए चुना गया। मेनन ने 1946 में कोच्चि के खाद्य मंत्री के पद पर काम किया। वो 1947 में प्रांत के मुख्यमंत्री बने। मेनन ने संविधान सभा में कोच्चि रियासत का प्रतिनिधित्व किया।
3: त्रावणकोर कोच्चि राज्य के गठन के उपरांत मेनन 1952 में राज्य के वित्त मंत्री बने। उन्होंने त्रावणकोर कोच्चि राज्य के मुख्यमंत्री के पद पर भी कार्य किया।
2: वो 1962 में लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए और खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहयोग मंत्रालय का कामकाज संभाला। मेनन 1967 में रेल मंत्री, कानून मंत्री और समाज कल्याण मंत्री भी रहे।
3: मेनन ने सार्वजनिक कार्यों में विविध प्रकार की भूमिका निभाई। उन्हें वंचित वर्गों के हिमायती के रूप में जाना जाता है। वे शिक्षकों की स्थिति में सुधार के लिए जाने जाते हैं।
2: उन्होंने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। वो जीवन भर राष्ट्र की सेवा करते रहे। महान राष्ट्रवादी पनम पिल्ली गोविंद मेनन को हमारा नमन। 23 मई 1947 को ब्रिटिश कैबिनेट ने गवर्नर जनरल माउंटबेटन की भारत विभाजन नीति को पारित कर दिया। इस नीति के तहत दो नए राष्ट्र भारत और पाकिस्तान बनाने का प्रस्ताव था। रियासतें दोनों अधिराज्यों में से किसी में भी मिलने को स्वतंत्र थी। रियासतों के पास किसी भी अधिराज्य में शामिल न होकर स्वतंत्र रहने का विकल्प भी था। भारतीय नेताओं ने इस योजना का विरोध किया क्योंकि उन्हें महसूस हुआ कि इससे भारत की एकता और संप्रभुता को खतरा था।
3: हम आज हनुमान सिंह को भी याद कर रहे हैं। उन्होंने 1857 में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। शुरू में हनुमान सिंह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की सेना में नौकरी करते थे, लेकिन बाद में नौकरी छोड़कर वे स्वतंत्रता सेनानियों के साथ शामिल हो गए।
2: उन्होंने विभिन्न अवसरों पर अंग्रेजों से लोहा लिया और सहयोगी सेनानियों की आर्थिक सहायता भी की। बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने हनुमान सिंह को गिरफ्तार कर लिया और अंग्रेजों से राजद्रोह करने का मुकदमा उन पर चलाया। उन्हें 1857 में लोहे की बेड़ियों में जकड़कर सश्रम आजीवन कारावास के लिए निर्वासन की सजा दी गई। अंडमान द्वीप की सेलुलर जेल में 23 मई 1858 को उनका निधन हो गया। मां भारती के महान सपूत हनुमान सिंह को हमारा शत शत नमन।
0: और इसके साथ ही आज भारतीय शास्त्रीय संगीत की सुप्रसिद्ध गायिका वसुंधरा कोमकली की जयंती है। वसुंधरा कोमकली का जन्म आज ही के दिन जमशेदपुर में हुआ था। उन्होंने ग्वालियर घराने की परंपरा को अपने विशिष्ट शैली में आगे बढ़ाया। वसुंधरा कोमकली ने ख्याल गायन, निगुड भजन और लोक धुनों को बेहद भावपूर्ण अंदाज में प्रस्तुत किया और वे लंबे समय तक आकाशवाणी और दूरदर्शन

संगठन की नियमित कलाकार भी रही थी तथा देश विदेश के अनेक प्रतिष्ठित संगीत समारोह में अपनी प्रस्तुति से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया। भारतीय शास्त्रीय संगीत में उनके योगदान के लिए उन्हें वर्ष 2006 में पद्मश्री और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया।

0: And well, now we are heading to, you can say, wrap up the show. Karishma, umeed hai ki aap hamare listeners ko pasand aaya hoga aaj ka show. So with that, dijiye Karishma and Saira ko ijazat.
1: Namaskar.
0: Namaskar.
2: मीडियम वेव 305.8 मीटर्स अर्थात 981 किलोहर्ट्स और एफएम बैंड 102.8 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 5 बजे हैं, सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। थोड़ी ही देर में आप हमारा अगला कार्यक्रम सुनेंगे। ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर कोट।

नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 75 है। ये धूरिया, अरचोका, भेलकक्ष, पेंडारी, बोदरई, शाही डांड के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वन मंडल के वाड्रफ नगर रामानुजगंज में हाथियों की कुल संख्या 23 है। ये मिंडारी, प्रेमनगर, भगवानपुर, नवापारा, चिनिया, महावीरगंज, रामपुर, कनक पुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वन मंडल के अंबिकापुर, लुंड्रा, उदयपुर और मैनपाट में हाथियों की कुल संख्या 21 है। ये पूर्णपा, घंघरी, सकालो, सरगवा, गुल्हाड़ी, पड़ौली, अमड़ी, किशुनपुर, मिर्गा डांड, मनोहरपुर, पंडरीपानी, डांड गांव, बरवाली, बरडांड, दाती ढाप, कंडराजा, बैगहवा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वन मंडल के कुनकुरी, पत्थलगांव, तपकरा और बगीचा में हाथियों की कुल संख्या 35 है। ये नारायणपुर, जामचुआ, बिलासपुर, रानी कोम्बो, कुंजारा, लोटापानी, मयूर चूंदी, बरटोली, खड़ामाचा, राजा आमा, झिमकी, चट्टान पारा, महुआडी, खुटसेरा, पतेबहाल, झिक्की, खंता डांड, परसा डांड, पेटा, सामर बार के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वन मंडल के छाल, धर्मजयगढ़, कापू और बोरो में हाथियों की कुल संख्या 140 है। ये गिरसा, पोटिया, आमगांव, रुपुंगा, तेजपुर, बेहरामार, बन

0: भर अवरानारा पुरुंगा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। गढ़घोरा वन मंडल के जडगा और केंदई में हाथियों की कुल संख्या 50 है। ये बांधापारा, लालडी, झुंडकीडी, कुकरी कादर, डंग बोरा, कोदवारी, खड़पड़ी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वन मंडल के रायगढ़ और घरघोड़ा में हाथियों की कुल संख्या 7 है। ये बंगूरसिया, नवागांव, चक्रधरपुर, जुनवानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सारंगढ़ बिलाईगढ़ वन मंडल के गोमरडा अभ्यारण्य में एक हाथी विचरण कर रहा है। ये आमाकोनी, नवापारा, सरायपाली, गंधरा चुआ के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वन मंडल के रवान और कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 29 है। ये मुरुमडी, गुड़ागढ़, फुरफुंदी, दलदली, तालाझर, झालपानी, कौहा बहरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये ओड़, अमलोर, ताराजहर, डडई पानी, बुडार, सिंहार, छिंदौला, लूठापारा, नारीपानी, डूमरघाट, कोदोमाली, मासूल खोई के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। किसी भी परिस्थितियों में हाथियों का खेदा करने बिल्कुल ना जाएं। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दें। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दें। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमर हाथी हमर गोठ।

अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर कोट। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। कार्यक्रम विवरण, आइए आपको बता दें, आज की इस सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में।

रायपुर के पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में आयोजित 19वें रोजगार मेले में नवनियुक्त अभ्यर्थियों को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा वर्चुअली नियुक्त पत्र वितरण समारोह की रेडियो रिपोर्ट सुनेगा रात 9:30 पर। अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा में आप सुनेंगे पंडित हारा शंकर भट्टाचार्य का सितार वादन। ये कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम सुनेगा रात 10 बजे। इसमें आप सुनेंगे चंगना श्री सीपी माधवन नम्पू थिरी का कर्नाटक गायन। ये कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

युवाणी में 5:10 पर आप सुनेंगे अपन गोठ। विषय होगा सकारात्मक सोच ले सही निर्णय। क्रम आप मन की चिट्ठी और सुनेगा माटी के गीत। लोक संगीत के कार्यक्रम में 6:30 पर कलाकार होंगे खुशी दास मानिकपुरी और साथी। चौपाल 7:21 पर इसमें आज की बात का विषय होगा धान की अच्छी उत्पादकता खातिर SRI विधि। किसानवाणी में आज की सलाह इसमें सुनेगा गर्मियों में मुर्गियों की देखभाल एवं प्रबंधन। इस विषय पर डॉक्टर तरुण साहू से की गई बातचीत। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 वर्ष के उपलक्ष में रायपुर में आयोजित स्वरोत्सव समारोह की रेडियो रिपोर्ट सुनेगा रात 8:00।

ये थी जानकारी आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। आपको बता दें कल प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। अखिल भारतीय रविवासरी संगीत सभा में कल रात 10 बजे आप सुनेंगे पंडित हारा शंकर भट्टाचार्य का सितार वादन। ये कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। नमस्कार रायपुर कल सुबह 7:05 पर देश की वाणी आकाशवाणी में कल 7:10 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी के पूर्व वरिष्ठ उद्घोषक श्री श्याम वर्मा से ली गई भेंटवार्ता। प्रस्तुत करता होंगे दीपक हटवार। ये थी जानकारी हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 5:10 हुए हैं। युवा श्रोताओं के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम युवा वाणी।

0: युवानी के अगोरा में बैठे जम्मू संगवारी मलमोर यानी दामनी सिंह के सुगर राम राम
1: अब अपन मयारू नीले साहू के झोंको माया भरे जोहार।
2: दसवीं या बीएससी पास युवाओं के लिए प्लास्टिक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सुनहरा भविष्य। भारत सरकार की संस्था सीपेट रायपुर और कोरबा में प्रवेश पाइए। डिप्लोमा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स के साथ 100% प्लेसमेंट सहायता, छात्रवृत्ति और शासकीय योजनाओं का लाभ उठाएं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 28 मई 2026। विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट है www.cipet.gov.in।
3: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
4: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: दामिनी,
0: हाँ?
1: आज के बेरा मा मानसिक तनाव ह एकदम बढ़ गया हवे।
0: हाँ?
1: कतको लोगन मन तो विपत के बेरा आते नहीं,
0: हाँ?
1: उला देख के एकदम घबरा जाते, घबरा के नकारात्मक सोच में फंस जाते। जब मनखे ह नकारात्मक सोचते,
0: हाँ?
1: तो उला जम्मो मेरा समस्या भर दिखते।
0: हाँ?
1: फिर सकारात्मक सोच मनखे ला हिम्मत देवा थे कि कठिन परिस्थिति में घलो समाधान खोजे जा सकते।
0: सेतुन मनीलेस, कई बेर समस्या छोटे रहते, फिर डर और चिंता ओला बड़े बना देते।
1: हाँ, अब यही डर हा मनखे ला सही फैसला ले ले रोकते।
0: हाँ?
1: जब मनखे में डर रही थे ना,
0: हाँ,
1: तब मनखे हा हर बड़े या जोन भी समस्या रहते तिला ले के गुस्सा हो जाते।
0: हाँ?
1: गुस्सा में फैसला ले लेते।
0: हाँ?
1: फिर शांत और सकारात्मक मन ले सोचबो तो फैसला हा घलो सही होते।
0: मतलब सही फैसला ले बर मन के शांत होना बहुत जरूरी है।
1: हाँ, अब देखना सिरतोन मा शांत मन ले जो फैसला लेते,
0: हाँ?
1: तेनहा ज्यादा समझदारी वाला रहते।
0: हाँ?
1: सकारात्मक सोच हा मन ला स्थिर घलो रखते। जब मनखे शांत रहते ना,
0: हाँ?
1: तब वो हा परिस्थिति के सबो डहर ला बने समझ पाते
0: सिरतोन,
1: और सोच समझ के कदम उठाते।
0: कतको लोगन मन असफलता ले टूट जाते, जौन लागते कि अब कुछ नहीं हो सके।
1: हाँ, संगी हो जिंदगी मा सफलता और असफलता तो आवत जावत रही थे।
0: हाँ?
1: कोनो मनखे हा बेरा ले पहली सफल नहीं हो सके।
0: सिरतोन,
1: असफलता ले हमला सीखना चाहिए और हमला आगू गलती जन करन ये घर सीख हमला असफलता ले ही मिलते।
0: सिरतोन माने असफलता घलो सीख देते ना।
1: हाँ, अब उदाहरण के रूप में विद्यार्थी मन ले लो।
0: हाँ?
1: परीक्षा में कोनो फेल हो गए,
0: हाँ?
1: तो का वह नकारात्मक सोच रखी तो का पढ़ाई ला छोड़ दी ही?
0: नहीं,
1: है नी?
0: हाँ?
1: और आगो का सोची,
0: हाँ?
1: मैं कमजोर हो गया हूँ,
0: हाँ?
1: ये सोच के पढ़ाई ला छोड़ सकत है।
0: हाँ?
1: फिर अगर वह सकारात्मक सोच रखी,
0: हाँ?
1: और मेहनत

0: करी त अवैया बेरा वहाँ बेहतर परिणाम ला पाही।
1: ए बात सिर्फ पढ़ाई में नहीं, जिंदगी के हर क्षेत्र में लागू होते
0: हैं
1: ना।
0: चाहे वह नौकरी हो, खेती किसानी हो, व्यापार हो या पारिवारिक जीवन, हर जगह सकारात्मक सोच जरूरी है।
1: आज के बेरा में सोशल मीडिया के प्रभाव घलो बाढ़ गए।
0: हाँ।
1: लोगन मन दूसर मन के जिंदगी ले देख खुद ला कमजोर समझे लगते।
0: कमजोर समझते भाई, सोशल मीडिया में लोगन मन हा खुशी और सफलता ला दिखाते।
1: हाँ।
0: फिर संघर्ष ला कम दिखाते।
1: सिर्तुन मा
0: एला देख के कतको युवा मन हा खुद ला दूसर ले कम समझे में लगते।
1: हाँ।
0: फिर हर मनखे के परिस्थिति हा अलग होते संगवारी हो, अपन जिंदगी ला दूसर ले तुलना करना सही नो है।
1: मतलब खुद ऊपर भरोसा रखना जरूरी है।
0: जरूरी है, और खुद में भरोसा है ना सकारात्मक सोच के सबले बड़का आधार है।
1: हाँ।
0: जब मनखे हाँ खुद ऊपर भरोसा करते ना,
1: हाँ।
0: तो कठिन ले कठिन परिस्थिति में घलो हिम्मत निहारे।
1: कई बेर परिवार या समाज के दबाव में आके घलो लोगन मन गलत फैसला ले लेते।
0: हाँ, और ऐसा बेरा में धीर रखना चाहिए।
1: हाँ।
0: फैसला लेत बेरा भावुक नहीं होना चाहिए।
1: हाँ।
0: दूसर मन के सलाह ल घलो सुनना चाहिए हमन ला। फिर सोच समझ के फैसला जोन है वे ते मन हा अपन निर्णय के हिसाब से ही लेना चाहिए, और परिस्थिति ला देख सुन के समझ के लेना चाहिए।
1: कई बेर गुस्सा में दुख में ले गए फैसला बाद में पछतावा घलो बन जाते संगी हो।
0: एक सेती कहे जाते कि फैसला हमेशा शांत मन ले लेना चाहिए।
1: सीतुन में अपन फैसला ला धीर रख के लेना चाहिए।
0: संगवारी हो, मेहनत करत रहो और अपन ऊपर भरोसा रखो, और सकारात्मक सोच के संग आगू बढ़ो, सबो समस्या के समाधान जरूर होते।
1: सिर्तुन में सकारात्मक सोच मनखे ला मानसिक शक्ति, आत्मविश्वास और सही रद्दा दिखाते।
0: हाँ, त संगवारी हो, सोच बने रही त परिस्थिति चाहे कैसनो होवे हमन सही रद्दा ला जरूर खोज पाबो, और जेन मनखे अपन सोच ला सकारात्मक रखते ओहर हर कठिनाई में घलो अवसर ला खोज लेते।

0: संगवारी हो, अभी अपन सुनत रहो सुघर अकन माटी के गीत ला, जिला अपन स्वर में सजा रही से लक्ष्मण मस्तुरिया हो साथी मन हा।
1: हवे सुघर अकन गीत ला सुने बर चाहे रही हमारे ये संगवारी मन हा। दुर्गा चौक रायगढ़ ले गेंदलाल श्रीवास, संतोष श्रीवास, शिव कुमारी, राम दुलारी। पलारी ले है प्रकाश वर्मा, निखिल प्रिंस, यशस्वी वर्मा। यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र ले है संतोष खड़से, विनोद खड़से। खैरागढ़ ले है देवेंद्र महोबे, अमरदीप महोबे मन हा।
2: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय,
3: आंखों की सभी तरह की जांच और मोतियाबिंद का ऑपरेशन फेको पद्धति से बहुत कम दरों में।
2: पहले से नाम लिखवाने की कोई जरूरत नहीं, जब आए पूर्ण जांच करवाएं।
3: आज ही ऑपरेशन, आज ही छुट्टी।
2: 47 सालों से निरंतर सेवा में
3: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय, श्याम नगर, गुरुद्वारा रोड, तेली बांधा, रायपुर।
4: 10वीं या BSc पास युवाओं के लिए प्लास्टिक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सुनहरा भविष्य। भारत सरकार की संस्था CPET रायपुर और कोरबा में प्रवेश पाइए। डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स के साथ 100% प्लेसमेंट सहायता, छात्रवृत्ति और शासकीय योजनाओं का लाभ उठाएं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 28 मई 2026। विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट है www.cipet.gov.in।
1: दमनी,
0: हाँ?
1: जैसे विद्यार्थी

0: थी मन ला अपन परीक्षा परिणाम के बाद
1: हाँ
0: सबले अगोरा का कह रहे थे
1: अपन परीक्षा परिणाम कब आही तेकर
0: अगोरा परिणाम के बाद अगोरा रही थे कि हमन ला कैसन कॉलेज मिलही कैसन हमन ना क्षेत्र में जा पाबू
1: सिरतोन
0: में है ना तो इसने हमन ला मतलब परिणाम के अगोरा रही थे और कॉलेज के अगोरा रही थे
1: हाँ।
0: वैसने हमन ला का के अगोरा रही थे
1: हमन ला आज के दिन के अगोरा रही थे काबर आज के दिन होते आप मन के चिट्ठी के कार्यक्रम
0: हाँ और ये दिन संगवारी मन हा हमर समीक्षा ला भेजे रहते
1: सिरतोन में
0: तसंगे हो झटकुन शुरू करथन क्रम आप मन के चिट्ठी।

0: नीलेश, तोर हाथ में पियर पियर बिकट अकन पाती है दिखा थे।
1: हाँ।
0: तो कौन संगवारी कहाँ ले भेजे बता डर।
1: हाँ, संगवारी दामिनी।
0: हाँ?
1: ये पाती हमला मिले हवे 7 मई के कार्यक्रम खातिर।
0: हाँ?
1: संगवारी मन के नाम हवे मुकेश कुमार रजक, युवान रजक, हाव्या तनु रजक। अभी संगी मन है भेजे हवे देवरी भाटा पारा ले।
0: काय कहा थे संगी मन?
1: संगी मन कहा थे कि 7 मई के संझा युवानी कार्यक्रम ला लेके आईस हमर मयारू संगी तृप्ति भारती और लिनिमा साहू।
0: हाँ?
1: माटी के आखर माँ कोमल कांत के कविता पाठ हा बहुत बढ़िया लगिस।
0: हाँ?
1: श्रोता संगी मन के अनुरोध मा माटी के गीत हा हमला बड़ सुघर लगिस हवे। द सफल प्रस्तुति बर युवानी अनुभाग और तृप्ति भारती और लिनिमा साहू ला घलो गाड़ा गाड़ा बधाई लिखे हवे। अउ इही दिन के कार्यक्रम बर हमन ला अउ संगवारी मन ह घलो पाती पठोए दामनी।
0: हाँ?
1: संगी मन हवे दूरहा बांधा भाटापारा ले प्रमोद साहू, देव नवीन, युवराज साहू नानघाट ले है कातल बोल ले, भाग सिंह राजपूत, भाग्यश्री टिकेश्वर, रितु राजपूत, आर्यनगर कोका भिलाई ले है उत्तम सिंह जंघेल, मूरस अनिल, अजीत आयुष, नंदिनी जंघेल, लोरमी चचेड़ी ले है कमलकांत मरावी, प्रमिला नेहा, पुष्पराज ऋषभ मरावी, ढोडरी घोटिया ले है महेश कुमार निषाद, रंभा रानी, निखिल नैतिक, पुष्पांजलि स्वप्निल निषाद और तेंदु भाटा मगरलोड जिला धमतरी ले है संगी मन हा उमेंद कुमार निषाद, मोहेश्वरी देविका, पोषण नूतन, सुरेंद्र यशस्वी, भास्कर किशन, दिव्यांश भूपेश, शिवा निषाद, मेघापारा लोरमी ले है राम कुशल पटेल, संतोषी दीपांशु, दीपांजलि दीपक, राजेंद्र पटेल मन हा।
0: संगी हो, जब जिंदगी में कोनो मुश्किल बेरा आते तो ये हमर खुद के भरोसा है जेखर ले हमन ला आगू बढ़ते। और तुमन जो भी बड़का लक्ष्य तय करे हो ओला पाए बर पहली सीढ़ी खुद के ऊपर विश्वास कर। काबर के तुम्हार भरोसा मजबूत रही तो दुनिया के कोनो मनखे तुम्हार ला कमजोर नहीं कर सके। तभी तो कहते संगी हो, मन के हारे हार और मन के जीते। संगवारी हो, तुमन अपन जिंदगी में जौन घलो मेहनत करते उमा कबू अपन भरोसा ला कम होवन मत देव। अतेक सुगर पाती पठो हो ते खबर अंतसले धन्यवाद। रेडियो के माध्यम ले तृप्ति भारती और लिनिमा साहूला बधाई पठो हुआ था। आगू घलो आपके पाती की अगोरा रही। नीलेश, दूसरा पाती कौन भेजे हवे और कौन संगवारी काय कहा थे?
1: हाँ दामनी।
0: हाँ?
1: ये पाती हमला मिले हवे 9 मई के कार्यक्रम खातिर।
0: हाँ?
1: संगी मन आवे चांदी चौक गंडई पंडरिया ले पवन कुमार सेन, प्रभा देवी, लक्की विक्की, नानू, रविंद्र रौनक सेन मनहा। संगी मनहा लिखे हवे हमर छत्तीसगढ़ के महिमा बड़ महान हवे जेखर महिमा के बखान करन आनी बानी के रूख राई सुघर सुघर किसान संगवारी के लहलावत रही थे फसल।
0: हाँ?
1: और एकरे संग संग हमर छत्तीसगढ़ के बोरे बासी ला तो फिर झन पूछ।
0: हाँ?
1: साग पान खोजे के जरूरत नहीं है। नून मिर्चा गोंदली और कहूँ एकर संगे संग आमा के चटनी मिल जाए फिर का कहना। खा ले दमदम ले पेट भर संग मा ऐसे लिखे संगी मन।
0: हाँ?
1: संगी मन इसने लिखे हवे आगू युवानी कार्यक्रम ला सुने खातिर मिल जाए तो जावन दे ऐसे लागते हमर सोन चिड़ैया कस सुहागा मिल गए ऐसा हमर छत्तीसगढ़ भूया हाँ। अब आगू लिखे है संगी मन शनिचर के संझौती बेरा सूरज नारायण अपन ठौर में जावत रहीस उही बेरा में 5:10 में हमर मयारू संगवारी लिनिमा साहू और ऋषभ देव साहू हा पोरसा तईस जेमा हमला रविंद्रनाथ टैगोर के जीवन परिचय में गोट करीस एकर बारे में हमला जानकारी दिस। संगी मन हा आप मन के चिट्ठी कार्यक्रम मा माटी के गीत ला घलो सुनाई सबे जेन हमन ला बड़ सुघर मिलिस अतिक प्रस्तुति सुघर प्रस्तुति खातिर लिनिमा साहू और ऋषभ देव साहू ला गाड़ा गाड़ा बधाई लिखे भाई। और यही दिन के कार्यक्रम खातिर हमन ला यहू संगी मन हा पाती पठ होए। संगी मन हवे पहांदा पहारी पलारी ले नीतीश देवांगन, तनुजा ईशांत, लखन सावित्री देवांगन, सहसपुर लोरमी ले छोटू साहू, मोहित राम,

0: लोकेश रामकिशन दुलीचंद सती साहू पिपरिया लेहे कमलकांत गुप्ता दीपा रिमझिम गुप्ता करही भदर लेहे पुरुषोत्तम निर्मलकर श्रद्धा लोचन लल्ली गिलनी निर्मलकर दुर्रा बांधा भाटापारा लेहे प्रमोद साहू देव नवीन युवराज साहू संगवारी मन हा
1: संगवारी हो बासी के नाव सुनते ही बासी के नाव सुना थी हर छत्तीसगढ़िया मनखे के मन ह गदगद हो जाते और मुंह में पानी आ जाते। बोरे बासी सिर्फ छत्तीसगढ़ के खान पान नो है, ये तो हमार संस्कृति परंपरा और सियान मन के सेहत के सबले बड़का राज है। रात के बचे भात में पानी डाल के रखे जाते और उही ला बिना कान नून मिर्चा गोंदी संग खाथन, जेखर ले गर्मी के दिन जब हमन बाहिन में लू चलते और बासी खाए रहे तो शरीर के तापमान ला नियंत्रित रखते। और संग में आप मन हा रविंद्रनाथ टैगोर के जिंदगी और ओखर विचार मन कौन सागर ले कमती न कोनो सागर ले कमती नो हरे। हमन सिर्फ एक ठन बड़े कवि नहीं लेखक और चित्रकार रहे जिन्हा हमला सिखाइन कि अपन देश और संस्कृति के माया करन। अति सुघर पाती पठाओ तेखर बर अंतसले धन्यवाद। रेडियो के माध्यम ले नीलिमा साहू और ऋषभ देव साहू ला बधाई पठवा था। आगु गले आपके पाती के अगोरा रहे। अब कौन संगवारी कहाँ ले भेजे
0: धमनी?
1: हाँ?
0: ये पाती हमन ला मिले हवे 12 मई के कार्यक्रम खातिर।
1: हाँ?
0: संगी मन हवे लुकाऊ पालू छतवन लुकाई लुकाऊ पाली छतवन ले पुनीत राम सूर्यवंशी निर्मला निहारिका पंकज सूर्यवंशी मन।
1: ओ का कहते संगवारी मन?
0: हाँ संगी मन लिखते
1: हाँ?
0: 12 मई दिन मंगलवार के युवाणी के बगिया ला महकाई हमर दू रेडियो कंपेयर संगी तृप्ति भारती और ललिता साहू। ये दिन अपन गोठ मा पंडित मुकुटधर पांडे ले लिखे कविता करीन और पढ़ाई लिखाई ज्ञान के गोट घलो करीन है। किताब संग दोस्ती करके नवा रद्दा अपनाए के बर कठिन और मेहनत और विद्या के बल में जिंदगी ला सफल बनाए ला कहीन हवे। और एक दिन सुनेन हमन हास क्रम सवाल जवाब अंक 229 के जवाब और संग में आगू हमन ला जाने बर मिली से अंक 230 बर सवाल। ए दिन कोयली कस गुरतुर माटी के सुघर अकन गीत घलो सुने बर मिलिस जेनहा हमन ला मुंह डरिस। अतिक सुघर प्रस्तुति बर तृप्ति भारती और ललिता साहू ला गाड़ा गाड़ा बधाई लिखे संगी मन हा। और यही दिन की खातिर हमन ला और संगी मन हा पाती पठो है। संगी मन हवे भड़गा कोदवा गोडान ले श्याम सिंह मरावी राजकुमारी रानी रजनी राहुल पूजा मरावी। और ये संगी मन हवे कुई ग्राम भंगी टोला ले ननका राम धुर्वे जामुन फिरत राम मालती धुर्वे। अवे संगी मन हवे गेंदा टोला बाजार चौकले वीरेंद्र कुमार गुप्ता अंजलि योगिता गजेंद्र गुप्ता मन हा।
1: संगी हो किताब ला हमर जिंदगी के सबले सच्चा और सुघर संगी कहे जाते। एक ठन सुघर किताब हजार दोस्त मन के बरोबर होते। किताब पढ़े ले सिर्फ हमर ज्ञान नहीं बढ़े बल्कि हमर जिए के तरीका घलो बदल देते। अंधियारी रात में दिया कस अंजोर करते वैसने ही किताब हमर मन के भीतर ज्ञान के अंजोर बगरा थे। और दुनिया के इतिहास विज्ञान संस्कृति और भूगोल के जतका घलो बात है वह सब किताब में सीखे बर मिलते। संग में हमर सोचे समझे के शक्ति ला घलो बढ़ा देते। अतिक सुगर पाती पठो हो ते खाले अंतसले धन्यवाद। और रेडियो के माध्यम ले तृप्ति भारती और ललिता साहूला बधाई पठोवा थो। आगु घलो आपके पाती के अगोरा रही।
0: हाँ पाती तो बाचे है।
1: पाती तो बाचे हवे फिर हाँ। मोले एक ठन गीत सुने के मन करा थे संगी।
0: हाँ तो दामनी
1: हाँ
0: तोला नहीं मैं संगवारी मन ला घलो एक ठन सुघर अकन गीत ला सुनावत
1: हाँ।

0: संगी हो अभी आप मन सुनत रहे हो सुग्घर अकन माटी के गीत ला जिला अपन सर में सजारी से गोरेलाल बर्मन हा।
1: अब सुग्घर अकन गीत ला सुने बर चाहे हमारे संगवारी मन हा। खलारी भीम खोज ले जी एल साहू, सरोज छोटी पिंकी, बाग बहारा भदरसी ले पन्नालाल सेन, खुशबू तारा कौशल सेन, बिलाईगढ़ ले है रोशन देवांगन, कौशल्या हेमलता डिम्पल देवांगन और रोहासी ले मुकेश साहू, नंदनी मनीष मयंक साहू मन हा।
0: ऋषभ
1: हाँ,
0: तोर हाथ में पाती है दिखा थे तो अब बता डल कौन पाती है, कहाँ ले भेजे हवा और संगवारी मन का कहा थे
1: दामनी।
0: हाँ?
1: ये पाती हमें मिले हवा 19 मई के कार्यक्रम खातिर।
0: हाँ?
1: संगी मन है भूलजर घटा रानी गरिया बंदले, योगेश साहू, डुमेश्वरी यामिनी, मुस्कान, हर्षिता, देवेश साहू मन हा।
0: और का लिखे हवे संगी मन?
1: संगी मन हा लिखे हवे दिन मंगलवार के संझा युवानी कार्यक्रम ला धर के लाए रहिन नीले साहू और थनेश्वरी बघेल हा। अपन गोट मा पढ़े लिखे के महत्ता के गोट करिन और क्रम माटी के गीत मा सुने भर मिली से सुघर सुघर गीत हा और संग मा क्रम सवाल जवाब अंक 230 के उत्तर घलो जाने भर मिलीस और सवाल जवाब अंक 231 के सवाल घलो जाने यही दिन और यही दिन कार्यक्रम में हमन हा जोन प्रस्तुति रही से सबो प्रस्तुति है हमन ला बड़ सुघर लगीस। अति सुघर प्रस्तुति खातिर थनेश्वरी बघेल और नीलेश साहू ला गाढ़ा गाढ़ा बधाई लिखे और संगी यही दिन खातिर हमन ला और संगी मन हा पाती पठो है। संगी मन हा हवे पोटिया कला दुर्ग ले संजय साहू,

0: उपजाता शशांक सीमा साहू, लगान पंडरिया ले, रुक्मणी बघेल साहिल भारती राधिका बघेल मही रही साझा ले, बेमेतरा ले संगी मन हा हेमलता साहू देव विशु विभू साहू मन हा, देवर विजा बिरला ले है दिनेश देवांगन सृजन रूपेश देवांगन, सलोनी राजनांदगांव ले है संगी मन हा पुरानिक राम साहू सीता प्रियांशु गौरव साहू, मड़ौदा जालबांधा खैरागढ़ ले है पारकदास साहू किरण सोनू रेशमा गुनीता साहू, और ये संगी मन हवे कोल्हापुरी दुर्ग ले सूरज भान साहू कमला साहू मन हा।
1: कापे किताब धर के जब लइका मन स्कूल जाते दाई ददा के आँखी मा नवा सपना जग जाते, पढ़ लिख के बनबो हमन बने मनखे तभी तो हमन नावा जहान में छाते। संगी हो आज के बेरा में चाहे गांव हुआ शहर हुआ दाई ददा मन अपन लइका मन ला पढ़ाए पूरा जोर लगा देते, फिर कतको दुख पीड़ा उठाई पेट काठी फिर लइका मन के स्कूल फीस और कापी किताब पर पैसा जरूर जोरी, काबर की जम्मो झन जानते शिक्षा ऐसा धन है जेला कोनो चोर चोराए नहीं सके। संगी हो एक ठन कोठला बांध के धर लो तेहा कतको पढ़ लिख जाए फिर अपन माटी और संस्कार झन भुला हो, अतिक सुगर पार्टी पत्थर हो जेखर ले आप मन के आप मला अंतस ले धन्यवाद। रेडियो के माध्यम ले थनेश्वरी बघेल बधाई पठो हो और नीलेश साहू ला इही मेला बधाई में देवत हो और आगो गलो आपके पाती के अगोरा रही।
0: हाँ दामिनी,
1: हाँ
0: अब एक ठन पाती बाचे हवे।
1: हाँ
0: 21 मई के कार्यक्रम खातिर।
1: हाँ कौन संगवारी काय कहा थे?
0: संगवारी मन हवे भाटा पारा ले बचका मल मोतीलाल यादव बसंत भृगु विनय ठाकुर और चोवाराम वर्मा मन।
1: हाँ
0: संगी मन लिखे हवे 21 मई के दिन बृहस्पत के समझौती के बखत हमर कंपियर संगी धनेश्वरी बघेल और वर्षा गोस्वामी ये वाणी ला धर के आईन, आतेच ही चाय के गोट गोटे इन हवे।
1: हाँ।
0: और ठौका उही वक्त हमू मन हा बिस्कुट संग ताते ता चाह पियत रहे।
1: हाँ हाँ।
0: और का कहबे संगी युवानी के बेरा हा कैसे निकलिस पता च नहीं चलिस। ए दिन सुने संस्कृति के महकमा दानिश साहू के जानकारी जौन हा हमला बड़ सुघर लगिस और संग मा अधिक सुघर माटी के गीत सुनेन जेन हा हमर मन ला मोह डारिस। अतिक सुघर प्रस्तुति बर थनेश्वरी बघेल और वर्षा गोस्वामी ला गाड़ा गाड़ा बधाई लिखे दामिनी।
1: हाँ?
0: अब यही दिन खातिर हमला और संगी मन हा पाती पठो है इसने है पाती संगी मन के नाम हवे नानघाट कातल बोल रहे संगी मन हा भाग सिंह राजपूत भाग्यश्री टिकेश्वर रितु राजपूत सहा मालगी ले है सुखनंदन चंद्रवंशी शिवरानी आकाश प्रीतम पूर्वी पूनम चंद्रवंशी महामाया चौक मेघापारा ले है रामकुशल पटेल संतोषी दीपांशु दिव्या दीपा दीपांजलि दीपक जितेंद्र पटेल मन हा अभी संगी मन हावे मदनपुर कवर्धा ले श्रवण कुमार साहू योगेश राहुल साहू मन हा।
1: संगी हो चाय के नाम सुन के ही मन हा गदगद हो जाते, हमार छत्तीसगढ़ में चाय सिर्फ एक पिए के जिनिस नो है, यह हर मितान मन के मला जोड़े के गोट बात बढ़ाए और सुस्ताए के एक बहाना है, चौक चौराहा टपरी में घर के पर्ची में बैठ के चाह पिए के मजा कुछ अहुई रहते। जब हम बिहना कन चाय के एक कुल्हड़ में कड़क ताते ता चाय नहीं मिले तब मन के आँखी निचट नहीं उघरे, तभे तो हमार सियान मन के थे चाह मिलीस तभे जी म जी ऐस। संगी हो अतिक सुगर पाती पठोए हो ते खबर अंतसले धन्यवाद। रेडियो के माध्यम ले थनेश्वरी बघेल और वर्षा गोस्वामी ला बधाई पठोआ था, आगु गोले आपके पाती के अगोरा रही।
0: तदामनी,
1: हाँ?
0: पाती तो अत के कन रही है सब है।
1: हाँ।
0: अब जो नवा संगवारी हमार मन संग जुड़ थे,
1: हाँ?
0: तीन संगवारी मन हमला पाती तो पठोबे कर ही
1: सिरतोन।
0: हाँ तो संगवारी मन ला हमार पता ला बता डर थन। संगी हो हमार पता हवे जिन संगवारी मन हा पाती के माध्यम ले हमला अपन आप मन के चिट्ठी कार्यक्रम बर पाती भेजू ती कर बर क्रम आप मन के चिट्ठी युवाणी अनुभाग द्वारा केंद्र निदेशक पोस्ट बॉक्स नंबर 97 आकाशवाणी रायपुर और रायपुर के पिन कोड ला डाले बर जन बुलाऊ संगवारी हो रायपुर के पिन कोड आए 492001 और जिन संगवारी मन हा हमला ईमेल के माध्यम ले अपन पाती लपट हो संगवारी हो तेमन हमार ईमेल पता ले लिख लो, हमार ईमेल पता है AIRYOUTH9@gmail.com और संगी हो क्रम आप मन के चिट्ठी के सब्जेक्ट कोड ला डाले बर झन बोला हो सब्जेक्ट कोड आए Y8 और जिन संगवारी मन हा

0: कभू कभू ना दामनी
1: हाँ?
0: सब्जी कोड़ला गलत डाल देते
1: हाँ?
0: तब पाती है हमर तीन पहुंच नहीं सके
1: सिर तो
0: और तहन बाद में संगवारी मन हमन शिकायत करते कि भाई हमार पाती शामिल नहीं हुए कही के
1: हाँ?
0: तो संगवारी मन ला कहना चाहू संगवारी हो आप मन हा सब्जी कोड़ला बने ध्यान लगा के डालू सब्जी कोड़ा आप मन के चिट्ठी के आए Y8 एकरे संग क्रम आप मन के चिट्ठी
1: इहे तक।

0: निलेश, एक ठन छाता काय काय काम आते?
1: सबले पहली तो मुड़ी ला तुपे के काम आते।
0: ओहो, बने बता ना, सोच सोचते हाँ।
1: अरे भाई, बने तो बतावा था, पानी गिर थे तो मुड़ी तोपे काम आते आते नहीं
0: हाँ।
1: और जब घाम ज्यादा रही थे
0: हाँ।
1: तब मुड़ी तोपे काम आते
0: हाँ।
1: और कभू कभू गाय गरुला खेदारे काम घलो आते आते नहीं
0: हाँ। निलेश, जैसे एक ठन छाता हा हमन ला अतेक परेशानी ले बचाते
1: हाँ।
0: वैसने छा धरती के रुख राई घलो भुइया ला बस बचाते
1: हाँ।
0: बड़ अकन परेशानी ले घलो हमन ला बचाते हो
1: हाँ। भुइया ला जोन परेशानी होते तेकर ले बचाते
0: हाँ।
1: सिरतोन के हेस धामनी
0: हाँ।
1: आज के घाम हा एक गोठ ला सुरता देवा दिस
0: हाँ।
1: के रुख राई के महत्व कतका हवे तिला
0: तेखरे सेती संगवारी हो हमन ला पर्यावरण की रक्षा खातिर एक ठन पौधा लगाना चाहिए।
1: लगाना ही चाहिए और ओखर बने देख रेख करे के संकल्प घलो लेना चाहिए
0: जेखर ले हमार अवैया पीढ़ी मन ला वातावरण ले लाभ हो सके।
1: काबर की स्वच्छ वातावरण रही तब मन ला स्वास्थ्य लाभ घलो मिली। संगवारी हो यही गोठला सोरियावत आवो सुनथन सुख घरकन माटी के गीत ला।

0: संगवारी हो, अभी आप में सुनत रहो सुघर कर माटी के गीत ला, जिला पंसौर में सजारे से पवन चंद्रा करो साथी मना।
1: अब सुघर कन गीत ला सुने भर चाहरीन हमारे संगवारी मन, लालपुर मारोले, कीर्ति राम ध्रुवे, संतोषी निम्मी पम्मी निशांत ध्रुव, डोंगर गांवले राष्ट्रपाल गजभैये, राधिका अनिशा तन्मय गजभैये, सुंदरपारा रोहासीले डगेसर साहू, घनश्याम गौरव नूतन साहू, दतरेंगी ले है संगी मनहा द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, भदरसी ले घनाराम सेन, गीतेश दीपेश निर्मला सेन, भीम खोज तरपोंगी ले संतोष गुप्ता, हितेश होमेश लक्ष्मी प्रतिभा गुप्ता, चांदनी चौक गंडई पंडरिया ले पवन कुमार सेन, प्रभा देवी, लक्की विक्की नानू, रविन्द्र रौनक सेन, परसा टोला अंबागढ़ चौकी ले है हमारे संगी मनहा, ओम प्रकाश मसिया, सिलोचनी खुमेंद्र तुषारणी मसिया, दतरेंगी भाटापारा ले नोखेलाल वर्मा, हीरामणि पारसमणि पुष्पेंद्र मणि वर्मा मनहा। दामिनी,
0: हाँ?
1: आज मैं हाँ समाचार पढ़त रहो ना,
0: हाँ हाँ,
1: तब पता चली इसके भारत में अभी कतको शहर ऐसे हवे जिहा आज ना पानी के बड़ समस्या हुआ थे।
0: हाँ, सिर्फ शहर में नहीं, गांव घलो में कतको गांव में खेती बर घलो सिंचाई बर घलो अवस्था मुश्किल हो जाते।
1: हाँ, इस सब के कारण आए मनखे के लापरवाही।
0: हाँ,
1: जेखर सेती आज मनखे ला पानी के किल्लत हुआ थे।
0: संगवारी हो, पहली के बेरा में सियान मन बताते कि पानी पाए बर साधन,
1: हाँ,
0: साधन कम रही से, फिर पानी की किल्लत नहीं हुआ रही से।
1: हाँ,
0: कुआं ले पानी मिल जावे तो तरिया ले पानी घलो मिल जावे, तो कबूत तीर तखा ले घलो पानी मिल जावत रही से।
1: हाँ,
0: और जेखर ले खेती में काम हुआ रही से, खेती पर सुविधा हुआ रही से।
1: हाँ, फिर दामिनी,
0: हाँ,
1: आज नर्वानंद आवत है।
0: हाँ,
1: कुआं तो पटावत जाते
0: तो,
1: और तरिया घलो हा गावे भर में देखेला मिलते।
0: हाँ, तो संगी हो, पानी बचाए की जिम्मेवारी हमार आए, देखे सेती है
1: देख रहे सेती दामिनी।
0: हाँ?
1: कहे जाते
0: हाँ?
1: जल है
0: तो
1: ता
0: कल है।
1: कल है।

0: संगवारी अभी आप में सुनते रहो सुघरकन माटी के गीत ला जिला पंसौर में सजारे से चतुराम साहू कांति यादव गीता भट्ट मन
1: अब सुघरकन गीत ला सुने बार चाहे हमारे संगी मन हा कोरासी भैसा रहे पवन कुमार साहू क्रांति देवी पंकज सुस्मिता दीपिका साहू पथरिया भरे वाले चंदूलाल सिंगरौल नारायणी नोमेश नेहा वान्या सिंगरौल और कांकेर संबलपुर ले फागुराम यादव ज्योति।

0: तस्वी यादव मन हा तो दामिनी
1: हाँ
0: अब देखना गोड़ बात करत जाए के बेरा होवत है
1: सिरतुनवा
0: जाए ले पहली संगवारी मल्ला काली के कार्यक्रम तो बताएल पड़ी
1: हाँ।
0: संगवारी हो काली के युवानी सजी हिंदी मा जेमा आप मन सुनू क्रम राग नंदनी और सवालों के आईने में तो संगी हो घाम के बेरा चलत है ऐसा मा अपन स्वास्थ्य के ख्याल रखो और यु वाणी सुनत रहो और ये गोड़ बात के संग नीलेश साहू और
1: दामिनी से लदेव अभी नमस्कार।

0: ये था युवा श्रोताओं का दैनिक प्रसारण युववाणी, आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6 बजने को है, हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री से मुलाकात की। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका विश्व कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इस दौरान विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित रहे। श्री मार्को रूबियो 26 मई को होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। श्री रूबियो आज कोलकाता पहुंचे, जहां उन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटी का दौरा किया और मदर टेरेसा की विरासत को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम हैं। श्री मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 19वें रोजगार मेले में कहा कि देश ने अपने कर्मयोगियों पर भरोसा जताया है और अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि वे अपनी लगन, आचरण और रोजमर्रा के कामों से उस भरोसे का मान रखें और उसे मजबूत करें। श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है।
2: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
1: रोजगार मेले में आज 51,000 से भी अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में बुनियादी अर्थव्यवस्था मजबूत और निर्यात में वृद्धि बनी हुई है। उन्होंने कहा कि अप्रैल के बाद मई माह में भी निर्यात में वृद्धि जारी रही, जो वैश्विक प्रतिकूलताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन को दर्शाती है। नई दिल्ली में आज श्री गोयल ने कहा कि सरकार ने किसानों को बढ़ती लागत से बचाने के लिए उर्वरकों की बढ़ी कीमतों का बोझ स्वयं वहन किया है। उन्होंने कहा कि सरकार भव्य योजना के माध्यम से कारोबारी सुगमता के लिए देश भर में 100 औद्योगिक पार्क स्थापित करेगी। श्री गोयल ने कहा कि 33,600 करोड़ रुपए से अधिक के आवंटन वाली भारत औद्योगिक विकास योजना के अंतर्गत प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि ऑयल इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान के दांडेवाला फील्ड में एक नए गैस भंडार का पता लगाया है। श्री पुरी ने कहा कि उथली सानू भौगोलिक संरचना से पहली बार लगभग 25,000 मानक घनमीटर प्रतिदिन की दर से प्राकृतिक गैस का प्रवाह होना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि इससे घरेलू ऊर्जा उत्पादन को मजबूत करने में सहायता मिलेगी। सरकार ने जन परामर्श के लिए विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के अंतर्गत मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था अगले महीने की 21 तारीख तक इन मसौदा नियम

0: पर आपत्तियां या सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से शुरू होगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के साथ वर्चुअल बैठक के बाद इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के अंतर्गत मौजूदा लाभार्थियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज वृद्धि हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रुपये प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल का मूल्य 91 पैसे बढ़कर 92.49 रुपये प्रति लीटर हो गया है। मौसम विभाग ने केरलम में बुधवार तक अलग अलग स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान व्यक्त करते हुए 9 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मानसून आज दक्षिण पश्चिम अरब सागर के कुछ हिस्सों और पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी के अधिकांश हिस्सों में आगे बढ़ गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है।
2: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।

ये खनकती आवाज अब आप सुन सकते हैं और भी बेहतरीन क्वालिटी में, कभी ब्लूटूथ स्पीकर से कनेक्ट करके तो कभी हेडफोन पर लगाकर। आकाशवाणी रायपुर का प्रसारण अब उपलब्ध है मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTH पर। चाहे पास रहें या दूर, आपके करीब हर पल आकाशवाणी रायपुर।

0: अरे सुमित, तुमने बाइक इधर क्यों मोड़ दी?
1: अरे इसी रोड पर ही तो हमको जाना है यार। हेलो।
0: अरे सुमित।
1: हेलो
0: सुमित, ये तुम क्या कर रहे
1: हो? हेलो, अरे बात कर रहा हूँ यार, मुझे बात तो करने दे।
0: सुमित, तुम Hello? गाड़ी रोक कर भी तो बात कर सकते हो।
1: अरे छोड़ ना यार, मैं तो चलती गाड़ी में ही कॉल अटेंड कर लेता हूँ। हेलो।
0: अरे सुमित।
1: कौन? संदीप।
0: सुमित देख के।
1: हाँ बोल यार।
0: सुमित
1: कब आना है?
0: अरे देख के सामने।
1: ठीक है, और कौन आएंगे?
2: सुमित आज इस दुनिया में नहीं है और उसका दोस्त घायल है। वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग बिल्कुल ना करें। खुद के और दूसरों की सुरक्षा के लिए यातायात के नियमों का पालन करें।
3: मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट होने के बाद बीमा कंपनी वाले क्लेम देने में बहुत देर कर रहे हैं, अब मैं क्या करूं?
4: अरे जो सामान मैंने खरीदा वो तो खराब निकला, बेचने वाला इसे वापस नहीं ले रहा है, अब मैं क्या करूं?
5: मेरी बहन के ससुराल वाले उसे रुपयों के लिए बहुत परेशान कर रहे हैं। इस मुसीबत से मैं उसे कैसे बचा सकती हूँ?

ऐसी कोई भी परिस्थिति कभी भी किसी के भी जीवन में आ सकती है। अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कानून की जानकारी सबको होनी चाहिए। हमारे संविधान में क्या है, किसी भी विवाद या परिस्थिति में समाधान का प्रावधान, जानने के लिए सुनिए।

0: ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायभली केंद्र है। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। 6:10 हुए हैं। अब छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग वसुधा सेन के जय जोहार। अब सुनो आज के प्रमुख समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हा आज 19वां रोजगार मेला के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम ले चुने हुए 51,000 ले ज्यादा युवा मल्ला बांटी नियुक्ति पत्र। पेट्रोल और डीजल के दाम एक घो फिर बाढ़ गए है। पेट्रोल 89 पैसा और डीजल 96 पैसा महंगा हुए है। और संघ लोक सेवा आयोग UPSC के सिविल सर्विस प्रारंभिक परीक्षा काली 24 मई के आयोजित करे जाही। अब समाचार विस्तार ले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हा आज 19वां रोजगार मेला के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम ले आने आने सरकारी विभाग और संगठन मन में चुने हुए 51,000 ले ज्यादा युवा मल्ला नियुक्ति पत्र बांटिन। ये मौका में श्री मोदी हा कहिन कि सरकारी नौकरी नागरिक मन के जीवन ला बेहतर और आसान बनाए के महत्वपूर्ण माध्यम हरय। प्रधानमंत्री हा कहिन कि देश हा अपन कर्मयोगी मन ऊपर भरोसा जताए है और अब ये उखर जिम्मेदारी हरय कि ओमन अपन लगन आचरण और रोजमर्रा के काम ले वो भरोसा के मान रखें और ओला और मजबूत करें। श्री मोदी हा कहिन कि पूरी दुनिया भारत के विकास यात्रा के हिस्सा बने बर उत्सुक है। प्रधानमंत्री हा कहिन कि हर भारतीय देश ला विकसित भारत बनाए के संकल्प के संग काम करत है। श्री मोदी हा नवनियुक्त कर्मचारी मल्ला iGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल करे बर प्रोत्साहित घलो करें। रोजगार मेला आज देश में 47 अलग अलग जगह मन में आयोजित करेगी। रायपुर में ये आयोजन दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे डहर ले पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में करेगी। कार्यक्रम में केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री दुर्गादास उइके और राज्यसभा सदस्य लक्ष्मी वर्मा के उपस्थिति में 257 युवा मल्ला नियुक्ति पत्र सौंपेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहकार से समृद्धि के संकल्पना ला धरातल में उतारे बर केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय डहर ले नवा रायपुर में पूर्वी क्षेत्र के 6 राज्य मन के क्षेत्रीय कार्यशाला आयोजित करेगी। एमा छत्तीसगढ़ के अलावा बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के वरिष्ठ अधिकारी मन शामिल हुए। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के सचिव डॉ आशीष कुमार भूटानी करें। कार्यशाला में केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह के पहल में संचालित योजना मन के प्रगति के समीक्षा करेगी। विशेषज्ञ मन बतायें कि पैक्स समिति मल्ला केवल ऋण वितरण तक सीमित नहीं रख के बहुउद्देशीय ग्रामीण सेवा केंद्र के रूप में विकसित करे जाते। एकर तहत खाद वितरण, खाद बीज वितरण, धान खरीदी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, डेयरी, मत्स्य पालन, वेयर हाउसिंग और ग्रामीण उद्यमिता जैसे गतिविधि मल्ला बढ़ावा दे जाते। एकर ले किसान और ग्रामीण मल्ला गांव स्तर में ही बेहतर सुविधा और रोजगार के अवसर मिले। पेट्रोल और डीजल के दाम एक घो फिर बढ़ गए है। पेट्रोल 89 पैसा और डीजल 96 पैसा महंगा हुए है। रायपुर में अब पेट्रोल 105.36 रुपया और डीजल 98.47 रुपया प्रति लीटर मिलत है। पाछू 10 दिन में पेट्रोल और डीजल के दाम में ये बढ़ोतरी तीसरैया घाव हो है। यही बीच राज्य शासन हा काली जारी आदेश में सबो पेट्रोल डीजल पंप मन में ड्रम, बोतल और जेरिकेन में ईंधन के बिक्री ऊपर तत्काल रोक लगा दे है। हालांकि रबी खरीफ सीजन पर किसान कलेक्टर मंडहारले चिन्हांकित शासकीय निर्माण कार्य और अस्पताल, मोबाइल टावर जैसे अत्यावश्यक सेवा मल्ला ये प्रतिबंध में छूट दे गए है। एकर बर अनुविभागीय अधिकारी परीक्षण के बाद सुरक्षा मानक मन के अनुरूप बिक्री की अनुमति होगी। प्रदेश के आने आने जिला में डायल 112 के जगह अत्याधुनिक मोबाइल फॉरेंसिक वैन उपलब्ध कराए जाते हैं। यही कड़ी में आज मुंगेली जिला में घलो ये सुविधा शुरू हो गई है। जिला के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल और दूसर वरिष्ठ अधिकारी मनहा हरी झंडी दिखा के ये वैन ला रवाना करें। ये कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री अरुण साव वर्चुअली शामिल हुए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव

0: काली राजधानी रायपुर में कचना रेलवे ओवरब्रिज के लोकार्पण कर एला आम जनता ला सौंपीन। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर डहर ले प्रस्तुत कार्यक्रम जिले की चिट्ठी के प्रसारण काली संध्या 6:05 ले 6:10 तक करे जाही। ये कार्यक्रम ला छत्तीसगढ़ के आकाशवाणी के सबो केंद्र डिले कर ही। ये बखत के अंक मा गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला के संबंध में जानकारी दे जाही। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचा थन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: अब आगु बढ़ो बाकी समाचार को ते। संघ लोक सेवा आयोग UPSC के सिविल सर्विस प्रारंभिक परीक्षा काली 24 मई के आयोजित करे जाही। ये परीक्षा दो पाली में होही। पहली पाली बिहनिया 9:30 ले 11:30 तक और दूसरिया पाली बंझनिया 2:30 ले 4:30 तक होही। दोनों पाली में परीक्षा शुरू होए के आधा घंटा पहली परीक्षा केंद्र के दरवाजा बंद कर दे जाही। ये बखत परीक्षार्थी मन ला फेस स्कैन सिस्टम ले गुजरना होही। चेहरा मैच होए के बाद ही उमन ला परीक्षा केंद्र के अंदर जाए के अनुमति दे जाही। ये परीक्षा पर रायपुर जिला में 22 ठंड परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा ला लेके कड़ी सुरक्षा व्यवस्था करे गए हैं। कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह परीक्षा केंद्र ले 5 मीटर के दायरा में ध्वनि प्रदूषण और कोनो भी प्रकार के अव्यवस्था ला रोके के निर्देश दे हैं। आकाशवाणी के 90 पूरा होए के मौका में आज अंबिकापुर आकाशवाणी केंद्र में वॉकथन के आयोजन करेगी, जेमा आकाशवाणी परिवार के सदस्य मन के संगे संग जनप्रतिनिधि प्रशासनिक अधिकारी और आने आने सामाजिक संगठन के प्रतिनिधि मन शामिल होइन। वॉकथन आज बिहनिया आकाशवाणी केंद्र ले शुरू होके आने आने रद्दा ले होवत लहुटत आकाशवाणी केंद्र में सिरईस। ये मौका में लुंड्रा विधायक प्रबोध मिंझ कहिन की रेडियो आज भी समाज के हरेक वर्ग तक पहुंचने वाला प्रभावी माध्यम है। कार्यक्रम के आखिरी में आकाशवाणी केंद्र अंबिकापुर के सहायक निदेशक कार्यक्रम प्रमेंद्र कुमार के अपन संबोधन में आकाशवाणी के 90 के ऐतिहासिक और अनवरत यात्रा ला सुरता करीन। आकाशवाणी के 90 पूरा होए के उपलक्ष्य में आकाशवाणी केंद्र रायपुर डहर ले राजधानी में स्वरोत्सव संगीत समारोह के आयोजन करेगी। 2 सत्र में होए ये कार्यक्रम के दौरान पद्मश्री मदन चौहान सुगम संगीत पेश करें। उन्हें श्वेता शिवाले डहर ले उपशास्त्रीय संगीत की प्रस्तुति देगी। दोनों ही गायन मन अपन मनमोहक प्रस्तुति ले दर्शक मल्ला मंत्रमुग्ध कर दिन। ये अवसर में बड़ संख्या में संगीत प्रेमी मन उपस्थित रहें। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार बर 31 जुलाई तक नामांकन आमंत्रित करेगे है। एकर बर 1 से 18 आयु वर्ग के लेका मन आवेदन कर सकत है। आवेदन केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम ले ऑनलाइन स्वीकार करे जाहे। छत्तीसगढ़ शासन हा प्रदेश के प्रतिभाशाली लेका मन ला ज्यादा ले ज्यादा संख्या में आवेदन करे के अपील करे है। दंतेवाड़ा जिला में सुरक्षा बल आज बारसूर थाना क्षेत्र में माओवादी मंडहार ले लुका के रखे 5 किलो वजनी प्रेशर कुकर IED बरामद करीन। जिला मौका में ही निष्क्रिय कर देगे है। मिले जानकारी के अनुसार जिला में नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत सुरक्षा बल के टीम हिड़पाल गांव के पहाड़ी और घना जंगल में सर्च ऑपरेशन पर निकले रहीन। इस दौरान ये IED बरामद करेगी। अब पेश है मौसम के हाल। प्रदेश में ए बखत भारी गर्मी पड़त है, जेखर ले जनजीवन प्रभावित होवत है। मौसम विभाग अवैया 48 घंटा के दौरान रायपुर बिलासपुर दुर्ग राजनांदगांव महासमुंद समेत प्रदेश के 18 जिला मन में 1-2 जगह में लू चले की संभावना जताए है। ये दौरान गर्म हवा चले और अधिकतम तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहे की संभावना है। यही बीच विशेषज्ञ मन लू ले बाचे पर सावधानी बरते की अपील करे है। विशेषज्ञ मन पानी और तरल पदार्थ के सेवन करे, हल्का रंग के सूती कपड़ा पहने और पूरा शरीर ढक के राखे की सलाह दे हैं। संगे संग बिना कारण बाहर झन जाए के अपील घरों करे हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के मौका में बिलासपुर जिला के

0: कोपरा रिजर्वायर परिसर में पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता संवर्धन ल लेके जागरूकता कार्यक्रम के आयोजन करेगी। आखिर में प्रमुख समाचार एक घों फेर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हा आज 19वां रोजगार मेला के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम ले चुने हुए 51,000 ले ज्यादा युवा मल्ला बांटी नियुक्ति पत्र। पेट्रोल और डीजल के दाम एक घों फेर बढ़ गए है। पेट्रोल 89 पैसा और डीजल 96 पैसा महंगा हो गए है। और संघ लोक सेवा आयोग UPSC के सिविल सर्विस प्रारंभिक परीक्षा काली 24 मई के आयोजित करे जाहे। एक संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन यही सिरावत है। जय जोहार।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः ललितमोहनः तिवारी। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21वें आजीविका मेल के अद्य प्रशासनस्य विभिन्न विभागेषु संस्थासु च नवनियुक्तेभ्यः 150,000+ युवकेभ्यः नवनियुक्तिपत्राणि प्रदत्तानि। बिहार प्रशासनेन घोषितं यत् आगामिषु पञ्चवर्षेषु राज्ये 100,000 शिक्षकाणां नियुक्तिः भविष्यति। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद इत्यनेन द्वादशी कक्षायाः वार्षिक परीक्षायाः उत्तरपुस्तिकानां प्रतिलिपिं प्राप्तुम् आवेदनस्य अन्तिमा तिथिः एकदिवसपर्यन्तं वर्धिता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा अमेरिका देशस्य विदेश मंत्री मार्को रूबियो च भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक संधिं सुदृढ़ीतुं चर्चां कृतवन्तौ। विश्व स्वास्थ्य संघटनेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो देशे इबोला संक्रमणस्य बुंदी बुग्यु प्रभेदस्य सार्वजनिक स्वास्थ्य संकटं राष्ट्रीय स्तरे उच्चतः अतीव उच्चस्तरे वर्धितम्। अपि च IPL 20-20 क्रिकेट क्रीडा स्पर्धायां अद्य लखनऊ सुपर जायंट्स पंजाब किंग्स दलयो मध्ये लखनऊ नगरे स्पर्धा भविष्यति। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21वें आजीविका मेलके अद्य प्रशासनस्य विभिन्न विभागेषु संस्थासु च नवनियुक्तेभ्यः 150,000+ युवकेभ्यः नियुक्तिपत्राणि प्रदत्तानि। एतत् आजीविका मेलकं सम्पूर्णे देशे 47 विभिन्नस्थानेषु आयोजितः आसीत्। सम्पूर्णदेशात् चयनिताः एते नूतनकर्मचारिणः रेलमन्त्रालये, गृहमन्त्रालये, स्वास्थ्यपरिवारकल्याणमन्त्रालये, उच्चशिक्षाविभागे च इत्यादिषु विभिन्नमन्त्रालयेषु विभागेषु च स्वसेवाः प्रदास्यन्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अवदत् यत् प्रशासनिकनियुक्तयः नागरिकाणां जीवनं श्रेष्ठतरं सुलभतरं च कर्तुं महत्वपूर्णं साधनम् अस्ति। प्रधानमन्त्री अवदत् यत् राष्ट्रेण स्वीयकर्मयोगिषु विश्वासः प्रदर्शितः अस्ति। अधुना तेषां दायित्वमस्ति यत् ते स्वीयया निष्ठया सदाचारेण दैनिककार्येण च तस्य विश्वासस्य मानं रक्षेयुः।
2: कर्मयोगी प्रारंभ जैसे मॉड्यूल से आपको अपनी जिम्मेदारियां समझने में बहुत सहूलियत होगी। मेरा आपसे आग्रह है इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। आज भारत का युवा दुनिया के हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहा है। यही स्पिरिट, यही ऊर्जा पब्लिक सर्विस में भी दिखाई देनी चाहिए। विकसित भारत ऐसे ही युवाओं के प्रयास से बनेगा जो अपने काम को देश सेवा का माध्यम मानते हैं।
1: श्री मोदी अवदत् यत् सम्पूर्णः विश्वः भारतस्य विकासयात्रायां सम्मिलितुं भवितुम् उत्सुकः अस्ति। प्रधानमन्त्री उक्तवान् यत् प्रत्येकः भारतीयः विकसितभारतस्य निर्माणाय सङ्कल्पेन सह कार्यं करोति। अस्य लक्ष्यस्य प्राप्तये राष्ट्रं बहुषु क्षेत्रेषु निवेशं करोति। प्रधानमन्त्री यूनां कृते नूतनवृत्त्यावसराणां सृजनं क्रियमाणम् इति विशेषरूपेण अवदत्।
2: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
1: श्री मोदी अग्रे उक्तवान् यत् प्रत्येकः भारतीयः 47-20,000+ भारतं विकसित भारतं कर्तुं दृढ़ संकल्पेन कार्यं करोति।
2: आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के

0: वैश्विक स्तरे च न्यूनम् इति मूल्यांकितम् अस्ति। सः स्पष्टीकृतवान् यत् अधुना यावत् द्वयशीति प्रकरणेषु सप्त जनाः मृताः, परन्तु वास्तविक प्रकोपः एतस्मात् बृहत्तरः भवितुं शक्नोति, यतः प्रायः 50+ 700 सन्दिग्धप्रकरणानि, 77+100 सन्दिग्धमृत्यवः च पञ्जीकृताः सन्ति। IPL 20/20 क्रिकेट क्रीडा स्पर्धायां अद्य लखनऊ सुपर जायंट्स पंजाब किंग्स दलयो मध्ये लखनऊ नगरे स्पर्धा भविष्यति। स्पर्धेयं 7:30 समारप्स्यते इति वार्ताः।
1: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपली केंद्र है। 6:30 हुए हैं, लीजिए सुनिए लोक संगीत का कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम में कलाकार हैं खुशीदास मानिकपुरी और साथी।
2: संगवारी तोरे रापा कुदारी, संगवारी तोरे रापा

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: लोक संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से। आज इसमें कलाकार हैं खुशी दास मानिकपुरी और साथी।

अब एक सूचना सुनिए श्रोताओं, आगामी मंगलवार 26 मई 2026 को प्रसारित होने वाले हेलो किसानवाणी कार्यक्रम का विषय होगा खरीफ पूर्व कृषि यंत्रों का रखरखाव एवं संबंधित योजनाएं। विषय पर आपकी समस्याओं और जिज्ञासाओं के समाधान हेतु हमारे स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर विनय कुमार नायक, सहायक प्राध्यापक कृषि अभियांत्रिकी, कृषि विज्ञान केंद्र पहंदा दुर्ग। आप अपनी जिज्ञासा और शंका का समाधान पाने के लिए हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 400-3482, 400-3483 और 400-3484। रायपुर का एसटीडी कोड है 0771। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग 26 मई 2026 को 11:30 से 12 बजे तक की जाएगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण मंगलवार को ही संध्या 7:30 पर किया जाएगा। हमें आपके फोन कॉल का इंतजार रहेगा। सूचना समाप्त हुई। लोक संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से, और आज इस कार्यक्रम में कलाकार हैं खुशी दास मानिकपुरी और साथी।

0: लोक संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे खुशीदास मानिकपुरी और साथियों के गाए छत्तीसगढ़ी लोकगीत। ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
1: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
2: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। घर सूर्य घर।
5: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
6: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
5: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
6: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
5: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने न आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
6: क्यों?
5: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
7: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
8: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
9: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
8: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
9: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
8: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
9: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
7: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
10: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
9: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
10: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
9: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
10: आकाशवाणी से।
7: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
9: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
10: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
9: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
7: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
0: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेले के तहत आज 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। रायपुर में केंद्रीय राज्य मंत्री दुर्गादास उइके ने 257 युवाओं को प्रदान किए नियुक्ति पत्र। राज्य शासन ने सभी पेट्रोल डीजल पंपों पर ड्रम, बोतल और जेरिकेन में ईंधन की बिक्री पर तत्काल रोक लगाई। प्रदेश के विभिन्न जिलों में आज डायल 112 सेवा के तहत अत्याधुनिक मोबाइल फोरेंसिक वैन उपलब्ध कराई गई। और प्रदेश में आज सबसे अधिक 46 डिग्री सेल्सियस

0: तापमान राजनांदगांव में दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के दौरान 18 जिलों में लू चलने की दी चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 19वें रोजगार मेले के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में चुने हुए 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस मौके पर श्री मोदी ने कहा कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है।
1: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि हर भारतीय देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ काम कर रहा है। रोजगार मेला आज देश में 47 अलग अलग जगहों पर आयोजित किया गया। रायपुर में ये आयोजन दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय जनजाति कार्य राज्य मंत्री दुर्गादास उइके ने बताया कि आज 257 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए हैं। उन्होंने युवाओं से कहा कि ये केवल एक नौकरी नहीं है बल्कि भारत को विकसित बनाने की एक जिम्मेदारी है।
2: देश में लगभग 51,000 युवाओं को शासकीय नौकरियों में आज नियुक्ति पत्र वितरित किए गए हैं। इस कार्यक्रम में 257 कैंडिडेट्स को फिजिकली तथा कुल 803 कैंडिडेट्स को स्वीकृति पत्र प्रदान किए गए हैं, जिसमें रेलवे के 200, डाक विभाग के 54, वित्त विभाग के 11, स्वास्थ्य विभाग के 7 एवं हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के 5 कैंडिडेट्स को इस मंच से स्वीकृति पत्रक दिए गए हैं।
0: इस अवसर पर राज्यसभा सदस्य लक्ष्मी वर्मा भी विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित थी। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय द्वारा नवारायपुर में पूर्वी क्षेत्र के 6 राज्यों की क्षेत्रीय कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें छत्तीसगढ़ के अलावा बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के सचिव डॉ आशीष कुमार भूटानी ने की। कार्यशाला में विशेषज्ञों ने बताया कि पैक्स समितियों को केवल ऋण वितरण तक सीमित न रखकर बहुउद्देशीय ग्रामीण सेवा केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दाम में एक बार फिर बढ़ोतरी की है। पेट्रोल 89 पैसे और डीजल 96 पैसे महंगा हुआ है। रायपुर में अब पेट्रोल 105 रुपए 36 पैसे और डीजल 98 रुपए 47 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। इस बीच राज्य शासन ने सभी पेट्रोल डीजल पंपों पर ड्रम, बोतल और जेरिकेन में ईंधन की बिक्री पर तत्काल रोक लगा दी है। हालांकि रबी खरीफ सीजन के लिए किसानों, कलेक्टर द्वारा चिन्हांकित शासकीय निर्माण कार्यों और अस्पताल, मोबाइल टावर जैसी अत्यावश्यक सेवाओं को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है। इनके लिए अनुविभागीय अधिकारी के परीक्षण के बाद सुरक्षा मानकों के अनुरूप बिक्री की अनुमति होगी। प्रदेश के विभिन्न जिलों में डायल 112 सेवा के तहत अत्याधुनिक मोबाइल फोरेंसिक वैन उपलब्ध कराई जा रही है। आज विभिन्न जिलों में जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने इन मोबाइल फोरेंसिक वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसी कड़ी में मुंगेली में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर इस वैन को रवाना किया। इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री अरुण साव वर्चुअली शामिल हुए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल राजधानी रायपुर में कचना रेलवे ओवरब्रिज का लोकार्पण कर इसे आम जनता को समर्पित किया। साथ ही 22 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बने शंकरनगर खमाड़ी कचना मार्ग के चौड़ीकरण कार्य का लोकार्पण भी किया गया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री और लोक निर्माण मंत्री अरुण साव भी उपस्थित थे। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की सिविल सर्विस प्रारंभिक परीक्षा कल 24 मई को आयोजित की जाएगी। ये परीक्षा 2 पालियों में होगी। पहली पाली सुबह 9:30 से 11:30 तक और दूसरी पाली दोपहर 2:30 से 4:30 तक होगी। दोनों पालियों में परीक्षा शुरू होने के आधे घंटे पहले परीक्षा केंद्र का द्वार बंद कर दिया जाएगा। इस बार परीक्षार्थियों को फेस स्कैन सिस्टम से गुजरना होगा। चेहरा मैच होने के बाद ही उन्हें परीक्षा केंद्र के अंदर जाने की अनुमति दी जाएगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष में आज अंबिकापुर आकाशवाणी केंद्र द्वारा वॉकथन का आयोजन किया गया, जिसमें आकाशवाणी परिवार के सदस्यों के साथ ही जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। वॉकथन आज

0: वह आकाशवाणी केन्द्र से शुरू होकर विभिन्न मार्गों से होते हुए वापस आकाशवाणी केन्द्र में संपन्न हुआ। इस मौके पर लुंड्रा विधायक प्रबोध मिंज ने कहा कि रेडियो आज भी समाज के हर वर्ग तक पहुंच रखने वाला प्रभावी माध्यम है। कार्यक्रम के अंत में आकाशवाणी केन्द्र अंबिकापुर के सहायक निदेशक कार्यक्रम प्रमेन्द्र कुमार ने अपने संबोधन में आकाशवाणी की 90 वर्षों की ऐतिहासिक और अनवरत यात्रा का स्मरण किया।
1: आकाशवाणी की स्थापना के 90 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर हमने एक वाकाथन का आयोजन किया था और इसमें हमारे सभी साथियों ने, सभी श्रोताओं ने, सभी जनप्रतिनिधियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ये 90 वर्ष की जो यात्रा है, ये आकाशवाणी ने भारत की सांस्कृतिक विरासत को, भारत के साहित्य को, लोक कला को, लोक साहित्य को सहेजने और संवारने का काम किया है।
0: वहीं आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आकाशवाणी केंद्र रायपुर द्वारा राजधानी में कल स्वरोत्सव संगीत समारोह का आयोजन किया गया। 2 सत्रों में हुए इस कार्यक्रम के दौरान पद्मश्री मदन चौहान ने सुगम संगीत पेश किया। वहीं श्वेता शिवाली द्वारा उपशास्त्रीय संगीत की प्रस्तुति दी गई। दोनों ही गायकों ने अपनी मनमोहक प्रस्तुतियों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में संगीत प्रेमी उपस्थित थे। रायपुर के आकाशवाणी केंद्र द्वारा स्वरोत्सव के इस संगीतमय आयोजन पर आधारित एक विशेष कार्यक्रम का प्रसारण आज रात 8 बजे से किया जाएगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जिले की चिट्ठी का प्रसारण कल शाम 6:05 से 6:10 तक किया जाएगा। इस कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। इस बार के अंक में गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। लोक निर्माण विभाग ने अपने सभी अनुविभागीय अधिकारियों से लेकर प्रमुख अभियंता तक सभी को मुख्यालय में रहने के निर्देश दिए हैं। निर्माणाधीन कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के लिए विभाग ने ये निर्देश जारी किए हैं। साथ ही निर्माण एजेंसियों और ठेकेदारों द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर उन्हें हर महीने भुगतान सुनिश्चित करने को कहा गया है। दंतेवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों ने आज बारसूर थाना क्षेत्र में माओवादियों द्वारा छिपा कर रखे गए 5 किलो वजनी प्रेशर कुकर IED को बरामद किया है, जिसे मौके पर ही निष्क्रिय कर दिया गया। सुरक्षा बलों की टीम हिड़पाल गांव की पहाड़ी और घने जंगल में सर्च ऑपरेशन पर निकली थी, इसी दौरान ये IED बरामद किया गया। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, महासमुंद सहित प्रदेश के 18 जिलों में 1-2 स्थानों पर लू चलने की चेतावनी दी है। इस दौरान गर्म हवा चलने और अधिकतम तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। राजनांदगांव आज सबसे गर्म रहा, जहां अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं दुर्ग में 45 डिग्री सेल्सियस और रायपुर, माना तथा बिलासपुर का अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया। इस बीच विशेषज्ञों ने लू से बचाव के लिए सावधानी बरतने की अपील की है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 24 मई कर दी है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर बिलासपुर जिले के कोपरा रिजर्वायर परिसर में पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता संवर्धन को लेकर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जांजगीर चांपा जिले में 29 दिन पहले हुए करही गोलीकांड के सिलसिले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से पिस्तौल बरामद की है। और बिटकॉइन में निवेश कर मुनाफा दिलाने का झांसा देकर एक व्यक्ति से 7.5 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने के मामले में दुर्ग पुलिस ने एक आरोपी को रायपुर से गिरफ्तार किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेले के तहत आज 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। रायपुर में केंद्रीय राज्य मंत्री दुर्गादास उइके ने 257 युवाओं को प्रदान किए नियुक्ति पत्र। राज्य शासन ने सभी पेट्रोल डीजल पंपों पर ड्रम, बोतल और जेरिकेन में ईंधन की बिक्री पर तत्काल रोक लगाई। प्रदेश के विभिन्न जिलों में आज डायल 112 सेवा के तहत अत्याधुनिक मोबाइल फोरेंसिक वैन उपलब्ध कराई गई। और प्रदेश में आज सबसे अधिक 46 डिग्री सेल्सियस तापमान राजनांदगांव में दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान 18 जिलों में लू चलने की दी चेतावनी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप हमारा अगला कार्यक्रम सुनेंगे। ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है।

हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से बोल रहे हैं। 7 बजे हैं। आइए सुनते हैं चित्रपट संगीत।

कार्यक्रम का ये पहला गीत आपने सुना फिल्म चोर मचाए शोर से। आवाजें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की थी। गीत लिखा था इंद्रजीत सिंह तुलसी ने और संगीत रविंद्र जैन का था।

0: ആകാശവാണി എറ്റ് 90.
1: चित्रपट संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। लीजिए अब आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार की आवाज में आनंद बख्शी का लिखा गीत। धुन तैयार की है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और फिल्म का नाम है अनुरोध।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में अभी आपने सुना आनंद बख्शी का लिखा गीत। धुन तैयार की थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और फिल्म का नाम था आसपास। आइए आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है और फिल्म का नाम है धरती कहे पुकार के।

इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का कार्यक्रम समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 7:21 हुए हैं। किसान भाइयों के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम चौपाल।

0: तेजेश्वर भाई राम राम।
1: राम राम लक्ष्मीकांत और संगे संग चौपाल सुनिए जम्मो संगवारी मल्ला हमर दोनों के
0: राम राम।
1: लक्ष्मीकांत भाई,
0: हाँ,
1: अभी जैसे कहां ता संगी मन के जो खेती किसानी के बूता काम है ओ मन मा खेत मेड़ मन के साफ सफाई ही बूता काम बने ढंग ले चलत हावे और अवैया जोन खरीफ मौसम हेवे ना ओमा जोन फसल हमन हा लगाए के विचार करे हवन ओकर हिसाब ले हमन अभी खातू कचरा घलो व्यवस्था करत हवन और जब फसल के हिसाब ले हमन हा ओकर व्यवस्था बढ़िया ढंग ले करबो और बढ़िया बेरा रहत हमन कहूँ अगर फसल लगाबो तो अपन खेत के तैयारी बने ढंग ले करबो ओकर हिसाब ले करबो तब फिर तो बने हो ही। काबर की कतको कन ऐसे है कि जेला हमन खर्री बावत करथन, कतको कन ऐसे है जेला हमन रोपाई की तैयारी करबो औ कतकोला हमन हा क्यारी में घलो लगाबो। आना आने फसल जेन ला हमन जैसे लगाना है तेकरे हिसाब ले हमन हा खेत के अपन तैयारी ला कर सकथन।
0: अब देख संगी मन सबले ज्यादा तय मौसम में धान के खेती करथे। अब एकर बुआई अपन करा उपलब्ध सिंचाई के जोन साधन है ना ओकर हिसाब ले हम करथन तो बड़ सुघर होथे। हाँ, हम ये छिटकवा लेबो कि रोपाई करके एकर बोनील करना है। हाँ, जेन जगह में पानी की व्यवस्था नहीं है और ऊपर वाला के ऊपर भरोसा है तेन जगह में हम खर्री बावत करके बीजा ला छिड़क दे जाते है ना और फिर संगी मन जोन हावे हमर संगवारी मन किसान भाई मन है सबो विधि ले फसल लेते है ना। तो ये तो हो गए हम पारंपरिक रूप ले हम जो खेती करथन और हमर विशेषज्ञ मन हमला बेरा बेरा मा हमर जोन कृषि विस्तार अधिकारी मन हवा जो हमर नवा तकनीक ले हमला पहचान करात रहते तो वैज्ञानिक पद्धति जेला हम श्री पद्धति या सराई पद्धति कही थे है ना एकर ले फसल उत्पादन करना जोन हवा वह ज्यादा लाभ के माने जाते तेकर ऊपर हम गोट करबो।
1: देख ये सराई पद्धति ऐसे लक्ष्मीकांत भाई क्यों मैं धान के जन खेती है ना ओमा एक ठन आधुनिक तरीका अपना के हमन हा ओल करथन। एमा सीधा सीधा कहान तक कमती बीजा मा कमती पानी लागत ले हमन हा कम लागत लगान और संग मा उत्पादन ज्यादा हो सके हमला लाभ जो है ज्यादा मिल सके यही उदिम रथे। एमा ऐसे है कि कुछ कुछ हमन बात के ध्यान हमन रख सकथन जैसे भाई फसल उत्पादन करे जाथन त कमती जो उम्र के पौधा
0: है
1: ओला लगावन ओकर रोपाई करन जैसे कहान ते 18 ले 15 दिन के जो छोटे पौधा होते ओकर रोपाई करन काबर ए मन बढ़िया केवरी रथे नानचुन केवची पौधा रथे ओ मन हा बड़ जल्दी लगते और एकर पौधा के बढ़वार घलो बढ़िया ढंग ले होते जड़ हा मजबूत होते फैलाव बढ़िया बनते ओकर और एक जगह मा एक ठन पौधा ला हमन में लगाथन यानि आने जन रोपाई करथन ते पौधा में दू ठन चार ठन काड़ी खोजथन तो हमें एक ठन खोजबो एकर ले जन है पौधा हा बढ़िया फैली घलो और पौधा के जन दूरी है बहु भला ज्यादा रथे।
0: और जैसे हम अभी गोठियावत हन दू ठन चार ठन पौधा ले एक जगह करथन तो ओला प्रतिस्पर्धा हो जाते हैं उनके आपस में और हमार काम के भी कम होते एक पौधा ले एक जगह हम करथन तो अपन फैले के बढ़िया सुघर जगह पाते गोठियाथन। अब एकर दूरी 25 ले 25 सेंटीमीटर

0: कर रखे जाते हैं हमारे सारे विधि में, जब हमारे विशेषज्ञन बताते हैं है ना, जेकर ले हवा और धूप अच्छा मिलते, कमती पानी जो हवा हमारे खेत में है ना, ओकर कमती पानी के जरूरत रहते, कम जितना जरूरत है हम उतके सिंचाई बर रखथन है, एकर ले पानी के जो समुचित उपयोग हवे वो हमार होते। त पहली चीज तो पानी भी बांचा थे, हम पेड़ के जो लागत है वह पौधा के लागत गुठियात रहे थे वो कम हो गए है ना, चार के जगह में के लगावत है एक जगह था। खरपतवार नियंत्रण पर हाथ ले चलिए मशीन ले जो नष्ट करे जाते है ना, एक जो खरपतवार है और एकर ले माटी में हवा घलो घुसरथे। जैविक खाद के उपयोग ले माटी जो हवा ते उपजाऊ भी बने रहते।
1: देख भाई ऐसे कि जब SRI जो पद्धति है एला जब अपनाथन ना तो हमन देखें अभी तक के विशेषज्ञ मन घलो बताते कि 30 ले जो 50% तक के जो है एमे उत्पादन बाढ़े के जो है क्षमता हवे वो बाढ़ जाते हैं। बीजा है पानी है एमन कमती लागते, एक सकती पौधा मजबूत घलो होते, रोग राई कमती होते, पौधा मजबूत है तो रोग राई कमती हो। जो है लगभग 2 किलो के जोन बीजा है वो 1 एकड़ माँ जो है पर्याप्त हो जाते हैं। अच्छा गुणवत्ता वाले जोन बीजा के चयन है ओला हमन जब करथन तो ओला उपचार घलो करे पड़ते
0: हैं,
1: और उपचार करके जब बोबो ना तो हमन हाँ क्यारी बोनी कर सकथन और आने आने बोनी हमन हाँ कर सकथन।
0: और उपचार करथन तो रोग राई के भी जो हवा वो कम होते। हम चाहे कोनो विधि ले फसल लेवाथन है ना, फिर एकर अच्छा उत्पादन पर हम जो बीजा चयन करथन वह बीजा अच्छा होए, प्रमाणित होए, रोग ले मुक्त होए, हाँ अपन क्षेत्र के हिसाब ले होए, जो क्षेत्र के जो उत्पादन जिन क्षेत्र में बढ़िया सुघर होते कि हमला प्रमाण मिले से है ना, या अनुभव के आधार में
1: कतको बेरा देखथन कि भाई आने जगह के बीजा हवे हमार जगह लगाथन तो पौधा बने दिखते, फिर उत्पादन
0: कम मिलते
1: हैं। यही बात ला हमन हां ध्यान रखा।
0: और दूसर ये है तेजेश्वर भाई कि समय में हम रोपाई करथन, बोनी है, बियासी है ना, कोनो भी जिनिस काम करथन हां तो समय में सही काम ला सही काज ला कर लेथन तो करा लग लाभ है। खेत के तैयारी हमार फसल बोनी के जोन पहली हवे ओला हम कर ले रहन हां, गोबर के सड़े खाद कंपोस्ट जोन हवे हां, केचुआ खाद है ना, ये सब के उपयोग हां के बेरा हवे ओकर पहली हम एकर तैयारी ला कर ले रहन सीधा सीधा गोठियावन त खाद के संतुलित और हमार फसल के मांग के हिसाब ले माटी में उपलब्ध मात्रा के हिसाब ले ही हम ला खाद के उपयोग करन है। और जरूरत ले ज्यादा बिना खाद के हम अगर उपयोग करथन त वो हमार आर्थिक नुकसान है भाई, जरूरत नहीं है, हम डालते जाथन त हमार पौधा ला जरूरत नहीं है तो काबर लिही हो है। त अगर यह हमार जोन खाद हवे वो नुकसान है तो ओकरे हिसाब ले हम डारन
1: हमरे जेब भारी हावे है नहीं, तो जांच के कैसे कही सकथन कि हमन माटी के जांच करवा लेन ओकर बाद हमन खाद पानी के व्यवस्था करन, पानी के सही प्रबंध घलो करन, काबर की फसल के जल मांग ऐसे हावे कि कोनो कोनो बेरा में बहुत ज्यादा जरूरी छोथे जेला हमन क्रांतिक अवस्था घलो कथन, ओला चेत करके रखन कि भाई कोन बेरा हमन देबो तो फसल के जो उत्पादन है वो बने होई, भाई फल फूल के बेरा हावे तो फल फूल के समय देन, अनाज वाला है तो ओमे जब बाली आते वो बेरा में देन, खेत में जोन जरूरत ले ज्यादा जल है ओकर निकासी के व्यवस्था घलो हमन करन, भाई ज्यादा जल रही तो फिर हमार फसल नुकसान है, खरपतवार के जो नियंत्रण है ओकर बर बीच बीच में निराई गुड़ाई करना घलो जरूरी है। निराई गुड़ाई होत रहते ना तो माटी पोला होत रहते, हवा जात रहते, पौधा वाला बढ़वार हो जगह मिलते, और बहुत ज़्यादा जन खरपतवार है ओकर जब जरूरत पड़त है तो खरपतवार नाशी के हम ना उपयोग करन,
0: और कीड़ा मकोड़ा है रोग रही है ना एक उचित प्रबंधन हम शुरुआत में ही हम कर लेवथन तो फसल हम नुकसान जोन है वो कमती होते हैं। और जैविक उपाय अपनावन, नीम ले बने दवाई है जीवामृत है हाँ, आगे जोन जैविक दवा खुद बना के हम उपयोग में ला सकथन लावन। सबले ज्यादा छेद के बेरा है फसल के कटाई के सही बेरा जब आते तब फसल हम काट लेवन में एकर मिजाई कर लेवन, नहीं तो फसल कभू परिपक्व हो गए है और झुक गए है तब हमारे किसान नुकसान होते है ना। हाँ और तेजेश्वर भाई गोट बात तो करबो फिर सुनथन है सुघर संदेश ला।

0: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय।
1: आंखी के जम्मो प्रकार के जांच और मोतियाबिंद के ऑपरेशन फेको विधि ले बहुत कम दरमा।
0: पहली ले नाम लिखवाए के जरूरत नहीं है, तुरते आओ पूरा जांच कराओ।
1: आज ही ऑपरेशन, आज ही छुट्टी।
0: 47 बच्चन ले सौलभ सेवा माँ।
1: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय, श्याम नगर।

0: गुरुद्वारा रोड तिलीबांधा रायपुर।
1: संगवारी हो, बेरा है किसानवाड़ी के और प्रायोजक हवे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।

0: संगी हो, हमन ह बेरा बेरा में आज के सलाह क्रम ल लेके आत रथन और एमा हमर विशेषज्ञ मन ले होय गोड़ बात ल आप मन ल सुनाथन कि कौन ढंग ले हमन अपन खेती बाड़ी या आने जन डिगर व्यवसाय है ओला हमन ह कर सकथन। आज हमर विषय उसने लेके आहन कि गर्मी में जोन मुर्गी मन के देखभाल है और ओकर प्रबंधन है वो कौन ढंग ले करन और विशेषज्ञ हैं डॉक्टर तरुण साहू, एमन ह पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ हैं पशु चिकित्सालय कुरुद जिला धमतरी मा। सुनथन क्रम आज के सलाह मा। संगी हो, खेती संग एकल जन जुड़े डिगर व्यवसाय एमन ला करके हमन हा और ज्यादा लाभ कमा सक। आज के बेरा में देखन त मुर्गी के बाढ़े मांग हर और ओकर ले जन पालन करके हमन हा और अच्छा लाभ कमा सक या कहन के अपन आमदनी ला बढ़ा सकथन। फिर मौसम के हिसाब ले एकर रख रखाव घलो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता। आज हमन हा गर्मी मा मुर्गी के जन देखभाल है और ओकर जन प्रबंधन है वो विषय में गोट करबो। हमर संग विशेषज्ञ है डॉक्टर तरुण साहू, एमन पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ है पशु चिकित्सालय कुरुदमा जिला धमतरी ले हैं। डॉक्टर साहब, सबले पहले हमारे कार्यक्रम में स्वागत है आपके, राम राम। सबले पहले आप ये बताते हो कि जन गर्मी के मौसम हावे तो सबले ज्यादा तनाव कामे महसूस करते हमारे जन मुर्गी मन है।
1: सबसे ज्यादा तनाव गर्मी में हीट स्ट्रेस से होते। तभी मैं किसान भाई मतलब बताना चाहता हूँ, हीट स्ट्रेस से ही जितना मृत्यु दर है सभी गर्मी के समय में हीट स्ट्रेस से ही मेनली सभी जो मुर्गी है ते मन खत्म होते। हीट स्ट्रेस का होते, जब भी पर्यावरण के तापमान मुर्गी के शरीर के सहन क्षमता से जब भी अधिक हो जाते तब मुर्गी के शरीर के तापमान बढ़ जाते ओला हीट स्ट्रेस कहते। हीट स्ट्रेस के लक्षण हम कैसे पहचानन किसान भाइयों? हीट स्ट्रेस टोटल तीन प्रकार से होते। पहला हीट स्ट्रेस होते जिला हल्का हीट स्ट्रेस कथन। हल्का हीट स्ट्रेस में मृत्यु दर लगभग 1-3% होते। एमे का लक्षण दिखाई दी किसान भाइयों? एमे पहला लक्षण दिखाई दी, मुर्गी अपन पंखला बार बार फैलाही, मुर्गिया हाफिल धल ली, साथ में मुर्गियां सुस्त हो जाही एवं खाना कम कर दी और पानी बहुत ज्यादा मात्रा में पियल लाग जाए। दूसरा होते किसान भाइयों मध्यम हीट स्ट्रेस। मध्यम हीट स्ट्रेस में तापमान जो है 35 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रही 40 डिग्री सेल्सियस से कम रहते, एमें मृत्यु दर 5-10% तक के हो सकते। साथ ही में लक्षण का दी, लक्षण में मुर्गी मन अपन मुंह ल खोल करके सांस ली, हाफे लग जही, काफी ज्यादा सुस्त पड़ जही, खाना पूरा बंद कर दी, पानी भी पिए की इच्छा नहीं रहा, पानी भी बहुत कम कर दी पिए बर। तीसरा और सबसे भयानक अत्यधिक हीट स्ट्रेस, एमें मृत्यु दर 20-50% तक हो सकते। एमे का लक्षण दिखी, एमे जो है मुर्गी मन अपन जगह से बैठे बैठे ग्रिल लग जही, उंघायल लग जही मुर्गी मन, खाना पानी पूरा बंद हो जाही, कई कई मुर्गी मन लकवा भी मार देते एवं अचानक से मृत्यु होने लग जाही। हीट स्ट्रेस से मेन जो है ओकर मन के वजन में कमी हो जाते, बॉयलर मुर्गी मन में, लेयर मुर्गी मन में अंडा उत्पादन जेकर क्षमता है मुर्गी मन में तेकर अंडा उत्पादन में कमी हो जाही, फर्टिलिटी रेट कम हो जाही, प्रजनन क्षमता कम हो जाही, एक जो FCR रेशियो रहते रेशियो भी ओकर मन के काफी ज्यादा बढ़ जाही, कुल मिलाकर के ओकर मन के रोग प्रतिरोधक क्षमता छीन हो जाते जेकर वजह से किसान भाई मन ला आर्थिक नुकसान काफी ज्यादा उठाए पड़ते।
0: सर पहले ये बताते हो कि जैसे हमन हा अभी गर्मी के दिन है तो ओमा देखभाल कौन ढंग ले करन, का जीज के हमन हा बचाव करन और कैसे ढंग ले बचाव करन ओकर बारे में बताते।
1: किसान भाइयों, कभी भी हीट स्ट्रेस में बचाव हमन कैसे करन? सबसे पहला जरूरी है शेड के मैनेजमेंट। जहां आपन मुर्गी मन रखते हो तेकर सबसे पहला जरूरी है सेट के मैनेजमेंट। सेट के मैनेजमेंट हम हमला कैसे करन? सबसे पहले ओकर हमला दिशा देखेल पड़ी, दिशा निर्धारण करेल पड़ी। मुर्गी सेट हमेशा पूर्व से पश्चिम की ओर होना चाहिए। दूसरा, तापमान हमेशा 18-28 डिग्री सेल्सियस तक के होना चाहिए। एकर से ज्यादा होए से मुर्गी मल्ला हीट स्ट्रोक

0: के शिकायत होते जेकर से अचानक से मृत्यु हो जाते। तीसरा वेंटिलेशन, हवादार होना चाहिए हमेशा आपके मुर्गी साइड है। हमेशा आप चाहो तो मैं पंखा लगवा सकते हो, एग्जॉस्ट फैन लगवा सकते हो, आप सक्षम हो तो मैं आप एसी भी लगवाए जा सकते हैं। हमेशा की जो मुर्गी फार्म की जो छत है ते हमेशा चूना से पोते होने चाहिए जेकर से सूर्य के किरण है रिफ्लेक्ट हो जाए। दूसरा चीज, छत में हमन बारदाना का उपयोग कर सकते हैं। बारदाना में हमन स्प्रिंकलर लगा के ओला पानी से हमेशा गीला करके रख सकते हैं जेकर से तापमान घट ही। अगर बारदाना की व्यवस्था नहीं हो पाते तो आप मन पैरल भी आप लगा सकते हो, पैरल भी आप गीला करके छत में रख सकते हो। साथ ही जो कर दीवाल है मुर्गी फार्म के दीवाल में भी आप बारदाना लगा करके ओला भी भींगा करके आप रख सकते हो। बारदाना हमेशा आप नीचे से ऊपर की तरफ लगाओ, एकर से जो मुर्गी से उत्पन्न होने वाला अमोनिया गैस है वो ट्रैप नहीं हो पाए। अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ लगाओ अमोनिया गैस हल्का होते ओकर वजह से वह अमोनिया गैस हमेशा ऊपर की तरफ उठते। देखकर से ती हमला नीचे से ऊपर की तरफ बारदाना ला दीवाल में हमेशा 75% हमला लगाना चाहिए। साथ ही दूसरा हमन देखबो एक उनके पानी, पानी हमला गर्मी के दिनों में मुर्गी मल्ला 24 घंटा हमला पानी देना चाहिए। सामान्य दिनों में अगर हमन पानी के पात्र ला अगर हमन 5 से 10 रखे हैं तो गर्मी के समय में वाला हमला जस्ट डबल कर देना चाहिए, 15 से 20 हमला पात्र रखना चाहिए। दूसरा चीज, पानी के जो तापमान है तेहा 18 से 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। हमेशा स्वच्छ साफ पानी देना है। पानी हमला हमेशा 2 से 2.5 घंटा हमला हमेशा बदलते रहना चाहिए। एकर से जो दूषित पानी है, जो पानी मन गर्म हो चुके हैं वो पानी है बार बार हमन परिवर्तित करते रहो तो एकर से हमार मुर्गी के स्वास्थ्य जो है तेहा सही रही। एकर बात हम देखथन इलेक्ट्रोलाइट मैनेजमेंट, जब भी हम मुर्गी ला पानी देथन पानी में हमेशा हमारा इलेक्ट्रोलाइट देना चाहिए। सुबह के टाइम पे 11 से 1 बजे के बीच में हमला हमेशा शुद्ध साफ ठंडा पानी, साथ ही इलेक्ट्रोलाइट, साथ ही विटामिन सी विटामिन ई हमला हमेशा देना चाहिए। विटामिन ई जो है हमला हमेशा 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से देना चाहिए। साथ ही अपन विटामिन सी है, विटामिन सी हमेशा हमला 200 से 300 मिलीग्राम प्रति लीटर पानी में मिला के हमला देना चाहिए। एक बाद आज मन की इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट ला कितना देना चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट ला हमला 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला करके देना चाहिए। फिर किसान भाई दोपहर में 1 से 3 बजे के बीच में हमला एक घोल तैयार करना है जिसमें पानी रही 1 लीटर, साथ में 1 चम्मच शक्कर रही और 2 चम्मच में दही रही। एक घोल हमला तैयार करके हमला हर मुर्गी हमला देना चाहिए जेकर से ओकर के शरीर के तापमान बने रहा है। एक बात की 3 से 5 बजे के बीच में फिर से पानी देना है, इलेक्ट्रोलाइट देना है, विटामिन सी देना है और विटामिन ई देना है। जैसे जे लेयर बर्ड है, जे अंडा उत्पादन करने वाला जो मुर्गी है ते मल्ला हमला सोडियम बाइकार्बोनेट भी मिला के देना चाहिए। कहा होता है कि गर्मी के समय में मुर्गी मन है काफी ज्यादा जब गर्मी पड़े थे शरीर के तापमान है तो उस समय ज्यादा जोर जोर से हाँप थे मुर्गी मन हम। हाँफे के वजह से कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से ज्यादा निकले रह लेते और ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाते। एकर से कुल मिला के एसिड बेसा इम्बेलेंस हो जाते, ओकर जो एक रेशियो है ते रेशियो पूरा गड़बड़ा जाते जेकर वजह से रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस हो जाते। तेकर वजह से हमन हमेशा सोडियम बाइकार्बोनेट देना चाहिए। साथ ही गर्मी के कारण से हमेशा का होते कैल्शियम के आयोनाइजेशन है वहूला काफी ज्यादा इफेक्ट डालते जेकर वजह से मुर्गी के अंडा देने वाली मुर्गी के जो अंडा है अंडा के छिलका हा पतला हो जाते नरम हो जाते। हमन सोडियम बाइकार्बोनेट दे के ये सब समस्या से हमन निजात पा सकथन।
1: सर जो छोटे मुर्गी है ओकर साथ में जो अंडा देने वाला मुर्गी है और जो बाजार में जन दिखी वो मुर्गी है, ये तीनों मुर्गी के जो रख रखाव है वो कौन ढंग ले हमला करना है?
0: छोटे जो मुर्गी है जो चूजा है, चूजा में 3 चीज के विशेष ध्यान रखना है। पहला अपन तापमान के जो हमन ब्रूडिंग टेम्परेचर बोलथन, जब भी हमन चूजा कहीं से खरीद के लाथन ओला हमन हमेशा ब्रूडिंग टेम्परेचर हमला देना रहते। पहला सप्ताह में किसान भाइयों हमला 32 से 34 डिग्री सेल्सियस में हमला रखना है किसान भाइयों अपन चूजा ला। दूसरा सप्ताह में हमला 30 से 32 डिग्री सेल्सियस में रखना है। तीसरा सप्ताह में हमला 28 से 30 डिग्री सेल्सियस में रखना है। एवं चौथा सप्ताह हमला 26 से 28 डिग्री टेम्परेचर में हमला रखेल पड़ते चूजा ला। हमला चूजा जब भी लाहन हमन बाकी बरसात के समय में या बाकी मौसम में हमन चूजा ला गर्म करे बर हमन लट्टू के इस्तेमाल करथन पीला लट्टू के, लेकिन हमला गर्मी के समय में हमला LED बल्ब का उपयोग करना चाहिए सफेद लाइट के जेकर से ज्यादा गर्मी हमला न पड़े। साथ ही हमला इलेक्ट्रोलाइट है, विटामिन सी है, विटामिन ई है, एकर हमला हमेशा सेवन करवाते रहना चाहिए। किसान भाई अब बड़े मुर्गी के बात है, बड़े मुर्गी मल्ला हम जब भी हम ट्रांसपोर्ट करथन जब भी हम मतलब परिवहन करथन परिवहन करे के समय में किसान भाई हमला 2-3 चीज के हमला खास ध्यान रखना है। पहली तापमान के, तापमान हमेशा पर्यावरण के कभी भी 35 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 35 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होए से मुर्गिया मन में मृत्यु दर काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो हमेशा दूरी देखना है हमला कतका दूरी में हमला परिवहन करना है। कभी भी अगर दूरी बहुत ज्यादा होते तो वो कंडीशन में हमला जो मुर्गी के जो गाड़ी है जिसमें हम परिवहन कर रहे थे ते गाड़ी हमला बीच बीच में रोकत रोकत चलना है। ओकर जो छत है गाड़ी के छत है ते में पानी छिड़काव करना है, क्रेट में पानी छिड़काव करना है। साथ ही साथ हमन कहीं भी अपन गाड़ी रोका था हमेशा ओला छायादार जगह में हमला किसान भाइयों रोकना चाहिए। साथ ही इमें जो हमन

0: जेमे बक्सा है जेमे क्रेट में हमन जेमे ले जाथन मुर्गी मन ला। जैसे सामान्य के दिनों में अगर हमन एक क्रेट में अगर 10 मुर्गी ले जाथन तो गर्मी के समय में हमन ला 15-20% कम मुर्गी ले जाना रहते, मतलब हमन 10 के जगह में हमन ला हमेशा 7-8 मुर्गी रखना रहते। क्रेट के बीच बीच में भी जगह रहना चाहिए कि जेकर से उमे हवादार बना रहे और जेकर से हमला सांस लेने में दिक्कत मत हो और हमर मुर्गी जो है आसानी से सही जगह पे पहुंच जाए।
1: जी धन्यवाद सर। अभी बात कर रहे हो कि हीट स्ट्रेस, तो हीट स्ट्रेस में जो अंडक उत्पादन है वो कतिक प्रभाव डालते या प्रभाव डालते कि नहीं बोला बताऊं। संग में आप पहली बीच में बोले रहे हो कि FCR करके, तो वो का होते और एकर बारे में थोड़ा समझाते हो।
0: हीट स्ट्रेस से अंडा उत्पादन में बहुत ही ज्यादा इफेक्ट डालते। अंडा के साइज छोटे हो जाते गर्मी के मौसम में, अंडा के जो छिलका है पतला हो जाते नरम हो जाते, साथ ही जो अंडा के जो उत्पादन है वह में लगभग मान के चले आप 10-15% के वह में कमी हो जाते। अगर आप अच्छा से मैनेज नहीं कर रहा था, गर्मी अगर 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो गए तो 50% तक के अंडा के उत्पादन में कमी पाए जाते। उपचार पर हमें हमेशा सोडियम बाइकार्बोनेट डालना चाहिए, 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में हमें मिला के देना चाहिए, जेकर से अंडा के छिलका बने रहा है, अंडा के साइज ठीक रहा है। बराबर हमें कैल्शियम देना चाहिए जेकर से अंडा के जो साइज है ते में कमी मत आ सके। FCR मतलब फूड कन्वर्सन रेशियो होते। FCR मतलब हमन कतना वाला दाना खिलाबो तो कतना मुर्गी के वजन बढ़ी। नॉर्मली हमन देखा जाते मुर्गी लगा रहा हमन 1 किलो 400-500 ग्राम हम खिलाथन दाना तब मुर्गी के वजन 1 किलोग्राम बढ़ते। लेकिन गर्मी के समय में किसान भाइयों FCR रेशियो खराब हो जाते। खराब होने का मतलब ये है कि जेमे पहली हम लगभग 1.5 किलो दाना खिलाए के बाद 1 किलो वजन बढ़ाते रही से, ते अब लगभग 2 किलो 200 ग्राम हम दाना खिलाबो तब जाके 1 किलो वजन बढ़ी। इला FCR रेट कथे
1: बाचे बर हमन का उद्यम कर सकते सर?
0: एक बाचे बर हमन कुछ हमन मुर्गी के दाना है दाना में हमन कुछ परिवर्तन कर सकथन। जैसे हमन गर्मी के समय में हमन ला मुर्गी ला दाना जो है ते सुबह के टाइम खिलाना चाहिए। सुबह 4 से लेकर 8 बजे के बीच में हमन ला मेन खाना देना चाहिए। दोपहर के समय में हमन ला कम से कम खाना देना चाहिए, मैं तो कहता हूँ दाना देना ही नहीं चाहिए दोपहर के समय में, सीधा शाम को दाना देना चाहिए। सूर्यास्त के बाद हमन ला मेन जो हेवी फीडिंग है मेन जो दाना है सूर्यास्त के बाद हमन ला देना चाहिए। दोपहर में हमन ला जो हरा साग सब्जी है भाजी है, हमारे छत्तीसगढ़ में प्राय हर प्रकार के भाजी मिलते हैं, जिनमें पालक भाजी भी होते, पालक भाजी आप खिला सकते हो, कांदा भाजी खिला सकते हो, जो भी आपन भाजी वाले तेला खिला सकते हो, हरा साग सब्जी खिला सकते हो। दोपहर के समय में गर्मी के समय में आप ला तरबूज के व्यवस्था हो पाते तरबूज खिला सकते हो, खीरा खिला सकते हो, पुदीन हरा के पत्ता खिला सकते हो। एला हमला दोपहर के समय में किसान भाइयों देना चाहिए।
1: अभी जैसे सर मुर्गी पाले हैं तो कतको अकन रोग बीमारी हमन ला देखे बा मिल, तो ओकर बचाव हमन कोन ढंग ले करन, टीकाकरण के का व्यवस्था कर सकथन, का दवा पानी हमन कर सकथन ओला बताते हो।
0: गर्मी के मौसम में मुर्गी मन ला कई प्रकार की बीमारी होते, जिनमें से पहला होते रानीखेत बीमारी। रानीखेत एक प्रकार के वायरल से होने वाला बीमारी है, वायरस से होते किसान भाइयों यहाँ मुर्गी खाना पीना बंद कर देते, सुस्त हो जाते, गला की परमन के मुड़ जाते, साथ ही किसान भाइयों मुर्गी जो है तेह लकवा मार देते कई कई मुर्गी मन ला, दस्त भी हो सकते, श्वास ले में परेशानी होते, ये सब किसान भाइयों रानीखेत में दिखते। रानीखेत के किसान भाइयों रानीखेत बीमारी के खास करके एकर कोई इलाज नहीं है, कावर की वायरस होने वाला बीमारी है, लक्षण देख के ही हम उनका उपचार करथन। एकर बचाव ही एकर उपचार हरे, बचाव में हमन टीकाकरण करथन रानीखेत बीमारी पर। रानीखेत बीमारी के हमन टीका कैसे लगा सकथन? रानीखेत बीमारी के टीका हमन किसान भाइयों हमन 5वां दिन से लेकर 7वां दिन के बीच में हमला रानीखेत बीमारी के हमला टीका लगवाना चाहिए। एकर बाद जो एकर बूस्टर होते बूस्टर हमला 21 से 24 दिन के बीच में एकर बूस्टर हमला लगाना चाहिए। ये हो गए किसान भाइयों हमारे बॉयलर बर्ड के बारे में। अगर हम अंडा उत्पादन के बारे में बात करें तो ओमे किसान भाइयों रानीखेत के ही R2B स्ट्रेन एक लगते, वह 6वां से 8वां सप्तम लगते। साथ ही दूसरा बीमारी होते CRD जिला क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज बोलते हैं। एक मिनली हमन जब कम जगह पे बहुत ज्यादा अगर हमन मुर्गी रखा था तब ये बीमारी से वह शिकार हो सकते हैं। यह श्वास से संबंधित बीमारी है क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज। साथ ही जब हवा के आवाज ही कम रहते तब हो सकते हैं। दूषित खाना दूषित पानी एकर वजह से CRD बीमारी होते। CRD बीमारी में का लक्षण दिखते? CRD बीमारी में पहला लक्षण दिखते मुर्गी मन हाँफते, सांस लेने में प्रॉब्लम जाते, मुर्गी मन छींकते और मुंह खोलकर किसान भाइयों मुर्गी मन सांस लेते, साथ ही खाना पानी बंद कर देते, सुस्त हो जाते और इलाज नहीं मिले पर अगर इलाज नहीं हो पाते तो मृत्यु मन के मृत्यु भी हो सकते, मुर्गी मन के मृत्यु भी हो सकते। एकर उपचार का है किसान भाइयों? एकर उपचार में हमन माइकोप्लाज्मल ड्रग होते टाइलोसिन टार्ट्रेट ला हमन 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में हमन मिला के देथन। साथ ही सपोर्ट पर हमन मल्टीविटामिन देथन, लीवर टानिक देथन, ये सब ला हमन 1 ग्राम प्रति लीटर पानी मिला के हमला देना रहते। नेक्स्ट बीमारी होते किसान भाइयों एस्परजिलोसिस। एस्परजिलोसिस किसान भाइयों बीमारी है जब भी बिछावन में नमी पाया जाते ओकर वजह से किसान भाइयों एस्परजिलोसिस होते। बिछावन हमेशा

0: भुरभुरा होना चाहिए, हल्का सूखा होना चाहिए। अगर हमर मन के मांस उत्पादन करे वाला मुर्गी है तेमें ओकर गहराई 3 से 5 इंच होना चाहिए। अंडा उत्पादन वाला मन में 4 से 6 इंच होना चाहिए। अगर बिछावन में हमारे कोई भी गड़बड़ी है तो हमन एस्परजिलोसिस के शिकार हो सकते हैं। एस्परजिलोसिस में हमन कैसे पहचान, एस्परजिलोसिस में हमन ला देखना है श्वास से संबंधित मतलब बीमारी होते, मुंह खोल करके सांस लेते, अपन पंख ला बहुत ज्यादा फैलाते, सुस्त हो जाते, अपन जगह से बैठे बैठे गिर जाते एवं इलाज नहीं मिले पर मुर्गी मन के मृत्यु भी हो जाती। मान ला इनरोफ्लॉक्सासिन करके एक ड्रग होते किस एला हमन दे सकथन 1 ग्राम प्रति 2 लीटर पानी में मिला के। साथ ही हमन कॉपर सल्फेट होते एला हमन ला 1 ग्राम कॉपर सल्फेट ला 2000 ml पानी में हमन ला मिला करके घोल मिश्रण तैयार करके हमन ला सभी मुर्गी मन ला सेवन करवाना चाहिए। हमन में इट्राकोनाजोल करके एक दवाई आते किसान भाइयों एंटीफंगल ड्रग ओला भी हमन दे सकथन। लगभग 5 से 10 मिलीग्राम प्रति किलो बॉडी वेट के हिसाब से हमन मुर्गी मन ला हमन दे सकथन।
1: सुघर जानकारी सर, तो सर आप हमारे ये कार्यक्रम में आयो संगी मन ला सुघर जानकारी दो, ये खातिर आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।

0: संगवारी हो, हमर आज के सलाह में सुघ्घर जानकारी ल सुनेन गर्मी में मुर्गी मन के देखभाल और प्रबंधन बतावत रहिन हमर विशेषज्ञ डॉक्टर तरुण साहू पशु चिकित्सा सहायक संलग्न पशु चिकित्सालय कुरुद्धम तरीले। संगवारी हो, हमर बेरा है कृषक प्रश्न मंच में आज के प्रश्न के, तो झटकन लिख लो आज के प्रश्न। प्रश्न है गर्मी में मुर्गी मन ला बचाए बर कौन कौन से जिनिस के उपयोग करना चाहिए। प्रश्न एक बार फिर ले सुनो, गर्मी में मुर्गी मन ला बचाए बर कौन कौन से जिनिस के उपयोग करना चाहिए। और सही जवाब खातिर हमार ईमेल पता है राय आज के प्रश्न 23@gmail.com। पाछू हफ्ता शनिवार के प्रश्न रहीस मछली के प्रसंस्करण कौन कौन से कारक ऊपर निर्भर करते, एकर सही जवाब भेजे हैं संगवारी मन हा। और सही जवाब हवा है मौसम और धूप ऊपर निर्भर करते। सही जवाब दे हैं संगवारी मन, उनका नाम ले बता देते जेश्वर भाई।
1: सही जवाब भेजे हमार संगी मन है बठेना पाटन जिला दुर्गले बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा और रेखा पार्थ कश्यप, उमेश धनेश्वरी वर्मा, बंटी और बबली वर्मा। लोरमी ग्राम चचेड़ी ले है कमलकांत मरावी, प्रमिला नेहा, पुष्पराज, ऋषभ मरावी। मदनपुर कवर्धा ले है श्रवण कुमार साहू, योगेश, राहुल साहू। तेंदुभाठा मगल लोड ले है उमेंद्र कुमार निषाद, महेश्वरी, देविका, पोषण, नूतन, सुरेंद्र, यशस्वी, भास्कर, किशन, भूपेश, दिव्यांश और शिवा निषाद। नांगर कोहरा जिला राजनांदगांव ले है बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा बेबी, आराध्य साहू। आर्यनगर कोहका भिलाई ले है उत्तम सिंह जंघेल, मोरस, अनिल, अजीत, आयुष और नंदनी जंघेल। डुमाटोला मंगचुआ जिला बालोद ले है भगवानी राम कार्टे, कुमारी गोपिका, भावेश कुमार, माधुरी देवी कार्टे। चरडोंगरी पिपरिया जिला कबीरधाम ले है दुर्गा राम साहू, अजय, किशन, जय, इंद्राणी, माया कुमारी, योगेश, वासु, हेमा, राधिका साहू। परसा टोला अंबागढ़ चौकी ले है ओम प्रकाश मसिया, सिलोचनी, खुमेंद्र, तुषारणी मसिया। सही जवाब भेजिए हमारे जम्मू संगी मल्ला गाड़ा गाड़ा बधाई है।
0: संगवारी हो, गोड बात करें और हमन जानकारी ले सुघर सुनें। अब मनोरंजन कर खातिर हम गीत ला सुघर सुन लेथन। हमार गीत लगाए हैं विदुषी ममता चंद्राकर मन।

0: विदुषी ममता चंद्राकर मन ले सुघर गीत ले सुनत रहन।
1: और संगी मन बतान कि हमार जोन अवैया मंगलवार है 26 मई 2026 के जोन हेलो किसानवाणी के प्रायोजित होही ओ कार्यक्रम के विषय में खरीफ पूर्व जोन कृषि यंत्र है ओकर रख रखाव और संबंधित योजना ए मन विषय में आप मन के जोन समस्या है या जोन जिज्ञासा है ओकर समाधान बर हमार विशेषज्ञ होही डॉक्टर विनय कुमार नायक। हेमन सहायक प्राध्यापक हैं कृषि अभियांत्रिकी कृषि विज्ञान केंद्र पहंदा दुर्गमा। आप मन अपन जिज्ञासा और शंका के समाधान बर हमला फोन कर सकते हो। हमार फोन नंबर हावे 400-3482 400-3483 और 400-3484। रायपुर के स्टडी कोड हावे 0771। कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग 26 मई 2026 के 11:30 ले 12 बजे तक करे जाही। ये कार्यक्रम के प्रसारण है वही दिन 7:30 बजे करे जाही। हमला आप मन के फोन कॉल के अगोरा रही संगी हो सूचना ही मेर सिरावत।

तेजेश्वर भाई एक ठन और सुघर गीत सुनतेन। हाँ त मान ये हमार खुशीदास मानिकपुरी और बिंदु देवांगन मन गावत हैं, सुघर गीत ल सुनथन।

0: संगी हो खुशीदास मानिकपुरी और बिंदु देवागन के स्वर में भी एक गीत ल सुनत रहे हमन। ये तो रिसे किसानवाणी प्राजक रिहिन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: संगवारी हो जाए के बेरा हुआ थे जाए के पहली काली के कार्यक्रम बता देवन। काली चौपाल आज के बात में गोट हो ही सेहत बनाए खातिर मौसमी फल ऊपर और आज के सलाम सुघर जानकारी ल सुनबो मछली पालन और प्रबंधन ए ऊपर जानकारी दी डॉक्टर सोएबम नासुत्तर मन आओ गीत संगीत घलो होई संगवारी हो तदेव विदा। कार्यक्रम सुनैया जम्मो संगवारी मल्ला लक्ष्मीकांत
0: और तेजस्वर साहब।

अभी आप सुन रहे थे किसान भाइयों का कार्यक्रम चौपाल, आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में। ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है, 8 बजे हैं। प्रस्तुत है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 वर्ष के उपलक्ष्य में रायपुर में

0: आयोजित स्वरोत्सव समारोह की रेडियो रिपोर्ट।
1: आकाशवाणी के गौरवमयी 90 वर्षों के उपलक्ष्य में आकाशवाणी रायपुर द्वारा 22 मई को विमतारा ऑडिटोरियम रायपुर में स्वरोत्सव का आयोजन किया गया।
2: वंदे मातरम। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 वर्षों के उपलक्ष्य में आकाशवाणी रायपुर द्वारा आयोजित संगीत सभा स्वरोत्सव में पधारे सभी देवी और सज्जनों का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, जिसकी धुन से होती है सबकी सुबह सुहानी। जिसकी धुन से होती है सबकी सुबह सुहानी, घर घर पहुंच रही है जन जन की कहानी। गांव से शहरों तक, धरती से लहरों तक, गांव से शहरों तक, धरती से लहरों तक, 9 दशकों से गूंज रही है अपनी आकाशवाणी, अपनी आकाशवाणी।
1: कार्यक्रम के आरंभ में मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण किया गया। इसके पश्चात आकाशवाणी रायपुर के उप महानिदेशक अभियांत्रिकी श्री वी राजेश्वर ने स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत किया।
3: सम्माननीय पद्मश्री श्री मदन चौहान और उनकी प्रतिष्ठित कलाकार टीम, सम्माननीय श्रीमती श्वेता शिवाले और उनकी उत्कृष्ट समूह, दूरदर्शन, PIB, CBC, आकाशवाणी और जिला प्रशासन के सम्मानित अधिकारीगण, पूज्य आकाशवाणी वरिष्ठ सदस्य, सम्माननीय वरिष्ठ नागरिक, जीवंत युवा, संगीत प्रेमी, मीडिया के सम्मानित सदस्यगण, देवियों और सज्जनों, मुझे आप सभी का स्वरोत्सव में हार्दिक स्वागत करते हुए गर्व हो रहा है, जो भारत में रेडियो प्रसारण की 90वीं वर्षगांठ का भव्य उत्सव है। आवाजों, धुनों और यादों के 9 दशकों का क्या शानदार यात्रा रही है। भारत में रेडियो प्रसारण स्वतंत्र संग्राम के दौरान यहाँ एक शक्तिशाली एकता और साहस का उपकरण बन गया। इसने नेताओं की आवाज़ों पहुँचाई, लाखों लोगों को प्रेरित किया और हमारे राष्ट्र की सामूहिक भावना को मजबूत किया। आज रात जब हम उसे गौरवशाली अध्याय को याद करते हैं, स्वतंत्र के बाद रेडियो लोगों को विश्वसनीय साथी बन गया। उसने किसानों के शिक्षित किया, समुदायों का मार्गदर्शन किया, स्वास्थ्य में जागरूकता फैलाई और सरकार की दृष्टि को देश के सबसे दूरदराज कोनों तक पहुंचाया। वास्तव में रेडियो हमारे राष्ट्र के प्रगति और विकास की आवाज़ रही है। आइए हम इस अद्वितीय योगदान की तालियों से सराहना करें। आकाशवाणी भारतीय संगीत और संस्कृति को संरक्षित और प्रचारित करने के अपने मिशन में अडिग रही। संगीत अनुभाग स्थापित करके प्रतिष्ठित कलाकारों को भर्ती करके और संगीत समारोह आयोजन करके आकाशवाणी ने सुनिश्चित किया कि भारतीय संगीत की आत्मा फलित फुलित रहे। आज रात जब हम अपने माननीय अतिथि कलाकार पद्मश्री मदन चौहान और श्रीमती स्वाति शिवाले का स्वागत करते हैं, आइए हम उन्हें इस गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए जोरदार तालियों से सम्मानित करें। आकाशवाणी रायपुर क्लस्टर की ओर से मैं हमारे सम्माननीय अतिथि कलाकारों, वरिष्ठ

0: अधिकारियों, पूज्य वरिष्ठ और यहाँ उपस्थित सभी संगीत प्रेमियों के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। आइए हम सब मिलकर इस संध्या की दिव्य सुरों में डूब जाएं और भारत में रेडियो की सदगत यात्रा का उत्साह मनाएं। धन्यवाद।
1: ईश्वरमयी सांझ में सबसे पहले श्रीमती श्वेता शिवालय ने ठुमरी, दादरा और मिर्जापुरी कजरी की ऐसी तान छेड़ी कि संगीत प्रेमी झूम उठे।

श्वेता शिवाले जी के स्वर में। आइए अब सुनते हैं सावनी की ऐसी ही एक वानगी। बोल हैं तुमको आने में, तुमको बुलाने।

मिर्जापुर की कचरी उत्तर भारत की अत्यंत लोकप्रिय लोक गायन शैली है, जो विशेष रूप से वर्षा ऋतु में गाई जाती है। इसमें मेघ, झूला, नदियाँ और गांव के वर्णन के साथ प्रेम और विरह की भावनाएं बड़ी मार्मिकता से व्यक्त होती हैं। श्वेता शिवाले जी अब प्रस्तुत कर रही हैं एक मिर्जापुरी कजरी, जिसके बोल हैं, सेजिया पे लोटे काला नाग।

स्वरोत्सव के दूसरे चरण में पद्मश्री मदन चौहान ने अपने सधे हुए सुर में गजल गायकी, सूफियाना कलाम और कबीर भजन की सांगीतिक प्रस्तुतियां दी।

मदन चौहान जी की आवाज़ में अब पेश है नातिख लखनवी की गज़ल। बुझी हुई शमा का धुआं हूँ और अपने मरकज़ को जा रहा हूँ कि दिल की हस्ती तो मिट चुकी है, अब अपनी हस्ती मिटा रहा हूँ।

0: स्वरोत्सव की ये सुरमई सांझ जवां होती रात तक जारी रही, जिसका संगीत रसिकों ने खूब लुत्फ उठाया। इस संगीत सभा के समापन अवसर पर कार्यक्रम प्रमुख उपनिदेशक श्री पंकज मेश्राम ने आभार व्यक्त किया।
1: बैठे हुए महफिल में हम ये सोच रहे हैं कि महफिल से उठा जाए तो क्या कह के उठा जाए, लेकिन समय की अपनी सीमा होती है, बंदिशें होती हैं। आज के इस खास स्वरोत्सव कार्यक्रम में पधारे आप सभी रसिक श्रोताओं का हम दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हैं। आज का ये विशेष आयोजन ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी के 90 वर्ष की स्वर्णिम यात्रा की खुशनुमा याद में मनाया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य कलाकार थे पद्मश्री श्री मदन चौहान, श्रीमती श्वेता शिबाले और साथी। आपने अपनी दिलकश और अलहदा गायकी से आज की शाम को रोशनी से तरबतर कर दिया, पर यह सफ़र आप सबकी उपस्थिति के बगैर तय करना आसान नहीं था। आप सबने अपना कीमती समय देकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। इसके लिए हम तहे दिल से आप सभी का आभार व्यक्त करते हैं। हम विशेष तौर पर आभारी हैं दूरदर्शन रायपुर के उप महानिदेशक श्री संजय मिश्रा और उनकी पूरी टीम का, जो इस आयोजन में हर समय हमारे साथ रही। हम विशेष शुक्रिया अदा करते हैं पीआईबी से पधारे उप महानिदेशक श्री जयभाई सर का। हम आभार व्यक्त करते हैं छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के अध्यक्ष श्री प्रभात मिश्रा जी का, जिनका कीमती वक्त हमें इस आयोजन के लिए मिला। हम इस कार्यक्रम के मंच संचालक दीपक हटवार, रेणुका काले और सौम्या रिजवी का विशेष तौर पर शुक्रिया अदा करते हैं। हम प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के उन साथियों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिन्होंने इस कार्यक्रम के प्रचार प्रसार में हमें विशेष सहयोग दिया। और अंत में हम आकाशवाणी रायपुर के उप महानिदेशक और हमारे क्लस्टर प्रमुख श्री वी राजेश्वर सर का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, जिनके नेतृत्व में ये आयोजन अपने अंजाम तक पहुंचा है। उन्होंने हम सबको एक टीम की तरह कार्य करने के लिए प्रेरित किया आज के इस आयोजन को सफल बनाने के लिए, और अपना कीमती और बहुमूल्य समय हमें देने के लिए आप सबका पुनः आभार, धन्यवाद।
0: इसी के साथ 22 मई को विमतारा ऑडिटोरियम रायपुर में आयोजित स्वरोत्सव पर आधारित ये रेडियो रिपोर्ट अब संपन्न होती है।
2: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी गौरवमयी 90 वर्ष के उपलक्ष्य में रायपुर में आयोजित स्वरोत्सव समारोह की रेडियो रिपोर्ट। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में। ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 8:30 होने को हैं। स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।

नमस्कार स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। हम लेकर आए हैं स्पोर्ट्स कैन का ये नया रंग जिसमें है खिलाड़ियों का जोश, खेल का रोमांच और जीत की उमंग।

साथ ही होंगी खेल जगत की बड़ी खबरें, शानदार प्रदर्शन और हर मुकाबले की खास बात आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स स्कैन के साथ। तो शुरू करते हैं एक नए अंदाज में इस प्रोग्राम का ये सफर, लेकिन सबसे पहले एक नजर स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने 2 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला जारी। कल हैदराबाद जीत के बावजूद क्वालिफायर से चूकी। सुपर शतरंज क्लासिक में आर प्रज्ञानंदा ने मैक्सिम वॉचियर लाग्रेव के साथ ड्रॉ खेला। अगला मुकाबला अनीस गिरी से। 29वीं राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता के दूसरे दिन भी उत्साह के साथ जारी और जिनेवा ओपन टेनिस प्रतियोगिता में यूकी भांबरी उप विजेता रहे।

0: कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में, जहां खिलाड़ियों का प्रदर्शन बेहद शानदार रहा। कुछ खिलाड़ियों ने रजत तो कुछ ने कांस्य पदक अपने नाम किया। वियतनाम के दानांग में आज एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किए। फाइनल मुकाबले के 60 किलोग्राम वर्ग में सूरज वशिष्ठ को कजाकिस्तान के एबेक एदबेकोक से 4-0 से हार का सामना करना पड़ा। वहीं 67 किलोग्राम वर्ग में सागर सिंह उज्बेकिस्तान के एजान खलमा खानोव से 9-0 से हार गए। 77 किलोग्राम वर्ग के कांस्य पदक मुकाबले में कुमार सचिन ने पदक अपने नाम किया। वहीं 97 किलोग्राम वर्ग में रोहित ने कांस्य पदक अपने नाम कर लिया है। आइए सुनते हैं मैच का हाल।
1: प्रतियोगिता के 60 किलोग्राम वर्ग में आज सूरज वशिष्ठ उप विजेता रहे। फाइनल में उन्हें कजाकिस्तान के एबेक एदबेकोव से 4-0 से हार का सामना करना पड़ा। सेमीफाइनल में सूरज ने किर्गिस्तान के नूरिस्तान सुई और कुलोव को 3-2 से हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की की थी। वहीं 67 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में सागर सिंह ने सऊदी अरब के मुंथिर अब्दुल्लाई जंदू को 4-0 से शिकस्त दी थी। प्रतियोगिता में नेहा एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय अनुभव के साथ चैंपियनशिप में रही हैं। उन्होंने पहले अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था और साथ ही अंडर 17 एशिया चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक भी अपने नाम किया था। दूसरी ओर काजल ने तेजी से खुद को भारत की सबसे होनहार कुश्ती प्रतिभाओं में से एक के रूप में स्थापित किया है। वे मौजूदा अंडर 20 विश्व चैंपियन, अंडर 17 विश्व चैंपियन और अंडर 20 एशियाई चैंपियन के तौर पर दानांग पहुंची हैं। प्रो रेसलिंग लीग के कई पहलवान भारतीय दल का हिस्सा हैं, जो इस बात को रेखांकित करता है कि ये लीग भारत की अगली पीढ़ी की कुश्ती प्रतिभाओं को निखारने, विकसित करने और उनकी प्रगति के लिए एक प्रमुख मंच के रूप में उभर रही है। मुकेश कुमार बल, स्पोर्ट्स कैन।
0: ये प्रतियोगिता युवा खिलाड़ियों को मंच भी प्रदान करती है, जिसके जरिए खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश का प्रतिनिधित्व कर कई पदक जीतकर देश का मान बढ़ाते हैं। इन प्रतियोगिता का उद्देश्य भारतीय रेसलिंग के विकास में अहम योगदान देना होता है, जिससे वे उभरती हुई प्रतिभाओं को सपोर्ट कर सकें और उन्हें आगे बढ़ा सकें। चैंपियनशिप से सीधे चलते लखनऊ की ओर, जहां आईपीएल क्रिकेट का रोमांचक मुकाबला जारी है। लखनऊ में आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक लखनऊ ने 12 ओवर में 3 विकेट पर 122 रन बना लिए हैं। इससे पहले पंजाब ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। वहीं कल खेले गए मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हरा दिया।
2: टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को सलामी बल्लेबाज ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ने अच्छी शुरुआत दिलाई। अभिषेक ने 22 गेंद पर 56, तो वहीं हेड ने 16 गेंद में 26 रन का योगदान दिया। इसके बाद ईशान किशन और हेनरिक क्लासेन ने 48 गेंदों में 113 रन की जबरदस्त साझेदारी करते हुए टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। ईशान ने 46 गेंदों में ताबड़तोड़ 79 रन, जबकि क्लासेन ने 24 गेंदों पर 51 रन बनाए। अंतिम ओवरों में नीतीश कुमार रेड्डी ने 29 रन जोड़े। टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 255 रन बनाए। बेंगलुरु की ओर से रसिक सलाम डार ने 2, तो वहीं सुयश शर्मा और कुणाल पांड्या ने 1-1 विकेट चटकाए। विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी आरसीबी की टीम के लिए वेंकटेश अय्यर ने 19 गेंदों में 44 रन बनाकर टीम को बेहतर शुरुआत दिलाई। मिडिल ओवर्स में कप्तान रजत पाटीदार ने 39 गेंदों में 56 रन की पारी खेलकर टीम को मुकाबले में बनाए रखा। इसके बाद कुणाल पांड्या ने 31 गेंदों में 41 रन बनाए, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके। ईशान मलिंगा को 2, साकिब हुसैन और ट्रेविस हेड को 1-1 सफलता हाथ लगी। ईशान किशन

0: को शानदार बल्लेबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। ये ईशान किशन का आरसीबी के खिलाफ लगातार चौथा अर्धशतक था। मैच के बाद ईशान किशन ने आरसीबी के साथ खेलने का अपना अनुभव साझा किया।
1: I don't know, to be very honest, like I said, I just take one match at a time, but I don't know why, but I do feel confident when I'm playing against them, and I think end of the day fortune favors the brave, and I just try to do my thing and it works on my way.
0: इस जीत के बावजूद हैदराबाद क्वालिफायर में जगह नहीं बना सकी, वहीं बेहतर नेट रन रेट के कारण आरसीबी शीर्ष स्थान पर रही। 26 मई को क्वालिफायर वन में आरसीबी का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा, वहीं 27 मई को एलिमिनेटर में सनराइजर्स हैदराबाद चौथे स्थान पर पहुंचने वाली टीम से खेलेगी। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
2: जी जरूर, कल सनराइजर्स हैदराबाद ने जीत दर्ज की, लेकिन वे क्वालिफायर में अपनी जगह बनाने से पीछे रह गए। वहीं आरसीबी और गुजरात टाइटंस ने क्वालिफायर वन में अपनी जगह बना ली है, और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गए हैं विशेष, हमारे सहयोगी। विशेष, कल अच्छा मुकाबला देखने को मिला, लेकिन टॉप टू की जगहें फिक्स हो गई, लेकिन चौथे स्थान के लिए अब भी जद्दोजहद बाकी है। कौन से ऐसी टीम है जो आपको नजर आ रही है कि चौथे स्लॉट के लिए अपना स्थान पुख्ता करती नजर आ रही है?
3: जी प्रशांत, जैसा कि आपने बताया कि तीन टीमें अपनी जगह पहले ही प्लेऑफ के लिए पक्की कर चुकी हैं, और तीनों लगभग जो है बराबर दर्जे की टीमें हैं, और 18-18 अंकों के साथ इन्होंने प्लेऑफ्स में जगह बनाई है। सिर्फ नेट रन रेट के चलते इन टीमों को पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर रहना पड़ा है। वहीं अगर बात करें हम चौथे स्थान की, तो जिसके लिए राजस्थान, पंजाब, कोलकाता और दिल्ली अभी रेस में बनी हुई हैं। अगर दिल्ली की बात करें तो वह अपना मुकाबला पहले तो जीतें, उसके बाद उन्हें राजस्थान, कोलकाता और पंजाब तीनों के मुकाबलों के परिणामों पर निर्भर रहना पड़ेगा। वहीं अगर कोलकाता की बात करें तो वो अपना मुकाबला जीतें, साथ ही साथ राजस्थान और पंजाब के मुकाबले हारने की कामना करें। और वहीं अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब सबसे पहले अपना मुकाबला जीतें, और राजस्थान अपना मुकाबला यदि हारती है तो पंजाब को प्लेऑफ्स में जगह मिलेगी। लेकिन राजस्थान के लिए सबसे सुनहरा मौका उन्हीं के पास है कि बस वो, उन्हें अपना मुकाबला जीतना है और उनके लिए प्लेऑफ्स में स्थान पक्का हो जाएगा।
2: तो कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं कि राजस्थान रॉयल्स का फॉर्चून जो है अपने हाथों में है, और वो अपने मुकाबला जीत करके सीधे टॉप चार में जगह बना लेंगे। अब सीधे रुख करते हैं शतरंज की ओर। सुपर शतरंज क्लासिक में भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने प्रतियोगिता के आठवें दौर में फ्रांस के मैक्सिम वॉचियर लाग्रेव के साथ ड्रॉ खेला। अगली बाजी में प्रज्ञानंदा का मुकाबला अनीस गिरी से होगा। आइए सुनते हैं प्रतियोगिता में अब तक के खिलाड़ियों के प्रदर्शन के बारे में।
4: प्रतियोगिता के मुकाबले में आज आर प्रज्ञानंदा ने मैक्सिम वाचियर लाग्रेव के साथ ड्रॉ खेला। इसके साथ ही प्रज्ञानंदा ने जीत हासिल करने के कुछ अच्छे मौके गवा दिए। दिन के अन्य मुकाबलों में अमेरिका के फेबियानो कारुआना और जर्मनी के विसेंट कीमर के बीच बाजी ड्रॉ रही, जबकि विश्व चैंपियनशिप के दावेदार उज्बेकिस्तान के जावोखेर सिंदारोव ने नीदरलैंड के जॉर्डन वैन फॉरेस्ट पर लगातार दूसरी जीत दर्ज की। नीदरलैंड के एक अन्य खिलाड़ी अनीश गिरी को रोमानिया के डीएक बोगदान डेनियल से हार का सामना करना पड़ा। फ्रांस के अलीरेजा फिरोजा के नाम वापस लेने के बाद अमेरिका के वेस्ली सो को वॉकओवर मिला। अब प्रतियोगिता में आखिरी दौर का खेल बाकी है, जहां पांच खिलाड़ी खिताब के लिए दावेदारी पेश करेंगे। अभी कीमर और कारुआना दोनों 5-5 अंकों के साथ शीर्ष पर हैं। सिंदारो, वेस्ली और फोरेस्ट 4.5 अंकों के साथ संयुक्त तीसरे, जबकि प्रज्ञानंदा, गिरी और वाचियर लाग्रेव 4-4 अंक लेकर संयुक्त छठे स्थान पे हैं। डीएक बोगदान डेनियल ने अपना अभियान 3.5 अंकों के साथ समाप्त किया। अंतिम दौर में उन्हें वॉकओवर मिलेगा, जिससे उनका स्कोर 4.5 हो जाएगा। सिंदारोव पर दूसरे दौर में जीत के बाद प्रज्ञानंदा की दूसरी जीत की तलाश वाचियर लाग्रेव के खिलाफ लगभग पूरी हो गई थी। प्रज्ञानंदा अपनी अंतिम बाजी में गिरी का सामना करेंगे। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन।
2: आर प्रज्ञानंदा ने लगातार शार्प माइंड और दमदार खेल प्रदर्शन के दम पर पहले कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में जगह बनाई और अपनी अमिट छाप छोड़ी। हालांकि कैंडिडेट्स में उनका प्रदर्शन मिला जो रहा, तो ऐसे में ये प्रतियोगिता उनके लिए बेहद अहम है। कर लेते हैं अब एथलेटिक्स पे, जहां झारखंड की राजधानी रांची के बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम में 29वीं राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता जारी है। प्रतियोगिता के दूसरे दिन आज गुरविंदर सिंह ने 100 मीटर दौड़ स्पर्धा में नया कीर्तिमान भी स्थापित किया। आइए चलते हैं और अधिक जानकारी के लिए हमारी संवाददाता महवीश के पास। महवीश हमारे साथ रांची से जुड़ गई हैं। तो महवीश, रांची के बिरसा मुंडा स्टेडियम

0: में इस समय राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन का प्रतियोगिता चल रही है। पहले दिन तो खिलाड़ियों ने कई कीर्तिमान अपने नाम किए, लेकिन आज दूसरे दिन के मुकाबले में कौन कौन से बड़े उलटफेर या रिकॉर्ड देखने को मिले?
1: जी हाँ, इस प्रतियोगिता में इस बार का सबसे बड़ा आकर्षण पुरुषों की 100 मीटर रेस रही है। जैसा कि आपने बताया कि आज खेले हुए फाइनल में रिलायंस के खिलाड़ी गुरिंदरवीर सिंह ने ओडिशा के धावक अनिमेश कुजूर का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 10.09 सेकंड का नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया और ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है। वहीं पुरुषों के 400 मीटर में तमिलनाडु के विशाल टीके ने 44.98 सेकंड का भी नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। महिलाओं के डिस्कस थ्रो में अनुभवी एथलीट सीमा ने 57.29 मीटर थ्रो कर स्वर्ण पदक जीता है। आज पुरुषों की डीकैथलॉन स्पर्धा के फाइनल में भारत के राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक तेजस्विन शंकर ने पहला स्थान हासिल किया है। वहीं महिलाओं के शॉर्ट पुट स्पर्धा का खिताब रिलायंस की कृष्णा जयशंकर ने जीत लिया है। महिलाओं की 100 मीटर दौड़ की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र की सुदेशना हनुमंत ने स्वर्ण पदक हासिल किया। आज
0: महविश, इस वक्त भीषण गर्मी का प्रकोप पूरे देश भर में देखा जा रहा है, तो ऐसे में खिलाड़ियों के प्रदर्शन प्रतियोगिता पर क्या इसका कुछ असर देखने को मिल रहा है?
1: बिल्कुल, रांची में पारा लगातार बढ़ रहा है, यहाँ बहुत भीषण गर्मी पड़ रही है, लेकिन इसके बावजूद खिलाड़ियों का हौसला कम नहीं हुआ है। देश भर के करीब 700 एथलीट इस कड़कती धूप में भी अपना पूरा दमखम लगा रहे हैं। आयोजकों ने खिलाड़ियों को गर्मी से बचाने के लिए मैदान पर ORS, मेडिकल टीम और पर्याप्त पानी की विशेष व्यवस्था कर रखी है।
0: महविश, ये प्रतियोगिता आगामी अंतर्राष्ट्रीय खेल कॉमनवेल्थ गेम्स के मद्देनजर बेहद अहम मानी जा रही है। इस प्रतियोगिता में खिलाड़ियों का प्रदर्शन आगामी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में चयन के लिए बेहद अहम है, तो ऐसे में खिलाड़ियों के लिए आगे चयन की क्या प्रक्रिया होने वाली है?
1: जी बिल्कुल, ये प्रतियोगिता खिलाड़ियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके आधार पर ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन अंडर 23 चैंपियनशिप के लिए भारतीय एथलेटिक्स टीम का चयन होना है। जो भी खिलाड़ी यहाँ तय किए गए क्वालिफिकेशन मार्क को छू रहे हैं उन्हें सीधे भारतीय टीम का टिकट मिल रहा है, तो अगले दो दिनों में कई और रोमांचक फाइनल मुकाबले हमें देखने को मिलेंगे।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद महविश, आपने ऐसे खिलाड़ियों के बारे में बताया जिनसे पूरे देश को उम्मीदें रहती है, और जैसे जैसे प्रतियोगिता अंतिम रूप लेगा हम और भी खिलाड़ियों को बेहतर प्रदर्शन करते देखेंगे। बात करते हैं स्क्वैश पर। 33वें एशियन जूनियर व्यक्तिगत स्क्वैश चैंपियनशिप के अंडर 17 वर्ग में भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा रहा। लड़कों के वर्ग में शिवेन अग्रवाल, वहीं लड़कियों में अनिका दुबे ने फाइनल में अपनी जगह बनाई। अब सीधे चर्चा कर लेते, बात कर लेते जिनेवा ओपन टेनिस पर। जिनेवा ओपन 2026 टेनिस प्रतियोगिता में यूकी भांबरी उप विजेता रहे। न्यूजीलैंड के अपने जोड़ीदार माइकल विनस के साथ खेलते हुए फाइनल मुकाबले में रोमेन अर्नियार्डो और मार्क पॉलमेंस से 6-3, 6-7, 7-10 से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। हालांकि जरूर वे उप विजेता रहे, लेकिन कई ऐसी प्रतियोगिताएं हैं जिनमें यूकी भांबरी ने जिसको अपने नाम किया है। 18वीं वरीयता प्राप्त इस खिलाड़ी ने 2025 में दुबई ड्यूटी फ्री चैंपियनशिप जीत चुके हैं। इसके साथ ही वे US ओपन जैसे प्रमुख टूर्नामेंट में भी सेमीफाइनल खेल चुके हैं। रुख कर लेते गोल्फ की ओर। बेल्जियम में भारतीय गोल्फर युवराज संधु ने रिंकवेन इंटरनेशनल गोल्फ क्लब में चल रहे सोडाल ओपन में कट हासिल किया, लेकिन शुभंकर शर्मा चूक गए। दक्षिण अफ्रीका के जेंडर लोम्बार्ड और फ्रांस के टॉम वैलियन दूसरे दौर के बाद संयुक्त बढ़त बना चुके हैं। और श्रोताओं, हम सीधे चलते हैं लखनऊ, जहां पर लखनऊ सुपर जायंट्स और पंजाब किंग्स का मुकाबला जारी है। लखनऊ ने 4 विकेट पर 14 ओवर में 134 रन बना लिए हैं। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की हर खबर के साथ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा इस पर आप अपनी राय और सुझाव हमें स्पोर्ट्स कैन की ईमेल sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और स्पोर्ट्स कैन की टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार बल। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद और कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को अमेरिका के दृष्टि

0: दृष्टिकोण से हिंद प्रशांत क्षेत्र की आधारशिला बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। महाराष्ट्र के शिरडी में तोप के गोले बनाने के संयंत्र का भी उद्घाटन किया। केंद्र सरकार ने नई दिल्ली के जिमखाना क्लब को रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए अगले महीने की 5 तारीख तक अपना परिसर सौंपने को कहा। चीन के कोयला खदान में विस्फोट में 90 लोगों की मौत और भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने वियतनाम में आयोजित एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत और अमेरिका विश्व कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इस बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि अमरीकी विदेश मंत्री ने श्री मोदी को रक्षा, रणनीतिक तकनीकों, व्यापार तथा निवेश, ऊर्जा सुरक्षा, कनेक्टिविटी, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में लगातार हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मार्को रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अमेरिका का दृष्टिकोण साझा किया। श्री मोदी ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की और बातचीत तथा कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की अपनी अपील दोहराई। श्री मार्को रूबियो इस महीने की 26 तारीख को होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमरीकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमरीका में $20 अरब का निवेश किया है।
1: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
0: श्री रूबियो ने कहा कि उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे तथा उनमें और अधिक प्रगति होगी।
1: इस रिश्ते की बुनियाद राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच का आपसी संबंध है। ये एक निजी रिश्ता है। इसकी शुरुआत पहले कार्यकाल के दौरान हुई थी जब राष्ट्रपति ट्रंप को भारत आने का मौका मिला था। ये रिश्ता दूसरे कार्यकाल में भी कायम रहा। आप उन दोनों के बीच के जुड़ाव को साफ साफ देख सकते हैं और मुझे लगता है ये बेहद अहम है।
0: विदेश मंत्री रूबियो ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को और अधिक मजबूत बनाने के लिए दोनों देशों की ओर से आने वाले समय में कई और रोमांचक तथा नई घोषणाएं की जाएंगी। श्री रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दो ऐसे बेहद गंभीर नेता बताया जिनका पूरा ध्यान दीर्घकालिक लक्ष्यों पर केंद्रित है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: ईमानदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज महाराष्ट्र के शिरडी स्थित सावली विहिर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित तोप के गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन किया। इस परियोजना को निबे ग्रुप ने विकसित किया है। इस दौरान श्री सिंह ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है।
3: हमने यह समझा, सेल्फ रिलायंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के लिए प्राइवेट सेक्टर की एनर्जी का उपयोग आवश्यक है। इसलिए पॉलिसी रिलेटेड रिफॉर्म्स, नीतिगत सुधार भी किए गए। FDI को, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लिबरलाइज किया गया। पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट लाई गई। हम लोगों ने एक लंबी लिस्ट मोर देन 5000 आइटम्स की तैयार की है। इस पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट में आइटम्स हैं, हम उनको निर्धारित समय के अंदर हम भारत की धरती पर बनाएंगे, हम दुनिया के किसी देश से उसको इम्पोर्ट नहीं करेंगे।
2: श्री सिंह ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी लगभग 30-35% है, जिसे भविष्य में बढ़ाकर 50% किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवा विकसित भारत की ओर अग्रसर होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने आज वर्चुअल माध्यम से 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बात कही।
4: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
2: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। रोजगार मेले में आज सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में चयनित 51,000 से भी अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार का मुख्य प्रयास भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करना रहा है। नई दिल्ली में 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नए भर्ती हुए लोग वर्ष 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।
5: विकसित भारत 2047, जब उस गोल, उस विजन को सामने रखते हैं तो हमारा काम भी बड़ा सुगम हो जाएगा। और हिम्मत से काम करें, अच्छा काम करें, बदलाव में पहल करें। जहां जहां कोई चीज में हमारे नई सोच है, नए आइडियाज हैं, अगर हम सब ने नई नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट किया, हम भी अपने आप को रिट्रेन करें, रिस्किल करें, अपग्रेड करें हमारी नॉलेज, और आगे बढ़ने के लिए कंटिन्यूस लर्निंग शुड बी अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ।
2: श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में बुनियादी अर्थव्यवस्था मजबूत और निर्यात में जबरदस्त वृद्धि बनी हुई है। उन्होंने कहा कि अप्रैल के बाद मई माह में भी निर्यात वृद्धि जारी रही, जो वैश्विक प्रतिकूलताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन को दर्शाती है। नई दिल्ली में आज श्री गोयल ने कहा कि सरकार ने किसानों को बढ़ती लागत से बचाने के लिए उर्वरकों की बढ़ी कीमतों का बोझ स्वयं वहन किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि ऑयल इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान के दांडेवाला फील्ड में एक नए गैस भंडार का पता लगाया है। श्री पुरी ने कहा कि उथली सानू भौगोलिक संरचना से पहली बार लगभग 25,000 मानक घन मीटर प्रतिदिन की दर से प्राकृतिक गैस का प्रवाह होना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि इससे घरेलू ऊर्जा उत्पादन को मजबूत करने में सहायता मिलेगी। सरकार ने जन परामर्श के लिए विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: विकसित भारत जी राम जी एक्ट ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। नए कानून के तहत अब एक वित्तीय वर्ष में रोजगार की गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। मंत्रालय के अनुसार इस कानून के मसौदा नियम धारा 33 और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत तैयार किए गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि मसौदा नियमों को जनता से सुझाव और राय लेने के

0: ये सार्वजनिक किया गया है। इनमें संक्रमण प्रावधान नियम, राष्ट्रीय स्तर संचालन समिति नियम, केंद्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद नियम, प्रशासनिक खर्च नियम और शिकायत निवारण नियम शामिल हैं। नए कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ करने पर विशेष जोर दिया गया है। इसके अलावा तय समय के भीतर काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबीजी रामजी एक्ट 2025 को इस महीने की 11 तारीख को अधिसूचित किया गया था और यह इस साल 1 जुलाई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। केंद्र ने रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए भूमि की आवश्यकता के मद्देनजर नई दिल्ली स्थित जिमखाना क्लब को 5 जून तक परिसर खाली करने का निर्देश दिया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन भूमि और विकास कार्यालय के आदेश में कहा गया है कि ये भूमि तत्काल संस्थागत आवश्यकताओं, शासन अवसंरचना और जनहित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली के जामिया नगर में एक दलित महिला के कथित अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म और जबरन धर्म परिवर्तन से संबंधित मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने इस संदर्भ में दिल्ली पुलिस आयुक्त से 7 दिन के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। चीन के शांक्सी प्रांत में एक कोयला खदान में गैस विस्फोट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 90 हो गई है। ये विस्फोट कल कियुआन काउंटी की लियू शेन्यू कोयला खदान में हुआ। अब तक 201 खनिकों को बचाया जा चुका है। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार और दुर्घटना के कारणों की जाँच का आदेश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। भारतीय सूचना सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी त्रिलोकीनाथ का आज दोपहर निधन हो गया। वे 79 वर्ष के थे। वे कुछ समय से बीमार थे। श्री त्रिलोकीनाथ ने आकाशवाणी के हिंदी समाचार कक्ष में संपादक के रूप में वर्षों तक अपनी सेवाएं दी। वियतनाम के दानांग में आज एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किए। 60 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में सूरज वशिष्ठ को एबेक एतबेकोव से, वहीं 67 किलोग्राम वर्ग में सागर सिंह को एतजान खलमा खानाऊ से हार का सामना करना पड़ा। लखनऊ में आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक लखनऊ ने 17वें ओवर में 4 विकेट पर 158 रन बना लिए हैं। मौसम विज्ञान विभाग ने कल पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में लू से लेकर भीषण लू की स्थिति का रेड अलर्ट जारी किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद और कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को अमेरिका के दृष्टिकोण से हिंद प्रशांत क्षेत्र की आधारशिला बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। महाराष्ट्र के शिरडी में तोप के गोले बनाने के संयंत्र का उद्घाटन किया। केंद्र सरकार ने नई दिल्ली के जिमखाना क्लब को रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए अगले महीने की 5 तारीख तक अपना परिसर सौंपने को कहा। चीन के कोयला खदान विस्फोट में 90 लोगों की मौत। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening, this is Akashwani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi reaffirms India's consistent support for peaceful resolution of conflicts through dialogue and diplomacy. U.S. Secretary of State Marco

0: लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी आपने सुना फिल्म आकाशदीप का ये गीत। शब्द रचना थी मजरूह सुल्तानपुरी की और संगीत चित्रगुप्त का।
1: कुछ यादें अतीत की।
2: आकाशवाणी गोरखपुर के बड़े मशहूर फनकार और आर्टिस्ट राहत अली खान साहब, जो कि रायपुर खूब आते रहे हैं रेडियो के भी प्रोग्राम्स में, मेरा नसीब था कि मुझे उनकी छाया मिली और उनसे दादरे, गजलें, सूफियाना चीजें खूब सीखी।
1: कुछ बातें वर्तमान की।
3: आज बस जिंदगी का आनंद ले रहा हूँ, गाने का आनंद ले रहा हूँ। रोज अपना 2-4 घंटे का रियाज सुबह मेरा होता है।
1: कुछ सपने भविष्य के।
4: अभी फिर जल्दी ही कुछ अच्छे बैनरों की अच्छी फिल्में और अच्छे गीत आपको सुनने मिलेंगे।
1: कुछ किस्से अनकहे।
5: जो भी एक्शन हो रही है फिल्मों में, जो हम देख सकते हैं लेकिन वो देख नहीं सकते, वो हमें हमारी आवाज के माध्यम से बोलना पड़ता है।
1: विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े विशिष्ट जनों से मुलाकात, सुनिए इनसे मिलिए हर शुक्रवार सुबह 8:30 बजे आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से। आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें

0: और अपने विचार भी साझा करें, तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।
1: लीजिए, आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में राजेंद्र कृष्ण का लिखा गीत। संगीत से सजाया है हेमंत कुमार ने और फिल्म का नाम है नागिन।

बिंदिया शहरी महिलाओं का अनोखा कार्यक्रम सुनना ना भूलिए, प्रत्येक रविवार, सोमवार और गुरुवार को दोपहर 1:30 से दोपहर 2 बजे तक। महिला समस्याओं का समाधान है बिंदिया, मीठी मीठी बातों का गुणगान है बिंदिया, डॉक्टर की सलाह, परिचर्चा, वार्ता और गीत संगीत की बहार है बिंदिया। हेलो बिंदिया में बहनों के विचारों और गीतों का संसार है बिंदिया।

ये खनकती आवाज अब आप सुन सकते हैं और भी बेहतरीन क्वालिटी में, कभी ब्लूटूथ स्पीकर से कनेक्ट करके तो कभी हेडफोन पर लगाकर। आकाशवाणी रायपुर का प्रसारण अब उपलब्ध है मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTH पर। चाहे पास रहें या दूर, आपके करीब हर पल आकाशवाणी रायपुर।

फिल्म का गीत मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत है, संगीत है एस टी बर्मन का और आवाजें दी हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफी ने।

ये गीत आपने सुना फिल्म 9-2-11 से। आवाज़ें आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की थी। शब्द रचना मजरूह सुल्तानपुरी की और संगीत दिया था SG बर्मन ने। इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का कार्यक्रम समाप्त होता है। मीडियम वेव और FM बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए रायपुर के पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में आयोजित 19वें रोजगार मेले में नवनियुक्त अभ्यर्थियों को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा वर्चुअली नियुक्ति पत्र वितरण समारोह की रेडियो रिपोर्ट।
1: आज 23 मई को रायपुर स्थित पंडित दीनदयाल सभागार में 19वें रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आयोजन के मुख्य अतिथियों में माननीय जनजातीय केंद्रीय राज्यमंत्री दुर्गादास उइके, माननीय सांसद राज्यसभा श्रीमती लक्ष्मी वर्मा और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के मंडल रेल प्रबंधक दयानंद, अपर मंडल रेल प्रबंधक बजरंग अग्रवाल उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। तत्पश्चात मंडल रेल प्रबंधक श्री पी दयानंद ने स्वागत उद्बोधन में कहा,
2: सर्वप्रथम आज के इस रोजगार मेले में आप सभी का हार्दिक स्वागत है तथा उन युवक युवतियों को हार्दिक बधाई जिन्हें आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। मुझे ये बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि रोजगार मेले का यह 19वां आयोजन है तथा पूरे भारतवर्ष

0: 47 स्थानों पर इसका आयोजन आज किया जा रहा है। इस मेले के तहत कुल 51,000 से भी अधिक नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। आज के इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी हम सभी के साथ वर्चुअली जुड़ेंगे और आप सभी नव नियुक्तों को संबोधित करेंगे। रायपुर के कुल 803 युवाओं का चयन किया गया है। आज हम यहाँ पे कुल 257 नव नियुक्त उपस्थित हैं तथा माननीय प्रधानमंत्री जी के संबोधन के पश्चात इनमें से कुल 25 नव नियुक्तों को स्टेज पर माननीय मंत्री जी द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। अंत में सभी नव नियुक्तों को पुनः बहुत बहुत बधाई एवं उज्जवल भविष्य की बहुत सारी शुभकामनाएं और सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।
1: इसके बाद माननीय जनजातीय केंद्रीय राज्य मंत्री दुर्गादास उइके ने सभागार में उपस्थित अभ्यर्थियों, मीडिया से संबंधित और आम जनों को संबोधित करते हुए बताया।
2: पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम रायपुर के इस पावन पवित्र सभागृह में मेरे आत्मीय भाइयों बहनों, युवा साथियों तथा गणमान्य नागरिक बंधुओं, आज 23 मई 2026 को पूरे देश में 47 स्थानों पर भारत सरकार द्वारा आयोजित रोजगार मेले के इस भव्य आयोजन में हजारों युवा साथी एकत्र हुए हैं। यह केवल एक मेला नहीं बल्कि भारत के युवाओं की प्रतिभा, उनके सपनों और उनके उज्जवल भविष्य का यह पावन पवित्र उत्सव है। यह वह मंच है जो हमारे देश के युवाओं को उनके कौशल और योग्यता के आधार पर राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का सुनहरा अवसर प्रदान करता है। आज देश में 19वें रोजगार मेले के कार्यक्रम में देश भर में लगभग 47 स्थानों पर रोजगार मेले का आयोजन संपन्न हो रहा है। आज देश में कुल 51,000 से अधिक तथा रायपुर के इस कार्यक्रम में हमारे बेटे और बेटियां लगभग 257 कैंडिडेट जो फिजिकली तथा कुल 803 कैंडिडेट्स को स्वीकृति पत्रक प्रदान किए जाएंगे। आज रेल विभाग के 200, डाक विभाग के लगभग 34, वित्त विभाग के 11, स्वास्थ्य विभाग के 7 एवं हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के 5 कैंडिडेट्स को इस मंच से स्वीकृति पत्रक प्रदान किए जाएंगे। बेटा, आज के इस अवसर पर देश के यशस्वी और शुभंकर प्रधानमंत्री जी की ओर से ये पत्रक वितरित करने के लिए मैं आपके बीच में हूँ और देश के प्रधानमंत्री जी की ओर से मैं आपको हृदय से खूब सारी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। भारत सरकार ने 22 अक्टूबर 2022 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल प्रेरक नेतृत्व में रोजगार मेले की शुरुआत की थी, जिसका लक्ष्य था अगले कुछ वर्षों में 10,00,000 युवाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान करना। इस महत्वाकांक्षी पहल के तहत विभिन्न रोजगार मेलों के माध्यम से अब तक लगभग 11,00,000 से अधिक युवाओं को स्थायी सरकारी नौकरियां प्रदान की जा चुकी है। यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि है जो दर्शाती है कि हमारी सरकार ने मिशन मोड में कार्य करते हुए बेरोजगारी को कम करने और युवाओं को सशक्त बनाने की दिशा में अभूतपूर्व कदम उठाए। 26 अप्रैल 2025 को आयोजित रोजगार मेले के कार्यक्रम में 51,000 से अधिक युवाओं को स्वीकृति पत्रक प्रदान किए गए। 24 जनवरी 2026 को आयोजित रोजगार मेले के कार्यक्रम में लगभग 61,000 से अधिक युवाओं को स्वीकृति पत्रक प्रदान किए गए हैं। इसके अलावा रोजगार मेलों के माध्यम से गृह मंत्रालय, डाक विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय और वित्तीय सेवा विभाग जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में युवाओं को नियुक्त किया गया है। यह आंकड़े केवल संख्या नहीं है, ये उन लाखों परिवारों की आशाओं और सपनों की कहानियां हैं जिनके बच्चे आज आत्मनिर्भरता की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। यह भारत सरकार की उस प्रतिबद्धता का प्रमाण है जो हर युवा को अवसर प्रदान करने और उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का विजन युवा सशक्तिकरण और राष्ट्र निर्माण है। बच्चों, विकसित भारत 2047 की नींव हमारे युवाओं की ऊर्जा, प्रतिभा और समर्पण पर टिकी है। रोजगार मेले का आयोजन माननीय प्रधानमंत्री जी की उस प्रतिबद्धता का हिस्सा है जिसमें रोजगार

0: विजन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। उनका उद्देश्य है युवाओं को सशक्त बनाना है। रोजगार मेलों के माध्यम से युवाओं को न केवल नौकरियां दी जा रही हैं, बल्कि उन्हें राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदार बनाया जा रहा है। यह मेला युवाओं को आत्म सशक्तिकरण का अवसर प्रदान करता है, ताकि वे अपने सपनों को साकार कर सकें। 13 भारतीय भाषाओं में भर्ती परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं, ताकि भाषा कोई बाधा न बने। रोजगार मेलों में बड़ी संख्या में महिलाओं को नियुक्त किया जा रहा है। हमारी सरकार महिलाओं को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। नए नियुक्त कर्मचारियों को कर्मयोगी प्रारंभ जैसे ऑनलाइन प्रशिक्षण मॉड्यूल के माध्यम से प्रशिक्षित किया जा रहा है, जिसमें 1400 से अधिक ई लर्निंग कोर्स उपलब्ध है। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के हर क्षेत्र में प्रगति के नए कीर्तिमान, नए आयाम स्थापित किए जा रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसे पहलों ने युवाओं को एक नई दिशा दी है। भारत आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। बच्चों, स्टार्टअप की संख्या 2014 के 100 से बढ़कर 1,00,000 से अधिक हो गई है, जिससे 10,00,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिला है। मुद्रा योजना के तहत 23,00,000 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण वितरित किए गए हैं, जिससे 8-9 करोड़ लोग पहली बार उद्यमी बने। लखपति दीदी योजना ने 1.25 करोड़ से अधिक ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना ने लाखों युवाओं को प्रशिक्षित किया, जिससे वे नौकरियों और स्वरोजगार के लिए तैयार हुए। युवा साथियों, आप इस देश की सबसे बड़ी ताकत है। भारत दुनिया का सर्वाधिक युवा राष्ट्र है, जहां पर 65% युवा भारतवर्ष में निवास करते हैं। आज आपको जो अवसर मिल रहा है, यह केवल एक नौकरी नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है, विकसित भारत के निर्माण की जिम्मेदारी है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, अपील करता हूं कि आप इस अवसर पर का पूरा लाभ उठाएं, अपने कौशल को निखारें और देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। रोजगार मेला भारत सरकार की उस सोच का प्रतीक है, जो युवाओं को सशक्त बनाकर देश को मजबूत बनाना चाहती है। यह मेला केवल नौकरियां प्रदान नहीं करता, बल्कि यह आशा, विश्वास और आत्मविश्वास का संदेश देता है। आज मैं सभी युवाओं को, सभी हमारी बेटियों को जो आज यहाँ इस रोजगार मेले के माध्यम से नियुक्ति पत्र प्राप्त करेंगे, एक बार फिर मैं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की ओर से मैं आप लोगों को खूब सारी शुभकामनाएं देता हूँ। मैं एक बार खूब सारी आपको शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए अपना संक्षिप्त वक्तव्य यही विश्रांति की अनुमति चाहता हूँ। जय हिंद।
1: तत्पश्चात माननीय सांसद राज्यसभा श्रीमती लक्ष्मी वर्मा ने सभागार में उपस्थित अभ्यर्थियों और आमजनों को अपने उद्बोधन में कहा,
2: रोजगार मेला के तहत 51,000 नियुक्ति इस देश में दिए जाने हैं और सीधे नियुक्ति पत्र देने के लिए यह आयोजन किया गया है। मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि यह 19वां आयोजन है। इस आयोजन में कुल 47 स्थानों पे आयोजन किया जा रहा है और इस मेले के तहत जो प्रधानमंत्री जी वर्चुअली जुड़ेंगे और नव नियुक्तों को संबोधित करेंगे, यह हमारे लिए बड़ा गौरव का विषय है कि हमारे प्रधानमंत्री जी 2014 के बाद से इस देश में उन्होंने देश की कमान प्रधानमंत्री के रूप में संभाली और लगातार इस देश के

0: रोजगार देने के दिशा में उन्होंने बड़ा ही सराहनीय कार्य किया है। मैं प्रधानमंत्री जी को इस मंच के माध्यम से धन्यवाद देती हूँ कि वो इस देश की युवाओं को रोजगार देकर उनके आर्थिक मजबूती प्रदान कर रहे हैं। रायपुर के कुल 803 युवाओं का चयन हुआ है, जिसमें रेलवे के कुल 724, डाक विभाग के 34, बैंकिंग तथा वित्तीय सेवाओं के 28, स्वास्थ्य सेवाओं के 12 और हिंदुस्तान कापर लिमिटेड में 5 युवाओं को नियुक्ति पत्र जो दिया जा रहा है। आज इस स्थल पर कुछ कुल 257 नवनियुक्त उपस्थित हैं तथा माननीय प्रधानमंत्री जी के संबोधन के पश्चात इनमें से कुल 25 नवनियुक्तों को स्टेज पर माननीय हमारे कैबिनेट मंत्री जी के द्वारा नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। आप सभी का मैं पुनः हार्दिक स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ। और हमारे बीच में केंद्रीय राज्य मंत्री दुर्गादास उइके जी जो यहाँ पहुँचे हैं, मैं उनका भी स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ, उन्हें भी मैं धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।
1: इसके पश्चात माननीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह जी द्वारा प्रधानमंत्री जी को स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत किया गया। इसके बाद भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअली भारत के 47 स्थानों में 51,000 से ज़्यादा नवनियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र का वितरण और संबोधन किया गया।
2: साथियों, आज देश भर के हजारों युवाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। आज 51,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र मिला है। आज आप सभी देश की विकास यात्रा में अहम भागीदार बन रहे हैं, जिम्मेवार भागीदार बन रहे हैं। रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस, हेल्थ, एजुकेशन और दूसरे कई क्षेत्रों में आप सभी नई जिम्मेदारियां संभालने जा रहे हैं। आने वाले वर्षों में विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने में आप सभी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। साथियों, यहां तक पहुंचने के लिए आप सभी ने लंबी तैयारी और कड़ा परिश्रम जरूर किया होगा। इस उपलब्धि के लिए मैं आपको भी और आपके परिवारजनों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपको यहां तक पहुंचाने में आपके माता पिता और परिवार का योगदान कम नहीं होता है, लेकिन इतना भी नहीं है कि जैसे परिवार का योगदान होता है, समाज का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। हमें यहां पहुंचाने के लिए हम सिर्फ अपने कारण नहीं पहुंचते, सिर्फ अपने परिवार के कारण नहीं पहुंचते, इस विशाल देश के 140 करोड़ नागरिकों के योगदान का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। और इसलिए हमारा दायित्व खुद के प्रति, खुद के परिवार प्रति, वैसे ही संपूर्ण समाज के प्रति भी रहता है। और मुझे विश्वास है इन सभी कामों के लिए आप अपने आप को और अधिक योग्य बनाएंगे। मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आप सबको पता है अभी 2 दिन पहले ही मैं 5 देशों की यात्रा कर करके लौटा हूं। कहने को तो ये सिर्फ 5 देशों की यात्रा थी, लेकिन इस दौरान मेरी दर्जनों देशों की बड़ी बड़ी कंपनियों के लीडर से बातें हुई, विस्तार से चर्चा हुई, मुलाकात हुई।

और हर जगह मैंने एक बात समान रूप से महसूस की है, दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले। इस यात्रा के दौरान अब जैसे नीदरलैंड की मैं बात करूं तो नीदरलैंड के साथ सेमीकंडक्टर्स, वाटर, एग्रीकल्चर और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग पर चर्चा हुई। स्वीडन के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और डिजिटल इनोवेशन, उस पर सहयोग की बहुत सारी बातें हुई। नॉर्वे के साथ ग्रीन टेक्नोलॉजी और मैरिटाइम कोऑपरेशन की बात आगे बढ़ी है। UAE के साथ स्ट्रेटेजिक एनर्जी और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप पर महत्वपूर्ण समझौते हुए। इटली के साथ डिफेंस, क्रिटिकल मिनरल्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऐसे अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पार्टनरशिप्स पर एग्रीमेंट हुए। साथियों, इन सारे एग्रीमेंट्स का सीधा लाभ भारत के युवाओं को मिलने वाला है। और आपने देखा होगा कि सारे विषय एक उज्जवल समर्थ भारत के भविष्य की गारंटी लेकर के आते हैं, क्योंकि हर नया निवेश, हर टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप, हर इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन भारत के युवाओं के लिए नई अपॉर्चुनिटीज तो लेकर के आता ही है, लेकिन अनगिनत नए अवसर तैयार करता है। मेरे नौजवान साथियों, हमें याद रखना है ये वो सेक्टर्स हैं जिनमें आने वाला इन्वेस्टमेंट और पार्टनरशिप आने वाले 3-4 दशक की ग्लोबल ग्रोथ को ये शेप करने वाली इंडस्ट्री तैयार करेगी। और निश्चित तौर पर भारत के युवाओं की इसमें बहुत बड़ी भूमिका होगी। साथियों, भारत किस तरह दुनिया का एक भरोसेमंद सप्लाई चेन पार्टनर बन रहा है, इसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जैसे नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर कंपनी, आप में से बहुत लोग इस नाम से परिचित होंगे, ASML, ASML के साथ भारत की टाटा कंपनी का एग्रीमेंट है। भारत दुनिया के कुछ ही देशों में से एक है जिसके साथ इस कंपनी ने समझौता किया। ASML, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच ये अकेला समझौता ही भारत में रोजगार के अनगिनत नए मौके बनाएगा और भारत को एक नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी में प्रवेश द्वार खोल देगा। देश ने आप पर भरोसा किया है, अब ये जिम्मेदारी आपकी है कि आप अपने

0: से, अपने आचरण से, अपनी वाणी से, अपने व्यवहार से उस भरोसे को और मजबूती देंगे। देशवासियों के हृदय में एक नया विश्वास भर जाएगा, आपको मिलते ही वो नई आशा के साथ आगे बढ़ेगा। इसलिए हर युवा कर्मयोगी अपने काम को जिम्मेदारी की तरह देखें, और मेरे लिए तो आप बहुत कुछ है। आज भारत का युवा दुनिया के हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहा है। यही स्पिरिट, यही ऊर्जा पब्लिक सर्विस में भी दिखाई देनी चाहिए। विकसित भारत ऐसे ही युवाओं के प्रयास से बनेगा जो अपने काम को देश सेवा का माध्यम मानते हैं, जन सेवा का माध्यम मानते हैं। और हमारे यहां तो कहा, जन सेवा ही प्रभु सेवा। मुझे पूरा विश्वास है आज नियुक्ति पत्र पाने वाले हमारे युवा साथी भारत के विकास यात्रा को नई गति देंगे। आपके काम, आपके फैसलों से विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि होगी। और आपको वो मंत्र कभी भूलना नहीं है, हमारा मंत्र है नागरिक देवो भव। नागरिक देवो भव, नागरिक का कल्याण ही हमारा कर्तव्य है। मैं एक बार फिर आज नियुक्ति पत्र पाने वाले सभी युवाओं को आगे के जीवन के लिए, देश सेवा के इस अवसर को निभाने के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: माननीय प्रधानमंत्री जी के संबोधन के पश्चात सभागार में उपस्थित भारत सरकार के विभिन्न विभागों में चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरण किए गए। नियुक्ति पत्र प्राप्त अभ्यर्थियों से हमने बात की और उन्होंने बताया,
2: आपका नाम और आप कहां से हैं?
3: मेरा नाम सनी कुमार है और मैं बिहार से हूं। क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ में पिछले 2 साल से था, ग्रामीण डाक सेवक में, यहाँ बस्तर डिवीजन में था मैं
2: जी।
3: तो इसी कारण से मैं यही फॉर्म डाला और यहीं पे मेरा सिलेक्शन हो चुका है, बैंक ऑफ बड़ौदा कस्टमर सर्विस एसोसिएट के रूप में।
2: कितनी तैयारियाँ की फिर आप, क्योंकि ऑलरेडी एक अच्छे पद पर थे आप, और उसके बाद फिर ये?
3: मैम तैयारी तो 2021 से चल ही रही थी, तो 2023 में मैं JDS में सिलेक्शन हुआ मेरा। उसके बाद से मेरा लगभग 0.5 मार्क्स से किसी में 1 मार्क्स से रह जा रहा था, तो इसी कारण से इस कारण से डिले हुआ मैं, और आखिर में जा करके ये बैंक ऑफ बड़ौदा मेरे लाइफ में भी आया मैं।
2: प्रधानमंत्री की जो पहल है रोजगार मेला आयोजित करके नियुक्ति पत्र प्रदान करना, ये आपको कैसा लगता है?
3: ये बहुत बढ़िया पहल है मैम, और जैसा कि ये 19वां रोजगार मेला था, तो जिसमें मोदी जी ने बोला है कि लोगों को ये रोजगार नहीं प्रदान करता है, एक आत्मविश्वास और ऊर्जा का स्रोत बनता है मैम, तो ये सबसे बढ़िया पहल है मैम। यही संदेश, एक ही संदेश है कि जो जिस चीज़ की भी तैयारी आप कर रहे हैं, जिस फील्ड में भी हों, लगातार उसमें अब मेहनत से और आत्मविश्वास के साथ जुड़े रहें, कहीं ना कहीं आपको सफलता जरूर मिलेगी, चाहे जिस फील्ड में भी हों।
2: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
3: धन्यवाद मैम, धन्यवाद सभी को।
4: नीरज कुमार सिंह,
5: आपको किस पद पर नियुक्ति प्राप्त हुई है?
4: असिस्टेंट लोको पायलट।
5: असिस्टेंट लोको पायलट जी, आपको कैसा महसूस हो रहा है?
4: बहुत अच्छा लग रहा है।
5: और आपने इस पद को प्राप्त करने के लिए कितनी मेहनत की?
4: मतलब 1 साल 1.5 साल तो अच्छे से मेहनत की, इसलिए मिला हुआ ये पोस्ट।
5: जैसे इस पोस्ट को प्राप्त करने के लिए कुछ बता सकते हैं युवाओं को कि किस तरह की मतलब विषय पढ़ने पड़ते हैं, किस लाइन पे जाना पड़ता है?
4: इसमें टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों एग्जाम होते हैं, टेक्निकल सब्जेक्ट भी आता है, नॉन टेक्निकल भी आता है, तो दोनों पे ध्यान देना पड़ता है।
5: बहुत बहुत बधाई आपको आपकी पद प्राप्ति के लिए।
4: थैंक यू।
2: हेलो नमस्कार जी, आपका शुभ नाम?
6: सूरज विश्वकर्मा।
2: तो कौन से पद के लिए नियुक्ति पत्र प्राप्त हुआ है?
6: जी मैं रायपुर डिवीजन में असिस्टेंट लोको पायलट के पद के लिए नियुक्त हुआ हूँ।
2: असिस्टेंट लोको पायलट के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ पहले आपको इस पद के लिए।
6: जी धन्यवाद।
2: और कितनी मेहनत की आपने, हमारे श्रोताओं को बताइए, क्या तैयारियाँ की आपने?
6: तैयारी तो मैम करनी पड़ती है, इसमें बहुत अच्छी खासी तैयारी करनी पड़ती है, कम से कम 1 साल तो लगता है उसके पीछे।
2: जी। आज आपको इतना बड़ा मतलब पोस्ट मिल चुका है, तो हमारे श्रोताओं को क्या कहना चाहेंगे?
6: श्रोताओं को कहना चाहेंगे मेहनत करते रहिए, आपका भी समय आ जाएगा। मोदी जी ने अच्छा अभिवादन किया सबको, खुश तो सभी हैं, परिवार वाले भी खुश हैं, मैं भी खुश हूँ, सभी खुश हैं।
7: मैं हेमंतपुरी गोस्वामी।
2: सर अब कहाँ से?
7: मैं दुर्ग से हूँ, और मेरा सिलेक्शन बैंक ऑफ बड़ौदा में हुआ है एज अ CSA।

0: जी, सबसे पहले तो इस पद के लिए आपको बहुत बहुत बधाइयाँ.
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का.
0: और इस पद को प्राप्त करने के लिए आपने कितनी मेहनत की है सर?
1: मैं 2020 में से प्रिपरेशन शुरू किया था और 2025 वाले बैच में मेरा सिलेक्शन हुआ है, तो लगभग 5 साल लगे मुझे. कुछ छोटी मोटी कमियाँ रह जाती थी जिनकी वजह से कहीं ना कहीं मतलब अवसर से हम दूर हो जाते थे. बाकी अभी 2025 वाले बैच में मेरा सिलेक्शन हुआ है. जी देखिए, तो सभी को बहुत सारी खुशियाँ होती है, घर वाले भी काफ़ी खुश हैं कि जितना भी मेहनत करें बस दिल से करें. सिलेक्शन ज़रूर होता है, कभी कभी थोड़े से नेगेटिव्स वाले लाइफ आते हैं, बट लास्ट में ओवरऑल रिजल्ट पॉजिटिव ही होता है.
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद.
1: थैंक यू.
2: नमस्कार, आपका शुभ नाम?
3: मेरा नाम देवाशीष मजुमदार.
2: जी देवाशीष जी, आपको कौन से पद पर नियुक्ति पत्र प्राप्त हुआ है?
3: एज अ CSA इन बैंक ऑफ बड़ौदा.
2: अच्छा, आपको कैसा महसूस हो रहा है?
3: बहुत अच्छा लग रहा है.
2: और आपने इस पद को प्राप्त करने के लिए कितनी मेहनत की?
3: मैं लास्ट ईयर इंडियन एयरफोर्स से रिटायर हुआ हूँ June 2025 में, एंड मुझे 1 साल लगा प्रिपेयर करने के लिए. ऑलमोस्ट 6 महीना प्रिपेयर करने के लिए लगा, एंड आज सिलेक्शन हुआ. मुझे बहुत अच्छी खुशी हो रही है इस बात की.
2: और आप युवाओं को कुछ कहना चाहते हैं?
3: हाँ, युवाओं को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि मतलब आप हमेशा मेहनत करते रहिए, एंड जो भी एग्ज़ाम्स हैं उसको अच्छे से दीजिए एंड क्लियर कीजिए, दैट्स इट.
2: बहुत बहुत धन्यवाद आपका और बधाई आपको आपको नियुक्ति पत्र प्राप्त करने के लिए.
3: ठीक.
4: पुष्पांजलि ठाकुर.
2: पुष्पांजलि जी, आपको कौन से पद पर अब नियुक्ति पत्र प्राप्त हुआ है?
4: मेरे को ABPM पोस्ट पर मिला है, मर्रा बीओ में.
2: इसमें किस तरह के कार्य होते हैं ABPM?
4: मुझे आर्टिकल मिलेगा, उसको गांव-गांव पहुंचाना होगा जहां मेरे आश्रित गांव हैं.
2: जी, आपको कैसा महसूस हो रहा है ये पत्र प्राप्त करके?
4: बहुत अच्छा महसूस हो रहा है. मैं अभी कॉलेज के फाइनल ईयर में हूँ, तो अभी जनवरी में फॉर्म आया था GDS का, तो मैं गूगल में सर्च की कि ये कौन सी पोस्ट है, क्या क्या होता है, और मैं अपने पैर पे खड़ा होना चाहती थी, अपना खर्च खुद उठाना चाहती थी, तो ये पोस्ट में फॉर्म डाली, फिर मेरा फर्स्ट लिस्ट में आया नाम मर्रा बीओ में.
5: इस तरह आज 23 मई को रायपुर के पंडित दीनदयाल सभागार में 19वें रोजगार मेले में नवनियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरण और रोजगार मेले समारोह का समापन हो गया.
6: रायपुर के पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में आयोजित 19वें रोजगार मेले में नवनियुक्त अभ्यर्थियों को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा वर्चुअली नियुक्ति पत्र वितरण समारोह की रेडियो रिपोर्ट अभी आप सुन रहे थे. आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है. थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा. ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है.

0: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपली केंद्र है। 10 बजे हैं, लीजिए सुनिए संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। इसमें आज आप सुनेंगे चंगना श्री सीपी माधवन नम्पूथरी का कर्नाटक गायन। ये कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: आज हम आपके लिए लाए हैं श्री सीपी माधवन नम्पूथरी द्वारा प्रस्तुत कर्नाटक शास्त्रीय गायन। श्री सीपी माधवन नम्पूथरी, जिन्हें लोकप्रिय रूप से चंगना श्री माधवन नम्पूथरी के नाम से जाना जाता है, आकाशवाणी के ए ग्रेड वोकल आर्टिस्ट हैं और कर्नाटक संगीत में 2 दशकों से अधिक के उत्कृष्ट योगदान के साथ अत्यंत सम्मानित कलाकार हैं। उन्होंने 500 से अधिक एकल प्रस्तुतियां की है, जिनमें से अनेक में प्रसिद्ध कलाकारों जैसे डॉक्टर टी के मूर्ति, डॉक्टर उमायालपुरम के शिवरामन, श्री श्रीमुष्णम राजा राव तथा श्री मन्नारगुड़ी ईश्वरन ने संगति की है। उनके कार्यक्रम विदेशों में भी आयोजित हुए हैं, जिनमें अमेरिका, पेरिस, दक्षिण पूर्व एशिया तथा खाड़ी के देश शामिल हैं। केरल के चंगना शेरी में जन्मे माधवन नम्पूथरी ने अपनी प्रारंभिक संगीत शिक्षा अपने प्रथम गुरु श्री पी जी पद्म कुमार से प्राप्त की। बाद में वे स्वर्गीय टी वी शंकर नारायणन के शिष्य बने तथा उन्हें श्री पी आर कुमार केरला वर्मा और

0: कलन्यूर चंद्रशेखरन जैसे प्रसिद्ध संगीतज्ञों से उन्नत मार्गदर्शन भी प्राप्त हुआ। वे आरएलवी संगीत एवं ललित कला महाविद्यालय त्रिपोणितरा में पूर्व संगीत प्रवक्ता रह चुके हैं। उन्हें भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय से जूनियर फेलोशिप भी प्राप्त हुई है और मद्रास म्यूजिक अकादमी से सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का सम्मान भी प्राप्त हुआ है।
1: दिस इज आकाशवाणी इंटरनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक। वी ब्रिंग यू अ कर्नाटिक वोकल कॉन्सर्ट बाय श्री सीपी माधवन नंबूदरी, पॉपुलरली नोन एज Changanasheri Madhavan Nambudiri. He is an A-grade vocal artist of Akashvani and a highly respected performer with over 2 decades of distinguished contribution to Carnatic music. He has presented more than 500 solo concerts, many of them accompanied by eminent maestros such as Dr. T.K. Murthy, Shri Umayal Puram K. Shivaraman, Shri Shri Mushnam Raja Rao, and Shri Mannarkudi Ishwaran. His performances have also reached audiences abroad, including concerts in the United States, Paris, Southeast Asia, and Gulf countries. Born at Changanasheri in Kerala, Madhavan Nambudiri began his musical training under his first guru, Shri P.G. Padmakumar. He later became a disciple of late T.V. Shankaran Narayanan and also received advanced guidance from renowned musicians Shri P.R. Kumara Kerala Varma and Shri Kalanyur Chandrasekharan, a former music lecturer at the RLV College of Music and Fine Arts, Tripunatra. He is also a recipient of the Junior Fellowship from the Ministry of Culture, Government of India, and has been honored with the Best Musician Award from the Madras Music Academy.
2: The contribution of Akashvani to the growth of artists like me is truly immeasurable. Akashvani has provided a dignified platform that nurtures talent and strengthens the cultural fabric of our nation. Best wishes to Akashvani for completing successful 90 years.
0: आज रात के प्रसारण में इनके साथ संगत कर रहे हैं वायलिन पर विद्वान तिरुविरा विजु एस आनंद, मृदंगम पर विद्वान कोटयम जी संतोष कुमार और घटम पर श्री वाड़पल्ली आर कृष्ण कुमार।
1: इन टुनाइट्स प्रोग्राम ही विल बी अकंपनीड बाय विद्वान तिरुविरा विजु एस आनंद ऑन वायलिन, विद्वान कोटयम जी संतोष कुमार ऑन द मृदंगम एंड श्री वाड़पल्ली आर कृष्ण कुमार ऑन द घटम।
0: श्री चंगनाश्री माधवन नंबूदरी अपने गायन की शुरुआत स्वाति तिरुनाल की रचना परम पुरुषम से कर रहे हैं, जो राग ललित पंचम पर आधारित है और खंडु चापु ताल में निबद्ध है।
1: श्री सीपी माधवन नंबूदरी बिगिन्स हिज वोकल रिसाइटल विद परम पुरुषम, अ कॉम्पोजिशन ऑफ स्वाति तिरुनाल इन द राग ललित पंचमम सेट टू खंडु चापु ताल।

0: अप्रस्तुत है केसी केशव पिल्ले की एक कृति श्री बालकृष्णा पाहिमाम, जो राग पूर्वी कल्याणी पर आधारित है और रूपक ताल में निबद्ध है।
1: यू विल नाउ लिसन टू श्री बालकृष्णा पाहिमाम, अ कॉम्पोजिशन ऑफ केसी केशव पिल्ले इन द राग पूर्वी कल्याणी सेट टू रूपक ताल।

0: अपने गायन को जारी रखते हुए श्री चंगनाशेरी माधवन नंबूदरी अब प्रस्तुत कर रहे हैं श्यामा शास्त्री द्वारा रचित रावे हिमगिरी कुमारी, जो राग तोड़ी पर आधारित है और आदि ताल में निबद्ध है।
1: द नेक्स्ट आइटम इज रावे हिमगिरी कुमारी इन द राग तोड़ी सेट टू आदि ताल कंपोज्ड बाय श्यामा शास्त्री।

0: इसके साथ ही संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में श्री चंगनाशेरी माधवन नंबूदरी का गायन समाप्त होता है। इनके साथ वायलन पर विद्वान तिरुविजा विजू एस आनंद, मृदंगम पर विद्वान कोटेयम जी संतोष कुमार और घटम पर श्री वाड़ापल्ली आर कृष्ण कुमार ने संगति की थी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के तिरुवनंतपुरम केंद्र पर रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया गया।
1: With that, we conclude the vocal recital by Sri C.P. Madhavan Nambudiri in the broadcast of National Program of Music. He was accompanied by Vidwan Tiruvida Viju S. Anand on the violin, Vidwan Kottayam G. Santosh Kumar on the mridangam, and Sri Vaadapalli R. Krishna Kumar on the ghatam. This broadcast was recorded at Akashvani Tiruvananthapuram and came to you from the Delhi station of Akashvani.

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज भारत अमेरिका व्यापार वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक भलाई के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इस बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि अमेरिका के विदेश मंत्री ने श्री मोदी को रक्षा, रणनीतिक तकनीकों, व्यापार तथा निवेश, ऊर्जा सुरक्षा, कनेक्टिविटी, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में लगातार हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अमेरिका का दृष्टिकोण साझा किया। श्री मोदी ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की और बातचीत तथा कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की अपील दोहराई। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है, उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास स्पॉट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $20 अरब का निवेश किया है।

0: expanded commercial ties.
1: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में 20 अरब डॉलर से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
2: श्री रूबियो ने कहा कि उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे तथा उनमें और अधिक प्रगति होगी।
1: इस रिश्ते की बुनियाद राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच का आपसी संबंध है। ये एक निजी रिश्ता है। इसकी शुरुआत पहले कार्यकाल के दौरान हुई थी, जब राष्ट्रपति ट्रंप को भारत आने का मौका मिला था। ये रिश्ता दूसरे कार्यकाल में भी कायम रहा। आप उन दोनों के बीच के जुड़ाव को साफ साफ देख सकते हैं और मुझे लगता है ये बेहद अहम है।
2: भारत ने पैक सिलिका समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के युवा एक विकसित भारत की ओर अग्रसर होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आज वर्चुअल माध्यम से 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज महाराष्ट्र के शिरडी स्थित सावली विहिर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित तोप के गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन किया। इस परियोजना को निबे ग्रुप ने विकसित किया है। इस दौरान श्री सिंह ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। केंद्र ने रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए भूमि की आवश्यकता के मद्देनजर नई दिल्ली स्थित जिमखाना क्लब को 5 जून तक परिसर खाली करने का निर्देश दिया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन भूमि और विकास कार्यालय के आदेश में कहा गया कि ये भूमि तत्काल संस्थागत आवश्यकताओं, शासन अवसंरचना और जनहित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है। चीन के शांचकी प्रांत में एक कोयला खदान में गैस विस्फोट में मरने वालों की संख्या 90 हो गई है। यह विस्फोट कल क्यूआन काउंटी की लियुशेन्यू कोयला खदान में हुआ। अब तक 201 खनिकों को बचाया जा चुका है। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार और दुर्घटना के कारणों की जाँच के आदेश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे में हुई जानमान की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया। श्री मोदी ने भारत की ओर से राष्ट्रपति शी चिनफिंग और चीन की जनता के प्रति संवेदना व्यक्त की। वियतनाम के दा नांग में आज एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किए। 60 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में सूरज वशिष्ठ को एबेक एतुकोब से, वहीं 67 किलोग्राम वर्ग में सागर सिंह को एहतजान खालमा से हार का सामना करना पड़ा। प्रतियोगिता में कुमार सचिन ने 77 किलोग्राम भार वर्ग और रोहित ने 97 किलोग्राम भार वर्ग के कांस्य पदक के मुकाबले जीतकर कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।